0: हूँ और खुले दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने उन दृश्यों को बदलने का फैसला किया है जो आपत्तिजनक लगे हैं। साउथ की फिल्मों में हीरोइन के फिगर को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड करने का चलन आज का नहीं है, दक्षिण भारत के फिल्मों का ये पुराना ट्रेंड है। फिर भी जया बच्चन से लेकर आशिकी फेम अनु अग्रवाल, करीना कपूर और नेशनल अवार्ड विनर नित्या मेनन तक ने जानवी कपूर को सेक्सुअलाइज करने का किसी न किसी रूप में कड़ा विरोध किया। पर कमाल तो यह है कि जिस अभिनेत्री के किरदार को लेकर इतना ज्यादा बच क्रिएट हुआ, उसने पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि इस फिल्म को करने का फैसला उन्होंने क्यों लिया।
1: I think apart from just my character, when I heard the script, I felt very strongly about what the film was saying, how much it meant to our director, Butchi sir. And I think the politics, the social commentary, the cultural implications of what a story like this could do, all of these things resonated with me very deeply. So for those reasons alone, I wanted to be a part of this film.
0: Golden Spoon culture mein pali badi star kid ka khud ke bare mein flare up hui itni badi controversy ko lekar itna mature reaction aapko hairani mein dal sakta hai. Darasal Boni Kapoor jaise bade film nirmata और श्रीदेवी जैसी स्टार अदाकारा की दिलकश बेटी जाह्नवी की असल जिंदगी वो नहीं है जिसे पेदी के जरिए देखा और दिखाया गया। 4 जून को सिने प्रेमी सिल्वर स्क्रीन पर जब पेदी फिल्म की अच्छी अम्मा का ग्लैमरस लुक देखकर मदहोश हो रहे थे, उसी समय ये अभिनेत्री नंगे पांव 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 3,550 सीढ़ियां चढ़कर तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर पहुंच रही थी। अगाध श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश के मंदिर में माथा टेक कर फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांग रही थीं।

0: 4 जून को जिस समय सिल्वर स्क्रीन पर अचियम्मा के सेंसुअल लुक्स को देखकर ऑडियंस क्रेजी हो रहे थे, उस वक्त जाह्नवी विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में पूरी गरिमा के साथ भक्ति और अध्यात्म का कठिन रास्ता तय कर रही थी। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में जाह्नवी की अगाध आस्था का एक छोर उनकी माँ श्रीदेवी की बेपनाह यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पर बालाजी के दरबार में जाती थी, बल्कि जीवन के बिजी शेड्यूल के दौरान भी जब मौका मिलता तो उनका जाप करती थी। जाह्नवी तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी माँ की श्रद्धा, आस्था और समर्पण से वाकिफ थी। इसीलिए 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के मृत्यु के बाद माँ के हर जन्मदिन पर 13 अगस्त को वहाँ जाने का फैसला कर लिया।
1: आई थिंक तिरुपति से स्पेसिफिकली एक अलग जुड़ाव है। आई थिंक बचपन से मैं सुनती आई हूँ मम्मा के मुँह से के उनका भी एक अलग कनेक्शन रहा है बालाजी के साथ। हर बार उनका नाम जापती थी, नारायण नारायण नारायण, और कहती रहती थी कि हर साल उनके बर्थडे पर जब वो काम कर रही थी तो वो तिरुपति चढ़कर जाती थी। और शादी के बाद उन्होंने बंद कर लिया था, तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी, और बहुत शांति मिली मन में। तो उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि हर बड़े अवसर के पहले मैं तिरुपति चढ़ूंगी।
0: जाह्नवी और श्रीदेवी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी के परंपरागत संबंधों तक सीमित नहीं है। श्रीदेवी के गुजर जाने के 8 साल बाद भी उनकी यादें, उनका स्नेह, प्यार सब जाह्नवी की जिंदगी की प्रखर धूप में छायेदार वृक्ष की सुरभित बयार की तरह सुखद एहसास करा जाता है। ये एक ऐसा अलौकिक रिश्ता है जहां एक के जाने के बाद भी दूसरे को उसके आने का इंतजार है।
1: आई वॉन्ट टू रिमेम्बर द गुड थिंग्स। तो अभी भी जब मैं इंटरव्यूज में बात करती हूँ उनके बारे में, और हर 2-3 सेंटेंस में उनका जिक्र तो होता ही है। मम्मा कहती थी, मम्मा ने मुझे ये बोला था, मम्मा ने ये सिखाया था। आई थिंक इट मेक्स मी फील लाइक मे बी लाइक आई डोंट नो, शी इज ट्रैवलिंग समवेयर एंड शी विल कम बैक।
0: कुछ तो अलौकिक है माँ बेटी के रिश्ते में। जाह्नवी के जन्म के बाद श्रीदेवी आनंद की अलौकिक अनुभूति से सराबोर हो उठी थी। उन्हें तब ये नहीं लगा था कि उनकी गोद में कोई नन्ही नई मेहमान आई है, बल्कि ये लगा था मानो सदियों पहले बिछड़ा कोई अपना ही दोबारा से लौट कर दामन से लिपट गया है। श्रीदेवी ने अपनी बेटी का जाह्नवी नाम भी किसी खास एहसास से भर कर दिया था। दरअसल जाह्नवी 1997 में रिलीज हुई जुदाई फिल्म का एक करेक्टर था, इत्तेफाक से जिसे श्रीदेवी ने नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर ने निभाया था। कमाल देखिए कि जुदाई 28 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और जाह्नवी का जन्म उसके ठीक 6 दिन बाद 6 मार्च 1997 को हुआ। आपको बता दें कि जाह्नवी गंगा नदी का एक पर्यायवाची शब्द है जो अपनी पवित्रता और निर्मलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीदेवी अपनी बेटी में गंगाजल जैसी पवित्रता और निर्मलता का भाव रखती थी। 80 और 90 के दशक की मेगा स्टार श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जीवन में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ी, वो उनकी बेटियों को उठानी पड़े।
1: वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की जिंदगी जिए। ये जिंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो है नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया है ज़िंदगी में, और अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे, तो मैंने किया है क्या है लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मरी जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में।
0: साफ है कि जाह्नवी का फिल्मों में करियर बनाने का फैसला माँ को पसंद नहीं था। श्रीदेवी चाहती थी कि जाह्नवी डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की सेवा करें, लेकिन जाह्नवी ने जब अपनी मंशा साफ कर दी कि एक्टिंग के सिवा वो कुछ और कर ही नहीं सकती, तो श्रीदेवी ने अच्छा एक्टर बनने के लिए बेटी को कुछ टिप्स दिए। श्रीदेवी ने जाह्नवी को जो टिप्स दिए वो अभिनय के पेशे को गरिमा से भर देने वाला है।
1: यू नो शी ऑलवेज यूज टू से कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. एंड बिकॉज द कैमरा इज वेरी स्मार्ट, आई फील लाइक इफ यू आर नॉट अ गुड पर्सन देन इट शोज, एवरीथिंग फील्स फेक. एंड शी यूज टू से अगर दिल में गंदगी है या अगर यू नो इफ यू आर नॉट एबल टू लिव योर कैरेक्टर्स फीलिंग्स जेन्युइनली देन इट शोज. So that's one thing, and I think that it's ever since I was a kid, mom and dad have like drilled in my head, you need to be dedicated and be focused. So like you said, there's no substitute for hard work.
0: Janvi doctor banne ki maa ki khwahish to puri nahi kar payi, lekin har kasauti par acha insaan banne ki maa ki ichha puri karne ki bharsak koshish aaj bhi karti hain. Film industry mein actor ya actress ke beech एक हेल्दी कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कई बार तो अनहेल्दी भी बन जाता है. पर जानवी इस अनहेल्दी कंपटीशन से कोसों दूर हैं. उनसे ये पूछिए कि आप किस एक्ट्रेस को अपनी चुनौती मानती हैं, तो वे सह अस्तित्व की बात कह के सबका मुंह बंद कर देती हैं.
1: ये चुनौतीपन क्यों, क्योंकि हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ये शायद दूसरे लोगों के दिमाग में है. मुझे ऐसे लगता है कि हम सब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं, और हम सब एक दूसरे के लिए खुश भी है और हो सकते हैं. और एज लॉन्ग एज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, मुझे यू नो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, मैं एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए.
0: दरअसल जानवी से सवाल सारा अली खान और अनन्या पांडे को लेकर पूछा गया था. जानवी की मैच्योरिटी, उनकी तरबियत, मानवीय संवेदना, सोच और संस्कार आज की जेंजी या मिलेनियल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा है. एक ऐसी लड़की जो इंडस्ट्री की अत्यंत प्रभावशाली फैमिली का हिस्सा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ उसे मिल सकता था, पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस लखते जिगर ने पारिवारिक साये से निकलकर मेहनत और लगन से अपनी शख्सियत को गढ़ा है.
2: जानवी का अपनी मां श्रीदेवी से रिश्ता अनोखा और अलौकिक है. श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उन्होंने झेला है वही उनकी बेटियों को भी झेलना पड़े, लेकिन जानवी ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि वो अपनी शख्सियत को संघर्ष की भट्टी में तपकर गढ़ेंगी. इसलिए उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे कलाकारों से कहीं ज्यादा मेहनत की.

0: बेदी फिल्म से अलग तरह से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मुख्तसर से फिल्मी करियर में उन्होंने ऑडियंस के साथ ही क्रिटिक्स को भी अपने अभिनय के दम पर गहरे प्रभावित किया है। 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुई जाह्नवी को जन्म से ही अभिनय के संस्कार मिलने लगे थे। अभिनय की बारीकियां उन्होंने बेशक अमेरिका के लॉस एंजलिस के द ली स्टारबर्ग थिएटर एंड फिल्म्स इंस्टीट्यूट से सीखा, लेकिन उसका ककहरा उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी और पिता बोनी कपूर से होश संभालने के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था।
1: Actually, in my family, it's the only thing that we discussed. It's the only thing that we knew as kids. Every time we'd, you know, sit at home and have a conversation with one another, it was always about films. Or even when we'd go out to spend time together, we'd go out to watch a movie, and you know, it was always a conversation at home. Holidays were always either dad's shooting schedules or mom's shooting schedules. So it was. We've grown up in that environment.
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर जैसी इंडस्ट्री की नामवर हस्तियों की बेटी होने की वजह से जाह्नवी को सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मनीष मल्होत्रा कपूर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, जो इत्तेफाक से करण जौहर जैसे इंडस्ट्री के स्टालवार्ड के भी करीबी थे। मनीष जाह्नवी को बचपन से जानते थे, लिहाजा उनके भीतर के पोटेंशियल को लेकर वो अक्सर करण से चर्चा करते रहते थे। करण जौहर निर्देशक शशांक खेतान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्हें भारतीयता से भरी हुई एक हसीन और नए चेहरे की तलाश थी। इस दौरान जाह्नवी मनीष मल्होत्रा के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस आने जाने लगी थी। इसी बीच शशांक खेतान की नजर जाह्नवी पर टिक गई और उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के फैसला कर लिया कि धड़क के लिए जिस लड़की की तलाश थी उसके लिए जाह्नवी पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद जाह्नवी को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया।
1: मैं जाती थी उनके ऑफिस, आई थिंक 3-4 सीन्स दिए उन्होंने मुझे, और मैं जाके रट लेती थी और फिर परफॉर्म करती थी उनके लिए।
0: धड़क साइन करने के बाद जाह्नवी को एक अज्ञात डर सताने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि सेट पर लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टार की ढोने की वजह से ही उन्हें काम मिला है। इस डर की वजह से जाह्नवी इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गईं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिल रहा है दरअसल मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसीलिए वो सेट पर दूसरे कलाकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत करती थी और पूरी यूनिट के साथ काफी हम्बल भी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी को सेट पर आने से भी रोक दिया था, ताकि कोई ये ना कहे कि अपने जमाने के स्टार माँ बेटी की कमतरी को कवर करने के लिए आई हैं।
1: मेरे लिए ऐसा था कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं कि ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और इसलिए लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, अब मैं ये अपने आप करके दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मदद मत कीजिएगा, आप सेट पे मत आइएगा प्लीज। तो मैं उनको सेट से दूर रखती थी।
0: माँ श्रीदेवी को सेट से दूर रखकर जाह्नवी धड़क की शूटिंग के दौरान पूरी जान झोंक रही थी, ताकि प्रीमियर में माँ जब बेटी की एक्टिंग देखें तो आह्लाद से ओतप्रोत हो जाए। पर जाह्नवी की उम्मीद की कश्ती जब साहिल के करीब पहुंचने ही वाली थी, उसी वक्त अचानक आए भयानक तूफान ने सतरंगे सपनों की रानाइयों को तहस नहस कर दिया। धड़क फिल्म की रिलीज से करीब 5 महीने पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथटब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई। एक झटके में जाह्नवी की जिंदगी सन्नाटे में चली गई। धड़क फिल्म के प्रमोशन का उत्साह भी नहीं बचा। उस दौरान श्रीदेवी को लेकर जाह्नवी से जब कोई सवाल पूछा जाता तो वो दर्द की कशिश में ऐसे डूब जाती कि एक गहरी खामोशी के सिवा दूसरा कोई जवाब निकल ही नहीं पाता था।
1: उनके बारे में शायद अभी ज्यादा बात करने लगी हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी कीप आई लाइक टॉकिंग अबाउट, आई फील लाइक आई एम रिमेम्बरिंग हर, यू नो। लेकिन उस वक्त इतना फ्रेश था और आई थिंक लोगों के एजेंडास पर मैं विश्वास नहीं करती थी कि वो क्यों पूछ रहे ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत होता था। आई थिंक जब मैं धड़क प्रमोट कर रही थी there wasn't a lot of time that had passed. Mm-hmm. वो बहुत फ्रेश था मेरे दिमाग में सब कुछ, और मैं भाग रही थी मेरे सच्चाई से, और मैं काम को इस्तेमाल कर रही थी, सो दैट वॉज माई एस्केप। और जब भी कोई भी प्रोफेशनल सिनारियो में वो मुझे रिमाइंड करते थे कि शी इज़ नो मोर. आई थिंक मैं बिल्कुल शट, लाइक आई जस्ट कुडंट डील विद इट.
0: 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई धड़क में पार्थवी सिंह राठौर नाम की मध्यम वर्गीय लड़की के किरदार को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया. लेकिन जानवी अब भी मां की मौत के सदमे से

0: क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया, लेकिन जाह्नवी अब भी माँ की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी। करीब 2 साल तक जाह्नवी पर्दे पर नजर नहीं आई। 12 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जाह्नवी धड़क की पार्थिवी के उलट एक अलग ही मिजाज और अंदाज में दिखी। एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना के वास्तविक जीवन पर बनी फिल्म में जाह्नवी ने उनकी जिंदगी की बारीकियों को इतनी जहनियत के साथ पर्दे पर उकेरा कि दर्शक और समीक्षक दोनों अभिभूत हो गए। दरअसल माँ की मौत के सदमे से उबरने की जद्दोजहद में जाह्नवी के दिलो दिमाग में ये एहसास गहरे उतर गया कि जिंदगी खुद में एक कड़ा इम्तहान है और इस इम्तहान से भागना समाधान नहीं है।
1: I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that jitna bhi mushkil ho, ye daur ko bhi guzarna hi hai. Aur jab ye daur guzrega, aap aur bhi you'll emerge out of it stronger. Aap aur bhi usse ubhar ke nikloge.
0: इस फलसफे को अपनाने के बाद जाह्नवी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी। मिली, बवाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिस्टर एंड मिसेज माही, देवरा और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों के जरिए जाह्नवी ने इंडस्ट्री में अपनी मां की कमी को भरसक पूरी करने की कोशिश की है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने जाह्नवी कपूर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज स्टूडियो।
3: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: और अब आपको खबर दिखाते हैं विराट और करण की। बाल क्रिकेटर विराट कोहली और पंजाबी सिंगर म्यूजिशियन करण औजला की हो रही है, जो दिल्ली में एक मंच पर एक साथ दिखेंगे। आखिर क्या है मौका और क्यों ये दोनों साथ आ रहे हैं, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

दिग्गज भारतीय क्रिकेटर, पूर्व कप्तान और शानदार बल्लेबाज विराट कोहली को आपने अक्सर क्रिकेट के पिच पर रनों की बरसात करते हुए देखा होगा। विराट कोहली को आपने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऐतिहासिक जीत के बाद डांस फ्लोर पर धमाल मचाते हुए भी देखा होगा। विराट को आपने कई मैचों के दौरान फैंस को उत्साहित करने के लिए मैदान पर थिरकते हुए भी देखा होगा। इतना ही नहीं, विराट को आपने कॉमेडी शो में मस्ती करते हुए और हंसाते हुए भी देखा होगा। यही नहीं, आपको समय समय पर धर्म और अध्यात्म के प्रति विराट कोहली की आस्था की तस्वीरें भी देखने को मिलती रही होंगी। लेकिन अब विराट एक नए अंदाज में सामने आ रहे हैं। आखिर क्या करने वाले हैं विराट, आखिर क्या दिखाने जा रहे हैं विराट अपने फैंस और दर्शकों के सामने? अब क्या लेकर आ रहे हैं विराट? क्या आने वाले समय में विराट किसी म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ सकते हैं? ये सब अभी सस्पेंस ही है। लेकिन विराट ने खुद इसके बारे में जो संकेत दिया है, उससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विराट के फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ गई है। दरअसल विराट कोहली ने सोशल

0: लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी।
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Right field, and it will...
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: DIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
6: आज बाबा नीब करौरी महाराज के कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा है महाप्रसाद। सोमवती अमावस्या पर आज पवित्र नदियों के किनारे उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़, स्नान दान से मिलता है पुण्य, अधिक मास का भी समापन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट, आज लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान, एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। मानसून की झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में एंट्री, अगले 3 दिन में इसके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना, 9 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है मानसून। T20 महिला विश्व कप में भारत का शानदार आगाज, पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से पीटा, दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लेकर तोड़ी पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
6: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, ये देखते हैं खास कार्यक्रम अच्छी बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।

हमारे भारत में एक प्रांत है जिसका नाम पश्चिम बंगाल है। बहुत साल पहले हम गए, महीने पहले गए, साल क्या महीने पहले, वहां एक बहुत ही अच्छे भगत हुए, बड़े सिद्ध संत हुए, बड़े तपस्वी हुए, आहा माँ तारा के परम साधक हुए। माँ तारा को बहुत भाव पूर्वक मानते थे। उनका नाम था बामा खेपा। क्या नाम था? बामा खेपा। माँ तारा के साधक थे। ऐसा संत कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भी यही गुरु थे। इनका नाम बामा खेपा। पश्चिम बंगाल में एक गांव है, इनके नाम से ही बामा चरण नाम का गांव है, वहां इनका जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद इनके पिताजी का शरीर पूरा हो गया, माताजी गरीब थी, तो इनको पालन पोषण के लिए, इनकी जीवन यापन बढ़िया हो सके, इसलिए बामा खेपा जी को मामा के पास भेज दिया। बामा खेपा के जो मामा जी थे वो तारापीठ के पास के गांव के रहने वाले थे। आहा, धीरे धीरे बामा खेपा की रुचि साधु की संगति में बढ़ने लगी, संतों का संग करने लगे, भक्ति करने लगे, कभी शमशान की चिता के पास जाके बैठ जाएं, कभी जो है गांव के बाहर बैठ जाएं। गांव के आधे लोग इनको पागल समझते थे। एक रात इन पर भगवती माँ तारा की बड़ी कृपा हुई। भाद्रपद के महीने में तृतीया तिथि को, उस दिन मंगलवार का दिन था, ये भगवती माँ तारा का ध्यान कर रहे थे, उसी समय मध्य रात्रि में चिता के किनारे पर भगवती माँ तारा प्रकट हो गई और उन्होंने इनको दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया कि आज से तुम हमारे भगत हो और प्रेम पूर्वक तुम हमारी सेवा करो। रानी के द्वारा बनाए हुए मंदिर में ये कुछ दिनों बाद पुजारी नियुक्त तो हो गए, तो मंदिर में पूजा करने लगे। लेकिन इनकी पूजा का एक नियम था। बोले क्या? बोले भैया, इनका जब मन लगता तब ये पूजा करते, कभी कभी चार चार दिन पूजा करते, कभी बिल्कुल नहीं करते, कभी 2 बजे रात को करते, कभी बिल्कुल ही नहीं करते। तो किसी ने बामा के पास से पूछा, ये तो गलत बात है भाई, भगवती की पूजा तो प्रतिदिन करनी चाहिए, प्रातः काल स्नान करवाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, आरती होनी चाहिए। बामा खेपा ने बहुत तार्किक बात कही। बोले सुनो, हम प्रार्थना रोज करते, पूजा रोज करते, पर बाहर से यदि पूजा करें, अंदर से मन ना लगे तो पूजा व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है। हम पूजा तभी करते जब हमारा मन लगे, हमारा मन गवाही दे, हमारा मन भगवती की साधना में तल्लीन हो जाए, तब हम भगवती की उपासना करते। गांव के लोगों में जब ये बात गई तो गांव के लोगों ने बड़ा विरोध किया कि भाई ये तो पुजारी बनने लायक नहीं है, हटाओ उनको। तो रानी के कहने पर बामा खेपा को हटा दिया। गांव के बाहर जब ये गए, उसी दिन से इन्होंने भोजन करना छोड़ दिया, ना अन्न लिया ना जल लिया। तो भगवती माँ परांबा तारा माता रात्रि में बामा खेपा के पास गई। बेटा क्या हुआ? बामा खेपा मुंह उल्टा करके बैठ गए। मां हमसे बात मत करो। अरे क्या हुआ बताओ? 2 दिन हो गए आपकी पूजा, हमने आपको देखा तक नहीं 2 दिन से, पूजा तो दूर की बात है, उल्टा हमको मंदिर से और हटा दिया, पुजारी पद से हटा दिया। हमें पुजारी वुजारी बनने का लालच नहीं है, हमारे मन में यही लालच है कि हमारे अंतिम श्वास तक आपकी चरणों में समय गुजरे, सेवा में गुजरे। भगवती माँ ने कहा, तारा ने, चिंता मत करो, तुम हमारी सेवा में कल ही आओ। रात्रि में स्वप्न में जाकर के माँ तारा ने रानी को आज्ञा दी कि सुनो, प्रातः काल होते ही बामा खेपा को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर देना, वरना सब बर्बाद कर देंगे हम, क्रुद्ध हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। रानी को जब ये खबर स्वप्न में मिली तो प्रातः काल ही रानी ने बामा खेपा को बुलाया, तो बामा खेपा ने जाने से मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे,
हमको भगाया पहले, अब बुला रहे हो, क्या पता फिर भगा दो, बेइज्जती कर दो। रानी ने कहा हम वचन देते हैं जब तक तुम्हारा तन, तुम्हारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम ही मां भगवती तारा देवी की पुजारी बने रहोगे। आ ये सुनते ही बामा के पापा घर मंदिर आए पूजा की। इसी भी भक्त की भाव की बात है, पंडित जी जब इनकी माता जी खत्म हुई तो गांव भगे भगे गए, माता जी को जलाना था, अंतिम संस्कार करना था, तो सोचा अंतिम संस्कार यहां ना करके तारापीठ पर करें। तो गांव वालों से कहा कि चलो जरा मदद कर दो हमारी, तारापीठ तक ले चलो माता जी को। तो तारापीठ तक जो है लेकर के बामा खेपा की माता जी को आए, लेकिन नदी के किनारे ही एक घटना हुई। पूछो क्या? देवयोग से पानी बरसा और नदी में बाढ़ आ गई। कभी कभी प्रकृति बहुत परीक्षा लेती है, ध्यान से सुनना, बुरा न मानना। भक्त जब भगवान के मार्ग पर चलता तब केवल व्यक्ति भर परीक्षा नहीं लेते, प्रकृति भी परीक्षा लेती, और वही हुआ। भयंकर बारिश हुई और भैया बारिश में नदी भयंकर पानी से भर गई। गांव वाले बोले अब पार नहीं जा सकते हैं, तैरना बहुत मुश्किल है, लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे, यहीं जला दो। बामा खेपा बोले नहीं, हमारा तो प्रण है उस पार जलाएंगे। गांव वाले तो छोड़कर भग गए। बामा खेपा ने अपनी माता जी को कंधे पर टांगा और मार दी छलांग, और जैसे तैसे करके माता जी के शव के साथ बामा खेपा पार लग गए। वहां गए अंत्येष्टि की, गरीब तो थे, गांव के नहीं 13 गांव के लोगों को भंडारे का निमंत्रण दिया 13वीं पर। अब गांव के जो मजा लेने वाले लोग थे वो बोले अब पता चलेगा, अब मजा आएगा, इनके पास तो कुछ है ही नहीं है, ये कैसे कहां से अब जो है भंडारा कराएंगे, अब देखते हैं। गांव के लोग मजा लेने के लिए सब घर घर से सब परिवार सहित भंडारा खाने आए। उसी समय बारिश का फिर मौसम आया। बामा खेपा ने भगवती तारा से प्रार्थना की, मां हे भगवती आपके अलावा हमारा कोई नहीं, और आज यदि हमारी हंसी हो गई तो आपकी भक्ति पर उंगली उठ जाएगी। मां हमारा भले ही कुछ बिगड़ जाए पर आपकी भक्ति पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। और ये प्रार्थना करके जैसे ही बाहर निकले भगवती को चिंता सताई, मां तारा स्वयं वृद्ध का रूप धारण करके बैलगाड़ियों में सामान लेकर के बामा खेपा के यहां पर आ गई। खूब सामान लेकर के आई, देखते ही देखते बैलगाड़ियों से सामान भंडारे का उतरने लगा। लोग पूछने लगे सामान कहां से आया, तो वृद्ध रूपा भगवती बोली ये जो है जो पंडित जी हैं बहुत भक्त हैं, इनकी कृपा से हमारा बहुत काम सफल हुआ, तो हमें जब पता लगा कि इनके यहां भंडारा है तो हम अपनी श्रद्धा से सामान लेके आए। गांव वाले बोले वाह, लेकिन तब तक बारिश आई। बामा खेपा ने फिर देखा बारिश में कोई भंडारा नहीं पाएगा, भंडारा खूब बन गया, तो फिर भगवती के मंदिर में गए, मां आपकी कृपा से भंडारे की व्यवस्था तो हो गई लेकिन अब बारिश है, और बारिश यदि आ जाएगी सब भोजन पाने बैठ गए, भंडारा रखा रहेगा सब गीले हो जाएंगे, कोई प्रसाद नहीं पा पाएगा। इनके मन में प्रेरणा जगी, एक लाठी ली और जितने में भंडारा चल रहा था उतने में एक लकीर को खींच दिया, और देखते ही देखते सत्य घटना चरितार्थ हुई। पूरे पृथ्वी के जगह जगह गांव गांव में बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरी, पर जहां पर भंडारा चल रहा था वहां एक बूंद भी अंदर प्रवेश नहीं हुई। भैया इस कथा को कहकर के हम आपसे यही कहना चाह रहे प्रियजनों, यदि आपका भरोसा भगवान पर होगा तो हम बहुत दावे के साथ कहते हैं भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे, लाज बचाएंगे। अब तुलसीदास जी की कथा तो कलयुग की ही है, अभी 500 साल पहले ही हुए तुलसीदास जी, उनकी लाज भगवान ने ही बचाई। रामायण की जब परीक्षा ली गई
विश्वनाथ जी के मंदिर में काशी में, और रामायण जी को जब रखा गया तो कैसे रखा? काशी के विद्वानों ने कहा कि रामचरितमानस को तभी प्रमाणिक ग्रंथ माना जाएगा जब इस पर भगवान शंकर के या तो हस्ताक्षर हो जाए या कोई चमत्कार हो जाए। तो तुलसीदास जी बोले चमत्कार क्या होगा? बोले एक काम करो, रामायण जी को नीचे रखो, ऊपर से चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, इसमें कोई चमत्कार होगा तो अपने आप जो है पता लग जाएगा कि शंकर जी ने इसको स्वीकार कर लिया, और शिव जी स्वीकार कर लेंगे तो हम ब्राह्मण भी रामचरितमानस को स्वीकार कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, रामचरितमानस जी नीचे, उसके ऊपर चार वेद, उसके ऊपर छह शास्त्र, उसके ऊपर 18 पुराण, लेकिन मेरे पागलों, मेरे प्रिय जनों, हमारे आत्मीय जनों, रात के समय तुलसीदास जी माला लेकर के बैठ गए। हे रघुनाथ जी, हे महादेव, ये रामचरितमानस आपने ही लिखवाई, आप ही इसकी लाज रखना, आप ही बचाना, आप ही कृपा करना। ब्राह्मणों ने चोरी करने के लिए दो चोरों को साठ गांठ की पैसा दिया, जाओ रामचरितमानस की चोरी कर लाओ, यदि रामचरितमानस चोरी हो जाएगी तो ये पक्का हो जाएगा कि भगवान शंकर जी ने स्वीकार नहीं की, और ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही दो चोर विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस को चोरी करने गए, क्या देखते हैं? मंदिर के दोनों तरफ हाथ में धनुष मान लिए हुए नीलांबर स्वरूप है उनका, माथे पर तिलक लगाए हुए हैं, सांवला स्वरूप है, बड़ी बड़ी जुल्फे, बड़े बड़े घुंघराली लटके हैं, उनकी लटके लटक रही हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और वीर की भूमिका में धनुष बाण लेकर के कोई रक्षा कर रहा है। और जो चोर चोरी करने गए थे वो भगत और बन गए। बोलो सीताराम। गए थे चोरी करने, वो भी जो है रक्षा करने।

0: रत्न करते हुए वो भी भगवान के भक्त बन गए। अच्छा भक्त बन गए सो तो ठीक है, सुबह तुलसीदास जी को बता भी दिया कि हम आए थे तो चोरी को, लेकिन हम ही रक्षा करने लगे। बोले क्यों? तुलसीदास जी बोले क्यों? अरे बोले क्या बताएं भैया, जब हम यहाँ चोरी करने आए तो हमने दो इतने सुंदर राजकुमार देखे कि हमारा मन परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, अब हमारा मन चोरी का नहीं बचा, अब तो भक्ति का हमारा मन बचा है। लो ये कौन है? वो दोनों राजकुमार अभी तो दिखाई नहीं पड़े। बोले भैया थे कैसे? बोले सांवले थे, बड़ी घुंघराली लटके थी, हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे, लेकिन जो दूसरे वाले थे ना वो सांवले नहीं थे। बोले वो कैसे थे? बोले वो गोरे थे, गौरांग अंग था। तो तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया जो सांवले थे वो तो राम जी थे, पर जो गौरांग थे गोरे थे वो लक्ष्मण जी थे। और जब पट खोला रामचरितमानस जी को देखा तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण देखा कलयुग में? जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखी हुई थी, भगवान शंकर की अनुकंपा से चार वेद छह शास्त्र 18 पुराण नीचे रखे, सबसे ऊपर रामचरितमानस रखी और भगवान शंकर के हस्ताक्षर हैं सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शंकर के हस्ताक्षर, स्वयं भगवान शंकर ने उस पर हस्ताक्षर किए, बल्कि गोस्वामी जी ने कहा भी।
1: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक Today, man.
2: Tune In's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुंडी

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: आज बाबा नीब करोरी महाराज के कैंची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा है महाप्रसाद। सोमवती अमावस्या पर आज पवित्र नदियों के किनारे उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, स्नान दान से मिलता है पुण्य, अधिक मास का भी समापन। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट, लखनऊ के लिए पहली उड़ान, एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मानसून की एंट्री, अगले 3 दिन में प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश, पहुंचने की संभावना, 9 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है मानसून। T20 महिला विश्व कप में भारत का शानदार आगाज, पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से पीटा, दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लेकर तोड़ी पाकिस्तानी बल्लेबाजी की कमर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
4: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
6: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
7: somebody save me,
6: to timeless favorites,
7: and life is like a song,
6: and new discoveries.
7: So much more than a history. Wake up.
6: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
12: गुड न्यूज टुडे
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
12: गुड न्यूज टुडे
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
5: के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे महान और सबसे पवित्र माना जाता है। बृहस्पति की पवित्रता उसकी दृष्टि में छिपी होती है। और बृहस्पति की दृष्टि को सर्वाधिक पवित्र क्यों मानते हैं, अलग अलग ग्रहों पर इसकी दृष्टि का प्रभाव क्या होता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति देव की दृष्टि के बारे में। बृहस्पति की दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? देखिए, ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन हम करते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु केतु के पास कोई दृष्टि नहीं होती। बाकी बच गए 7 ग्रह। हर ग्रह के पास, इन 7 ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि के पास विशेष दृष्टियां भी होती हैं। बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि तो है ही, लेकिन उसके अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि भी बृहस्पति के पास होती है। बृहस्पति की दृष्टि यानी बृहस्पति का देखना अत्यंत शुभ है, अत्यंत शक्तिशाली है। बृहस्पति की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़े या जिस भाव पर पड़े उसको अत्यंत शुभ कर देती है। यानी अगर कुंडली में कोई अशुभ ग्रह है या कोई अशुभ योग है और बृहस्पति की दृष्टि उसके ऊपर पड़

ग्रहों पर पड़ती है तो इसका क्या असर होता है? अगर सूर्य पर दृष्टि पड़े बृहस्पति की तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा मान सम्मान मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार या राज्य की तरफ से सहायता और कृपा प्राप्त होती है। अगर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो मानसिक स्थिरता मिलती है और व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अगर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी हो जाता है, लेकिन अगर बृहस्पति मंगल को देखे और मंगल भी बृहस्पति को देख ले तो ये वैवाहिक जीवन में उन्माद और उपद्रव पैदा करता है। अगर केवल गुरु जो है मंगल को देख रहा है तो व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी बना देता है। बुध पर अगर दृष्टि हो बृहस्पति की तो व्यक्ति काफी बुद्धिमान और काफी ज्ञानी होता है। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में और सलाहकारिता के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। लिखने पढ़ने के काम में, बोलने में, वाणी में, प्रेजेंट करने में इनको काफी सफलता जीवन में प्राप्त होती है। बाकी ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि का क्या प्रभाव है ये जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो हमने आपको बताया कि बृहस्पति की दृष्टि का सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अब बाकी ग्रहों का भी हाल जानते हैं। शुक्र पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो व्यक्ति वैभवशाली होता है, व्यक्ति का चरित्र काफी मजबूत होता है। हालांकि कभी कभी माइनर केसेस में बृहस्पति अगर शुक्र को देखे और शुक्र भी बृहस्पति को देखे तो ये मेंटल डिप्रेशन का कारण बन सकता है। अगर केवल बृहस्पति शुक्र को देख रहा है तो ये जीवन में धन, संपन्नता और वैभव देगा। शनि पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि मिलती है। बृहस्पति अगर शनि को देखेगा तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि मिलेगी। कभी कभी बृहस्पति शनि को देखे तो आदमी कानून की पढ़ाई करता है या लॉ के फील्ड में जाता है। राहु और केतु पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो इन ग्रहों के दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। ये ग्रह सामान्यतः अच्छा फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। कुंडली में कोई अशुभ योग बना हुआ है, कोई खराब कॉम्बिनेशन है और उस पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई है तो उस खराब कॉम्बिनेशन का, खराब योग का ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर कुंडली में कोई स्थान दूषित हो गया है, कोई स्थान कमजोर हो गया है और बृहस्पति की दृष्टि वहां पड़ती है तो वो स्थान, वो भाव शुभ हो जाएगा और जीवन में शुभ परिणाम प्रदान करना शुरू कर देगा। देखिए, बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं

सामान्यता ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति उस भाव को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन जिस भाव को, जिस ग्रह को देखते हैं, उसको वो शुभ कर देते हैं, उसको वो बेहतर कर देते हैं। बृहस्पति की तीन दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। इसमें जो सप्तम दृष्टि है बृहस्पति की, वो उतनी ज्यादा शुभ नहीं होती। शुभ तो होती है, लेकिन इसके पास उतनी ताकत नहीं होती। पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि बृहस्पति की ज्यादा शुभ होती है। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कुंडली में मंगल दोष है और बृहस्पति मंगल को देख रहा है तो मंगल दोष भंग हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी या नवम दृष्टि पड़ेगी मंगल के ऊपर, तो मंगल के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी घट जाएगी। लेकिन अगर सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो मंगल के हाल पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट मंगल उतना ही डिस्टर्ब करेगा, उतना ही परेशान करेगा। तो बृहस्पति की हालांकि तीनों दृष्टियां पवित्र हैं, लेकिन जो सप्तम दृष्टि है वो सबसे कम पवित्र है, उसके बाद पंचम दृष्टि पवित्र है और उसके बाद नवम दृष्टि बृहस्पति की सबसे ज्यादा पवित्र है। नवम दृष्टि जिस भाव पर पड़े, जिस ग्रह पर पड़े, वहां बृहस्पति की सारी शुभता आ जाती है। तो आज हमने आपको बताया बृहस्पति की दृष्टि के बारे में और बृहस्पति की दृष्टि की शुभता के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। घर के दरवाजों को खोलते बंद करते समय तड़ाक भड़ाक की आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर घर के दरवाजों को खोलते बंद करते समय आवाज होगी जोर से, तो घर में कलह कलेश और अशांति पैदा होगी। प्रातः काल माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिए। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: आज बाबा नीब करौरी महाराज के कैची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा है महाप्रसाद। सोमवती अमावस्या पर आज पवित्र नदियों के किनारे उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़, स्नान दान से मिलता है पुण्य, अधिक मास का भी समापन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो रही कमर्शियल फ्लाइट, आज लखनऊ के लिए होगी पहली उड़ान, एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान करेंगे सफर। मानसून की झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में एंट्री, अगले 3 दिन में इसके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना, 9 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है मानसून। T20 महिला विश्व कप में भारत का शानदार आगाज, पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से पीटा, दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लेकर तोड़ी पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबर।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्यों बार बार हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, और हम लगातार कोशिश करते हैं, कभी अपनी किस्मत को दोष देते हैं तो कभी अपनी कुंडली को दोष देते हैं। इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा और जानेंगे कि ऐसा आखिर होता क्यों है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
5: अगर संतान को लेकर किसी भी तरह की समस्या होती हो, उसके करियर को, उसके स्वास्थ्य को, उसके स्वभाव को लेकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती हो, तो हर बृहस्पतिवार को भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। अगर हर बृहस्पतिवार को भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करें तो संतान की उन्नति अवश्य होगी।
4: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि जब हम कोई काम करते हैं, खासकर कि कोई ऐसा काम जिसके बिगड़ने के पीछे हमें कोई वजह नहीं पता चलती लेकिन वो काम बिगड़ जाता है, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या होती है, वो पंडित जी से जानेंगे।
5: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। काम 99 तक पहुंच जाता है लेकिन 100 नहीं होता, काम बिगड़ जाता है। आखिर किसी काम के बिगड़ने की वजह क्या होती है, पहले ये जानते हैं। देखिए, ऐसा आपने बहुत बार अपने जीवन में देखा होगा कि कभी कभी बिना कारण के सारे किए हुए काम, बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं। कुछ काम बिगड़ने के पीछे अपने कर्म होते हैं, अपनी गलतियां होती हैं, और कुछ काम के बिगड़ने के पीछे दूसरों के कर्म होते हैं, दूसरों का प्रभाव होता है। ये तमाम बातें ग्रहों को देखकर आप जान सकते हैं कि बिना कारण के किस कारण से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं। अगर आपकी खुद की गलतियों से, खुद के कर्मों से काम बिगड़ रहे हैं तो उसका निवारण और समाधान सरल होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा आपके काम बिगाड़ रहा है अपनी भावना से, अपनी प्रार्थना से, अपने प्रयास से, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। तो मुख्यतः दो तरीके से काम बिगड़ते हैं, अपनी गलती से, अपने खराब कर्मों से, और दूसरे के प्रभाव से, दूसरे के प्रयास से भी काम बिगड़ जाते हैं।
4: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
5: मेष राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। धन हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और आइए अब जानते हैं कि अपने किन कर्मों के कारण काम बिगड़ने लगते हैं, हमारे वो कौन से कर्म होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता लेकिन उसी वजह से हमारे काम लगातार बिगड़ते हैं।
5: देखिए, आपके अपने बहुत सारे कर्म होते हैं, आपको लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कर्म आपके भाग्य को ब्लॉक कर देते हैं, आपके काम बिगाड़ने लगते हैं, आपके काम चौपट करने लगते हैं। कौन से कर्म हैं? अगर आप अपने माता पिता का या अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं तो पक्की तौर से जानिए कि आगे चलकर हर काम में रुकावट आएगी, हर काम होते होते रह जाएगा। बिना किसी उचित कारण के अगर आप एबॉर्शन करवाते हैं, अपना अगर आप महिला हैं स्वयं का करवाती हैं, या आप पुरुष हैं अपनी पत्नी का करवाते हैं, बिना किसी उचित कारण के भ्रूण हत्या करवाते हैं, महापाप है ये, इसके गंभीर परिणाम जीवन में भुगतने होंगे। और याद रखिए, इसकी वजह से जीवन में संतान को लेकर हमेशा कष्ट भोगना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके हर काम में रुकावट आएगी। अगर आप किसी व्यक्ति का अधिकार छीन लेते हैं, कोई व्यक्ति आपकी सेवा करता है, नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह 10,000 होनी चाहिए, आप उसको 500 रुपए देते हैं, 2,000 देते हैं, 4,000 देते हैं, उसका अधिकार छीनते हैं या उसको उसका सही हक नहीं देते हैं, तो याद रखिए परमात्मा आपका हक, आपका भाग्य उतना परसेंट काट लेगा और आपके हर बने बनाए काम में रुकावट आएगी, हर काम रुकने लगेगा। केवल निजी स्वार्थ के लिए आप हरे पेड़ कटवाते हैं, आपके घर का शो खराब हो रहा है, आप हरे पेड़ कटवाएंगे, परिणाम बहुत ही गंभीर हैं। परिवार में विशेष बीमारियां पैदा होंगी, संतान को लेकर कष्ट होगा, अपमृत्यु की स्थिति बनेगी। बिना किसी सही वजह के हरे पेड़ मत कटवाइए, बहुत ही भयंकर है इसकी सजा। या आप नदियों को दूषित करते हैं, देखिए हर नदी पवित्र है, ऐसा नहीं है कि गंगा पवित्र है, यमुना पवित्र है, बाकी नदियां पवित्र नहीं है, हर नदी पवित्र है, इसलिए नदियों को दूषित करेंगे, आपके हर काम में अज्ञात बाधा आएगी। अगर आप जानबूझकर दूसरों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, आप ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों को मानसिक कष्ट मिलता है, तो पक्की तौर पर आप ये जान लीजिए कि आपके हर काम में रुकावट आएगी और उतना ही मानसिक कष्ट आपको झेलना पड़ेगा।
4: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते हैं और बिगड़ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे दूसरों का हाथ होता है। जी हाँ, दूसरों के कर्मों की वजह से हमारे काम बिगड़ते हैं, तो उसकी वजह क्या है ये हम जानेंगे।
5: देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आपके कर्म तो ठीक हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, आपसे जलता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका प्रयास करता है, आपको नुकसान हो इसके लिए पूजा और प्रार्थना भी करता है। तो दूसरों के किन कामों से अपने काम बिगड़ते हैं? जब दूसरे आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने लगे, आपकी अपनी एनर्जी कमजोर है और दूसरे की निगेटिव एनर्जी आएगी तो आप बीमार पड़ेंगे। जिसको आप मोटी बोलचाल की भाषा में कहते हैं नजर लग जाना, आपकी अंदर की शक्ति कमजोर होगी और दूसरा आपको नजर लगाएगा या आपकी चीजों को देख के मन में नकारात्मक भाव लाएगा तो आपके काम रुकेंगे। जब दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग करें, वैसे तो देखिए माता बगलामुखी के मंत्र जपना इतना आसान नहीं है, उसकी बड़ी टेक्निक है, लेकिन फिर भी कोई आपके लिए जप रहा है कि ओम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है जेवाम कीले बुद्धि विनाशय, ये करते हैं ना लोग कि भैया नुकसान हो ही जाए, तो अगर कोई आपके लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग करे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कम होगी तो भी आपके काम रुकेंगे, आपको नुकसान होगा। जब दूसरे लोग आपके साथ रहकर गलत काम करें, भले ही आप गलत काम ना करें, आप तो मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते लेकिन दूसरे को पैसे देते हैं कि मांस खाओ मदिरा पियो, दूसरे को अपने साथ घुमाते हैं, वो गलत हरकत करता है, गलत आचरण करता है, उसके संस्कार आपको भी भुगतने पड़ेंगे। संगति से गुण उपजे, संगति से गुण जाए, वो संस्कार आपको भुगतने पड़ेंगे, आपके काम में बाधा आएगी। देखिए, आपकी कोई जिम्मेदारी है बहुत बड़ी माता पिता के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने ऑफिस के प्रति, और आप वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, आप बेईमानी करते हैं, कोई और निभाता है, तो तैयार हो जाइए, जो आपकी किस्मत का हिस्सा है वो ले जाएगा और आपके हर काम में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। आपकी जिम्मेदारी कोई निभाने लगेगा, जो काम आपको करना चाहिए वो दूसरा करने लगेगा, तो आप पक्का जानिए आपकी किस्मत से उतना हिस्सा कटेगा और आप जब अपने महत्वपूर्ण काम करने जाएंगे वो काम आपके नहीं बनेंगे। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, दुष्ट व्यक्ति है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाने का प्रयास करता है, अगर ऐसा करते हैं, आप खराब आदमी की सहायता करते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता। उसके नकारात्मक वाइब्रेशन, उसकी नकारात्मक तरंगे आपके काम को बिगाड़ देती हैं और आपके काम होते होते रह जाते हैं।
4: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का।
5: कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और चलिए वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब पंडित जी द्वारा दिए जाने का, तो पंडित जी से ही जानते हैं। पंडित जी, आज का पहला सवाल आप किसका ले रहे हैं?
5: जी, आज का पहला प्रश्न हरिनाथ जी ने हमें लिखा है। अयोध्या धाम से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 अक्टूबर 1970। जन्म का समय सुबह के 8:30। जन्म का स्थान है अयोध्या। हरिनाथ जी कह रहे हैं कि संपत्ति को लेकर एक मुकदमा काफी समय से चल रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि ये मुकदमा कब तक हल होगा और भविष्य में सफलता कब तक मिल पाएगी। हरिनाथ जी, आपका जो मुकदमा है वो आपके परिवार में ही चल रहा है, आपके अपने भाई बहनों के साथ, तो मुझे लगता है कि जून के बाद आप इस मामले को आपसी सुलह समझौते से सुलझाने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से ये मामला जून के बाद इसी साल में सुलझ जाएगा। और जो आप मकान बनवाना चाहते हैं, अगले साल आप मकान भी बनवा सकेंगे। तो थोड़ा सा कम या ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपसी सुलह समझौते से सुलझाइए तो अच्छा रहेगा। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
4: तो अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं।
5: जी अगला प्रश्न शिप्रा जी ने हमें लिखा है और शिप्रा जी ग्रेटर नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जनवरी 1983। जन्म का समय दोपहर में 2:24। जन्म स्थान है शामली उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें बनी रहती हैं और तमाम दवाइयां करने पर भी कोई बहुत लाभ नहीं हो पाता है। थोड़े दिन मैं ठीक रहती हूं फिर बीमार पड़ जाती हूं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। शिप्रा जी आपकी कुंडली में ज्यादातर दिक्कतें आपके हड्डियों की हैं, नसों की हैं, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आपको जल्दी होती है, वो भी एक समस्या है आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको अभी जब तक ये साल खत्म नहीं हो जाता है दिसंबर 2026 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 2027 के शुरुआत के साथ आपकी स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः माणिक्य पहने। रोज शाम को माता दुर्गा की पूजा करें और देवी कवच का रोज शाम को पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा।
4: तो अभी हमने बात की इससे पहले अगर दूसरे के कर्म जो हैं वो आपके काम में बाधा डाल रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करें। अगर खुद के कर्मों की वजह से आपका बना बनाया काम बिगड़ रहा है तो उसके लिए क्या उपाय करें, आइए जानते हैं।
5: अगर आपके खुद के कर्म ऐसे हैं जैसा हमने आपको पहले बताया कि कौन कौन से कर्म हैं, अगर आपके खुद के कर्म गड़बड़ हैं जिसकी वजह से आपका बना बनाया काम बिगड़ रहा है तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा और अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिएगा, ऐसा रोज सुबह अवश्य करें। घर में और घर के बाहर पार्क में, सड़क के किनारे, अपनी बालकनी में, मैदान में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करिएगा। नियमित रूप से प्रातः काल अगर संभव हो तो सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाइएगा और रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। गजेंद्र मोक्ष पढ़ने से और ईमानदारी से रहने से पापों का प्रायश्चित होता है। महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार अगर आप अफोर्ड कर सकें तो किसी निर्धन व्यक्ति को भर पेट भोजन कराइए। भविष्य में किसी को भी जानबूझकर पीड़ा मत पहुंचाइए। देखिए अनजाने में गलती किसी से भी हो सकती है लेकिन जानबूझकर ऐसा काम करें कि किसी को कष्ट पहुंचे, किसी को पीड़ा पहुंचे तो वो बहुत बड़ा पाप है। एक श्लोक आता है ना, अष्टाद्वश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमीडनम्। यानी 18 पुराण में वेद व्यास जी ने दो ही बातें कही हैं कि दूसरे का उपकार करना पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है।
4: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
5: तुला राशि, धन की समस्या आपकी दूर होती दिख रही है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। संपत्ति का लाभ हो सकता है। परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें। संतान की चिंता रह सकती है। महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
4: तो चलिए जानते हैं, अगर दूसरों के कर्मों के कारण आपके काम बिगड़ रहे हो तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए?
5: देखिए, आपको पहले बताया कि दूसरों के कर्मों से, दूसरों के प्रभाव से भी आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अगर दूसरों की वजह से काम बिगड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? अपने घर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दोनों तरफ सिंदूर से स्वस्तिक बनाइएगा। घर के मुख्य द्वार पर या तो अशोक का वृक्ष लगाइए बड़े गमले में या जमीन में, या अशोक के पत्तों का वंदन वार लगाइए। इसको हर हफ्ते बदलते रहिए। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान पर दीपक जरूर जलाएं। अगर ऐसा लगता है आपको कि किसी ने आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का या मंत्र का प्रयोग किया है तो ऐसी स्थिति में आपको एक मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस मंत्र का रोज सुबह, या और अच्छा होगा कि रोज शाम को 108 बार जप करें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का या नकारात्मक मंत्र शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मंत्र जप करते समय गुग्गल की धूप बत्ती अगर आप जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।
4: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल।
5: मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन की दशा में सुधार होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: स्वास्थ्य में सुधार होगा, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का तीसरा सवाल उनको कहां से आया है और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न प्रभास ने हमें लिखा है और प्रभास हमें मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 27 नवंबर 2002, जन्म का समय सुबह के 8:55, जन्म स्थान है अहमदाबाद। प्रभास कह रहे हैं कि मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली है, आगे मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा? प्रभास, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, अगर आप MBA करते हैं तो MBA करना, मैनेजमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो अभी मुझे लगता है उसका उचित समय नहीं है, आप नौकरी करने के लिए 2028 के बाद विदेश जाइएगा, अभी भारत में ही किसी अच्छे संस्थान से MBA की पढ़ाई कर लें। अभी जल्दबाजी में आप एकदम से व्यापार में घुस जाएं, एकदम से नौकरी करने लगें, ऐसा उचित नहीं होगा, अभी आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं आज का अंतिम और चौथा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं।
0: अगला प्रश्न रीतिका ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जुलाई 2008, जन्म का समय दोपहर में 2:55, जन्म स्थान है रांची। मेल लिखती हैं कोलकाता से। ये कह रही हैं कि मैं अभी इंटरमीडिएट में हूं और इसके बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहती हूं, क्या ये दिशा मेरे लिए ठीक रहेगी या मुझे किसी और दिशा में जाना चाहिए? रितिका, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको CA करने की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने की कोई सलाह नहीं दूंगा। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करिए और गवर्नमेंट जॉब में जाइए, या 12वीं के बाद BBA MBA करके मैनेजमेंट में अपना करियर बनाइए, अच्छा रहेगा। 10 साल भी अगर परिश्रम करेंगी तो कोई जरूरी नहीं है कि आप CA बन पाए, इसलिए इस ट्रैक पर जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। एक पीला पुखराज, वजन में 6-7 रत्ती, सोने या पीतल के लॉकेट में, पीले धागे में, अपने गले में बृहस्पति वार को प्रातः धारण कर लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, रुका हुआ धन मिलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रह का दान कर सकता है? देखिए, आपको जीवन में उसी ग्रह की वस्तुओं का दान करना अच्छा रहेगा जो ग्रह जीवन में समस्या दे रहा हो। जो ग्रह कुंडली का शुभ ग्रह हो, जो आपके लिए फायदेमंद हो, उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान नहीं करना चाहिए।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के शुभ पहर को जानने का, तो चलिए जानते हैं।
0: शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। आपकी धन संबंधी समस्या में सुधार होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए सप्ताह के कौन से दिन अच्छे होते हैं और कौन से दिन अशुभ होते हैं। आज की गुडलक राशि है धनु। इनके लिए रविवार और मंगलवार का दिन अनुकूल होता है। इनको शुक्रवार को महत्वपूर्ण काम करने से बचना चाहिए।
1: और गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आप बहुत अच्छे काम करते हैं, आप दूसरों की सहायता करते हैं, ऑफिस में मेहनत से काम करते हैं, लेकिन किए गए अच्छे कार्यों का यश आपको नहीं मिलता, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जितना सुबह हो सके जल अर्पित करिए। इसके बाद सूर्य देव के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और जब पाठ कर लें उसके बाद लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगाएं। रोज अगर नियमित रूप से आप ऐसा करें तो आपके अच्छे कार्यों का यश प्रतिष्ठा आपको जरूर प्राप्त होगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दे जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: बात करेंगे सांस्कृतिक विरासत की। पिछले दिनों जानवी कपूर वेंकटेश्वर तिरुमाला मंदिर पहुंची थी, और इस दौरान उन्होंने बैंगनी रंग की एक खास साड़ी पहनी हुई थी। मंदिर से उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आने के बाद अब हर तरफ उस खास साड़ी की चर्चा हो रही है। तभी अगर हम देखें, कभी राजघराणों की शान माने जाने वाली ये साड़ी अब एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही है।

0: मन में श्रद्धा भाव, सादगी भरा अंदाज और बदन पर लिपटी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत। पिछले दिनों जब अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म बेड्डी की रिलीज से पहले भगवान वेंकटेश्वर की दर पर पहुंची, तो उनका ये रूप सोशल मीडिया पर छा गया। इस पावन मौके पर जाह्नवी ने कोटा की पारंपरिक और विश्व प्रसिद्ध सोन चिरैया साड़ी को चुना था। बैगनी रंग की इस अनुपम साड़ी की खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही है। इस साड़ी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी महीन कारीगरी, जिसमें असली सोने और चांदी की जरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके पारंपरिक फूलदार डिजाइन और हस्तकरघे की जीवंत कला का ऐसा अद्भुत संगम जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल ये साड़ी महज एक परिधान नहीं है, बल्कि राजस्थान की कोटा के बुनकरों की पीढ़ियों पुराने कौशल, उनकी मेहनत और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत दस्तावेज है। कबीराज घरानों की शान माने जाने वाली कोटा की ये खास साड़ियाँ अब महिलाओं की पहली पसंद बन रही है। राधिका राजे गायकवाड़ से लेकर कंगना रनौत तक सोन चिरैया साड़ी की कदरदान है।
1: बहुत अच्छा लगता है जब हमारी जरी कोटा की जो पहचान है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है।
0: पिछले कुछ सालों में इस विलुप्त कला को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज कोटा की ये बुनाई राष्ट्र सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहचान बना रही है। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।
2: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर, लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिलाकर रख सकता है। डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं, बल्कि एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक भी ले जा सकती है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। चिंता की बात देखिए इसमें यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं पनपता, बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या पर कहीं भी जहां पर साफ पानी है। यानी डेंगू से जंग की शुरुआत हमारे घर से ही होती है, लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और गुड न्यूज स्टडी ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान यानी साथ

0: लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएं, जैसे घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचाकर रखें, और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित रूप से इस्तेमाल करते रहें। देखिए, जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और गुड न्यूज टुडे के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
4: What about me, Jack? What about me?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: Gracious, great balls of fire.
6: Well played, Jack. Well played.
3: Jack FM, playing what we want.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: Noida International Airport से commercial flights operation शुरू, पहली उड़ान से एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान लखनऊ के लिए हुए रवाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात।
4: सोमवती अमावस्या पर आज पवित्र नदियों के किनारे उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, स्नान दान से मिलता है पुण्य, अधिक मास का भी समापन।
3: आज बाबा नीब करौरी महाराज के कैंची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा है महाप्रसाद।
4: पूरी रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण कार्य जोरों पर, ताकबाड़िया और पोतल निर्माण शुरू, चित्रकार सेवक तीनों रथों के पार्थ देव देवी देवताओं की मूर्तियां तैयार करने में व्यस्त।
3: दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में झमाझम बारिश, झारखंड उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मानसून की एंट्री, अगले तीन दिन में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना।
4: टी20 महिला विश्व कप में भारत का शानदार आगाज, पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से पीटा, दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लेकर तोड़ी पाकिस्तानी बल्लेबाजी की कमर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
3: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत मंगल बेला के साथ होगी। देखिए, बस आने ही वाली है मंगल बेला, एक महीने से चल रहे अधिक मास का आज समापन है और इसके साथ ही कल से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। सनातन धर्म में अधिक मास की समाप्ति के साथ ही विवाह, गृह प्रवेश समेत सभी रुके हुए मांगलिक कार्यों के द्वार खुल जाते हैं। तो कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं आगे आपको बताएंगे।
4: साथ ही आज कैची धाम का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है, लिहाजा नैनीताल में मौजूद इस भव्य और दिव्य धाम में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, हर ओर आस्था का संचार हो रहा है। यहाँ पर मालपुए का विशेष प्रसाद भी बनाया गया, तो कैची धाम के रंग भी आगे आपको दिखाएंगे।
3: बिल्कुल पूजा, देखिए साथ ही साथ आपको बता दें बात महिला क्रिकेट टीम की भी करेंगे। बेटियों ने एक बार फिर से कमाल करके दिखाया, इंग्लैंड में हो रहे T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया। बर्मिंघम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 106 रनों पर ढेर हो गई। क्या रहा मैच में खास, आगे आपको बताएंगे।
4: इसके अलावा बात उस ऐतिहासिक पल की भी होगी जो सुबह सुबह नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर देखने को मिला। आज से यहां उड़ानों का दौर शुरू हो गया है, तो पहली फ्लाइट के दौरान कैसा यहां पर नजारा रहा ये भी आगे दिखाएंगे।
3: बिल्कुल, देखिए वही बात जो है कार पूलिंग की भी करेंगे। मिडिल ईस्ट ऊर्जा संकट की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग अब यहां कार पूलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका क्या कहना है सुनाएंगे आपको आगे, लेकिन अभी वक्त उछला फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज का।
4: आज देशभर में सोमवती अमावस्या मनाया जा रहा है, इसे लेकर सुबह से ही पवित्र नदियों के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज के दिन ही अधिक मास का भी समापन हो जाएगा और आज पवित्र नदियों में स्नान दान का विशेष महत्व है।
3: उत्तराखंड के कैंची धाम में नीब करौली बाबा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसे लेकर भव्य उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। पूरा आश्रम रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है और अखंड रामायण का पाठ भी किया जा रहा है। 9 चूल्हों पर महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है, जिसमें मथुरा वृंदावन के कारीगर मालपुए बना रहे हैं।
4: चारधाम की पवित्र यात्रा का आज 59वां दिन है, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, अब तक करीब 35 लाख लोग दर्शन पूजन कर चुके हैं।
3: नोएडा में जेवर एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ानें आज से शुरू कर दी गई। यहां पर साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।
4: वहीं झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। मॉनसून अगले 3 दिन में मध्य प्रदेश और यूपी पहुंचने की संभावना है। 9 दिन में 19 राज्यों तक मॉनसून पहुंच चुका है।
3: एस्बेस्टन में रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीम्स आमने सामने हुई। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 64 रनों से जीता।
4: फ्रांस के नीस शहर में आयोजित प्रतिष्ठित मीटिंग निकाया में मेरठ की पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने 5000 मीटर दौड़ को 15:04.26 में पूरा कर दूसरा स्थान प्राप्त किया और खुद का ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया है।
3: साउथ के पसंदीदा कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सभी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना के मेधावी छात्रों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी है जिसकी लिस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की।
4: लंडन नॉकटर्न साइकिल इवेंट में 19वीं सदी के विक्टोरियन युग की यादें उस समय ताजा हो गईं जब प्रसिद्ध पेनी फार्थिंग साइकिल्स ने सड़कों पर दौड़ लगाई। इस आयोजन में पेनी फार्थिंग क्लब के सदस्यों और सवारों ने हिस्सा लिया और एक ही सप्ताहांत में कई अद्भुत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए।

0: तो आ रही है मंगल मेला, क्योंकि देखिए आज अधिक मास का समापन हो रहा है। इसी के साथ कल से शुभ कार्यों का श्री गणेश हो जाएगा। अधिक मास भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। अब जब अधिक मास समाप्त हो रहा है तो कल से मंगल मेला शुरू हो जाएगी। अब देखिए कल से मुंडन, गृह प्रवेश और शादी जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। वहीं पर देखिए आज सोमवती अमावस्या पर पूजा पाठ स्नान दान का सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए सोमवती अमावस्या पर देश भर के पवित्र नदियों पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। अयोध्या में सरयू में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी किनारे भक्त जो है स्नान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसा ही आस्था भक्ति का उत्सव महाकाल की नगरी यानी उज्जैन में देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पर देखिए सोमवती अमावस्या पर भगवान महाकाल का विशेष अभिषेक किया गया। फिलहाल शुभ समाचार ये निकल कर आ रहा है कि आज अधिक मास का समापन हो रहा है और सनातन संस्कृति में इसका विशेष महत्व बताया गया है। ये श्रीहरि विष्णु की कृपा पाने का शुभ अवसर भी है। ऐसे में क्या रौनक देखने को मिल रही है, तमाम तस्वीरें देखिए।
1: हमारे यहाँ जो गणना है कालखंड की वो 360 दिनों की आती है, और हमारे यहाँ कलाओं का बढ़ना और घटना कहते हैं। जैसे हमारा हर मास संक्रांति से सौर मास बदलता है, जब सूर्य का संक्रमण अगली राशि में परिवर्तन करता है तो अगला माह आरंभ हो जाता है। ऐसे ही हमारे जब चार संक्रांतियां हो जाती हैं तब वो जाकर हमारा पूरा एक वर्ष पूरा होता है 360 दिन का। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि जो तिथि है वो घटती और बढ़ती भी रहती है, पूरा दिन अंग्रेजी तो 24 घंटे मानते हैं पर हमारा जो दिन होता है वो 23 घंटे कुछ मिनट का रह जाता है। तो जब प्रतिदिन वो घटते घटते घटते जो समय बचता बचता रहता है तो चार वर्ष में जाके पुनः एक वर्ष के समान हो जाता है। तो ये जो है ना किसी भी मास में पड़ सकता है, ये जैसे इस बार ज्येष्ठ मास में है, पड़ने वाले इस मास को मल मास या अधिक मास कहते हैं क्योंकि बढ़ गया है। सामान्यतः लोगों ने मान लिया कि ये एक कोई पाप का समय है, कोई अच्छा समय नहीं है। भगवान ने कहा कि ये सबसे सुंदर समय है, इस समय मेरी आराधना का समय है, ताकि आप किसी भी लोक लोकाचार में ना उलझो, इस समय केवल मेरी भक्ति करो, अपने पितरों को मनाओ, अपने पितरों के निमित्त प्रसन्नता के कार्य करो। इसी कारण से इसको उन्होंने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास।
2: तो कल से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि कब कब है शादी के मुहूर्त। और पहले मुहूर्त 21 जून को है, फिर 22 जून को शहनाई बजेगी, इसके बाद 23 और 24 जून, फिर 25 26 जून।
0: बिल्कुल पूजा देखिए, और आपको बता दें इसके बाद 27 29 जून को शुभ मुहूर्त है, जबकि जुलाई में 1 और 6 जुलाई इसमें शामिल है।
2: फिर 7 और 11 जुलाई को भी शादियों के मुहूर्त है, वहीं 11 जुलाई के बाद 4 महीने शादियां नहीं होंगी।
0: वहीं पर देखिए गृह प्रवेश के मुहूर्त भी आपको फटाफट बता देते हैं, जून में ये तारीख है 24 26 और 27।
2: तो जुलाई में 3 दिन गृह प्रवेश के लिए शुभ है, इसमें 1, 2 और 6 तारीख शामिल है, इन तारीखों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और आपको साथ ही साथ कुछ और खबरें बता दें। देखिए आज कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, लिहाजा नैनीताल में मौजूद इस भव्य और दिव्य धाम में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। हर ओर आस्था का संचार हो रहा है, यहाँ पर मालपुए का विशेष प्रसाद बनाया जा रहा है।

0: उत्तराखंड की शांत और खूबसूरत वादियों में बसा बाबा नीम करौली महाराज का भव्य और दिव्य कैंची धाम, जहां इन दिनों स्थापना दिवस की रौनक देखते ही बन रही है। जैसे ही पहाड़ों पर शाम ढलती है, पूरा धाम रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो उठता है। आश्रम का ये भव्य और दिव्य स्वरूप यहाँ पहुँचने वाले हर श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर रहा है। बाबा के भक्तों के लिए स्थापना दिवस जितना अहम है, उससे कहीं ज्यादा अहम है इस मौके पर मिलने वाला विशेष प्रसाद, जिसे बनाने की तैयारी कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है। स्थापना दिवस के इस पावन मौके पर बाबा के विश्व प्रसिद्ध महाप्रसाद की तैयारियां भी पूरे जोर शोर से चल रही हैं। स्थापना दिवस के मौके पर प्रसाद के तौर पर मालपुए बनाए जाते हैं। आश्रम में 9 बड़े बड़े चूल्हों पर ये महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है। इस विशेष मालपुए के प्रसाद को बनाने के लिए मथुरा और वृंदावन से 45 अनुभवी कारीगरों का दल पहुंचा है, जो दिन रात एक करके लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये अमृत रूपी प्रसाद तैयार कर रहा है। उधर बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर है। पूरा क्षेत्र बाबा नीम करौली महाराज की जय के गगनभेदी जयकारों से गूंज रहा है। श्रद्धा, समर्पण और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर ये माहौल बता रहा है कि इस बार स्थापना दिवस पर श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अब इंतजार सोमवार सुबह का है, जब सूर्य की पहली किरण के साथ लाखों श्रद्धालु बाबा के दर पर शीश नवाएंगे और उस महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे, जिसकी खुशबू से इस वक्त पूरी घाटी महक रही है। लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल, गुड न्यूज टुडे।
1: आज सीमावती अमावस्या है। धर्म और ज्योतिष में इस दिन का खास महत्व माना जाता है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है, जबकि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। यही वजह है कि इस दिन लोग भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ स्नान दान करते हैं। सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है, चलिए जानते हैं।

0: वैसे तो हिंदू धर्म में हर तिथि का अपना एक विशेष महत्व होता है, जिसमें हर माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से काफी महत्व माना जाता है। साल में कुल 12 अमावस्या आती हैं, जिसमें सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है। साथ ही अमावस्या तिथि पितरों की पूजा, तर्पण, गंगा स्नान और दान करने के लिए भी बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। आज की सोमवती अमावस्या विशेष फलदायी मानी जा रही है। धर्म और ज्योतिष में आज के दिन का खास महत्व माना जाता है। इस साल सोमवती अमावस्या पर कई तरह के धार्मिक और ज्योतिषीय संयोग बना हुआ है, जिसके कारण ये अमावस्या विशेष फलदायी मानी जा रही है। इस बार सोमवती अमावस्या पर 3 साल बाद अधिक मास का योग बन रहा है, जिसके कारण इसका महत्व और बढ़ गया है। अधिक मास हर 3 साल में एक बार आती है और अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या पर दान, स्नान और पूजा का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या पर मिथुन संक्रांति का योग भी बन रहा है। इस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करते हुए मिथुन राशि में आ रहे हैं। इसके अलावा 15 जून को स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जिसे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में काम करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। जानकारों का मानना है कि इस दिन पूजा की भव्यता से ज्यादा महत्व श्रद्धा और आस्था का है, इसलिए जरूरत से ज्यादा पूजा सामग्री खरीदने के बजाय सरलता के साथ पूजा अर्चना करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें, शिव आराधना और दान को ज्यादा महत्व दें। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या के दिन शिव पार्वती की आराधना करने से न केवल वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, बल्कि सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त पितृदोष से मुक्ति पाने और पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए ये दिन अत्यंत प्रभावी माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करना महापुण्य माना जाता है। चावल, गेहूं, दाल और तिल का दान करें। दूध, चीनी और दही का दान करना विशेष शुभ है। अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र, जूते चप्पल या छाते का दान जरूरतमंदों को करें। इसके अलावा पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर उसके परिक्रमा करें और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन तामसिक भोजन का त्याग करें। क्रोध, कटु वचनों और नकारात्मक विचारों से बचें। अपने मन को शांत रखें और सात्विक वातावरण बनाए रखें। सोमवती अमावस्या का यह पावन अवसर सुहागिन महिलाओं के लिए भी बेहद खास माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करने और उस पर सूत का धागा लपेटने की सदियों पुरानी परंपरा है। कहते हैं पीपल के मूल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए पीपल की पूजा से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। सिर्फ सौभाग्य ही नहीं, बल्कि ये दिन पितृदोष से मुक्ति पाने का भी महायोग है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और गीता का पाठ जरूर करें। अपनी क्षमता के अनुसार तिल, अन्न और वस्त्रों का दान करने से पितर प्रसन्न होकर सुख शांति का वरदान देते हैं। सोमवती अमावस्या पर इस बार ज्येष्ठ अधिक मास भी खत्म हो रहा है। इस दिन सूर्य देव भी मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि ये दुर्लभ संयोग करीब 100 वर्षों के बाद बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये संयोग ईश्वर की भक्ति और पितरों के प्रति कृतज्ञता के लिहाज से बहुत अनुकूल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और दिन के साथ ही साथ आपको बता दें, रामनगरी अयोध्या में सोमवती अमावस्या पर अलग अलग जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। अधिक मास का समापन हो चुका है और बचा हुआ ज्येष्ठ महीना अब शुरू होगा। सरयू नदी में भक्त स्नान कर रहे हैं। घाटों पर पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में तमाम भक्त जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, पवित्र नदियों में पवित्र स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ सरयू नदी में आस्था का जो जनसैलाब है वो देखने को मिल रहा है जबरदस्त तरीके से। अयोध्या की तस्वीर देखिए।
2: देखिए, आज सोमवती अमावस्या पर उज्जैन में भगवान महाकाल का विशेष अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भव्य भस्म आरती हुई। बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए मौजूद रहे और आज अधिक मास की अमावस्या है और साथ ही सोमवार का दिन। सोमवार और अमावस्या का शुभ संयोग काफी ज्यादा फलदायी माना जाता है।
1: देखिए कहते हैं कि काल से भी ऊपर है महाकाल, और महाकाल की भव्य भस्म आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है, या यूं भी कह सकते हैं कि महाकाल भस्म से ही होली खेलते हैं। आज सोमवती अमावस्या पर भस्म आरती के दौरान बड़ी संख्या में भक्त वहां पर मौजूद रहे। कितना विहंगम, कितना अद्भुत ये दृश्य रहा, तस्वीरें देखिए।
3: के विशेष दिन पे सोमवती अमावस्या का दिन है, आज अधिक मास का अंतिम दिवस है, और इस पावन पर्व पे आज बाबा महाकाल के दरबार में विशेष भस्म आरती पूजन की गई, भगवान को भोग लगाया गया, पंचामृत अभिषेक किया गया, आरती की गई, और सभी भक्तों ने इस भस्म आरती का लाभ लिया, और सभी का भगवान महाकाल कल्याण करे, सभी की मनोकामना पूर्ण करे, भगवान महाकाल सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, यही कामना सबके लिए आज की गई। जय श्री महाकाल।
2: संगम नगरी प्रयागराज में सुबह से त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। आज अधिक मास की अमावस्या है और हर कोई इस पावन पर्व पर आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। स्नान के बाद घाट पर दान पुण्य भी किया जा रहा है।
1: तस्वीरें देखिए आपने, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंच हुए। बात कुछ और खबरों की करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो गुड न्यूज टुडे भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की लगातार अपील कर रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोज को गुड न्यूज टुडे पर दिखाएं और पर्यटन स्थलों को भी लोगों तक पहुंचाए, वहां सैर सपाटा करें। तो आज आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में लेकर चलते हैं, जहां की मोनेस्ट्री बौद्ध धर्म और संस्कृति का पुराना इतिहास समेटे है।

0: आज मैं आपको लेकर आया हूँ हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत स्पीति वैली में, और मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका दिल की मोनेस्ट्री का ये शानदार नजारा। लगभग 1000 साल पुराना ये तिब्बती बौद्ध मठ लोगों को न केवल अपने अनूठे इतिहास से मिलवाता है, बल्कि कई ऐसी अनसुनी कहानियां जो कई लोग तो जानते ही नहीं है। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ की मोनेस्ट्री को यहाँ पर गोम्पा भी कहा जाता है, जो इतिहास का एक ऐसा जीता जागता दस्तावेज है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। लाहौल स्पीति जिले में काजा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर बना ये शानदार स्ट्रक्चर स्पीति की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री देखने वालों को रोमांच से भर देती है। पहाड़ों के बीच की इस मोनेस्ट्री का दिलकश नजारा, सर्द हवाओं के बीच सूरज की गर्माहट का एहसास दिल को सुकून से भर देता है। बर्फ से ढके पहाड़ और स्पीति नदी के धारा के बीच बसा ये ऐतिहासिक बौद्ध मठ अपने अद्भुत आर्किटेक्चर और सीनिक ब्यूटी से सैलानियों को खींचता आ रहा है। तिब्बती बौद्ध मठ संस्कृति को अगर नजदीक से समझना हो तो की मोनेस्ट्री से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती है। इस मठ की सुंदरता में ही दरअसल इतना खिंचाव है कि जो इसे देखता है बस देखता रह जाता है। आपको पता है कि पुराना बौद्ध मठ कई बार विदेशी हमलावरों, मंगोलों और नेचुरल क्लाइमेटीज को भी झेल चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये मोनेस्ट्री कैसे अपना ऐतिहासिक वजूद बजाते हुए पूरी भव्यता के साथ आज भी खड़ी है। एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ये मोनेस्ट्री यहाँ के खास शहर काजा को जोड़ती है। तो अगर आप दिल्ली से शिमला या शिमला से मनाली जा रहे हो तो इस रास्ते में पड़ने वाली की मोनेस्ट्री में कुछ देर ठहरिए, यहाँ की बेपनाह खूबसूरती को एंजॉय कीजिए और चाय की चुस्कियां लेते हुए यहाँ के लोगों से बात कीजिए और अपने सफर को यादगार बनाइए।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो उठाएं कैमरा और बनाएं व्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
2: और इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे नोएडा एयरपोर्ट की सर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
6: देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं,

0: मनीष, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा कि लगभग कितने किसान उस पहली फ्लाइट में मौजूद थे और क्या वो अब पहुंच गए उनके सम्मान समारोह के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ से आज उनकी मुलाकात भी होने वाली है।
1: देखिए, उनकी 8:30 बजे की फ्लाइट थी और मेरे ख्याल से वो कुछ ही देर में लखनऊ लैंड करने वाले होंगे। सीएम से उनकी मुलाकात होनी है और इनमें दो तरह के किसान हैं। एक तो वो किसान हैं जिनकी जमीनें गई हैं, लेकिन दूसरे किसान वो हैं कि जिनके पास जमीन नहीं थी लेकिन उन्हें एयरपोर्ट की वजह से विस्थापित होना पड़ा, अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा। शायद वो घर जो कभी मिट्टी का और कच्चा हुआ करता था, उन्होंने शायद उसे अपना पक्का घर बना लिया होगा, लेकिन उस घर को उन्होंने छोड़ा एयरपोर्ट के लिए। तो वो किसान जिनकी जमीन गई, वो किसान जो विस्थापित हुए अपनी जगह से, वो भी इस फ्लाइट में सवार थे। 172 के आसपास ये पैसेंजर कैपेसिटी थी, जिसमें मेरे ख्याल से 170 के आसपास जो वो उसमें किसान मौजूद थे, विधायक थे और कुछ परिवार के लोग थे किसानों के। जो किसान
2: मनीश, हम जो साथ में विजुअल चला रहे हैं, इस वाटर सलूट दिया जाता है किस प्रकार से जब पहली फ्लाइट उतरती है, उसके बारे में बताइए। साथ ही साथ कितना बड़ा ये मॉडल है, क्योंकि लगभग 11,000 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है मनीष, और कह रहे हैं कि दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो कितना एक्सपेंड और होगा अभी?
1: दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। और ना सिर्फ एयरपोर्ट होगा, मतलब सिर्फ यात्रा और टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये एक कार्गो एयरपोर्ट भी है। यहाँ से सामान की भी आप आवाजाही कर सकते हैं। ऐसे में पूरे वेस्टर्न यूपी का जो उद्योग है, आप जानते हैं बहुत सारा उद्योग वेस्टर्न यूपी में बसता है, चाहे वो ग्लास का हो, वो पीतल का हो, वो ब्रास का हो, इन सारे उद्योगों को एक नया बूम मिलने वाला है, क्योंकि उनका जो सामान है जो अभी तक दिल्ली तक पहुंचता था या आसपास के इलाकों तक, उसे अब देश विदेश तक पहुंचाना उनके लिए आसान हो जाएगा। वो लोग जब पहली फ्लाइट आई लखनऊ से दिल्ली के लिए, तो उसमें एक धर्मगुरु भी सवार थे, मेरी उनसे बातचीत हुई। उनसे मैंने पूछा कि धर्म के लिहाज से, धर्मनगरी के लिहाज से कितना फायदा होगा। नोएडा के आसपास आज समझिए पूरा ब्रज क्षेत्र आता है, मथुरा है, वृंदावन है, हरिद्वार की दूरी भी यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में एक धार्मिक टूरिज्म जो है उसको भी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। हम देखते हैं होली में बहुत सारे विदेशी सैलानी आते हैं जो कि दिल्ली होते हुए वृंदावन मथुरा पहुंचते हैं।
0: बिल्कुल, उनके लिए भी अब यहां से एक नया अध्याय भी मनीष जुड़ गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं खेल की खबर की।

तो सात समंदर पार इंग्लैंड से आई ये खबर। इंग्लैंड की सरजमी पर हो रहे T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराकर जीत के साथ आगाज किया। बर्मिंघम में खेले गए इस महामुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। भारत की इस जीत में अहम भूमिका स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने निभाई। स्मृति ने बल्लेबाजी की तो दीप्ति और श्री चरणी ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को हर मोर्चे पर परास्त किया।

बर्मिंघम के मैदान पर भारत की धुरंधर बेटियों ने उम्मीद के मुताबिक T20 विमेन वर्ल्ड कप का विजय आगाज किया। हरमन ब्रिगेड ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 64 रनों से शानदार जीत दर्ज की। टॉस जीतकर विमेन इन ब्लू ने पहले बल्लेबाजी चुनी। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पावर प्ले में ही 2 विकेट गंवा दिए। शिफाली वर्मा को स्पिनर सादिया इकबाल ने पहले ही ओवर में पवेलियन भेजा। वहीं जेमिमा रॉड्रिक्स लेफ्ट आर्मर सिमर तस्मिया रुबाब का शिकार बनी। इसके बाद स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए 91 रनों की शानदार पार्टनरशिप की। स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों पर 68 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। हरमनप्रीत कौर ने 4 चौकों की मदद से 35 गेंदों पर 36 रनों का योगदान दिया। विकेटकीपर बैटर ऋचा घोष ने आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग की और 5 चौके और 1 छक्के की मदद

0: से 17 बॉलों पर 34 रनों की पारी खेली।
1: आज हमारी देश की बेटियों ने हमारे इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है। एक वर्ल्ड कप हमारे घर आया, दूसरा भी आने की तैयारी है। हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, पूरा मेरा प्रयागराज खुशी मना रहा है। मेरे घर की बेटियां घर से निकल के आतिशबाजी कर रही हैं, बहुत खुशी मना रही है, बहुत गर्व की बात है।
2: हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी महिला टीम जीती, पाकिस्तान को हराया। हमने बहुत अच्छे से जश्न मनाया, पटाखे छुड़ाए और हमें काफ़ी अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आगे भी हमारी महिला टीम ऐसे ही वर्ल्ड कप जीतती रहे।
0: भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 170 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। 171 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम को पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन इसके बाद मैदान पर आया दीप्ति शर्मा का तूफान। दीप्ति ने अपनी जादुई स्पिन से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाली पहली स्पिनर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। दीप्ति ने अपने 4 ओवर के इस प्ले में सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट झटके। श्री चरनी ने भी दीप्ति का बखूबी साथ देते हुए 21 रन देकर 3 विकेट झटक लिए। वहीं शेफाली वर्मा ने 22 रन देकर 1 विकेट लिया।
3: इंडिया बोलो, मैं इंडिया वुमेन टीम जीती है, उसके लिए लेडीज के लिए और वुमेन के लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और इंडिया टीम हमेशा जीतती रहेगी ऐसे ही और हम उनके पूरा सपोर्ट करेंगे।
4: ये तो एकदम बहुत बड़ी दुश्मनी जैसे वाली मैच होती है इंडिया पाकिस्तान, और हमें पता ही था कि इंडिया जीत जाएगी। तो उनको ऑल आउट ही हो गए शायद 106 पे, उसी खुशी मना रहे हैं हम लोग सब लोग।
0: हरमनप्रीत ब्रिगेड के हरफन मौला प्रदर्शन के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली और पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन पर ढेर हो गई और इस तरह भारत ने अपना पहला मुकाबला शानदार 64 रन से जीतकर T20 वर्ल्ड कप का विजयी आगाज किया है। 17 जून को अब भारतीय टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और साथ ही साथ आपको बता दें, दीप्ति शर्मा के घर आगरा में भारत की जीत के बाद जश्न का माहौल जबरदस्त देखने को मिला। पूरा परिवार मैच के दौरान टेलीविजन से चिपका रहा और मैच का पूरा लुत्फ उठाता हुआ नजर आया। पहले भारत की शानदार बल्लेबाजी पर तालियां बजाई गईं और फिर भारत की धमाकेदार गेंदबाजी पर दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी में घातक प्रदर्शन करते हुए 10 रन सिर्फ देकर 5 विकेट झटके और भारत की जीत में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो खुशी तो बनती ही थी, जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की पूरे परिवार ने एक दूसरे को गले लगाकर लड्डू खिलाया, जश्न मनाया। तस्वीरें
6: देखो मैं दीप्ति को नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान की दीप्ति है, मेरी अकेली की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जीत है जी और सारी बेटियों की जीत है जी।
7: आज का मैच बहुत ही अच्छा रहा और सारी लड़कियां ने एकजुट होकर खेली और दीप्ति का परफॉर्मेंस तो बेहतरीन बेहतर हुआ। 5 विकेट लिए 8 रन देके और उसने एक रन आउट किया और लास्ट में दोबारा वो रन भी बनाए। तो मतलब ये है कि हमें अब पूरी उम्मीद है कि सारी मैच हमारी इंडिया की टीम जीतेगी, लड़कियां इस वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड से इंडिया लाएंगी।
8: मैं सबसे पहले तो इंडिया टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस जीत की। आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम भी ऐसा ही होगा और दीप्ति के लिए कहना चाहता हूँ, दीप्ति ने हमेशा की तरह आज भी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की है और जैसा वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में लास्ट मैच में अपना 5 विकेट लेकर के परफॉर्मेंस किया था, बिल्कुल वहीं से शुरुआत की है T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट मैच में 5 विकेट लेके और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वेल प्लेड एंड वेरी वेल बोल्ड दीप्ति।
9: चलिए अब आपको दिखाते हैं भारतीय पुरुष टीम के खिलाड़ियों की मस्ती। टीम इंडिया के क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल और अर्शदीप समेत दूसरे खिलाड़ी पहाड़ों और झरनों के बीच स्विमिंग करते हुए नजर आए। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की है जहां पर भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहला वनडे मैच खेला और जीत हासिल की। इस बीच खिलाड़ियों ने फुर्सत के ये पल भी बिताए जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
5: चलिए कुछ और खबरों की बात हो जाए। मिडिल ईस्ट ऊर्जा संकट की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर कार पूलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैकड़ों लोग ऑफिस जाने से पहले पूलिंग का सहारा करते हैं और फिर पैसे की बचत के साथ साथ स्ट्रेस भी कम कर रहे हैं। और देखिए गाजियाबाद में कार पूलिंग की शुरुआत विवेक अरोड़ा ने 2016 में की थी और आज की तारीख में दिल्ली NCR में 900 से ज्यादा लोग ऑफिस आने जाने के लिए कार पूलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस सुविधा का भरपूर फायदा उठा भी रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ लोगों से जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कार पुलिंग का इस्तेमाल ऑफिस जाने के लिए करते हैं।
10: मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
9: अब आपको दिखाते हैं खबर विराट और करण की। बात क्रिकेटर विराट कोहली और पंजाबी सिंगर म्यूजिशियन करण औजला की हो रही है, जो कि दिल्ली में एक मंच पर एक साथ नजर आए। आखिर क्या है ये मौका और क्यों ये दोनों साथ आ रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर, पूर्व कप्तान और शानदार बल्लेबाज विराट कोहली को आपने अक्सर क्रिकेट के पिच पर रनों की बरसात करते हुए देखा होगा। विराट कोहली को आपने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऐतिहासिक जीत के बाद डांस फ्लोर पर धमाल मचाते हुए भी देखा होगा। विराट को आपने कई मैचों के दौरान फैंस को उत्साहित करने के लिए मैदान पर थिरकते हुए भी देखा होगा। इतना ही नहीं, विराट को आपने कॉमेडी शो में मस्ती करते हुए और हंसाते हुए भी देखा होगा। यही नहीं, आपको समय समय पर धर्म और अध्यात्म के प्रति विराट कोहली की आस्था की तस्वीरें भी देखने को मिलती रही होंगी। लेकिन अब विराट एक नए अंदाज में सामने आ रहे हैं। आखिर क्या करने वाले हैं विराट, आखिर क्या दिखाने जा रहे हैं विराट अपने फैंस और दर्शकों के सामने? अब क्या लेकर आ रहे हैं विराट? क्या आने वाले समय में विराट किसी म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ सकते हैं? ये सब अभी सस्पेंस ही है। लेकिन विराट ने खुद इसके बारे में जो संकेत दिया है, उससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विराट के फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। दरअसल विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसको लेकर लोगों के जहन में तमाम सवाल उठने लगे हैं। इन तस्वीरों में विराट मशहूर पंजाबी पॉप स्टार करण ओजला के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में पीठ पर 1 और 8 नंबर छपी काली टी शर्ट पहने दोनों सितारे हजारों बत्तियों से जगमगाते खचाखच भरे हॉल में दर्शकों के सामने खड़े हैं। विराट ने इसके कैप्शन में लिखा है, करण का स्वागत है, मंच हमारा है, 21 जून दिल्ली। यानी ये तो साफ है कि 21 जून को दिल्ली में होने जा रहे एक कार्यक्रम में विराट और करण ओजला एक ही मंच पर साथ साथ होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 जून को दिल्ली में हाई प्रोफाइल क्रॉसओवर होने जा रहा है। इसमें
1: इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं, तो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने गुदगुदाने का मौका नहीं छोड़ते। देखिए गिप्पी गिरेवाल की फनी इंस्टा स्टोरी।
2: अब कोई लड़का आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके कनपट्टी पे मार ले, तेरा आई लव यू
3: निमो, अब आई लव यू
4: नहीं, मैं पागल है, बेवकूफ है, डंगर है, गधी है मैं,
5: पता तेनू सारा या, बस मेरे मुंह सुनना चाहनी है।
6: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना।
1: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं। एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी है जो कि तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ला सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घर के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी या फिर कहीं भी जहां साफ पानी भरा हो। और यानी कि डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है। लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और जीएनटी ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएं, जैसे कि घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचा कर रखें। दिन हो या रात, मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित इस्तेमाल जरूर करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और जीएनटी के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: अमेरिका ईरान समझौते से शेयर बाजार गदगद, निफ्टी 444 अंक उछला, सेंसेक्स 1142 अंक बढ़ा, निवेशकों में खुशी की लहर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू, पहली उड़ान से एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान लखनऊ पहुंचे, अब मुख्यमंत्री योगी से करेंगे मुलाकात। सोमवती अमावस्या पर आज पवित्र नदियों के किनारे उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़, स्नान दान से मिलता है पुण्य, अधिक मास का भी समाप्त। आज बाबा नीब करौरी महाराज के कैंची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा है महाप्रसाद। जम्मू कश्मीर में बारमास मेले की धूम, पितरों की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान, कश्मीरी पंडितों की गहरी आस्था का प्रतीक है यह मेला।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे महान और सबसे पवित्र माना जाता है। बृहस्पति की पवित्रता उसकी दृष्टि में छिपी होती है और बृहस्पति की दृष्टि को सर्वाधिक पवित्र क्यों मानते हैं, अलग अलग ग्रहों पर इसकी दृष्टि का प्रभाव क्या होता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति देव की दृष्टि के बारे में। बृहस्पति की दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? देखिए, ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन हम करते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु केतु के पास कोई दृष्टि नहीं होती। बाकी बच गए 7 ग्रह। हर ग्रह के पास, इन 7 ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि के पास विशेष दृष्टियां भी होती हैं। बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि तो है ही, लेकिन उसके अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि भी बृहस्पति के पास होती है। बृहस्पति की दृष्टि यानी बृहस्पति का देखना अत्यंत शुभ है, अत्यंत शक्तिशाली है। बृहस्पति की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़े या जिस भाव पर पड़े उसको अत्यंत शुभ कर देती है। यानी अगर कुंडली में कोई अशुभ ग्रह है या कोई अशुभ योग है और बृहस्पति की दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई तो उसकी अशुभता नष्ट हो जाएगी। बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां शुभता नहीं आती। बृहस्पति का बैठना शुभ नहीं होता, लेकिन बृहस्पति जहां देख लेते हैं, जिस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है वो भाव अत्यंत शुभ हो जाता है। जिस ग्रह पर दृष्टि पड़ती है वो ग्रह भी शुभ हो जाता है। अलग अलग ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है इसको जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी,
रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब बृहस्पति की दृष्टि अलग अलग ग्रहों पर पड़ती है तो इसका क्या असर होता है। अगर सूर्य पर दृष्टि पड़े बृहस्पति की तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा मान सम्मान मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार या राज्य की तरफ से सहायता और कृपा प्राप्त होती है। अगर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो मानसिक स्थिरता मिलती है और व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अगर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी हो जाता है, लेकिन अगर बृहस्पति मंगल को देखे और मंगल भी बृहस्पति को देख ले तो ये वैवाहिक जीवन में उन्माद और उपद्रव पैदा करता है। अगर केवल गुरु जो है मंगल को देख रहा है तो व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी बना देता है। बुध पर अगर दृष्टि हो बृहस्पति की तो व्यक्ति काफी बुद्धिमान और काफी ज्ञानी होता है। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में और सलाहकारिता के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं, लिखने पढ़ने के काम में, बोलने में, वाणी में, प्रेजेंट करने में इनको काफी सफलता जीवन में प्राप्त होती है। बाकी ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि का क्या प्रभाव है ये जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने आपको बताया कि बृहस्पति की दृष्टि का सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अब बाकी ग्रहों का भी हाल जानते हैं। शुक्र पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो व्यक्ति वैभवशाली होता है,
व्यक्ति का चरित्र काफी मजबूत होता है, हालांकि कभी कभी माइनर केसेस में बृहस्पति अगर शुक्र को देखे और शुक्र भी बृहस्पति को देखे तो ये मेंटल डिप्रेशन का कारण बन सकता है। अगर केवल बृहस्पति शुक्र को देख रहा है तो ये जीवन में धन संपन्नता और वैभव देगा। शनि पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि मिलती है। बृहस्पति अगर शनि को देखेगा तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि मिलेगी। कभी कभी बृहस्पति शनि को देखे तो आदमी कानून की पढ़ाई करता है या लॉ के फील्ड में जाता है। राहु और केतु पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो इन ग्रहों के दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। ये ग्रह सामान्यतः अच्छा फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। कुंडली में कोई अशुभ योग बना हुआ है, कोई खराब कॉम्बिनेशन है और उस पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई है तो उस खराब कॉम्बिनेशन का, खराब योग का ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर कुंडली में कोई स्थान दूषित हो गया है, कोई स्थान कमजोर हो गया है और बृहस्पति की दृष्टि वहां पड़ती है तो वो स्थान, वो भाव शुभ हो जाएगा और जीवन में शुभ परिणाम प्रदान करना शुरू कर देगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान की चिंता रह सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन की दशा में सुधार होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक होगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, सेहत में सुधार होगा, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति उस भाव को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन जिस भाव को, जिस ग्रह को देखते हैं उसको वो शुभ कर देते हैं, उसको वो बेहतर कर देते हैं। बृहस्पति की तीन दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। इसमें जो सप्तम दृष्टि है बृहस्पति की, वो उतनी ज्यादा शुभ नहीं होती। शुभ तो होती है लेकिन इसके पास उतनी ताकत नहीं होती।
पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि बृहस्पति की ज्यादा शुभ होती है। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कुंडली में मंगल दोष है और बृहस्पति मंगल को देख रहा है तो मंगल दोष भंग हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी या नवम दृष्टि पड़ेगी मंगल के ऊपर तो मंगल के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी घट जाएगी। लेकिन अगर सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो मंगल के हाल पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट मंगल उतना ही डिस्टर्ब करेगा, उतना ही परेशान करेगा। तो बृहस्पति की हालांकि तीनों दृष्टियां पवित्र हैं, लेकिन जो सप्तम दृष्टि है वो सबसे कम पवित्र है, उसके बाद पंचम दृष्टि पवित्र है और उसके बाद नवम दृष्टि बृहस्पति की सबसे ज्यादा पवित्र है। नवम दृष्टि जिस भाव पर पड़े, जिस ग्रह पर पड़े, वहां बृहस्पति की सारी शुभता आ जाती है। तो आज हमने आपको बताया बृहस्पति की दृष्टि के बारे में और बृहस्पति की दृष्टि की शुभता के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। घर के दरवाजों को खोलते बंद करते समय तड़ाक भड़ाक की आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर घर के दरवाजों को खोलते बंद करते समय आवाज होगी जोर से तो घर में कलह कलेश और अशांति पैदा होगी। प्रातः काल माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिए। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: ये तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: हमारे भारत में एक प्रांत है जिसका नाम पश्चिम बंगाल है। बहुत साल पहले हम गए, महीने पहले गए, साल क्या महीने पहले, वहां एक बहुत ही अच्छे भगत हुए, बड़े सिद्ध संत हुए, बड़े तपस्वी हुए, आहा मां तारा के परम साधक हुए और मां तारा को बहुत भाव पूर्वक मानते थे। उनका नाम था बामा खेपा। क्या नाम था? बामा खेपा। मां तारा के साधक थे। ऐसा संत कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भी यही गुरु थे। इनका नाम बामा खेपा। पश्चिम बंगाल में एक गांव है, इनके नाम से ही बामा चरण नाम का गांव है, वहां इनका जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद इनके पिताजी का शरीर पूरा हो गया, माताजी गरीब थी, तो इनको पालन पोषण के लिए, इनकी जीवन यापन बढ़िया हो सके, इसलिए बामा खेपा जी को मामा के पास भेज दिया। बामा खेपा के जो मामा जी थे वो तारापीठ के पास के गांव के रहने वाले थे। आहा, धीरे धीरे बामा खेपा की रुचि साधु की संगति में बढ़ने लगी, संतों का संग करने लगे, भक्ति करने लगे, कभी शमशान की चिता के पास जाके बैठ जाए, कभी जो है गांव के बाहर बैठ जाए। गांव के आधे लोग इनको पागल समझते थे। एक रात इन पर भगवती मां तारा की बड़ी कृपा हुई। भाद्रपद के महीने में तृतीया तिथि को, उस दिन मंगलवार का दिन था, ये भगवती मां तारा का ध्यान कर रहे थे, उसी समय मध्य रात्रि में चिता के किनारे पर भगवती मां तारा प्रकट हो गई और उन्होंने इनको दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया कि आज से तुम हमारे भगत हो और प्रेम पूर्वक तुम हमारी सेवा करो। रानी के द्वारा बनाए हुए मंदिर में ये कुछ दिनों बाद पुजारी नियुक्त हो गए, तो मंदिर में पूजा करने लगे। लेकिन इनकी पूजा का एक नियम था। बोले क्या? बोले भैया, इनका जब मन लगता तब ये पूजा करते, कभी कभी चार चार दिन पूजा करते, कभी बिल्कुल नहीं करते, कभी दो बजे रात को करते, कभी बिल्कुल ही नहीं करते। तो किसी ने बामा के पास से पूछा, ये तो गलत बात है भाई, भगवती की पूजा तो प्रतिदिन करनी चाहिए, प्रातः काल स्नान करवाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, आरती होनी चाहिए। बामा खेपा ने बहुत तार्किक बात कही। बोले सुनो, हम प्रार्थना रोज करते, पूजा रोज करते, पर बाहर से यदि पूजा करें, अंदर से मन ना लगे तो पूजा व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है। हम पूजा तभी करते जब हमारा मन लगे, हमारा मन गवाही दे, हमारा मन भगवती की साधना में तल्लीन हो जाए, तब हम भगवती की उपासना करते। गांव के लोगों में जब ये बात गई तो गांव के लोगों ने बड़ा विरोध किया कि भाई ये तो पुजारी बनने लायक नहीं है, हटाओ उनको। तो रानी के कहने पर बामा खेपा को हटा दिया। गांव के बाहर जब ये गए, उसी दिन से इन्होंने भोजन करना छोड़ दिया, ना अन्न लिया ना जल लिया। तो भगवती मां परांबा तारा माता रात्रि में बामा खेपा के पास गई। बेटा क्या हुआ? बामा खेपा मुंह उल्टा करके बैठ गए। मां हमसे बात मत करो। अरे क्या हुआ बताओ? दो दिन हो गए आपकी पूजा, हमने आपको देखा तक नहीं, दो दिन से पूजा तो दूर की बात है, उल्टा हमको मंदिर से और हटा दिया, पुजारी पद से हटा दिया। हमें पुजारी बुजारी बनने का लालच नहीं है, हमारे मन में यही लालच है कि हमारे अंतिम श्वास तक आपकी चरणों में समय गुजरे, सेवा में गुजरे। भगवती मां ने कहा तारा ने, चिंता मत करो, तुम हमारी सेवा में कल ही आओ। रात्रि में स्वप्न में जाकर के मां तारा ने रानी को आज्ञा दी कि सुनो, प्रातः काल होते ही बामा खेपा को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर देना, वरना सब बर्बाद कर देंगे, हम क्रुद्ध हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। रानी को जब ये खबर स्वप्न में मिली तो प्रातः काल ही रानी ने बामा खेपा को बुलाया, तो बामा खेपा ने जाने से मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। हमको भगाया पहले, अब बुला रहे हो, क्या पता फिर भगा दो, बेइज्जती कर दो। रानी ने कहा हम वचन देते हैं जब तक तुम्हारा तन, तुम्हारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम ही मां भगवती तारा देवी की पुजारी बने रहोगे। आहा, ये सुनते ही बामा के पापा घर मंदिर आए पूजा की। इसी भी भक्त की भाव की बात है, पंडित जी जब इनकी माताजी खत्म हुई तो गांव भगे भगे गए, माताजी को जलाना था, अंतिम संस्कार करना था, तो सोचा अंतिम संस्कार यहां ना करके तारापीठ पर करें। तो गांव वालों से कहा कि चलो जरा मदद कर दो हमारी, तारापीठ तक ले चलो माताजी को। तो तारापीठ तक जो है लेकर के बामा खेपा की माताजी को आए, लेकिन नदी के किनारे ही एक घटना हुई। पूछो क्या? देवयोग से पानी बरसा और नदी में बाढ़ आ गई। कभी कभी प्रकृति बहुत परीक्षा लेती है, ध्यान से सुनना, बुरा ना मानना। भक्त जब भगवान के मार्ग पर चलता तब केवल व्यक्ति भर परीक्षा नहीं लेते, प्रकृति भी परीक्षा लेती, और वही हुआ। भयंकर बारिश हुई और भैया बारिश में नदी भयंकर पानी से भर गई। गांव वाले बोले अब पार नहीं जा सकते हैं, तैरना बहुत मुश्किल है, लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे, यहीं जला दो। बामा खेपा बोले नहीं, हमारा तो प्रण है उस पार जलाएंगे। गांव वाले तो छोड़कर भग गए। बामा खेपा ने अपनी माताजी को कंधे पर टांगा और मार दी छलांग, और जैसे तैसे करके माताजी के शव के साथ बामा खेपा पार लग गए। वहां गए अंत्येष्टि की, गरीब तो थे, गांव के नहीं 13 गांव के लोगों को भंडारे का निमंत्रण दिया 13वीं पर। अब गांव के जो मजा लेने वाले लोग थे वो बोले अब पता चलेगा, अब मजा आएगा, इनके पास तो कुछ है ही नहीं है, ये कैसे कहां से अब जो है भंडारा कराएंगे, अब देखते हैं। गांव के लोग मजा लेने के लिए सब घर घर से सब परिवार सहित भंडारा खाने आए। उसी समय बारिश का फिर मौसम आया। बामा खेपा ने भगवती तारा से प्रार्थना की, मां हे भगवती, आपके अलावा हमारा कोई नहीं, और आज यदि हमारी हंसी हो गई तो आपकी भक्ति पर उंगली उठ जाएगी। मां हमारा भले ही कुछ बिगड़ जाए पर आपकी भक्ति पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। और ये प्रार्थना करके जैसे ही बाहर निकले भगवती को चिंता सताई। मां तारा स्वयं वृद्ध का रूप धारण करके बैलगाड़ियों में सामान लेकर के बामा खेपा के यहां पर आ गए। खूब सामान लेकर के आई। देखते ही देखते बैलगाड़ियों से सामान भंडारे का उतरने लगा। लोग पूछने लगे सामान कहां से आया, तो वृद्ध रूपा भगवती बोली ये जो है जो पंडित जी हैं बहुत भक्त हैं, इनकी कृपा से हमारा बहुत काम सफल हुआ, तो हमें जब पता लगा कि इनके यहां भंडारा है तो हम अपनी श्रद्धा से सामान लेके आए। गांव वाले बोले वाह, लेकिन तब तक बारिश आई। बामा खेपा ने फिर देखा बारिश में कोई भंडारा नहीं पाएगा, भंडारा खूब बन गया, तो फिर भगवती के मंदिर में गए। मां आपकी कृपा से भंडारे की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अब बारिश है, और बारिश यदि आ जाएगी सब भोजन पाने बैठ गए, भंडारा रखा रहेगा, सब गीले हो जाएंगे, कोई प्रसाद नहीं पा पाएगा। इनके मन में प्रेरणा जगी, एक लाठी ली और जितने में भंडारा चल रहा था उतने में एक लकीर को खींच दिया, और देखते ही देखते सत्य घटना चरितार्थ हुई। पूरे पृथ्वी के जगह जगह गांव गांव में बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरी, पर जहां पर भंडारा चल रहा था वहां एक बूंद भी अंदर प्रवेश नहीं हुई। भैया इस कथा को कहकर के हम आपसे यही कहना चाह रहे प्रियजनों, यदि आपका भरोसा भगवान पर होगा तो हम बहुत दावे के साथ कहते हैं भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे, लाज बचाएंगे। अब तुलसीदास जी की कथा तो कलयुग की ही है, अभी 500 साल पहले ही हुए तुलसीदास जी, उनकी लाज भगवान ने ही बचाई। रामायण की जब परीक्षा ली गई विश्वनाथ जी के मंदिर में काशी में, और रामायण जी को जब रखा गया तो कैसे रखा? काशी के विद्वानों ने कहा रामचरितमानस को तभी प्रमाणिक ग्रंथ माना जाएगा जब इस पर भगवान शंकर के या तो हस्ताक्षर हो जाए या कोई चमत्कार हो जाए। तो तुलसीदास जी बोले चमत्कार क्या होगा? बोले एक काम करो, रामायण जी को नीचे रखो, ऊपर से चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, इसमें कोई चमत्कार होगा तो अपने आप जो है पता लग जाएगा कि शंकर जी ने इसको स्वीकार कर लिया, और शिव जी स्वीकार कर लेंगे तो हम ब्राह्मण भी रामचरितमानस को स्वीकार कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, रामचरितमानस जी नीचे, उसके ऊपर चार वेद, उसके ऊपर छह शास्त्र, उसके ऊपर 18 पुराण, लेकिन मेरे पागलो, मेरे प्रिय जनों, हमारे आत्मीय जनों, रात के समय तुलसीदास जी माला लेकर के बैठ गए। हे रघुनाथ जी, हे महादेव, ये रामचरितमानस आपने ही लिखवाई, आप ही इसकी लाज रखना, आप ही बचाना, आप ही कृपा करना। ब्राह्मणों ने चोरी करने के लिए दो चोरों को साठ गांठ की पैसा दिया, जाओ रामचरितमानस की चोरी कर लाओ, यदि रामचरितमानस चोरी हो जाएगी तो ये पक्का हो जाएगा कि भगवान शंकर जी ने स्वीकार नहीं की और ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही दो चोर विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस को चोरी करने गए, क्या देखते हैं? मंदिर के दोनों तरफ हाथ में धनुष मान लिए हुए नीलांबर स्वरूप है उनका, माथे पर तिलक लगाए हुए हैं, सांवला स्वरूप है, बड़ी बड़ी जुल्फे, बड़े बड़े घुंघराली लटके हैं, उनकी लटके लटक रही हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है और वीर की भूमिका में धनुष बाण लेकर के कोई रक्षा कर रहा है। और जो चोर चोरी करने गए थे वो भगत और बन गए। बोलो सीताराम।
1: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
2: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची

0: Diehard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर

0: प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
1: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
2: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
2: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
6: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
7: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
8: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
9: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
10: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
1: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं, तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं, तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
11: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
12: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पर निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
13: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
14: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
14: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
15: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 ने घर मंगा सकते।
16: Tune in is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports and more all in one place and hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
17: I have no idea how this election is going to play out.
16: Or want to catch up on your team's live play-by-plays?
18: It's the Flyers!
16: It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
19: मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ Good News Today.
20: Good News Today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें
3: कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
24: क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं। एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी है, जो कि तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ला सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं, बल्कि हमारे घर के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी या फिर कहीं भी जहां साफ पानी भरा हो। और यानी कि डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है। लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और जीएनटी ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएं, जैसे कि घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचा कर रखें। दिन हो या रात, मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित इस्तेमाल जरूर करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और जीएनटी के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
20: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
7: सोमवती अमावस्या पर आज पवित्र नदियों के किनारे उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, स्नान दान से मिलता है पुण्य, अधिक मास का भी समापन। आज बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा महाप्रसाद। जम्मू कश्मीर में बान मास मेले की धूम, पितरों की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान, कश्मीरी पंडितों की गहरी आस्था का प्रतीक है ये मेला। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू, पहली उड़ान से एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान लखनऊ पहुंचे, अब सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। देहरादून में सहस्त्र धारा के बाद गुच्छू पानी बन रहा पर्यटकों की पहली पसंद, वीकेंड पर उमड़ रही भारी भीड़। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में झमाझम बारिश, झारखंड ओडिशा के कुछ हिस्सों में मॉनसून की एंट्री, अगले 3 दिनों में एमपी और यूपी पहुंचने की संभावना।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ, एयरपोर्ट पर पहुंचे इंडिगो के विमान का पानी की बौछार से स्वागत किया गया। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हुई फ्लाइट, विमान में किसानों के साथ जेवर के विधायक भी रहे मौजूद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट उतरते ही लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह, लोगों ने तालियां बजाकर किया खुशी का इजहार। इंडिगो के विमान में अभिनेत्री गुल पनाग ने भी सफर किया, इस फ्लाइट में सवार होकर अभिनेत्री गुल पनाग भी नोएडा पहुंची। साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद, एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री करने की योजना। देश भर में आज मनाई जा रही है सोमवती अमावस्या, पवित्र नदियों में सुबह से ही स्नान दान का सिलसिला जारी। रामनगरी अयोध्या में सोमवती अमावस्या के मौके पर सरयू नदी के किनारे लगा आस्था का मेला, श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। सरयू नदी में स्नान के साथ ही लोगों ने किया सूर्यदेव को अर्घ दिया, दान देकर पुण्य भी किया अर्जित। हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं गंगा स्नान, कल से ही यहां जुटने थे भक्त। प्रयागराज में सोमवती अमावस्या को लेकर लोगों ने किया गंगा स्नान, लेते हुए हनुमान मंदिर में की गई विशेष पूजा। सोमवती अमावस्या पर महिलाओं ने की पीपल के पेड़ की पूजा, पति की लंबी उम्र का मांगा आशीर्वाद। उज्जैन में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने महाकाल का किया दर्शन पूजन। बाबा महाकाल का सोमवती अमावस्या पर किया गया भव्य श्रृंगार, महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। अनंतनाग के मारतंड सूर्य मंदिर में बाण मास मेले का भव्य आयोजन, पूजा पाठ के साथ भक्तों ने किए आध्यात्मिक अनुष्ठान। अनंतनाग के बाण मास पारंपरिक मेले में पूरे इलाके से पहुंचे श्रद्धालु, मंदिर परिसर में भक्तों को विशेष प्रसाद भी परोसा गया। नैनीताल के कैंची धाम का आज 62वां स्थापना दिवस, नीम करौली बाबा के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। कैंची धाम में सुबह से दर्शनों के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार, बाबा नीम करौली महाराज को मालपुए का भोग लगाने के साथ ही हुई स्थापना दिवस की शुरुआत। बाबा के जयकारों और जय श्री राम के नारों के साथ श्रद्धालु कर रहे दर्शन पूजन, सेवाधार भक्तों को दे रहे मालपुए का महाप्रसाद। कैंची धाम में लाखों की संख्या में पहुंचे भक्त, पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। कैंची धाम में दिख रही भक्ति की शानदार तस्वीर, भक्त कर रहे हनुमान चालीसा का पाठ।

0: चारधाम की पवित्र यात्रा का आज 58वां दिन, मौसम की मुश्किलों के बावजूद श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने का सिलसिला जारी। बद्रीनाथ धाम में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब, तप्त कुंड में स्नान और ब्रह्म कपाल में पिंड तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बद्रीनाथ धाम में भक्तों को दर्शन पूजन जारी, अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बनाया रिकॉर्ड। केदारनाथ दर्शनों के लिए अब तक पहुंचने वाले सबसे ज्यादा श्रद्धालु, लगभग 12 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने टेका मथा, चार धाम यात्रा के लिए 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां हुई तेज, रथों को अंतिम रूप देने का काम शुरू, जल्द होंगे पूरी तरह तैयार। अक्षय तृतीया के दिन पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद शुरू किया गया था रथ निर्माण का काम, सैकड़ों कारीगर पारंपरिक तकनीक से रथ निर्माण में जुटे। भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष, बलभद्र के तालध्वज और देवी सुभद्रा के दर्प दलन, रथ का हो रहा निर्माण, हर साल नए सिरे से रथ बनाए जाने की परंपरा। 16 जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा, लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने बनाई योजना। पूरी शहर में इस साल एलईडी स्क्रीन लगाने की तैयारी, लाखों भक्त रथ यात्रा का देख सकेंगे सीधा प्रसारण। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली, कई इलाकों में झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में छाए काले घने बादल, हवा चलने से तापमान में गिरावट। गुरुग्राम में तेज बारिश से मिली गर्मी से राहत, शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड की टिहरी झील में पर्यटकों की भारी भीड़, रविवार को 1500 से ज्यादा पर्यटकों ने बोटिंग और एडवेंचर गतिविधियों का आनंद लिया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद, यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जर्नल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
3: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़, और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
0: सोमवती अमावस्या पर आज पवित्र नदियों के किनारे उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, स्नान दास से मिलता है पुण्य, अधिक मास का भी समापन। आज बाबा नीम करौली महाराज के ऐंची धाम का 59वां स्थापना दिवस, जगमग रोशनी और फूलों से मंदिर का श्रृंगार, लाखों भक्तों के लिए तैयार हो रहा महाप्रसाद। जम्मू कश्मीर में बाण मास मेले की धूम, पितरों की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान, कश्मीरी पंडितों की गहरी आस्था का प्रतीक है ये मेला। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू, पहली उड़ान से एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान लखनऊ पहुंचे, अब सीएम योगी से करेंगे मुलाकात।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हमारे इस स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस महामेले की जिसमें भक्तों का रेला उमड़ रहा है। बात हो रही है उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में स्थित विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम की। यहां पर बाबा नीम करौली महाराज के आश्रम में हनुमान जी की प्रतिमा के स्थापना दिवस पर देश और दुनिया से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर ओर बाबा के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। अभी तक 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन करके यहां चल रहे विशाल भंडारे में महाप्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और उम्मीद है कि लाखों श्रद्धालु आज यहां पर जाकर नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। पूरा मंदिर परिसर पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है, जो इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। कैंची धाम में लोगों का तांता लगा हुआ है। कैंची धाम स्थापना दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कैंची धाम से आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो सिर्फ एक मेले की नहीं है, बल्कि बाबा नीम करौली महाराज के प्रति करोड़ों लोगों की अटूट आस्था और विश्वास की कहानी को बयां कर रही हैं। कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता और यही आस्था आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालुओं को इस पावन धाम तक खींच लाई है। हम आपको आज इस महामेले के बारे में और विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह यहाँ श्रद्धा का सागर लहरा रहा है। कैंची धाम में आज चल रहे महामेले के बारे में और ताजा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता लीला सिंह बिष्ट। देखिए,
1: विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर आज कैंची धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। देश और दुनिया से हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए और बाबा का महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए कैंची धाम पहुँच रहे हैं। सुबह से ही कैंची धाम बाबा के जयकारों से गूंज रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ रही हैं। मान्यता है कि बाबा के दरबार में जो भी सच्ची श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। IG कुमाऊं, कमिश्नर कुमाऊं, DM और SSP लगातार व्यवस्थाओं पर नजर

0: भगवान ने चमत्कार किया। मैं पिछले 4 साल से आ रहा हूँ, जब से आया हूँ जब से मेरा जीवन बदल गया है, इसलिए
1: लोगों की आस्था की एक झलक आपने देखी। उत्तराखंड की मनमोहक वादियों में स्थित बाबा नीम करौली जी महाराज के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में स्थापना दिवस का महामेला श्रद्धा भक्ति और आस्था के अभूतपूर्व संगम के रूप में मनाया जा रहा है। दुनिया भर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बन चुके इस धाम में इस बार देश और विदेश से 1 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने का अनुमान है और भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और मंदिर समिति ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और दर्शन व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। देखिए,

0: उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कैची धाम में आस्था का महासागर उमड़ रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन पूजन और बाबा नीम करोली जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि बाबा नीम करोली और कैची धाम में आस्था रखने वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज बाबा नीम करोली जी महाराज के इस विशिष्ट धाम पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना दिवस का दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है। लिहाजा देश विदेश के कोने कोने से बाबा के भक्त और श्रद्धालु आज यहां पहुंच रहे हैं। इस बार ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के 50 साल पूरे हुए हैं। बताया जाता है कि 15 जून 1976 को यहाँ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी। इसके बाद से हर साल 15 जून को यहाँ पर प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विशेष रूप से स्थापना दिवस मनाया जाता है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि बाबा नीम करोली महाराज ने यहाँ पर 1964 में ही इस आश्रम की स्थापना की थी। मान्यता है कि बाबा नीम करोली जी महाराज हनुमान जी के परम भक्त थे और अपने पास आने वाले श्रद्धालुओं को भी हनुमान जी की पूजा प्रार्थना के लिए प्रेरित करते थे। उन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है।
1: आज हम देखते हैं महाराज जी के बारे में बहुत सारी बातें चर्चा होते हैं, पर फैक्ट ये है कि हमने जो बचपन से देखा सुना वो ये था कि जो भी महाराज जी के पास आता था, महाराज जी उसे सबसे पहले कहते थे, जाओ हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाओ, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के लिए कह देते थे और विदा कर देते थे।
0: भक्त और श्रद्धालु बाबा नीम करोली जी महाराज के तमाम चमत्कारों की चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों पहले भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग चींटियों की तरह कैची धाम आएंगे और यहाँ एक पूरा शहर बस जाएगा। लोगों का मानना है कि आज कैची धाम में उमड़ती लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ कहीं न कहीं बाबा जी की इस बात की तस्दीक करती है। लोगों का कहना है कि ये स्थान उन तीर्थ स्थलों में से एक है जहाँ आने पर लोगों को परम शांति और ईश्वर से नजदीकी की अनुभूति होती है।
1: हमें उस परम पिता परमेश्वर को, उस शक्ति को अपने करीब लाना है, तो ये वो स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पे हम अगर एकांत में उसे याद करें तो हमारा उसके साथ मिलन होता है और हमारी भावनाएं उसके उस तक पहुँचती हैं। तो ये एक परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को मिलाने का वो स्थान है जिसे आध्यात्मिक तौर पे मैं बहुत बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मानता हूँ।
0: कैची धाम नाम का ये पवित्र स्थल उत्तराखंड में नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैची जैसे दिखने वाले घुमावदार पहाड़ी रास्तों के कारण इस जगह का नाम कैची धाम पड़ा है। हर साल की तरह इस बार भी उत्तराखंड की शांत वादियों में बसे बाबा नीम करोली जी महाराज के इस विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में मनाए जा रहे स्थापना दिवस के उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर है। पूरा क्षेत्र बाबा नीम करोली महाराज की जय के गगनभेदी जयकारों से गूंज रहा है। बाबा के भक्तों के लिए स्थापना दिवस जितना अहम है, उससे कहीं ज्यादा अहम है इस मौके पर मिलने वाला विशेष प्रसाद, जिसे बनाने की तैयारी कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है। स्थापना दिवस के इस पावन मौके पर बाबा के विश्व प्रसिद्ध महाप्रसाद की तैयारियां भी पूरे जोर शोर से

0: चल रही हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं को विशेष मालपुए का प्रसाद दिया जाता है। इसके लिए कई दिनों पहले से ही आश्रम में 9 बड़े बड़े चूल्हों पर ये महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है। इस विशेष मालपुए के प्रसाद को बनाने के लिए मथुरा और वृंदावन से 45 अनुभवी कारीगरों का दल यहाँ आया है। स्थापना दिवस समारोह के लिए पूरे मंदिर परिसर को कई दिनों पहले से शानदार लाइटिंग से सजाया गया है। जैसे ही पहाड़ों पर शाम ढलती है, पूरा धाम रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो उठता है। आश्रम का ये भव्य और दिव्य स्वरूप यहाँ पहुँचने वाले हर श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर रहा है। श्रद्धा समर्पण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर यह माहौल बता रहा है कि इस बार स्थापना दिवस पर श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। माना जा रहा है कि इस बार इस उत्सव में शामिल होने के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं। लिहाजा श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन, सुरक्षित आवागमन और सुविधाजनक यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए नैनीताल पुलिस और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है और लोगों से नियम कायदों का पालन करने की अपील की है ताकि कोई परेशानी न हो।
1: सभी के आवागमन के लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कृपया जो हमारी एडवाइजरी नैनीताल पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस पे जारी की गई है उनका अध्ययन कर लें। काठगोदाम से, नैनीताल से, भीमताल से, भवानी से शटल के माध्यम से आप कैंची धाम आएंगे और यहीं से शटल के माध्यम से इन स्थानों पे वापस जाएंगे जहां से वो आपके डेस्टिनेशंस को आपको भेजेंगे। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि जो हजारों की संख्या में वाहन आते हैं और सकरी सड़कें जो भर जाती हैं और उसके कारण कंजेशन होता है और फिर जाम में आप कई घंटे बिताते हैं, उन सभी के दृष्टिगत ये व्यवस्था की गई है। आप इन स्थानों तक अपने वाहनों से आए और उसके बाद जो यहाँ पे आरामदायक शटलें अलग अलग कैटेगरीज की लगाई गई है उनमें बैठे दर्शन में बाबा के धाम करें, प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद आप तुरंत अपने स्थानों को वापस जाएं।
0: कैची धाम में मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और जाम की स्थिति से बचने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 400 से ज्यादा गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। आस्था के इस महापर्व को लेकर पूरा प्रशासन मुस्तैद है ताकि बाबा नीम करोली महाराज के दरबार में पहुंचने वाले हर श्रद्धालु को यह सुरक्षित, सुगम और सुखद दर्शन हो सके। कैची धाम से लीला सिंह बिश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: नीमकरौली बाबा के प्रति आस्था ऐसी है कि नामचीन लोग भी उनकी शरण में पहुंचने लगे और उनके आशीर्वाद से कामयाबी का सफर तय किया। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को बाबा का भक्त माना जाता है तो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के धाम पहुंचे। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स तो तस्वीर देखकर ही बाबा की भक्त बन गई। दिग्गजों के मन में बाबा के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है।

0: वो हमेशा कंबल ओढ़कर बैठते थे। कभी तख्त पर बैठे तो कभी पेट के बल लेट जाते। भक्तों की मन की बात तुरंत समझ लेते और उनकी दुविधा को दूर कर देते थे। ऐसा ही था बाबा का अंदाज। वो कभी भी लंबा प्रवचन नहीं देते थे। वो भक्तों की मुक्ति में विश्वास करते थे। कहते हैं जब फेसबुक संकट में था तो कंपनी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कंपनी बिक जाएगी। तब कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग नीब करोरी बाबा की शरण में ही आए थे।
1: और मार्क जुकरबर्ग किसकी सलाह पर आए? तो स्टीव जॉब्स के सलाह पर आए। फेसबुक की शुरुआती दौर में जब वे व्यवसाय को लेकर संशय में थे, तब उन्होंने स्टीव जॉब्स के कहने पर कैंची धामा कर के बाबा नीम करोली का दर्शन किया। और आकर उन्होंने स्वयं कहा कि उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला, मानसिक शांति मिली, जीवन में क्लैरिटी प्राप्त हुई।
0: फेसबुक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कंपनी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। कंपनी बिकने के कगार पर थी। ऐसे में मार्क जुकरबर्ग एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स से मिले। स्टीव ने उन्हें नीब करोरी बाबा की शरण में जाने को कहा। दावा किया जाता है कि कैंची धाम में सिर झुकाकर लौटने के बाद उनकी किस्मत चमक गई। कंपनी पर मंडरा रहे संकट के बादल छट गए। एक और चमत्कार की बात 1974 की है। स्टीव जॉब्स का करियर ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में वो आध्यात्मिक शांति के लिए भारत आ गए। नीब करोरी बाबा की चर्चा उन तक भी पहुंची थी।
1: 1974 में एप्पल मोबाइल के संस्थापक 1974 में एप्पल मोबाइल के संस्थापक उत्तराखंड के कैंची धाम में आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में। यद्यपि उनके आने के पहले ही बाबा ने अपना देह त्याग दिया था। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की तलाश में आए थे और उनको जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो अद्भुत थी। इसी कारण नीम करोली बाबा को अपना आध्यात्मिक गुरु आज भी मानते हैं।
0: स्टीव जॉब्स अप्रैल 1974 में कैंची धाम पहुंचे थे, लेकिन बाबा सितंबर 1973 में देह त्याग चुके थे। वो बाबा का सदैव दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन बाबा का आशीर्वाद उन पर खूब बरसा। स्टीव जब कैंची धाम पहुंचे थे तब उनकी आंखों में सपने तो खूब थे, लेकिन जीप खाली थी, नौकरी भी नहीं थी। लेकिन कैंची धाम आने के बाद उनकी किस्मत और जिंदगी दोनों बदल गई। कैंची धाम से अमेरिका लौटने के बाद स्टीव ने काम शुरू किया, एप्पल की नींव रखी और देखते ही देखते एप्पल पूरी दुनिया में छा गया। स्टीव जॉब्स जब तक जिंदा रहे बाबा का गुणगान हर किसी से करते रहे। उनकी जेब में हमेशा बाबा की एक तस्वीर रहती थी। ऐसा बताया जाता है कि जब उन्होंने आखिरी सांस ली तब भी उनके सिरहाने बाबा की तस्वीर थी। हनुमान जी के भक्त नीब करोरी बाबा भी अपने आराध्य की तरह ही चमत्कारों के लिए ही जाने जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चमत्कार है सामने वाले के मन को पढ़ लेना। अब हम आपको बाबा के चमत्कार की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये रिचर्ड एल्पोर्ट की तस्वीर है। ये गणितज्ञ हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों के साथ जुड़े हैं। वो 60 का दशक था। हैरान परेशान रिचर्ड शांति की तलाश में भारत आए हुए थे। 6 महीना पहले ही रिचर्ड की मां का निधन हुआ था। इस बात से तो वो परेशान थे ही, उनका मन भी काफी अशांत था। कहते हैं कि अपनी भारत यात्रा के दौरान रिचर्ड की मुलाकात भगवान दास से हुई, जो अमेरिकी नागरिकता ले चुके थे और बाबा नीब करोरी के शिष्य बन चुके थे। भगवान दास ने रिचर्ड को नीब करोरी बाबा से मिलने की सलाह दी। नीब करोरी बाबा से मिलने को लेकर रिचर्ड दुविधा में थे। बाद में वो मन मार कर नीब करोरी बाबा से मिलने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि रास्ते में रात को आसमान में टिमटिमाते तारे को देख रिचर्ड को अपनी माँ की याद आ गई। वो और उदास हो गए। रिचर्ड भगवान दास के साथ बाबा के आश्रम कैंची धाम पहुंचे। भगवान दास ने साक्षांग होकर बाबा को प्रणाम किया, लेकिन रिचर्ड ने ऐसा नहीं किया। रिचर्ड ने बाद में खुद ही बताया कि मैं ये सोच रहा था कि हार्वर्ड का गणित का प्रोफेसर इस तरह किसी को लेटकर प्रणाम करेगा। वो चुपचाप खड़े रहे। इस पर बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि वो तारों में अपनी माँ को ढूंढ रहे थे। नीप करौरी बाबा की बात सुन रिचर्ड सकते में रह गए। वो समझ ही नहीं पाए कि बाबा उनके मन की बात कैसे जान गए। उनका अहंकार छू हो गया। वो बाबा की चरणों में गिर गए। वो समझ गए कि जिस गुरु की तलाश में वो भटक रहे थे वो उनके सामने बैठे हैं। नीप करौरी बाबा से मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। वो उसी वक्त बाबा के शिष्य बन गए। नाम रिचर्ड एल्पर्ट से रामदास हो गया।
1: इनके पास अलौकिक शक्तियां थी ऐसा माना जाता है। ये लोगों के मन को जान जाते थे और उनका दुख दूर कर देते थे। इनका जीवन अत्यंत सरल था। एक कंबल, सामान्य पहनावा और पूरा जीवन ये हनुमान जी महाराज की सेवा में, भक्ति में व्यतीत कर दिए। हनुमान जी का चालीसा पढ़ते थे और अपने भक्तों से भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रेरित करते थे।
0: नीप करौरी बाबा के चमत्कारों की फेहरिस्त काफी लंबी है। चमत्कारों की कहानी खुद भक्त ही बयां करते हैं। चमत्कार की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह आस्था और विश्वास की चीज है और जाहिर तौर पर किसी भी तरह की तार्किकता से परे है।
2: और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है नट तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: To thrive in today's tech world, you need more than coding tutorials. That's why WGU's computer science degree teaches you the building blocks behind AI and automation, like algorithms, data structures, architecture, and more. You'll earn multiple industry certifications, gain real experience, and graduate with a degree employers trust. Plus, it's flexible, affordable, and online. Move your tech career forward at wgu.edu.
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
3: I have no idea how this election is going to play out,
2: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
1: और अब आपको दिखाते हैं भारतीय पुरुष टीम के खिलाड़ियों की मस्ती। टीम इंडिया के क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल और अर्षदीप समेत पूरे खिलाड़ी पहाड़ों और झरनों के बीच स्विमिंग करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की हैं, जहां पर भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहला वनडे मैच खेला और जीत हासिल की। इस बीच खिलाड़ियों ने फुर्सत की ये पल भी बताए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाइए अपना कैमरा और बनाइए व्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़।
2: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators, dive with sharks, explore the unexplored, from nature, science, and space, to premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
3: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर, लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। जी हाँ, डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल से नहीं, बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जहां पर साफ पानी भरा हुआ हो। यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है। लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। और इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और GNT ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएं, जैसे घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचाकर रखें और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित रूप से इस्तेमाल जरूर करें। जब घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और GNT के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
4: जाए।
5: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
6: सोमवती अमावस्या पर देशभर की पवित्र नदियों में लगाई जा रही आस्था की पवित्र डुबकी, महाकाल के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़, आज अधिक मास का भी समापन।
7: कैची धाम के 59वें स्थापना दिवस पर उमड़ी बाबा नीम करोरी के भक्तों की भारी भीड़, मनमोहक अंदाज में सजाया गया बाबा का धाम, लाखों भक्तों ने लिए के लिए बन रहा है महाप्रसाद।
6: जम्मू कश्मीर में बाण मास मेले की धूम, पितरों की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना अनुष्ठान, कश्मीरी पंडितों की गहरी आस्था का प्रतीक है ये मेला।
7: नोएडा एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट में सफर कर लखनऊ पहुंचे किसानों का भव्य स्वागत, सीएम ने एक्स पर पोस्ट लिखकर दी बधाई, किसानों से मुलाकात भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
6: देहरादून में सहस्त्रधारा के बाद गुच्चू पानी बन रहा पर्यटकों की पहली पसंद, वीकेंड पर उमड़ रही भारी भीड़।
7: दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में झमाझम बारिश। झारखंड ओडिशा के कुछ हिस्सों में मॉनसून की एंट्री, अगले तीन दिन में एमपी और यूपी पहुंचने की संभावना।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
6: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल।
7: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पाराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ, एयरपोर्ट पर पहुंचे इंडिगो के विमान का पानी की बौछार के साथ स्वागत किया गया। इंडिगो के विमान में अभिनेत्री गुलपनाग ने भी सफर किया, इस फ्लाइट में सवार होकर अभिनेत्री गुलपनाग भी नोएडा पहुंची। देशभर में आज मनाई जा रही सोमवती अमावस्या, पवित्र नदियों में सुबह से ही स्नान दान का सिलसिला जारी। रामनगरी अयोध्या में सोमवती अमावस्या के खास मौके पर सरयू नदी के किनारे लगा आस्था का मेला, श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। सरयू नदी में स्नान के साथ ही लोगों ने सूर्यदेव को दिया अर्घ, दान देकर पुण्य भी अर्जित किया।
7: सोमवती अमावस्या पर महिलाओं ने की पीपल के पेड़ की पूजा, पति की लंबी उम्र का मांगा आशीर्वाद। उज्जैन में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने महाकाल का दर्शन पूजन किए। बाबा महाकाल का सोमवती अमावस्या पर किया गया भव्य श्रृंगार, महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। अनंतनाग के मार्तंडेय सूर्य मंदिर में बाढ़ मास मेले का भव्य आयोजन, पूजा पाठ के साथ भक्तों के लिए आध्यात्मिक अनुष्ठान। अनंतनाग के बाढ़ मास पारंपरिक मेले में पूरे इलाके से पहुंचे श्रद्धालु, मंदिर परिसर में भक्तों को विशेष प्रसाद भी परोसा गया।
6: नैनीताल के कैंची धाम का आज 62वां स्थापना दिवस, नीपकर और बाबा के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। कैंची धाम में सुबह से दर्शनों के लिए लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें, बाबा नीपकर और महाराज को मालपुए का भोग लगाने के साथ हुई स्थापना दिवस की शुरुआत। चारधाम की पवित्र यात्रा का आज 58वां दिन, मौसम की मुश्किलों के बावजूद श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने का सिलसिला जारी। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज, रथों को अंतिम रूप देने का काम शुरू, जल्द होंगे पूरी तरह से तैयार। 16 जुलाई को शुरू होगी ये रथ यात्रा, लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने बनाई योजना।
7: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फीफा वर्ल्ड कप का छाया खुमार, पसंदीदा खिलाड़ियों की लोगों ने लगाए पोस्टर। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में फैंस ने की आतिशबाजी, 45 और 60 फीट ऊंचाई के लगाए कटआउट। चंडीगढ़ में भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम से सीएम सैनी ने मुलाकात की, 23 जून चीन में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में टीम लेगी हिस्सा। जयपुर की कला ने फ्रांस में बटोरी तारीफ, पीएम मोदी मैक्रोन ने की कलाकृतियों की तारीफ, दो फ्रेंच कलाकारों ने किया तैयार। रामपुर जनपद में पालतू बिल्ली के लिए दिखा मालिक का अनोखा प्रेम, लापता होने पर शहर भर में लगाए पोस्टर, 5,000 रुपए के इनाम का भी किया ऐलान।
6: करीना कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शंस के 25 साल पूरे होने के जश्न में की शिरकत, फिल्म लगान से जुड़ी यादों को किया ताजा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोपिक सुभाष का ऐलान, आर्यन श्याम निभाएंगे इसमें मुख्य भूमिका। प्रभास की पीरियड वॉर फिल्म फौजी को लेकर बड़ा अपडेट आया है, फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज हो सकती है। कॉकटेल 2 को सेंसर बोर्ड से मिला ये सर्टिफिकेट, फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना आएंगे नजर। तमिल एक्शन फिल्म ब्लास्ट का बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन, 46 करोड़ रुपए से ज्यादा की फिल्म ने कमाई की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
6: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
7: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू। 172 किसान पहली फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे, सीएम योगी से होगी मुलाकात।
6: सोमवती अमावस्या के साथ आज अधिक मास का समापन, भक्तों ने पवित्र नदियों में लगाई आस्था की डुबकी।
7: कैंची धाम में 59वें स्थापना दिवस पर उमड़ा आस्था का सैलाब, फूलों से मंदिर का भव्य श्रृंगार।
6: दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर ली करवट, कई इलाकों में बारिश ने दी गर्मी से राहत, जून के अंत तक पहुंचेगा यहां पर मानसून।
7: अमेरिका ईरान समझौते से शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स में 1100 और निफ्टी में 350 अंकों की लगाई छलांग।
6: और चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। देखिए, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। जिस जेवर एयरपोर्ट का लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे, उसने आज उड़ान भर दी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों की शुरुआत हो गई है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी के विकास, उसके रोजगार और वैश्विक कनेक्टिविटी का एक नया द्वार भी इसको माना जा रहा है।
7: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किसानों ने पहली फ्लाइट ली, और जिन किसानों की जमीन एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई थी, सबसे पहली फ्लाइट उन्हीं किसानों के लिए बुक की गई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन किसानों का सम्मान भी करेंगे।
4: भाई

0: कभी सरसों और गेहूं की लहलहाती फसलों के लिए पहचाने जाने वाला जेवर आज विश्व स्तरीय हवाई अड्डे के रूप में नई पहचान बना चुका है। हजारों करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए अत्याधुनिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो गई है।
1: एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहली फ्लाइट लैंड हो चुकी है। लखनऊ से यह फ्लाइट आई है, तमाम यात्री आप निकलते हुए देख रहे हैं। सर, आप लखनऊ से आए, आप किस तरह की यात्रा?
2: बहुत अच्छा लगता है। सो फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग फ्रॉम बैंगलोर, सो फॉर एक्सपीरियंस करने के लिए इस फ्लाइट में आया। तो दो महीने का पहले बुकिंग कर दिया, सो बहुत अच्छा लग रहा है। फैसिलिटीज बहुत बहुत अच्छा है।
1: फ्लाइट का कॉस्ट कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ज्यादा कॉस्ट तो नहीं था?
2: नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा था,
1: कैसा लगा आपको?
3: इट वॉज नाइस एंड इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस।
0: जैसे ही लखनऊ से उड़ान भरकर इंडिगो की फ्लाइट 6E2278 जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर उतरी, वैसे ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इतिहास का नया अध्याय शुरू हो गया और विमान को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। ये सम्मान आमतौर पर किसी नए एयरपोर्ट के उद्घाटन या पहली बार उड़ान शुरू होने के ऐतिहासिक अवसर पर दिया जाता है। नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान की खासियत ये रही कि इसे किसानों के नाम किया गया। जिन किसानों की जमीन एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई थी, सबसे पहली फ्लाइट उन किसानों के लिए ही बुक की गई। किसानों में ही नहीं, नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान को लेकर दिल्ली एनसीआर के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस ऐतिहासिक उड़ान में अभिनेत्री गुल पनाग भी नोएडा पहुंची। एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सफल संचालन पर खुशी जाहिर की।
1: गुल पनाग जी मेरे साथ में है। मैम, पहली फ्लाइट से आपने भी फ्लाई किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
4: एक पायलट होने के नाते, एक एविएशन इंथ्यूजियास्ट होने के नाते, एक एविएशन फैन होने के नाते, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे इस पहली उड़ान पे उड़ान भरने का मौका मिला। एक एविएशन हिस्ट्री का एक छोटा सा पहलू मैं हूँ, उसका एक मुझे पार्ट होने का मौका मिला, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते हैं और मेरे लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू है टू बी ऑन द इनॉग्रल फ्लाइट दैट लैंडेड इन टू नोएडा। एज एन इन्वेस्टर इन नोएडा, एज समबडी हु हैज बिलीव्ड इन नोएडाज पोटेंशियल, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजिंग, नॉट जस्ट फॉर नोएडा पर पूरे दिल्ली एनसीआर की पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए मुझे लगता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत अहमियत रखता है।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली एनसीआर को एक नया एविएशन हब मिला है। पहले चरण में लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत कई प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ान सेवाएं संचालित हो रही हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसरों के लिए सुनहरा मौका है।
5: देखा जाए तो हमारे रेजिडेंस नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट 38 किलोमीटर है और ये करीब जो है 45 है, बट डेफिनेटली वहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है तो टाइम बहुत बचेगा। और एक फन है, आप एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल करते हैं तो आपको किसी तरह कंजेशन को नहीं देखना पड़ता है और आप आराम से घर इत्मीनान से पहुंच जाते हैं, किसी तरह का टेंशन नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और साथ में जो इस वैसिनिटी में जो डेवलपमेंट आने वाला है, जो विजन हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का देख रहे हैं, वो हमें लग रहा है कि धीरे धीरे धरातल पर आ रहा है।
0: अभी इस एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर हर घंटे 12 विमान टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही से बढ़ाकर 20 विमान प्रति घंटा करने की योजना है। इसमें 3900 मीटर लंबा रनवे है, साथ ही एक टर्मिनल बिल्डिंग और ATC टावर भी है। वहीं एयरपोर्ट पर 30 एकड़ में कार्गो हब भी बनाया गया है। इस एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 1,20,00,000 से ज्यादा यात्रियों की है।
6: 3-4 साल से जब से एयरपोर्ट का प्लान हुआ था तब से सोचा हुआ था।
1: आप नोएडा गई हैं?
6: मैं नोएडा से।
1: आपके लिए नोएडा में एयरपोर्ट होना कितनी बड़ी बात?
6: बहुत बड़ी बात है, लॉट ऑफ मतलब एम्प्लॉयमेंट है, साथ में हमारे घर के पास एयरपोर्ट हो गया एंड इट इज कनेक्टिविटी टू द वर्ल्ड। सो
1: घर से ये दूर तो नहीं पड़ेगा?
6: नहीं नहीं, 1.5 घंटा।
1: फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा?
6: बहुत बढ़िया, ऑन टाइम टेक ऑफ, ऑन टाइम लैंडिंग।
7: बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा नोएडा में भी अब एयरपोर्ट है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का। थैंक यू।
8: तो इसमें कहीं ना कहीं जो एक लॉजिस्टिक का जो एक डायमेंशन ओपन होगा लोगों को बिजनेस के लिए, वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल सकता है।
1: इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल सकता है, उद्योग को एक बढ़ावा देने के लिए भी ये एयरपोर्ट एक माइलस्टोन साबित होगा।
0: जाहिर है दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब उड़ान भरने के लिए हर बार आईजीआई एयरपोर्ट की ओर दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों को फायदा होगा। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए पहली फ्लाइट लखनऊ से पहुंची, जिसमें 172 किसान आए हैं और ये वो किसान हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के निर्माण में अपनी जमीनें दी थी और इनके साथ जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे और इस फ्लाइट में कई महिला किसान ऐसी है जो कि पहली बार फ्लाइट में बैठी। सुनिए पहली बार फ्लाइट में बैठने का किसानों का अनुभव कैसा रहा।
10: आप क्या नाम है आपका?
11: मेरा नाम गुलजार है जी।
10: गुलजार साहब आप भी नेवी जमीन दी थी?
11: हाँ जी जमीन दी।
10: अभी फ्लाइट में पहली बार बैठे?
11: हाँ जी पहली बार।
10: ऐसा लगा?
11: पहली बार बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। योगी
10: साहब से मिलेंगे अभी? हाँ, आप
11: योगी साहब मिलने को भाई
10: आप बोलेंगे उनको?
11: देखो उनने बहुत बढ़िया करो मान लिया और कहा फ्लाइट में बैठ गए ना, हम तो सात ही आदमी।
10: क्या है जी? दिखाई जरा बोर्डिंग पास अपना।
11: हाँ जी
10: ये देखिए बोर्डिंग पास। बसों के टिकट जरूर आपने किसानों के हाथों में बहुत देखे होंगे लेकिन फ्लाइट के टिकट शायद ही देखे होंगे। और ये जो बोर्डिंग पास आप पकड़िए हाथ में अपने, इन किसानों के हाथ में आते हैं तो चेहरा मुस्कुराता है, सपना पूरा होता है। और किसानों से हम बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए आप महिलाएं हैं, पहली बार बैठी फ्लाइट में?
12: हाँ जी।
10: कैसा लगा?
12: बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा
10: लगा। तो नहीं लगा?
12: नहीं।
10: ऊपर उठा एकदम से
12: ना।
10: आवाज आई
12: ना?
13: हल्का सा तो लगा थोड़ा।
10: कैसा लगा?
13: हाँ।
10: क्या बोली आप लोग?
13: बाबा की जय बोली।
10: बाबा की जय।
12: बाबा की जय बोली।
10: बाबा कैसे लगा जो उठा प्लेन ऊपर?
12: डर ना लगो।
10: आपने जिस जमीन पर खेती किसानी की उस जमीन पर आज एयरपोर्ट है, वहीं से उड़कर आप यहाँ पहुँची हैं, ये अनुभव कैसा है?
12: ये बहुत अच्छा है।
10: अच्छा अनुभव है,
12: बाबा की कृपा है।
10: ये देखिए किसान हैं, महिलाएं हैं जो यहाँ पहुँची हैं भारी संख्या में और शुक्रिया कर रहे हैं सीएम का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, विधायक का।
9: और देखिए इस एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को किया गया था और आज यहां से उड़ान की शुरुआत हो गई है, यानी महज 5 सालों में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अभी पहले चरण का काम पूरा हुआ है लेकिन बाकी 3 चरण का काम पूरा हो जाने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 6ठा बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। और आज पहले चरण का श्री गणेश कर दिया गया, जिसके लिए सीएम योगी ने खुद किसानों का धन्यवाद दिया, क्योंकि जिस भूमि पर यह भव्य एयरपोर्ट बना है उसके लिए किसानों ने अपनी जमीनें थी और यही वजह है कि किसानों की भागीदारी और योगदान को सम्मान देने के मकसद के साथ किसानों की लखनऊ से स्पेशल फ्लाइट भी ऑपरेट की गई, जिसकी खुशी किसानों में साफ देखी जा सकती है।
10: अब आप लोग बस में जा रहे हैं, कैसा माहौल है बस में जा रहे हैं?
14: बहुत अच्छा माहौल है, योगी जी की देन है जो इधर जेवर नोएडा एयरपोर्ट से आए हैं लखनऊ, तो बहुत अच्छा किसानों को महसूस है और भगवान योगी जी की सरकार जो है का बहुत अच्छा काम कर रही है। किसान लूटपाट चोरी चकोरी सब बंद और अच्छा माहौल।
10: क्यों चाचा डर तो नहीं लगा आप?
14: मजा आ गया।
10: पहली बार। अच्छा आपका ही पहली बार था?
15: हाँ जी।
10: अब घर जाके कहानी सुनाएंगे फ्लाइट में बैठे?
15: हाँ जी।
10: फोटो लिया, सेल्फी लिया? देखिए ये बस है, आइए चलते हैं बस में और दिखाते हैं आपको तस्वीरें बस की भी कि किस तरीके से बस में जो है वो किसान साथी जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक एयर कंडीशन बस इनके लिए की गई है और ये बस में तमाम साथी जो हैं वो बैठे हुए हैं, चेहरे पर मुस्कान है किसानों के। ऐसा क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से मिलेंगे जब?
16: मंत्री साहब से कहेंगे साहब ने हमारा इतना उपकार करो है, हमारा सबसे पिछड़ो इलाको हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ने चमका दियो और उनकी मेहरबानी से आज हम यहाँ आ रहे हैं और देख रहे हैं, तो हमें ऐसो परमात्मा ये कि हमारी जिंदगी में तो ऐसो ही रहे।
10: पहली बार फ्लाइट में गए?
16: पहली
10: जब जब उड़ा है कैसा लग रहा था?
16: हाँ बहुत बढ़िया लग रहा, हम तो कभी बैठे ही नहीं।
10: आवाज क्या डर तो नहीं लगा
16: ना? कुछ कोई ऐसी तगड़ी आवाज नहीं।
10: फोटो डली
16: है? फोटो हम पे फोटो ना भी है, फोन ना।
10: आप लोगों कैसा एक्सपीरियंस रहा फ्लाइट से आए हैं?
17: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
10: अच्छा लगा।
17: हमने तो उड़ते हुए देखे, उड़ते हुए हवा में हमने नजदीक से जहाज ना देखे आज तक। आज हमारे जितने किसान आए ना है करीब 98-97% जो किसान है, बाकी 1-2% के नाग सब पहली बार जहाज में बैठे निपचारे दर्शन तो ऊपर से करते हैं जैसे ऊर्जा का है।
10: गांव में खेती कर रहे हो तो दिखते होंगे वो देखो बच्चे भागते हैं प्लेन के पीछे।
17: हाँ वही देखो ना देखो आ तो जो है यहाँ पे जो है जहाज में बैठ के आए।
10: ये बचपन में भी आप भी भागे होंगे जब प्लेन बड़ा क्रेज होता था ना, खेत में जहाज निकला दौड़ो पीछे पीछे,
17: भागे रहे खूब भागे रहे।
10: आप ना बचपन याद करते हैं जब कि आप खुद भागे और आज जो है आप फ्लाइट में बैठ कर खुद जा रहे हैं?
17: बिल्कुल, वो फीलिंग है हमें, वो उसकी याद आ जाती है। तो उससे हमें थोड़ा होता है कि जो अब देखो जो जहाँ एयरपोर्ट बना है, जहाँ एयरपोर्ट बना है।
10: अच्छा, कितना इमोशनल मोमेंट था आपके लिए, क्योंकि आपने जैसा कहा प्लेन के पीछे भागने से लेकर बैठने तक?
17: इमोशनल मोमेंट तो इतना है जहाँ आज जहाँ से फ्लाइट हुई है, जहाँ से उड़ के आए, जहाँ एयरपोर्ट बना,
10: वहीं पे एयरपोर्ट,
17: वही हमारी जन्मभूमि थी, वही जन्मभूमि हमारी। तो आज जब वहाँ पहुंचे सुबह तो हमें जो अपनी पुरानी याद आ गई।
9: चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की। दरअसल आमिर खान की लगान ने बड़े पर्दे पर 25 साल पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ ही आमिर खान प्रोडक्शन भी अपनी सिल्वर जुबली मना रही है। दरअसल आमिर खान ने इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी और इस पार्टी में आमिर के साथ जश्न मनाने के लिए बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां जुटी। देखिए कौन कौन पहुंचा इस पार्टी में।
15: जब फिल्मों में कामयाबी के 25 साल का जश्न मनाया तो उन्हें बधाई देने के लिए सितारों की महफिल सज गई। ये जश्न सिर्फ आमिर खान प्रोडक्शन का ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने का भी था। बड़े पर्दे पर 25 साल की कामयाबी को आमिर ने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की सिल्वर जुबली पर आमिर ने एक खास इवेंट रखा। इस इवेंट में बड़े पर्दे की तमाम जानी मानी हस्तियाँ पहुँची। आमिर यहां अपनी होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ दिखे। इस पार्टी में आमिर खान का पूरा परिवार भी पहुंचा। उनकी बेटी आयरा और बेटा जुनैद इस पार्टी में शामिल थे। आमिर की एक्स वाइफ किरण राव अपने बेटे के साथ इस इवेंट में पहुंची थी। इस जश्न के खास मेहमान थे सलमान खान, जो अपने बिल्कुल नए लुक के साथ यहां दिखे। सलमान का ये लुक सामने आते ही चर्चा होने लगी कि ये उनकी नई फिल्म का ही लुक है। आमिर ने सलमान को गले लगाकर उनका स्वागत किया और दोनों ने एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कुछ ही देर में करीना ने भी इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही काजोल, सानिया मल्होत्रा, रेखा, अली फजल, ऋचा चड्ढा भी इस जश्न का हिस्सा बने। जूही चावला यहां अपने पति के साथ पहुंची। जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी इस पार्टी में दिखे। लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, राजकुमार ईरानी समेत तमाम जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस जश्न में शामिल थे। आमिर ने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी कई यादगार फिल्में बनाई हैं। आमिर की फिल्में हमेशा दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं और ऐसी ही फिल्में वो प्रोड्यूस भी करते हैं। 25 साल के सफर में आमिर खान प्रोडक्शन ने कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। आमिर खान प्रोडक्शन की सिल्वर जुबली के मौके पर उन तमाम फिल्मों को याद भी किया गया जो बड़े पर्दे पर आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: चलिए फिल्मों की बात हो रही है तो सुपरहिट फ्रेंचाइजी धमाल का चौथा सीक्वल एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने को तैयार है। फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। धमाल 4 का ट्रेलर देखने से ये लग रहा है कि फिल्म भी अपने पहले सीक्वल्स की तरह कॉमेडी से ओवरलोडेड होगी। धमाल फ्रेंचाइजी के सीक्वल में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी के साथ ही कुछ नए कलाकार खजाने की तलाश में जुटे हैं। इसी सिलसिले में कॉमेडी का शानदार तड़का लगाते हुए दिखाई दे रही है ये फिल्म। धमाल 4 का निर्देशन इंदर कुमार ने किया है जबकि प्रोड्यूसर हैं अजय देवगन के साथ ही भूषण कुमार और कृष्ण कुमार भी। ये फिल्म 10 जुलाई को रिलीज होगी।
18: कौन ज्यादा हंसने में वक्त जाया करता था एक्टिंग साथ, बड़ी कमाल की
19: किसी से लिया हुआ उधार है जो भूल जाए।
20: आई रियली फील कि आप सीक्वल तब कनेक्ट होता है, सीक्वल तभी वर्क करता है जब जो इससे पहले आपने देखी हो प्रीक्वल या जो भी है उसके कैरेक्टर्स लोगों को पसंद आ जाए। चाहे वो ये फिल्म ले लीजिए चाहे गोलमाल ले लीजिए, लोग कैरेक्टर्स को नाम से जानते हैं। यू जस्ट सेड आदि मानव नो, सो एक बार कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस हो जाती है ना तो देन यू कैन टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
21: सब इतने कोऑपरेटिव है, हम लोग मजे से काम करते हैं साथ में एंड कोई टेंशन होती नहीं है जनरली। कभी कभी हो जाती है
22: कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी,
21: हाँ हमारी वो ही है
22: राइट
21: सो होता नहीं है एंड एवरीबॉडी नोज देयर रोल वेरी वेल। अभी जो नए एंट्रेंट है अधूरा हमारे वो लिमाए जी, तो ये भी इतने घुल गए इस अभी देखना नेक्स्ट पार्ट, अभी इनके बिना बनना मुश्किल होगा।

0: आज अधिक मास का समापन हो रहा है और इसी के साथ कल से शुभ कार्यों का श्री गणेश हो जाएगा। जी हाँ, अधिक मास भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। अब जब अधिक मास समाप्त हो रहा है तो कल से मंगल बेला शुरू हो जाएगी।
1: अब देखिए, कल से मुंडन, गृह प्रवेश और शादी जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी, तो वहीं आज सोमवती अमावस्या पर पूजा पाठ स्नान दान का सिलसिला भी लगातार जारी है। सोमवती अमावस्या पर देशभर की पवित्र नदियों में आस्था का महाउत्सव देखने के लिए मिल रहा है। अयोध्या में सरयू में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, वहीं प्रयागराज में त्रिवेणी किनारे भक्त स्नान के लिए आ रहे हैं। ऐसा ही आस्था भक्ति का उत्सव महाकाल की नगरी उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा। यहां सोमवती अमावस्या पर भगवान महाकाल का विशेष अभिषेक किया गया।

0: आ गई है वो शुभ घड़ी जब शादियों की शहनाइयां भी गूंजेंगी और गृह प्रवेश भी होगा। आ गई है वो मंगल बेला जब नामकरण संस्कार भी होंगे और नए व्यापार की शुरुआत भी की जा सकेगी। एक महीने से चल रहे पुरुषोत्तम मास का आज समापन होने जा रहा है और इसके साथ ही 30 दिनों से रुके हुए सभी मांगलिक कार्यों पर लगा विराम समाप्त हो जाएगा और कल से शुभ कार्यों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाएगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक 17 मई से पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की शुरुआत हुई थी और आज 15 जून को पुरुषोत्तम मास या मल मास समाप्त हो रहा है। सनातन धर्म में अधिक मास की समाप्ति के साथ ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्यों के द्वार खुल जाते हैं। हिंदू ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अधिक मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, यानी सूर्य इस अवधि में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करते। सौर चक्र में इस संक्रमण विहीन अवधि की वजह से इस मास को मल मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु जप तप व्रत पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से आध्यात्मिक साधना करते हैं। ये समय सांसारिक और भौतिक शुभ कार्यों जैसे विवाह गृह प्रवेश नए व्यवसाय की शुरुआत और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, इसलिए इस दौरान ऐसे कार्यों पर विराम लगाया जाता है। लेकिन अब अधिक मास के समापन के साथ ही विवाह गृह प्रवेश मुंडन समेत तमाम मांगलिक कार्यों पर लगा विराम समाप्त हो जाएगा और शुभ कार्य शुरू किए जाएंगे। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक अधिक मास का अंतिम दिन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन किए गए दान स्नान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है, इसलिए पूरे मास में किए गए धार्मिक कार्यों का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए समापन के समय उद्यापन अवश्य करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और संध्या के समय दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास के समापन पर कांसे के पात्र में मालपुए का दान करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सनातन परंपरा में पुरुषोत्तम मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है, इसलिए समापन के अवसर पर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना उद्यापन और दान पुण्य करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: आज कैची धाम का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है, लिहाजा नैनीताल में मौजूद इस भव्य और दिव्य धाम में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं।
2: देखिए, हर तरफ आस्था का संचार हो रहा है। यहाँ मालपुए का विशेष प्रसाद भी बनाया गया जो बाद में श्रद्धालुओं में वितरित किया गया।

0: की शांत और खूबसूरत वादियों में बसा बाबा नीम करौली महाराज का भव्य और दिव्य कैंची धाम, जहां इन दिनों स्थापना दिवस की रौनक देखते ही बन रही है। जैसे ही पहाड़ों पर शाम ढलती है, पूरा धाम रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो उठता है। आश्रम का ये भव्य और दिव्य स्वरूप यहाँ पहुँचने वाले हर श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर रहा है। बाबा के भक्तों के लिए स्थापना दिवस जितना अहम है, उससे कहीं ज्यादा अहम है इस मौके पर मिलने वाला विशेष प्रसाद, जिसे बनाने की तैयारी कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है। स्थापना दिवस के इस पावन मौके पर बाबा के विश्व प्रसिद्ध महाप्रसाद की तैयारियां भी पूरे जोर शोर से चल रही हैं। स्थापना दिवस के मौके पर प्रसाद के तौर पर मालपुए बनाए जाते हैं। आश्रम में 9 बड़े बड़े चूल्हों पर ये महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है। इस विशेष मालपुए के प्रसाद को बनाने के लिए मथुरा और वृंदावन से 45 अनुभवी कारीगरों का दल पहुंचा है, जो दिन रात एक करके लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये अमृत रूपी प्रसाद तैयार कर रहा है। उधर बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर है। पूरा क्षेत्र बाबा नीम करौली महाराज की जय के गगनभेदी जयकारों से गूंज रहा है। श्रद्धा, समर्पण और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर ये माहौल बता रहा है कि इस बार स्थापना दिवस पर श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अब इंतजार सोमवार सुबह का है, जब सूर्य की पहली किरण के साथ लाखों श्रद्धालु बाबा के दर पर शीश नवाएंगे और उस महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे, जिसकी खुशबू से इस वक्त पूरी घाटी महक रही है। लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महिला T20 टीम ने पाकिस्तान को कैसे दी शिकस्त।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है नच तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: Tune in Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: नोएडा एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट में सफर कर लखनऊ पहुंचे किसानों का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट के लिए भूमि देने वाले किसानों से सीएम ने किया संवाद। सोमवती अमावस्या पर देश भर की पवित्र नदियों में लगाई जा रही आस्था की डुबकी, महाकाल के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़, आज अधिक मास का भी समापन। कैंची धाम के स्थापना दिवस पर उमड़ी बाबा नीप करौरी के भक्तों की भारी भीड़, मनमोहक अंदाज में सजाया गया इस पूरे धाम को, लाखों भक्तों ने बनाया महाप्रसादम। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने किए बद्रीनाथ के दर्शन, भगवान बद्री विशाल का लिया आशीर्वाद, 5 करोड़ किए दान।

0: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लंच टाइम। बात कर लेते हैं जीत वाली गुड न्यूज की, जो कि सात समंदर पार इंग्लैंड से सामने आई है। इंग्लैंड की सरजमीं पर हो रहे T20 विमेन्स वर्ल्ड कप में भारत की बेटियों ने परचम लहराया है।
1: दरअसल पाकिस्तान को 64 रनों से हराकर जीत के साथ आगाज किया। बर्मिंघम में खेले गए इस महामुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई।
2: बर्मिंघम के मैदान पर भारत की धुरंधर बेटियों ने उम्मीद के मुताबिक T20 विमेन वर्ल्ड कप का विजयी आगाज किया। हरमन ब्रिगेड ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 64 रनों से शानदार जीत दर्ज की। टॉस जीतकर विमेन इन ब्लू ने पहले बल्लेबाजी चुनी। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पावर प्ले में ही 2 विकेट गंवा दिए। शिफाली वर्मा को स्पिनर सादिया इकबाल ने पहले ही ओवर में पवेलियन भेजा। वहीं जेमिमा रॉड्रिक्स लेफ्ट आर्मर सिमर तस्मिया रुबाब का शिकार बनी। इसके बाद स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए 91 रनों की शानदार पार्टनरशिप की। स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों पर 68 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। हरमनप्रीत कौर ने 4 चौकों की मदद से 35 गेंदों पर 36 रनों का योगदान दिया। विकेटकीपर बैटर ऋचा घोष ने आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग की और 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 बॉलों पर 34 रनों की पारी खेली।
3: आज हमारे देश की बेटियों ने हमारे इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है। एक वर्ल्ड कप हमारे घर आया, दूसरा भी आने की तैयारी है। हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, पूरा मेरा प्रयागराज खुशी मना रहा है। मेरे घर की बेटियां घर से निकल के आतिशबाजी कर रही हैं, बहुत खुशी मना रही है, बहुत गर्व की बात है।
4: हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी महिला टीम जीती, पाकिस्तान को हराया। हमने बहुत अच्छे से जश्न मनाया, पटाखे छुड़ाए और हमें काफ़ी अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आगे भी हमारी महिला टीम ऐसे ही वर्ल्ड कप जीतती रहे।
2: भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 170 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। 171 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम को पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन इसके बाद मैदान पर आया दीप्ति शर्मा का तूफान। दीप्ति ने अपनी जादुई स्पिन से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाली पहली स्पिनर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। दीप्ति ने अपने 4 ओवर के इस प्ले में सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट झटके। श्री चरनी ने भी दीप्ति का बखूबी साथ देते हुए 21 रन देकर 3 विकेट झटक लिए। वहीं शिफाली वर्मा ने 22 रन देकर 1 विकेट लिया।
5: इंडिया बोलो, इंडिया वोमेन टीम जीती है, उसके लिए लेडीज के लिए और वोमेन के लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और इंडिया टीम हमेशा जीतती रहेगी ऐसे ही और हम उनके पूरा सपोर्ट करेंगे।
6: ये तो एकदम बहुत बड़ी दुश्मनी जैसे वाली मैच होती है इंडिया पाकिस्तान, और हमें पता ही था कि इंडिया जीत जाएगी। तो उनको ऑल आउट ही हो गए शायद 106 पे, उसी खुशी मना रहे हैं हम लोग सब लोग।
2: हरमनप्रीत ब्रिगेड के हरफनमौला प्रदर्शन के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली और पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन पर ढेर हो गई और इस तरह भारत ने अपना पहला मुकाबला शानदार 64 रन से जीतकर T20 वर्ल्ड कप का विजयी आगाज किया है। 17 जून को अब भारतीय टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: लंच टाइम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है नच तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
9: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla.

0: that Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
3: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speaker control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
6: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: लेकिन मिडल ईस्ट ऊर्जा संकट की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर गाजियाबाद में भी दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर कारपूलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैकड़ों लोग ऑफिस जाने के लिए कारपूलिंग का सहारा लेते हैं और पैसे की बचत के साथ साथ स्ट्रेस भी उनका जाहिर सी बात है कि कम होता जा रहा है। गाजियाबाद में कारपूलिंग की शुरुआत विवेक अरोड़ा ने 2016 में की थी और आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर के 900 से ज्यादा लोग ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस सुविधा का भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे कुछ लोगों से जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कारपूलिंग का इस्तेमाल ऑफिस आने जाने के लिए कर रहे हैं।
2: अब कारपूलिंग का जो आपने ग्रुप शुरू किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया, उस ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई और किस सोच के साथ

0: ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने इनिशिएट किया, मतलब कभी किसी से बात की डायरेक्टली, अपनी सोसाइटी ग्रुप में डाला कि मैं जा रहा हूँ, कोई चलने वाला है क्या, कोई जा रहा है मुझे ले चले, कैसे शुरुआत हुई?
1: देखिए शुरुआत ऐसे हुई कि खुद को भी लगा कि कुछ होना चाहिए, तो एक इंटरनेट पे सर्च करके, एक फ्रेंच कंपनी है जो वर्ल्ड ओवर कारपूलिंग करती है, तो उनकी ऐप के थ्रू जाना शुरू किया। कोई साथ वाले मिले, इंदिरापुरम वाले थे, उन्होंने ऐसी बातचीत में कहा कि विवेक ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ऐसा कुछ शुरू करो, तो वहाँ से शुरुआत की। उनके साथ मिलके दो तीन बार ट्रैवल किया, तो व्हाट्सएप बनाया, और फिर प्राइमरीली जो हमारा ये ग्रुप बना है और जिस तरह से इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, आप ले लीजिए कि फ्रॉम जीरो टू नियरली 1000, वर्ड ऑफ माउथ हुई है। और कुछ मैं कहूँगा, मीडिया में आप जैसे दोस्त हैं जो कभी कभी समय समय पर, जैसे

0: ने भी बहुत सपोर्ट
1: आज
0: किया
1: है। आज गाजियाबाद की कितनी सोसाइटीज कनेक्ट हो गई हैं आपकी वजह से?
0: सर मैं अपनी वजह नहीं कहूँगा, ये एक कलेक्टिव सबका एफर्ट है, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो एक से दो, दो से छः, छः से साठ ऐसे बना है। तो मेरे ख्याल में गाजियाबाद में अगर हम इंदिरापुरम पकड़ें तो कम से कम 40-45 सोसाइटीज़ के लोग होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पीछे विजयनगर साइड से आते हैं, राजनगर एक्सटेंशन में 40-50 सोसाइटीज़ हैं, कुछ लोग वहाँ के जुड़े हैं, वैशाली, वसुंधरा, कौशंबी। तो मैं अगर बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लूँ तो कम से कम अगर 900-950 लोग हैं तो इनमें से मेरे ख्याल 100 सोसाइटीज तो इजीली कवर हो रही होंगी।
2: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरें दिन भर जा रही हैं, आप देखते रहिए TNT।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Flexibility is the foundation of WGU School of Education. With WGU, you have the option to take courses when it works for you. And while our programs are centered around you and your schedule, you'll never go it alone. You'll have one-on-one mentorship and support from faculty every step of the way, from day one to graduation. WGU empowers you to become the best teacher you can be. Learn more at wgu.edu.
2: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
3: Lee looks for someone, finds the right someone. And Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
2: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
4: Because people who all watch games, they hear the voice.
2: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
5: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं। एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं, एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। चिंता वाली बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जहां साफ पानी भरा हो, यानी डेंगू से जंग की शुरुआत तो हमारे घर से ही हो जाती है। लेकिन यह लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और जीएनटी ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी हुई सही जानकारी, एक्सपर्ट्स की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएं, जैसे घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचा कर रखें, और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित रूप से इस्तेमाल जरूर कीजिए। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और जीएनटी के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
12: नोएडा एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट में सफर कर लखनऊ पहुंचे किसानों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट के लिए भूमि देने वाले किसानों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद। सोमवार अमावस्या पर देश भर के पवित्र नदियों में लगाई जा रही आस्था की पवित्र डुबकी, महाकाल के दर्शन को भी उमड़ रही है बड़ी संख्या में भीड़। आज अधिक मास का भी समापन। कैंची धाम के स्थापना दिवस पर उमड़ी बाबा नीम करौरी के भक्तों की भारी भीड़, मनमोहक अंदाज में सजाया गया बाबा का धाम, लाखों भक्तों के लिए बन रहा है महाप्रयास। उद्योगपति मुकेश अंबानी के लिए बद्रीनाथ के दर्शन उन्होंने किए, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद दिया 5 करोड़ का। देहरादून में सहस्त्रधारा के बाद गुचू पानी बन रहा है पर्यटकों की पहली पसंद, वीकेंड पर उमड़ रही है भारी भीड़। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में झमाझम बारिश। झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मॉनसून की एंट्री, अगले 3 दिन में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
12: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ, एयरपोर्ट पर पहुंचे इंडिगो के विमान का पानी की बौछार से स्वागत। नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों ने पहली फ्लाइट से की यात्रा, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किसानों का स्वागत किया, अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। इंडिगो के विमान में अभिनेत्री गुलपनाग ने भी सफर किया, इस फ्लाइट में सवार होकर अभिनेत्री गुलपनाग भी नोएडा पहुंचे। साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद, एयरपोर्ट की क्षमता बढ़कर 7 करोड़ यात्री पहुंचाने की योजना। देश भर में आज मनाई जा रही है सोमवती अमावस्या, पवित्र नदियों में सुबह से ही स्नान दान का सिलसिला। रामनगरी अयोध्या में सोमवती अमावस्या के मौके पर सरयू नदी के किनारे लगा आस्था का मेला, श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। सरयू नदी में स्नान के साथ ही लोगों ने सूर्यदेव को अर्घ दिया, दान देकर पुण्य भी अर्जित किया। हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं गंगा स्नान, कल से ही यहां पर जुटने लगे थे भक्त। प्रयागराज में सोमवती अमावस्या को लेकर लोगों ने किया गंगा स्नान, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में विशेष पूजा। सुमति अमावस्या पर हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रज घाट पर लगा आस्था का मेला, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई मां गंगा में पवित्र डुबकी। ब्रज घाटों पर पूजा पाठ के साथ लोगों ने पिंडदान और तर्पण किया, आसपास के जिलों में भी पहुंचे लोग। सोमवती अमावस्या पर अकोला के राजेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा की। राजेश्वर धाम में लोगों ने लिया भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, जयघोष से गुंजायमान का पुण्य परिसर। महाराष्ट्र के जेजुरी के खंडोबा मंदिर में सोमवती अमावस्या पर पहुंचे लाखों श्रद्धालु, मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान के साथ पूजा। सोमवती अमावस्या पर महिलाओं ने की पीपल के पेड़ की पूजा, पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद। उज्जैन में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने महाकाल की दर्शन पूजन किया। बाबा महाकाल का सोमवती अमावस्या पर किया गया भव्य श्रृंगार, महादेव के जयकारों के साथ मंदिर परिसर में गुंजा। अनंतनाग के मारतंड सूर्य मंदिर में बाण मास मेले का भव्य आयोजन किया गया, पूजा पाठ के साथ भक्तों ने आध्यात्मिक अनुष्ठान किया। अनंतनाग के बाण मास पारंपरिक मेले में पूरे इलाके में पहुंचे श्रद्धालु, मंदिर परिसर में भक्तों को विशेष प्रसाद। नैनीताल के कैची धाम में आज 62वां स्थापना दिवस, नीम करोरी बाबा के दरबार में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। कैची धाम में सुबह से दर्शन करने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, बाबा नीम करोरी महाराज को मालपुए का भोग लगाने के साथ स्थापना दिवस का शुरू। बाबा के जयकारों और जय श्री राम के नारों के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन पूजन, सेवादार भक्तों को दे रहे हैं मालपुए महाप्रसाद। कैची धाम में लाखों की संख्या में पहुंच रहे लगातार भक्त, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। कैची धाम में दिख रहा है भक्तों का शानदार नजारा, भक्त कर रहे हैं हनुमान जी के दर्शन। चारधाम की पवित्र यात्रा का आज 58वां दिन, मौसम की मुश्किलों के बावजूद श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने का सिलसिला तेज। बद्रीनाथ धाम में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, तप्त कुंड में स्नान और ब्रह्म कपाल में पिंड तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का दर्शन लगातार जारी, अब तक 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचने वालों का सिलसिला जारी, लगभग 12 लाख का आंकड़ा पार। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन, चारधाम यात्रा के लिए 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज, रथों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं कारीगर, जल्द होंगे पूरे। अक्षय तृतीया के दिन पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद शुरू किया गया था रथ का निर्माण, सैकड़ों कारीगर पारंपरिक तरीके से जुटे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष, बलभद्र और ताल ध्वज और देवी सुभद्रा के दर्प दलन रथ का हो रहा है निर्माण। 16 जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा, लाखों श्रद्धालुओं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शहर में इस साल एलईडी स्क्रीन लगाने की तैयारियां, लाखों भक्त रथ यात्रा का देख सकेंगे सीधा प्रसारण। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में आज छाए रहेंगे घने बादल, हवा चलने के साथ तापमान में गिरावट। गुरुग्राम में तेज बारिश से मिली गर्मी से राहत, शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर पश्चिम भारत में बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के टेहरी झील में पर्यटकों की भारी भीड़, रविवार को 1500 से ज्यादा पर्यटकों ने बोटिंग और एडवेंचर गतिविधियों में भाग लिया। देहरादून में सहस्त्रधारा के बाद गुचुक पानी बन रहा है पर्यटकों की पहली पसंद। वाराणसी के नमो घाट पर मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर योग सप्ताह की शुरुआत, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाकों में सीआरपीएफ ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जवानों के साथ स्थानीय लोगों ने भी रक्तदान किया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ महाप्रसादम योजना से महिला समूहों को मिल रहा है रोजगार। गुरुग्राम में मैंगो फेस्ट का आयोजन किया गया, 70 से ज्यादा किस्मों के आमों की प्रदर्शनी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फीफा वर्ल्ड कप का छाया खुमार, पसंदीदा खिलाड़ियों के पोस्टर्स लेकर पहुंचे। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में फैंस ने आतिशबाजी की, 45 और 60 फीट ऊंचाई पर लगाया गया कटआउट। चंडीगढ़ में भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम से मुख्यमंत्री सैनी ने मुलाकात की। जयपुर की कला ने फ्रांस में बटोरी तारीफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैक्रों ने कलाकृतियों की तारीफ की। रामपुर जनपद में पालतू बिल्ली के लिए दिखा मालिक का अनोखा प्रेम, लापता होने पर शहर में लगाए पोस्टर्स। करीना कपूर में आमिर खान प्रोडक्शन के 25 साल पूरे होने के मौके पर जश्न में की शिरकत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोपिक सुभाष का ऐलान, आर्यन शाम निभाएंगे मुख्य भूमिका। की पीरियड वॉर फिल्म फौजी को लेकर बड़ा अपडेट, फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज हो सकती है। कॉकटेल 2 को सेंसर बोर्ड से मिला ए सर्टिफिकेट, फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सैनन नजर आए। डबल एक्शन फिल्म ब्लास्ट का बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन, 40 करोड़ का आंकड़ा पार। चीन के शंघाई में कुत्तों के लिए चलाया जा रहा है खास किंडरगार्टन खेल, ट्रेनिंग, संगीत और डिगर जैसी मिल रही सुविधाएं। चीन में पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा मानते हैं लोग, उनके खान पान, देखभाल और ट्रेनिंग का बढ़ रहा है खर्च। शंघाई डॉग स्कूल में कुत्तों के लिए हर दिन संगीत सत्र का भी आयोजन किया जाता है। डॉग स्कूल में फिलहाल 200 कुत्तों की देखभाल चल रही है, बड़ी मांग को देखते हुए दूसरा केंद्र खोलने की तैयारी। लगातार बढ़ रहा है पालतू जानवरों का क्रेज, अगले कुछ सालों में 400 अरब युआन तक व्यापार पहुंचने का अनुमान। तुर्की के इज़मिर में बैले शो में बिल्ली की एंट्री हुई, दर्शक के बीच लूटी मैं। रोमियो और जूलियट के शो के दौरान मंच पर आई बिल्ली, इमोशनल हो गए। दक्षिण एशिया एक्सपो में देखा ड्रोन टेक्नोलॉजी का शानदार दमखम, कृषि से लेकर लॉजिस्टिक्स का प्रदर्शन। एक्सपो में खास ड्रोन की प्रदर्शनी हुई, महज 52 सेकंड में अपनी बैटरी और सेंसर बदलने में सक्षम। नया स्मार्ट ड्रोन जरूरत के मुताबिक बदल सकता है सेंसर। प्रदर्शनी में जंगलों में आग की रोकथाम और आपातकालीन बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले ड्रोन भी शामिल। चीन के जिलिन प्रांत में चांगजुन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपो में अनोखा लाइट बैंड शो। एक्सपो में रोशनी से बजा संगीत, बिना पारंपरिक वाद्य यंत्रों की शानदार परफॉर्मेंस। रोबोट कंडक्टर बना शो का हिस्सा, हाथों से रोशनी रुकते ही बन रही है दोनों। ह्यूस्टन में फीफा वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक शुरुआत, पहली बार मिला मेजबानी का मौका। लंदन में ब्रिटेन जापान की अहम बैठक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने किया प्रधानमंत्री साने से स्वागत। चीन में पहली बार रात दो हैवी लिफ्ट ड्रोन ने संभाली बड़ी जिम्मेदारी, दुर्गम कार्यस्थलों तक पहुंचाया गया मटेरियल। चेंगदे शहर में ड्रोन तकनीक से बढ़ी निर्माण कार्य की रफ्तार, 650 किलोग्राम बताई जा रही ड्रोन की क्षमता। चीन ने पर्यावरण संरक्षण के साथ दिया विकास का मॉडल, ड्रोन के इस्तेमाल से भारी वाहनों की जरूरत कम। फीफा वर्ल्ड कप में तुर्की पर ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत, फैंस ने जश्न मनाया। ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया, अब अमेरिका से होगी ऑस्ट्रेलिया की टक्कर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
13: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है नच तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

दिल्ली में मौसम बदल गया है, झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। दिल्ली एनसीआर में हो रही इस बारिश से तापमान में भी गिरावट महसूस की जा सकती है। हफ्ते की शुरुआत बारिश की फुहारों के साथ हुई है। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम जो सड़कें हैं वो भीगी हुई आपको नजर आएंगी और तापमान में भी ठीक ठाक गिरावट दर्ज की गई। तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह आपको नजर आती है, आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, व्लॉग बनाइए, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
1: I have no idea how this election is going to play out,
0: or want to catch up on your team's live play-by-plays, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिलाकर रख सकता है। डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं बल्कि एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक भी ले जा सकती है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। चिंता की बात देखिए इसमें यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं पनपता बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या फिर कहीं भी जहां पर साफ पानी है। यानी डेंगू से जंग की शुरुआत हमारे घर से ही होती है। लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और गुड न्यूज टुडे ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान यानी साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएं, जैसे घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचाकर रखें और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित रूप से इस्तेमाल करते रहें। देखिए, जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर बार होगा। ऑल आउट और गुड न्यूज टुडे के साथ कहिए, साथ लेंगे डेंगू से।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: नोएडा एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट में सफर कर लखनऊ पहुंचे किसानों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट के लिए भूमि देने वाले किसानों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद। सोमवती अमावस्या पर देश भर की पवित्र नदियों में लगाई जा रही आस्था की पवित्र डुबकी। महाकाल के दर्शन को भी उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। आज अधिक मास का भी समापन। कैची धाम के स्थापना दिवस पर उमड़ी बाबा नीम करोरी के भक्तों की भारी भीड़। मनमोहक अंदाज में सजाया गया बाबा का धाम, लाखों भक्तों के लिए बन रहा है महाप्रसादम। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने किए बद्रीनाथ के दर्शन, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया, 5 करोड़ दान भी किए। देहरादून में सहस्त्रधारा के बाद गुचुपानी बन रहा है पर्यटकों की पहली पसंद। वीकेंड पर उमड़ रही है भारी भीड़। दिल्ली NCR में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में झमाझम बारिश। झारखंड, ओडिशा के कुछ हिस्सों में मॉनसून की एंट्री। अगले 3 दिन में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना।
10: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: आईब्रोज, कभी सोचा है आपने अगर ना होती ये हमारे चेहरे पर तो हम कैसे लगते? आज का हमारा ये एपिसोड ये है आईब्रोज स्पेशल, जहां हम शेयर करेंगे आपके साथ कुछ ब्यूटी टिप्स। तो अब से आप भी अपनी आईब्रोज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, जिस तरह हम इग्नोर नहीं करते हैं आपकी एंटरटेनमेंट की नीड्स को। गुड आफ्टरनून, मैं हूं पारुल चौधरी, लेकर हाजिर है हम फिर एक बार आपके लिए सास बहू और पीटा का ये फ्रेश एपिसोड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला हेडलाइंस के साथ।
1: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, आरंभी के घर होगा जश्न, झूम कर नाचेंगे आरंभी और ध्रुव। मन्नत के सामने आएगा सच, फंस जाएगा विक्रांत, अपना बिजनेस शुरू करेगी वसुधा।
2: अगर आप भी अपनी दादी नानी के हाथ के बने अचार का स्वाद भूल गए हैं और अपने घर फिर से ले जाना चाहते हैं, हमारे हाथ के बना अचार चखिए और अपने घर ले जाइए।
1: राह का रोड़ा बनेगा समर, किडनैप होगी रीत, बुआ जी पर लगेंगे इल्जाम।

गुरु और तेजू की हल्दी की रस्म के शगुन में होगा अपशगुन। नयनिका पर लगेंगे इल्जाम, पूजा के शगुन में होगा अपशगुन।

0: वैसे रीत, आपकी आईब्रोज ना आपके चेहरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको रीत के पास और पता कर आते हैं किस तरह रखती हैं ये अपने आईब्रोज का ख्याल। क्या ये भी कुछ इंपॉर्टेंट यूज करती हैं, जैसे कि कोई ऑयल लगाकर सोती हैं एक्सेट्रा? वैसे इन्हें कहाँ ही फुर्सत है ये सब करने की। लेकर चलते हैं हम सबको जाने अनजाने हम मिले के सेट पर।
1: किडनैप हुई रीत, बुआ जी पर लगा इल्जाम, घर आई पुलिस, जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर घर पर पुलिस आ गई है और ये पुलिस किसी और ने नहीं बल्कि राघव ने बुलाई है। असल में रीत गायब है और वो हो गई है किडनैप। ऐसे में राघव का पूरा पूरा शक और किसी पर नहीं बल्कि शालिनी यानी कि बुआ जी पर है। ऐसे में देखिए कैसे बुआ जी खुद को बचाने की और सही साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राघव उनकी एक सुनने को तैयार नहीं।
2: विक्रांत के अलावा रीत का कोई सबसे बड़ा दुश्मन।
3: रीत ने तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि उसके गायब होते ही तुम सबसे पहले मुझ पर उंगली उठा रहे हो। अरे मैं भी तो कह सकती हूँ कि इस किडनैपिंग की प्लानिंग तुम दोनों ने मिलकर की है। बता दो इस किडनैपिंग की प्लानिंग तुम दोनों ने मिलकर की है क्या? तुमने रीत को कहीं छुपा कर रखा हो और अब जब बात हाथ से निकल गई है तो रीत के कहने पर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो।
1: ऐसे में देखिए बुआ जी पुलिस ऑफिसर्स को भी समझाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने रीत को गायब नहीं किया है, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं। पुलिस तो बुआ जी को गिरफ्तार कर ले जा रही है और बुआ जी बस चीखती चिल्लाती रह गई।
4: लोग अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि रीत कहाँ थी और वो किसके साथ हो सकती है, उसे किसने किडनैप किया है। लेकिन राघव से जब पूछा जाता है कि उसे किस पे शक है, तो राघव सीधा सीधा बोलता है कि उसे बुआ जी के ऊपर शक है, मतलब शालिनी जी पे शक है, क्योंकि विक्रांत के बाद दूसरी दुश्मन वही थी और रीत को तो पूरा यकीन था कि वो शालिनी जी नहीं बल्कि मम्मी जी हैं, बुआ जी ही हैं। तो अभी शक तो उन पर गया है, लेकिन अभी पुलिस को पूरे सबूत नहीं मिले हैं। तो अभी पूरी तरह से बुआ जी जेल तो नहीं गई हैं, लेकिन उन्हें इतने सबूत मिल गए हैं कि वो एक्चुअली शालिनी जी पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो अभी वही इन्वेस्टिगेशन चालू है।
1: वहीं दूसरी तरफ ध्रुव पहुंचा है हॉस्पिटल में विक्रांत से मिलने के लिए, लेकिन यहां पर भी विक्रांत ने ध्रुव के लिए जाल बिछा रखा था। उसने बुला ली पुलिस और करवा दिया ध्रुव को गिरफ्तार और इल्जाम लगा दिया कि विक्रांत की यह हालत ध्रुव की वजह से ही है।
5: इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इसे, यही है वो जिसने मुझे कर दिया था, मेरी जान लेने की कोशिश की, गिरफ्तार कर लीजिए इसे।
6: इंस्पेक्टर ऐसी बात नहीं है, मैंने सब जानबूझ के नहीं किया, मैं इससे बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए प्लीज।
7: झूठ मत बोलो, चलो
6: इंस्पेक्टर। विक्रांत, विक्रांत मेरी बात सुनो, विक्रांत, विक्रांत।
5: अरे कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, कोई भी नहीं, और अब मुझे मेरी उन्नति और मेरे बच्चे को हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा।
6: नहीं,
5: कोई नहीं रोक
6: नहीं,
5: पाएगा
6: नहीं,
5: कोई नहीं,
6: नहीं।
1: यानी कि एक तरफ रीत मुश्किल में है तो वहीं उसका भाई ध्रुव भी मुश्किल में पड़ गया है। अब देखना होगा कहानी में कौन कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं।
7: रीत हमारे कब्जे में है, कोई भी चालाकी की तो उसकी जान चली जाएगी।
8: कौन बात कर रहे हैं, चाहते क्या हो?
7: पैसे, पूरे 5 करोड़।
8: तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन रीत को कुछ नहीं होना चाहिए।
7: कुछ होगा भी नहीं, अगर होशियारी की पुलिस को फोन किया तो जानते हो ना क्या मिलेगा? रीत की लाश।
8: हेलो हेलो
0: रूहानी, आज तो आईब्रोज के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, शेयर कर रहे हैं आप सबके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ब्यूटी टिप्स। तो कोई एक ब्यूटी टिप आप भी हमारे साथ शेयर कर दीजिए। वेल, रूहानी तो कह रही हैं कि वो रखती हैं हमेशा अपनी आईब्रोज को वेल ग्रूम्ड, और मेकअप जब ना भी लगाएं तो भी अपनी आईब्रोज वेल डन अप रखती हैं, और हमेशा उसके साथ लिपस्टिक भी लगाती हैं ताकि उनका चेहरा हमेशा दिखे रेडी। वैसे बात तो सही है, नॉर्मली भी अगर खाली हम अपने आईब्रोज कर लें और लिपस्टिक लगा लें तो एकदम से चेहरा हो जाता है वेल ग्रूम्ड। लेकर चलते हैं आपको इस ट्यून होने के सेट पर।
1: गुरु और तेजू की हल्दी की रस्म। हल्दी के शगुन में हुआ अपशगुन। तेजू और गुरु को हुई एलर्जी। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में हो रही है हल्दी की रस्म, और इस हल्दी की रस्म में सभी घरवाले शामिल हैं, और शामिल है गुरु और तेजू भी। हालांकि गुरु इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में उसे सारी रस्में करनी पड़ रही है। लेकिन इस हल्दी की रस्म में ट्विस्ट तब आ जाता है जब हल्दी का कलर पीला नहीं लाल हो जाता है, क्योंकि इस हल्दी में मिलावट है। ऐसे में देखिए कैसे गुरु को ये हल्दी लगाते ही हो रही है जलन, और ये रंग पीले से बदल कर लाल हो चुका है। तो वहीं जलन तो हो रही है तेजू को भी, क्योंकि उसने भी यही हल्दी लगाई है। ऐसे में इस शगुन में महाअपशगुन आ चुका है।

0: वैसे आपको बता दे कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि रूहानी का ही है, जिसने ये खुजली वाले पाउडर वाली हल्दी तेजू के लिए भेजी थी, लेकिन तेजू ने ये हल्दी गुरु को भी लगा दी और ये बात वो फोन पर रूहानी को भी बता रही है।
1: लो, मुझ पे भी चढ़ गया गुरु के लगन का रंग, लग गई हमें एक जैसी हल्दी। बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें, हाँ लो देख लो तुम भी, तेजस्वी सिंह से होशियारी का नतीजा। जब रिश्ता बराबरी का है तो रिश्ते में आने वाली सारी खुशी और सारी तकलीफें भी बराबरी की होनी चाहिए ना दादी। वैसे भी मैं इतना जली हूं, थोड़ी बहुत जले तो गुरु भी सह सकता है ना मेरे लिए। लो हो गई हल्दी, उस नर्स के ना चाहने के बाद भी।
2: तो हुआ ये है कि इस बार मामी यानी कि ललिता टीम अप हुई है तेजू के साथ, और क्योंकि तेजू ऑब्वियसली नहीं चाहेगी कि रूहानी और गुरु एक हों, तो उसको ये शक है कि शायद किसी भी तरीके से रूहानी इस हल्दी को ख़राब करने की कोशिश करेगी। तो उस हल्दी में खुजली का पाउडर मिलाती है

0: मैंने लगाई और बाकी मैंने थोड़ा सा कॉटन में ऐसे चुरा लिया है कि ऊपर जाके तेजू को दे दूंगी तो तेजू को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी।
1: तो भाई हल्दी में ये महा ट्विस्ट तो आ गया है, अब देखना होगा कि क्या रूहानी की शादी रोकने की कोशिशें कामयाब हो पाती हैं या नहीं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अब राजिता देखिए, ये आईब्रो ब्रश है, इससे पहले हम अपने आईब्रोज को अच्छे से ब्रश करते हैं और फिर दूसरी तरफ से आई शेडो यू लगाकर और उसे अच्छे से अपनी आईब्रो में फिल करते हैं। वैसे हम तो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी फिल हो जाए ढेर सारी खुशियों से और आपके सुंदर से चेहरे पर रहे सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कुराहट। तो क्या कुछ हो रहा है अपराजिता और रक्षित की इस कहानी में आज? वेल, आया है यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, लेट्स चेक इट आउट।
1: अपराजिता और रक्षित की चैटिंग। अपराजिता से हुआ गोलमाल, हुई रक्षित की सिट्टी पिट्टी गुल, स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आज देखिए। अपराजिता परेशान है, असल में उसे घर जल्दी जाना था लेकिन वो अब भी ऑफिस में काम कर रही है। तभी आता है रक्षित का मैसेज और इन दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है, जहां अपराजिता अपनी मुश्किलें रक्षित को बता रही होती है। भाई ये सब चल ही रहा होता है कि अचानक रक्षित उसके सामने आ जाते हैं। तब अपराजिता को पता चलता है कि उसने ये सारे मैसेजेस ईरा को गलती से कर दिए हैं। बस फिर क्या था, दोनों काफी घबरा गए हैं।
3: आरू की सास आ रही है कवर कलेवा की रस्म के लिए।
4: अरे वो तो शाम तक खत्म हो जाएगी, मेरी पार्टी तो लेट है, 12 बजे केक काटेंगे। तुम अपनी रस्म खत्म करके ऑफिस आ जाना, साथ जाएंगे।
3: मुझे कोई आइडिया नहीं है ये सब कैसे होगा, आधे दिन की छुट्टी ली थी कि घर जाकर माँ की हेल्प करूं और अब तक यही हूँ।
4: क्यों घर जाओ?
3: आपकी गर्लफ्रेंड ने मुझे रोक के रखा है।
4: कौन गर्लफ्रेंड?
3: आपकी ईरा मैम।
4: अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, एक्चुअली मेरी फ्रेंड है।
3: कितने अच्छे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस भी नहीं करते।
5: जयपुर कंसाइनमेंट का कलर पैलेट भेजो अभी के अभी।
3: जयपुर कंसाइनमेंट।
4: ईरा ने तुम्हें क्यों रोका, अब क्या प्रॉब्लम है?
3: प्रॉब्लम ये है कि ईरा मैम को शायद लगता है कि मेरे दिन में 24 नहीं 48 घंटे हैं। इतने काम दे दिए हैं, मुझे खुद नहीं याद कि मैंने पहले कौन सा काम किया था और अब क्या कर रही हूँ। सारे काम अर्जेंट ही होते, उनकी डिक्शनरी में ब्रेक का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो जेलर हैं और मैं कैदी।
4: अपराजिता, क्या काम के टाइम पे शेडिंग कैचिंग चल रही है?
3: आप यहाँ हैं तो मैंने मैसेज किसको भेजा?
4: व्हाट मैसेज?
3: मैंने वो मैसेज ईरा मैम को भेज दिया, मर गए।
4: मर मर मर मर गए मर गए मर गए मर गए मरने गए दोनों मर गए मर को क्या कर दिया तुमने?
1: भाई रक्षित तो घबरा गया है लेकिन उसने अपराजिता को आश्वासन दिया है कि वो ईरा को समझा लेगा। और इसी बात पर देखिए कैसे दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, साथ ही जुड़ रहा है इनका किस्मत कनेक्शन भी।

0: असल में ये हुआ क्यों, आइए हम आपको बताते हैं। असल में अपराजिता को घर जल्दी जाना था, लेकिन ईरा ने उसे ढेर सारा काम जो थमा दिया है। ऐसे में ईरा ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अपराजिता हो गई परेशान।
1: ये हाउस ऑफ भारद्वाज के सिग्नेचर डिजाइन है, रक्षित के पापा के बनाए हैं। मुझे इस हर डिजाइन का कंटेम्पररी वर्जन चाहिए। ओके
2: ओके।
1: और हाँ, ये आज खत्म करके जाना।
2: ना सारा काम आज कैसे होगा?
1: दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम।

0: अगर यहाँ काम करना है तो डेडलाइंस मीट करनी होगी. गेट इट? नाउ गेट टू वर्क.
1: मैम ये तो यहाँ ज्यादा देर टिकेगी नहीं.
0: दैट्स द प्लान.
2: वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आएगा जहां अपराजिता लेगी बड़ा फैसला.
0: जल्दी से तैयार हो, कुंवर कलेवा की रस्म शुरू होने वाली है. ललित जी भी आ रहे हैं.
3: अपने ललित को भी बुलाए.
4: और क्या बीवी जी, बड़े जवाई को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती. कुंवर कलेवा की रस्म तो उसका हक होता है. दिल तो तुम मेरा ले ही चुकी हो, अब ये तोहफा भी छोड़
0: दो. खुशी तो आप मेरी ले ही चुके, अब ये तोहफा भी छोड़
4: दो. डिवोर्स की पहली कोर्ट हियरिंग.
2: तो भाई अब देखना होगा कि अब अपराजिता के इस फैसले के बाद कहानी में कौन से नए ट्विस्ट आते हैं. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
0: घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे. देखिए मेरे पास है ये छोटा सा आईब्रो पैलेट जिसमें है परफेक्ट शेड्स ऑफ ब्राउन. इसी तरह आपके लिए एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मिक्स लेकर हाजिर है हमारी सास बहू अल्पेटिया की एयरलाइन. तो आप भी हो जाइए इस पर सवार, लेकर चलेंगे हम आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर. गेट सेट Go.
2: सी टीवी के सीरियल सरू में भाई सरू फिर एक बार लौट आई है बिरला हाउस, वो भी दादी के साथ. भाई असल में दादी काफी ज्यादा बीमार है और उनका ध्यान कोई भी नहीं रख रहा है. और जैसे ही ये बात सरू को पता चलती है, देखिए कैसे वो अपनी दादी का ध्यान रखने के लिए पहुंच जाती है.
5: उर्मिला, ये नौना का प्लान था. क्योंकि अन्नपूर्णा जी को सरों के हाथ से तुलसी जी का पौधा लगवाना था, इसीलिए अन्नपूर्णा जी ने बीमारी का नाटक करके इस लड़की को अपने साथ लिया.
6: नाटक ना था ताराजी, वो नाटक ना है. दादी सर सच में बीमार है और किस्मत से मंदिर के बाहर मारे को वो मिली, इसलिए मैं डॉक्टर के पास लेकर गई. डॉक्टर साहब तो ये कह रहे थे कि इन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा. वो घर आना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर ने हरे भरोसे छोड़ दिया. आपको पता भी है, तीन दिन से दादी साहब ने ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना दवा खाई है. और आप लोगों को कोई खबर भी है?
5: बस ना, अन्नपूर्णा जी को यहां घर तक लाने के लिए शुक्रिया.
6: बस आज मैं आपके
2: इतना ही नहीं, जब वेद ने उसे घर से जाने के लिए कह दिया, देखिए कैसे उसने वेद को खरी खोटी सुनाई और उसे कमरे से ही बाहर निकाल दिया.
6: कितना ध्यान रखा है दिख रहा है हमारे को. दादी साहब मंदिर में थी, बेहोश होकर गिरने वाली थी नीचे, तब जाके मैंने उन्हें बचाया है. ऐसे ध्यान रखा आपने दादी साहब? अरे घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी किसी को भी पता ना चला कि दादी साहब बीमार है. तीन दिन से उन्होंने ना कुछ खाया है, ना पिया है, ना दवा ली है, ना किसी ने पूछा, ना किसी ने किसी को कोई खबर थी. और आप हमारे को जाने के लिए कह रहे हैं. आपको अच्छा लगे या बुरा, मैं आपसे ना मिलने वाली. जब तक दादी साहब ठीक ना होते, ना मिलने वाले.

0: टीवी के सीरियल मन सुंदर में मैयाज दादी नाहर पहुंच गए हैं रूहान के स्कूल, क्योंकि उसे लग गई है चोट और इन सब का इल्जाम लगा है रक्षिता पर। ऐसे में देखिए कैसे दादी रक्षिता की क्लास लगा रही है।
1: हेलो, मैं ये कैसा मैनेजमेंट है आपका? आप सबकी मौजूदगी में मेरे बच्चे को चोट कैसे लग सकती है? क्या हुआ, क्या था?
2: देखिए मिस्टर नाहर, हम भी यही इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं बच्चों में से किसी ने कुछ किया है।
3: किसने किसने किया ये? बताओ बताओ, किसकी शरारत है, किसने चोट पहुंचाई है मेरे रिवाज को?
0: ऐसे में दादी का ये सख्त बिहेवियर देखकर नाहर को रक्षिता पर तरस आ जाता है और देखिए कैसे वो उसे बचाने के लिए पहुंचता है।
4: ये झूठ बोल रही है, इसको मैंने धक्का नहीं दिया था।
0: ऐसे में स्कूल के बच्चे भी रक्षिता पर इल्जाम लगाते हैं, जो सुनकर दादी रक्षिता पर और भड़क जाती है।
2: इसकी शक्ल ही बता रही है कि इसे कैसे समझाऊं। ये लड़की ना मुझे एक नंबर की झूठी लग रही है। वैसे भी ये लोग उसे चोट क्यों पहुंचाएंगे, धक्का क्यों मारेंगे, ये तो इसके दोस्त है ना। तुम्हें इसके आंसू दिखाई दे रहे, इसके आंसू पोंछ रहे हो, अपने बच्चे को चोट लगी है, उसके सर से खून निकल रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा।
5: देखो, सब लोग बोल रहे हैं कि रुचिता ने उसे धक्का दिया है और उसे चोट लगी है, तो यही होगा क्योंकि शक्ल से ही बदमाश लग रही है, वो झूठी भी लग रही है। वो कह रही है कि उसने नहीं किया, पर मुझे तो यही लग रहा है कि उसी ने किया है। रूहान तो मेरा कितना प्यारा इनोसेंट बच्चा है, वो क्या किसी का नाम लेगा? वो बेचारा गिर गया, चोट लग गई उसको, अब वो क्या बोलेगा? तो इसीलिए मुझे तो सच जानना है ना। अब प्रिंसिपल जी ने बोल दिया कि बाहर जाओ, बाहर पता कर लेंगे क्या हो रहा है।
0: ऐसे में रक्षिता की गार्डियन को भी बुलाया जाता है, जो अपनी बेटी का ही साथ देती है, लेकिन नाहर और दादी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनके बीच देखने को मिलती है बहसबाजी।
2: प्रॉब्लम? अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये खुद प्रॉब्लम है।
6: सुनिए, ऐसे पहेलियां मत पूछिए, मैं अपने सारे गांव छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, तो साफ साफ बताइए बात क्या है।
1: दादी की जिद की वजह से प्रिंसिपल ने आपको बुलाया, दरअसल आपकी बेटी ने मेरे बेटे का सब खोल दिया और ऊपर से झूठी बोल दी।
7: मैं नहीं झूठ बोल रही, मम्मी
1: का सब। ये देखिए, अब तक इसका मासूम चेहरा देखकर मुझे इस पर हमदर्दी हमदर्दी होती, लेकिन इस पर गुस्सा आ रहा है। मुझे झूठी बोल रही है, आपके सामने आपकी झूठी कसम खा रही है। सच सच बताओ ना बेटा, क्या हुआ?
6: देखिए, अगर मेरी बच्ची बोल रही है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, वो झूठ नहीं बोल रही है।
2: तो क्या मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है? इससे झूठ बोला है क्या?
6: ये तो आप अपने बच्चे से पूछिए।
2: अरे तो चोट झूठी होती है क्या?
6: अरे तो मेरे बच्चे पे तो झूठ नहीं होती।
2: साइलेंस, साइलेंस प्लीज।
8: देखिए, हमारे स्कूल में और
2: भी कॉम्पिटिशन चल रहा है और आप ही अपना मसला कहीं और जाके समझेंगे।
0: टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में मैयाज प्रथम का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि वो राध्या की चिंता में परेशान जो है। भाई, हम सब जानते हैं कि राध्या किडनैप हो चुकी है। ऐसे में देखिए कैसे आज वो अपनी माँ से सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों ये दोनों हमेशा ही परेशान हो जाते हैं अपने रिश्ते को लेकर।
9: आप मुझे बताइए, भोले नाथ हर बार हमारे रिश्ते की इतनी परीक्षा क्यों लेते? राध्या तो इनकी सच्ची भक्त है ना। हर तकलीफ, हर मुश्किल राधा के हिस्से में क्यों आती है? बस हर बार उसकी जान खतरे में कैसे पड़ जाती है? काश काश राधा की जगह मैं किडनैप हुआ। राधा को कितना डर लग रहा होगा ना, कितना परेशान होगी वो, कितना अकेला महसूस कर रही होगी।
8: पुत्र को दंड लग रहा हूँ, लेकिन वो अकेली नहीं हो, उसका पति उसका परिवार उसे बचा ले और हमें उस उम्मीद पर खरा उतरना है। रिश्ते की नींव तो अब जाके गहरी होनी शुरू हुई, अभी तो दोस्ती से बढ़कर उसमें परवाह की प्यार की छाया दिखने लगी।
10: सीन अच्छा था, मैं प्रथम का थोड़ा केयर दिखाया है, प्रथम कितना राधा को मिस कर रहा है वो दिखाया है। सीन इम्पोर्टेंट सीन था जिसमें प्रथम ब्रेकडाउन हो जाता है प्रथम का, क्योंकि राधा को एक टेररिस्ट ग्रुप ने किडनैप कर दिया और प्रथम बहुत ज़्यादा दुखी है और परेशान है राधा के लिए। उसे डर लग रहा है कि राधा के साथ पता नहीं क्या होगा और उसे अभी जस्ट वीडियो दिखाई है एक राधा को टॉर्चर करते हुए, तो प्रथम को उस चीज़ का भी डर लग रहा है कि राधा के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा सीन था एंड बस राधा की याद आ रही है।
11: आज तो शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ ब्यूटी टिप्स स्पेशली आईब्रोज को लेकर, और यहाँ हमारे साथ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज को शेयर करने आ रही हैं पति अनाड़ी की राशि यानी मैत्री भानुशाली। हमारी टीम ने की है इनसे एक खास मुलाकात। तो कैसा है इनका घर? वेल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको इस डे आउट के बारे में। ये तो कर रहे हैं आज हमारे साथ बाइक राइड और उसके बाद हमने किया है इनके साथ घर से सेट तक का सफर, जहाँ इन्होंने मुलाकात करवाई है हमारी अपने को स्टार्स से। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको मैत्री के पास।

0: स्कूटी पर निकली राशि की सवारी। सेट पर पहुंचते ही आई मस्ती की बारी। कलाकार से किरदार में बदलने की तैयारी। ये है दंगल टीवी के सीरियल पति अनाड़ी की राशि, यानी कि मैत्री भानुशाली। किरदार तो टशन वाला है, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत ही हसमुख और चुलबुली है। जिंदगी जिंदा दिल्ली से जीती है, मम्मी की लाडली है, बहन की प्यारी है और सेट पर सबकी दुलारी है। इससे पहले ये नजर आ चुकी है कलर्स के सीरियल मेरा बालक थानेदार में। अब सीरियल्स में इनके किरदार चाहे जैसा भी हो, लेकिन कैमरे के पीछे इनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रखना पसंद करती है। तो आइए करते हैं मैत्री भानुशाली से मुलाकात और जानते हैं इनकी डियर जिंदगी के बारे में।
1: ये दिल है मेरा या है एक यादों की अलमारी, इस अलमारी में रखी है मैंने।
2: मैत्री, कैसा रहता है दिन, कैसी होती है शुरुआत और क्या क्या होने वाला है आज खास?
3: Why not? आज तो बहुत कुछ होने वाला है और आप लोगों को पता चलेगा कि मैं मॉर्निंग से शूट तक जाने तक का मेरा सफर कैसा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू एंड यू ऑल, सो लेट्स गो।
2: पहले तो जरा अपना घर दिखा दीजिए थोड़ा, और वहाँ पे एक मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमें दिख रहा है, तो उसके बारे में जरा
3: आप देख सकते हैं इतनी सारी ट्रॉफीज। सो आपको लग रहा होगा कि ये ट्रॉफीज मेरी हैं, राइट? मेरी नहीं है एक्चुअली, ये सारी ट्रॉफीज मेरी मॉम की हैं। यस यू कैन सी, ये सारी की सारी ट्रॉफीज मेरी मम्मा की हैं। शी इज अ प्लेयर, शी इज अ क्रिकेट प्लेयर एंड वो समथिंग फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स ये ट्रॉफीज जीतती आ रही है एंड आई एम डूइंग नथिंग। मम्मा फिलहाल तो शी इज वर्किंग फॉर मी, क्योंकि मैं तो कुछ करती नहीं हूँ किचन में। Hi mama.
4: Hi.
3: She is my player. कि जानू है मुझे बारे में, about your cricket.
4: Cricket is my life and kids are my heartbeats.
3: Like I look like her. It's only like I'm a carbon copy of my mom, just by looks and all. But I don't think I'm like her कि मैं खेल सकती हूँ, मैं इनके इतनी confident हूँ। She is a tom boy, I'm not a tom boy. तो मुझे मेरे friends कहते हैं यार मम्मी का 1% तो मिला है ना तुझे। मैंने कहा हाँ, I'm just flex, okay.
4: But now she is also riding a bike, a Royal Enfield with me.
3: Finally.
4: तो मुझे अच्छा लगता है हम दोनों जब bike से बाहर निकलते हैं। It's like crazy, our dreams come true.
3: Yeah, and now we are planning to make some videos. Like she is a rider also, and मैं वो लद्दाख जा कर आई हूँ, वो ट्रैक कर आई हूँ एंड आई एम लाइक मुझे सीखनी थी तो मैंने सीख ली जैसे तैसे। तो मैंने मम्मा को कहा मम्मी अब मैं भी फ्लेक्स करूँगी आपके साथ बाइक चला के। मेरी मम्मी अन्नपूर्णा भी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं भी बनाती हूँ, पर मॉर्निंग में मुझसे कुछ होता है नहीं,
4: टाइम नहीं मिलता शेड्यूल के हिसाब से, बट जितना भी हो सकता है शी गिव्स हर बेस्ट इन द किचन।
3: व्हेनेवर आई एम फ्री आई जस्ट कुक, आई लव टू कुक, बट इट्स जस्ट कि मॉर्निंग में आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, और मैं बस उठती हूँ, आई डू समथिंग, आई लाइक मैं अपनी गर्म टी पीती हूँ और जैसे हो चुका सब कुछ क्लियर करके फिर मैं चली जाती हूँ ऐसे ही रैंडमली। सो आई डोंट डू एनी सिंगल थिंग मोर देन दैट। सो मम्मी अभी पोहे बना रही हैं और मैं कुछ कुछ बस नाम के लिए हेल्प करने के लिए आई विल जस्ट मेक अ कैमोमाइल टी।
0: भाई मम्मी के साथ साथ तो बिटिया रानी भी मल्टी टैलेंटेड है। बिजी शेड्यूल के चलते वो भले ही रसोई में अपनी मम्मी का हाथ नहीं बटा पाती, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिलता है तो ये बखूबी मम्मा के साथ किचन में काम करती है। और आज अपने लिए इन्होंने कैमोमाइल टी बनाई है, क्योंकि वो इनको स्ट्रेस फ्री रखता है और सुबह सुबह इनके मन को सूद करता है।
3: मम्मी मेरी पोहा बना रही है और अब मैं वहाँ जाके फिर मैं पोहा खाऊंगी इमीडिएटली सेट पर जाकर। सो आप जैसे देख सकते हो वो चॉप कर रही है ऑनियन, उसके आगे का प्रोसीजर क्या है मम्मा?
4: बस ऑयल डालना है, तड़का डालना है, अपने पीनट्स डालने हैं जो भी है फेवरेट, ऑनियन एंड कड़ी पत्ता एंड ऑल द थिंग्स, देन पोहे जाएंगे और नॉर्मल मसाले।
3: लेट्स गो।

0: So basically, this is my morning routine. I just love to sit over here. I have a very lovely gallery. And मैं यहाँ बैठ के मॉर्निंग में कभी कभी बस चिल करती हूँ. आई जस्ट हैव माई कॉफ़ी इन इवनिंग ऑल्सो. मॉर्निंग में वेन एवर आई गेट टाइम, आई एम अब एक्चुअली कॉफ़ी लव, बट आई डोंट गेट टाइम टू हैव कॉफ़ी एंड आई एम नॉट अलाउड ऑल्सो. तो मैं बस ये बना के पीती हूँ, व्यू देखती हूँ, एंजॉय.
1: भाई मैथी तो चाय की चुस्कियाँ ले रही है और वहाँ पर पहुँच गई है इनकी बहना भी, जो करती है अपनी बहन से बहुत प्यार. और तो और, जब भी इन्हें मौका मिलता है तो ये अपनी बहन से लगाती है ढेर सारे ठुमके भी.
0: She is my sister and what do you think? ये बड़ी दिखती है, मैं बड़ी दिखती हूँ? ये
2: है तो यही दिखेगी ना.
0: पर हाइटेड तो तू है.
2: तो हाइटेड तो उसमें मैं क्या करूँ?
0: ऐसे तो मुझे जनरली पता चल रहा है कि बताते हैं सब लोग कि ये ज्यादा बड़ी दिखती है और मैं छोटी दिखती हूँ. सो या
2: जब भी वो दिखती है तो इतनी ब्यूटीफुल दिखती है कि मतलब वो ऐसा नहीं कि यही पर बाकी जो भी कैरेक्टर्स है वहाँ पे सारे ऐसा लगते हैं कि वो रियल में कर रहे हैं, मतलब वो अपनी 100% दे रहे हैं. सो बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा पसंद आया.
0: पहली बार तारीफ हुई है गाइस. कभी नहीं करती. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वो मेरी तारीफ कर रही है, वरना तो शी इज लाइक हाँ आज तूने ये गड़बड़ की, हाँ ये मजा नहीं था तेरे इसमें, ये क्या मेकअप करके रखा है तूने. It's her.

जैसे कि आपने देखा कि यही हमारा वर्कआउट है, डांस इज माय वर्कआउट. और हमारी दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है, मॉर्निंग में उठे, हमने जैसे ब्रेकफास्ट किया और जैसे हम मूड बन गया, हमने गाने लगा लिए, हम सब डांस करते हैं, हम सब वाइब करते हैं और हमारी वर्कआउट भी यही है. वी ऑल जस्ट गेट हैप्पी, इन्जॉय वी आर टाइम, ओन टाइम, फैमिली टाइम. एंड यू कैन सी शी कैन डू एनी थिंग. लाइक आप उनको बोलो और खाना भी ऑन टाइम बना के, मैं कहूँ मुझे डांस करना है, शील डांस विथ मी, शी कोलैब्स विथ मी, ये भी मेरे साथ चलता है. मॉर्निंग में हमारा ये चलता ही रहता है, दिस इज़ आर रूटीन. एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रूटीन. यू शुड ऑल वेक अप बाय अ हैप्पी स्माइल विथ योर फैमिली, दैट्स इट. सो हमने अभी बहुत ज़्यादा फन किया है, पर मेन मैं डांस कहाँ करती हूँ, किस जगह करती हूँ, मेरे घर पर एक स्टूडियो भी है, तो चलिए मैं आपको मेरा स्टूडियो दिखाती हूँ. यहाँ पर मैं आपको एक मेहमान से मिलाती हूँ, मेरे घर में एक और मेंबर है. हेलो. सो हम फाइनली अपने स्टूडियो पर है, और स्टूडियो बताने से पहले मैं अपनी प्यारी सी बहन से मिलाना चाहती हूँ, जो मेरी सबसे छोटी बहन है पर सबसे प्यारी बहन है, फिदा. हाय अले. हाय, शी इज माय सिस्टर फीबी. ओके आओ आओ आओ. ओके. फीबी हाय. गुड मॉर्निंग. आप देख सकते हो इसे.

0: बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है ये. सो शी इज़ माई सिस्टर. आई नेवर फील लाइक शी इज़ अ डॉग. लाइक इट्स लाइक हमारी तीसरी बहन है. मेरी मम्मी पापा इसे बेटी की तरह रखते हैं, हमसे भी ज़्यादा प्यार उससे करते हैं. एंड इवन हम भी, मैं और मेरी छोटी बहन, मेरी बहन है महक, हम दोनों भी इससे ही प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा. सो वी नेवर फील लाइक वी हैव अ डॉग. लाइक वी फील लाइक इसके आने के वजह से एवरीथिंग इज़ फाइन इन अ हाउस. अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी स्पेशल चीज से. ये है मेरा स्टूडियो. सो आप देख सकते हो ये मिरर है. एंड मैं डेली विदाउट एनी फेल मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ, मैं डांस सीखती हूँ, मैं यहाँ पे ऑडिशंस देती हूँ. द वर्क आई डू, दिस इज़ माय एक्चुअली प्लेस जिसके वजह से मुझे काम मिलता है. एंड आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली लाइक प्रे कि मुझे इतनी अच्छी जगह मिली है. और ये सब कुछ मेरी मम्मा ने बनवाया, मम्मी पापा ने, दोनों ने मिलके ये पूरा स्टूडियो बनवाया. सो एज यू कैन सी, जैसे ये लाइट्स हैं, ये स्टूडियो लाइट्स मैंने लगवाए हैं. फिर मैंने कुछ कलर करवा दिया, फ्रेम्स लगवा दिया. अभी तक ये पेंडिंग है, स्टिल नॉट कम्प्लीटेड. ये पूरा वॉल मैं कुछ डिफरेंट करने के प्लानिंग पे हूँ, बट जब तक है तब तक आई जस्ट हैव दिस, क्योंकि प्लेन वॉल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो फॉर एन ऑडिशन एंड ऑल. और यहाँ पे आई हैव रिंग लाइट. आई डू अ कॉन्टेंट क्रिएशन ओवर योर ओनली. सो वट एवर द डांस स्टफ इज आई डू ओवर योर, वरना हॉल में, वरना नीचे गार्डन्स आर ऑल्सो देयर. एंड यहाँ पे ऑल टाइम 24/7 वेन एवर आई एम फ्री, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करती हूँ, ऑडिशन डायलॉग्स थ्योरी करती हूँ, वट एवर दिस थिंग्स आर आई जस्ट डू ओवर योर. सो दिस इज माई एक्चुअल प्लेस. चले अभी हम सब मिलके साथ में ब्रेकफास्ट करें. तू समन है, कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है. मैं डाइट नहीं करती गाइस, सो इफ यू थिंक कि मैंने कुछ किया होगा ये बॉडी बनाने के लिए, सो नो, आई डोंट डू एनी सिंगल काइंड ऑफ डाइट. आई एम नॉट अ डाइट पर्सन. आई ईट एवरी सिंगल थिंग जो भी मुझे घर पर मिलता है, आई ईट एवरी सिंगल थिंग. लाइक मुझे एज अ गुजराती मानुस, कच्छी मानुस, बद्दू खावा बद्दू. देखो ये बारिश सर पे
1: चढ़ा है, ये कैसा सर दौड़े. पॉजिटिविटी से अपने दिन की शुरुआत करने वाली मैत्री कभी भी अपना नाश्ता स्किप नहीं करती. यही तो है इनकी सेहत का राज. इसी के साथ जब भी वो घर से बाहर निकलती हैं, तो वो अपने कान्हा के सामने हाथ जोड़ती हैं, प्रार्थना करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं, ताकि हर दिन उनका अच्छा और सहकुशल बीते.
0: राधे राधे. जैसे मेरा सब कुछ हो जाता है, मैं शूट से निकलने से पहले मैं हमेशा कान्हा जी से मिलके जाती हूँ. आई नेवर से कि मैं प्रे करके जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं मिलके जाती हूँ, उनसे बात करके जाती हूँ. ही इज़ द बड़ी ऑफ माइन, ही इज़ माई माधव. मैं बहुत मानती हूँ इन्हें और बहुत सालों से मानती हूँ. एंड ही इज़ माई लाइफ चेंजर एज यू कैन सी दिस, मेरे प्यारे से कान्हा जी. सो ये फ्रेम हमारे पास बहुत सालों से है, बहुत सालों से. लाइक मेरे नाना नाना के, मेरे एंसेस्टर, सबसे ये फ्रेम हमारे साथ चलती आ रही. एंड दिस इज़ द मोस्ट डिवाइन फ्रेम वी फील. मैं इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड. तो बस मैं जैसे जाती हूँ मैं इनसे मिलके जाती हूँ, मैं इनसे बात करके देन आई गो. अब मैं दिया कर लेती हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो करना चाहिए सबको, अपने रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए. सो आई विल डू इट.

0: see her. Oh my god. It's her.
1: भाई मैत्री स्कूटी तो बखूबी चला लेती है, लेकिन इन दिनों वो धीरे धीरे बुलेट में अपना हाथ साफ करने की कोशिश कर रही है। और आज उनकी मम्मी ने उनका हौसला बढ़ाया और डरते सहमते मैत्री बुलेट पर बैठ भी गई और कोशिश भी की चलाने की। लेकिन भाई शूटिंग पर जाना है, कैमरे के सामने आना है, इसीलिए रिस्क लेना ठीक नहीं।

इसे कहते हैं समझदारी वाली बात। पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैथिली ने पहना हेलमेट और अपनी स्कूटी में सवार होकर अपनी बहन को बिठाकर चल दी है ये अपने सेट की ओर।

0: बिना हाई स्पीड किए एक ही लाइन में चलते हुए मैत्री ने सारे रूल्स फॉलो किए और पहुंच गई अपने सेट पर अपने किरदार में ढलने के लिए। लेकिन उससे पहले ही उनकी मुलाकात हो गई मंजू से।
1: करूँ मैं इसका क्या करूँ, सारा दिन तो ये मेरा दिमाग खराब कर दी है, अब मैं इसका क्या करूँ।
2: 24/7 इनका दिमाग खराब करती हूँ मैं। जाती हूँ कुछ ना कुछ मांगती हूँ, अब इनके रूम में कुछ है खाने के लिए, कुछ है कुछ देना।
3: नहीं, ये सब नहीं करती है वो।
4: मैं करती हूँ,
3: मैं तो कैरेक्टर की बात कर रही थी।
4: वो तो मैं तो बहुत करती हूँ, तो मुझे
3: मैं इतनी की बात नहीं कर रही थी, मैं राशि की बात कर रही थी। बाय द वे
4: नहीं, मैत्री भी कर ही देती है इनको परेशान।
3: नहीं, बच्चे सारे स्वीट है, कोई परेशान नहीं करता। चलो मैं वैसे चलो भी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, मुझे ऊपर जाने दो।
4: चलो भी हम भी चलते हैं इनके पीछे पीछे। सो अभी हम जा रहे हैं रूम में, और अब मैं मैत्री तो राशि में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हूँ। सो आप मुझे देखेंगे मैं कैसे मेकअप करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, आज आपको सब पता चल ही जाएगा। लेट्स गो। सो कौन है हमारे साथ? सो ये है मेरा रूम, आइए आइए। मॉर्निंग का हमारा चलता है चटपटे गाने। नहीं,
5: जरूरी है भाई जिंदगी में,
4: एक्चुअली
5: नींद खुलनी चाहिए हमारी। नींद से जागना है हमें।
0: मैत्री को डांस करना बहुत पसंद है, इन्हें जब भी मौका मिलता वो ठुमके लगा ही लेती हैं। घर पर मम्मी और बहन संग, और सेट पर अपनी मेकअप पार्टनर संग।

0: काट के
1: हमारी हर दिन की हर शुरुआत ऐसी होती है। अगर पहले ये आई होगी रूम में तो ये गाने अपने बजाएगी, मैं आती हूँ तो मेरे गाने अपने अलग।
0: इट्स अ रूटीन,
1: इट्स अ रूटीन। सब हमारे रूम में नाचते गाते ही आते हैं,
0: एवरीवन, लाइक कोई भी आया नाचते गाते आएगा, नाचते एंजॉय करके जाएगा,
1: एंजॉय करके जाएगा।
0: ये आज मैं पहनने वाली हूँ मेरे आज के एपिसोड के लिए, एंड आई लव दिस, दिस इज क्यूट पर्पल वन, लेट्स गो। अभी मैं कॉस्ट्यूम तो बाद की बात है, पहले मेकअप किया जाए, है ना, लेट्स गो, विल डू।
2: खैर बहुत दोस्ती यारी हो गई और हो गई बहुत मस्ती भी, अब बारी है किरदार में ढलने की। इनके हाथों में आ गई है इनकी स्क्रिप्ट भी, ऐसे में काम के लिए फटाफट तैयार होने के लिए मैत्री अपनी सीट पर बैठ गई है। मैत्री अपना मेकअप खुद करती है। ट्विस्ट की बात बता दें कि मैत्री ने एक साल पहले ही मेकअप करना सीखा है और उनका हाथ इतना साफ हो गया है कि कुछ ही पलों में वो अपने किरदार में बखूबी ढल जाती है।

फिलहाल तो मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ और उसके पहले मैं सनस्क्रीन लगा के रखी हूँ और सनस्क्रीन लगाया फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर एंड देन प्राइमर जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक प्रेप होना इम्पोर्टेंट, अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर स्किन को हार्म होगा, स्किन का मेकअप सेट नहीं होगा. सो दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड ऑलवेज डू इट. मेरा मॉर्निंग का डेली रूटीन है. मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगाती हूँ बिकॉज आई हैव वेरी वेरी ड्राई स्किन तो मुझे ज़्यादा ऑयली एंड लिक्विड ही लगाना पड़ता है मॉइस्चराइजर. सेट पर भी एसी नाम खिले हुए बट होता है. सो आप अगर आउटडोर कर रहे हो इफ यू आर यूजिंग अ लिक्विड बेस तो आप लिक्विड के साथ जो स्टिक बेस होता है जो स्टिक में है और ड्राई स्किन के लिए स्पेशली बने होते हैं, आई वोंट से क्राइलॉन्स के जो बेसिस है सब कुछ होते हैं वो यू कैन यूज़ इट. वो बेटर होते हैं क्योंकि वो जल्दी से मेल्ट नहीं होते हमारे फेस पर, आप उसे यूज़ कर सकते हो. लिक्विड जल्दी से निकल जाता है पर जो स्टिक बेस होता है वो कभी नहीं निकलता जल्दी से. यू कैन यूज़ दैट. और मैं आपको एक बात बताऊँ, फन फैक्ट इज मैंने खुद ने मेकअप एक साल पहले ही सीखा और जब से सीख रही हूँ तब से खुद ही कर रही हूँ एंड आई जस्ट फील एवरीवन शुड डू देयर ओन मेकअप. जिससे सीखना आना, समझ आपको खुद को अपना मेकअप करना आना चाहिए.

So ये है लिक्विड जो मैंने सिर्फ स्टार्ट देने के लिए किया, पर लिक्विड से कुछ नहीं होता क्योंकि लिक्विड विद इन एक दो घंटे में निकल भी जाता है।

मैं अभी कटिंग कर रही हूँ ताकि मेरा फेस थोड़ा सा अच्छा दिखे, ऐसा लगे कि हाँ आई डू समथिंग. कटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपके फीचर्स बहुत शार्प.

बेस लगा कर और कॉन्ट्रिंग करके मैत्री का मेकअप तो पूरा हो गया, अब बारी है आँखों के मेकअप की, जो कि करते हैं मेकअप दादा। असल में राशि का किरदार फिल्म कभी खुशी कभी गम की पू जैसा है, इसीलिए आँखों को थोड़ा स्टाइलिश दिखाना है, क्योंकि राशि स्टाइलिश जो है। किसी की

0: सो राशि इज रेडी विथ हर मेकअप और अब बस बाकी है चेंज. बाल भी रेडी है, मेकअप भी तैयार. लाइक वी डिड इन 40 मिनट्स. 40 मिनट्स में आई एम रेडी. अब सिर्फ चेंज है, उसके बाद यू विल नो कि मेरा पूरा गेटअप कैसा है.
1: लीजिए पूरा मेकअप कर, बालों को सेट कर और किरदार का लिबास पहन कर मैत्री अब बन चुकी है राशि. और राशि बन गई है तो इनका अंदाज भी राशि जैसा ही हो गया है.

0: जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं राशि में तैयार हो चुकी हूँ। अभी तो फिलहाल मैं मैत्री की तरह बात करूँ, पर एक झलक तो राशि की होनी चाहिए। What? हाँ तो आपको राशि से मिलना है, तो आपको लाइन में रुकना पड़ेगा, आपको मेरे लिए वेट करना पड़ेगा, वरना आपको राशि से मिलने नहीं मिलेगा। समझा? बेटर यू अंडरस्टैंड। फाइन। और अभी आपको सबसे मिलना है, तो उससे पहले आपको राशि से मिलना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज प्रायोरिटी। अभी हम सबसे मिलेंगे। आई डोंट नो कौन कौन मिलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल शूट चल रहा है, सबके अपने अपने सीक्वेंसेस चल रहे हैं। सो आई होप हम जिन जिन से मिल पाएंगे उन उनसे हम कनेक्ट करते हैं और जाके पूछते हैं, हाय बाय हो जाएगा, सबसे बात कर लेंगे। लेट्स सी। अरे जी, हमारी लाली राशि और ये है हमारी मम्मा।
1: और हम ना बहुत भोले वाले लोग हैं, हम दोनों मिलके कछु ना करते, नए को किसोरी परेशान ना करते ना।
0: वही तो हमें दिखा
1: समय पता है री। पर हम ऐसी आप एंटरटेन करते रहेंगे और क्या,
0: क्या, क्या? और हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे, मैं मम्मी और भाई, हम तीनों मिलके।
1: अच्छी लग रही ना भाई तिकड़ी, हम ऐसी यहाँ पे मजे दिलाते रहेंगे और किशोरी और लाला को परेशान।
2: भाई राशि की मस्ती तो देखते ही बनती है। ऑन स्क्रीन माँ ही नहीं बल्कि एक एक कर उनके दोनों भाई भी आ गए और पूरा परिवार साथ में शामिल हो गया। ऐसे में इनकी अनलिमिटेड मस्ती शुरू हो गई।
0: हम कह रहे थे ना सब एक साथ ही मिल गए हम, और अभी आप कुछ बताइए राशि के बारे में। राशि के बारे में नहीं, मैत्री के बारे में।
3: यार ऐसा है ना कि मैत्री के साथ इनहेरेंट एक बॉन्डिंग बनी है व्हाइल डूइंग द सीन्स। मतलब बढ़िया हमारी केमिस्ट्री है भाई बहन की, कुछ जरूरत नहीं किसी को कुछ भी बोलने की, किसी डिसाइड करने की, ऑटोमेटिकली सीन्स निकल रहे हैं, सब हो रहे हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग शी इज फैंटास्टिकली अमेजिंग, इन एंड आउट बेस्ट लड़की है। दो शब्द बोल दो अपनी बहन के बारे में अगर बोलना चाहो तो।
4: पहले 50 रुपए दे तारीफ करने के।
3: कट करते हैं हम यहाँ पे, हो गया।
4: बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है, जेन्युइनली बहुत अच्छी है। मजा आता है इसके साथ काम करके और बीच बीच में रील बना के भी।
0: थैंक यू सो मच। अभी मैं सबसे ऑलमोस्ट मिला ही चुकी हूँ, अब हम चलते हैं शूट पर, आप वहाँ जाके मुझे देखिए।
2: तो देखा आपने कैसे मैत्री अपने हर दिन के माहौल को खुशनुमा बनाती है और सभी से इतना प्यार जताती है कि रिटर्न में उनको डबल मोहब्बतें मिलती है। उम्मीद करते हैं कि यूं ही मैत्री के इर्द गिर्द खुशियाँ रहे। मुंबई से रुपये मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: वैसे मुझे हमारी डॉक्टर आरंभी यानी ऐश्वर्या खरे की आईब्रोज भी बहुत अच्छी लगती हैं, हमेशा रहती हैं वो वेल ग्रूम्ड। लेकिन इनकी जिंदगी में फिलहाल तो है ट्विस्ट का तूफान, क्योंकि देखिए यहाँ तो ट्विस्ट थमते ही नहीं है, यहाँ उनकी परेशानियां खत्म ही नहीं होती हैं। एक्चुअली बार बार इनकी कहानी मुझे याद दिलाती है अपने शो भाग्य लक्ष्मी की। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको ऐश्वर्या यानी आपकी फेवरेट डॉक्टर आरंभी के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है उनकी कहानी में आज।
6: हुसन

0: विहान बना आरंभी और ध्रुव का साथी। डांस ने बना दी आरंभी और ध्रुव की जोड़ी।
1: देखदा परांदा नहीं हूं देखदा पराडा।
0: स्टॉप।
1: पिगरे तो लग दी लटीनो, एक बारी दस दो जी इन्हें क्यों शकीनो।
0: राज और नायरा की सगाई में किडनैपर की एंट्री।
1: तू पेरिस तो मंगाया वेलेंटीनो, हाँ तेनू क्यों ना दिखा तेरे तो।
0: कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आज राज और नायरा की सगाई में दीवानी बनकर नाच रही है आरंभी। भाई देवर की सगाई है तो ऐसे में भाभी का नाचना तो बनता है, और इसमें उसका साथ दे रहे हैं ध्रुव भी, जिसे देखकर आरंभी हिचकिचा रही है। भाई आरंभी को तो ध्रुव ने गिरने से बचा लिया, और तो और राज और नायरा वो भी डांस में शामिल हो गए। ऐसे में दोनों जोड़ियों ने जमकर नाचा।

0: जैसे शिकारी।
1: लेकिन आरंभ हिचकिचाते हुए और ध्रुव से दूरियां बनाते हुए वहाँ से निकल गई। लेकिन किस्मत का इशारा कह लो या बेटे की चाह, विहान ने अपनी माँ आरंभी को फिर से ध्रुव के साथ ला दिया डांस करने के लिए। और देखिए कैसे बेटे की खुशी के लिए आरंभी अपने बेटे विहान और ध्रुव के साथ जमकर नाच गा रही है।

0: खैर इस नाच गाने में एक एक कर पूरा परिवार शामिल हो गया और सभी खुशियां मनाने लगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस जश्न में वहां पर पहुंच गया है विहान का किडनैपर। चेहरे पर मास्क लगाकर वेटर बनकर वो तो सिर्फ अवंतिका को ढूंढ रहा है। हालांकि आरंभी की नज़र उस वक्त उस पर पड़ती नहीं है, लेकिन उस किडनैपर और अवंतिका के बीच कुछ तो ऐसा होता है कि जिसके चलते किडनैपर आरंभी को बताने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अवंतिका उसका हाथ पकड़ वहां से ले जाती है। और किस्मत आरंभी को इशारे दे देती है जिसके चलते आरंभी को अवंतिका पर डाउट हो जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे वहां से निकल जाती है।
1: फिलहाल तो डांस हो रहा है, लेकिन जल्द ही कहानी में बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है जो देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: वसुधा, कभी कभी हेक्टिक शेड्यूल के बीच में जब मुझे सैलून जाने का मौका नहीं मिलता ना, तो मैं इस्तेमाल करती हूँ इन ट्वीजर्स का। वैसे मैं जानती हूँ आप इस ट्वीजर को देखकर क्या सोच रही हैं। यही सोच रही है ना कि काश आपकी जिंदगी में भी ऐसा एक मैजिकल ट्वीजर होता जो ट्वीज कर लेता आपकी हर परेशानी। काश। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको वसुधा के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज।
3: अपने हाथों का बना अचार बेचती वसुधा।
4: हमारे हाथ का बना अचार चाहिए और अपने घर ले जाइए।
3: समर ने आकर किया काम खराब। समर और वसुधा की बहसबाजी।
5: समर जी, आपने लोगों को धोखा दिया।
3: जी टीवी के सीरियल वसुधा में वसुधा बन गई है बिजनेस वुमन और देखिए कैसे वो अपने हाथों से बनाए हुए अचार को लोगों को बेच रही है और वो अपने बिजनेस को जोरों शोरों से चला रही है। तभी वहाँ उसे टक्कर देने के लिए पहुँच जाता है समर जो कि देव का दोस्त है और समर नहीं चाहता कि वसुधा आगे बढ़े क्योंकि उसने समर का ऑफर जो ठुकराया था। ऐसे में अब समर काफी गुस्से में है और वो वसुधा का ये बिजनेस चौपट करना चाहता है जिसकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग समर ने कर ली है। तभी तो देखिए कैसे उसके अपोजिट स्टॉल लगाकर सभी लोग पहुंच गए हैं समर के स्टॉल पर। ऐसे में वसुधा और उसके पापा समर से बातें करते हैं और उससे जानना चाहते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया।
5: आपने लोगों को धोखा दिया। रतुलाल आपकी कौन सी फैक्ट्री में अचार बनने लगे और वो भी इतने कम दामों में।
6: कोई राजा की सुंदर थोड़ी आप एक बिजनेसमैन अपना लेबल लगाया और मार्केट में नुकसान है पर इसमें मेरा ही फायदा है क्योंकि अचार का बिजनेस मैंने पैसे कमाए और मैं अपने मकसद में कामयाब।
7: समस्या आप अपनी हद भूल रहे हैं।
5: आप इनके लिए अपनी हद।
3: भाई कहीं ना कहीं वसुधा को समझ आ रहा है कि समर उससे बदला निकालना चाहता है। ऐसे में अब वसुधा समर का भी सामना करेगी।
8: एक्चुअली अपने सामान को बेचना थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा है। ऊपर से समर की साजिश है। समर एक नया अपना उसने कारोबार शुरू कर दिया हमारे आगे वसुधा के बिजनेस को देखते ही। तो वो बहुत ही कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है और वो चाह रहा है कि वसुधा की कोई सामान ना बिके या वसुधा घर लौट जाए उसको, मतलब बेसिकली वो वसुधा को हराना चाह रहा है, इसलिए वो बहुत ही अड़चने लाके खड़ा कर भी रहा है। लेकिन वसुधा फिर भी हार मानने वालों में से तो नहीं है, वो फिर भी बहुत कोशिशें कर रही है। और एक कोशिश हमारी नाकामयाब हुई थी, लेकिन अगली बार जब वसुधा दादी के साथ आती है तो वो समर को समर के छक्के छुड़ा के जाती हैं और उनका सारा अचार भी बिक जाता है, मार्केटिंग भी हो जाती है। आज फिर वसुधा और उसकी टीम इसी होप के साथ आई है कि शायद हमारा अचार फिर से बिके और लोगों को अच्छा लगा होगा कि वसुधा की जीत हुई है। तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया है वसुधा और टीम ने कि हम अच्छे से अपना अचार बेचेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे समर फिर से आता है और प्लान खराब करने की कोशिश तो कर ही रहा है।
9: तो वसुधा ने मुझे चैलेंज किया था कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, और जो ब्रांड एम्बेसडर की जॉब मैंने ऑफर करी थी उसे, उसने उसको नहीं अपनाया। इनफैक्ट उसके साथ बहुत कहा सुनी हुई और अब वो अपना अचार का बिजनेस स्टार्ट कर रही है, जो मैं नहीं चाहता कि वो स्टार्ट करे, क्योंकि अगर उसने बिजनेस स्टार्ट करा तो मेरी शर्त जो मैंने लगाई थी वो मैं हार जाऊंगा और समर हारता नहीं है।
3: वहीं दूसरी तरफ वसुधा के पास आई है चंद्रिका की ये दोस्त जो वसुधा का इंटरव्यू लेना चाहती है। ऐसे में उन्होंने अपना कार्ड वसुधा को दिया है ताकि वो लोगों तक अपनी बात और अपना बिजनेस पहुंचाए। समर का सामना तो वसुधा ने कर लिया, ऐसे में उसने हार भी नहीं मानी और देखिए कैसे पहुंच गई अपने हाथों का बना अचार बेचने के लिए और उसमें वो कामयाब भी हुई।
8: कंपटीशन भी है, वो समर के लोग यही टाइप का कंपटीशन देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अचार में कुछ खास दम तो है नहीं, लेकिन वो अपने ऑफर्स पे ऑफर्स मार रहे हैं, एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री और सस्ते दाम में दे रहे हैं। और वहीं वसुधा जो है वो जेन्युइन रेट पर उसे बेच रही है, लेकिन वसुधा भी कम नहीं है। वसुधा ने भी अपने अचार और समर के अचार को कंपेयर किया तो लोगों को ऑब्वियसली वसुधा का अचार पसंद आया, तो इस तरह से वसुधा ने अपना अचार फिर भी बेच दिया।
3: तो भाई अब देखना होगा कि कैसे वसुधा समर का सामना भी करेगी और उसे मुंह तोड़ जवाब भी देगी, क्योंकि ये जंग इतनी आसान नहीं होने वाली है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: तो क्या हो रहा है मन्नत की कहानी में आज? वेल, हटाते हैं फोकस आईब्रोज से और लेकर चलते हैं आपको मन्नत के सेट पर, क्योंकि यहां तो चल रहा है एक हाई वोल्टेज ड्रामा। क्या फिर से आए हैं यहां पर ट्विस्ट का तूफान? पहले ये तो होना ही था, क्योंकि मन्नत की जिंदगी में कहां है शांति, यहां तो है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का शोर।
10: शेरपुर, वहाँ के एक आदमी का कहना है कि उन्होंने आपके हस्बैंड को देखा है, वो हर हफ्ते के मंगलवार को वहाँ पर आते हैं।
3: मन्नत को मिली गुड न्यूज, अभिमन्यु का डांस धमाल, फिकर भुला के मस्ती में लगा थप्पड़ का तड़का। टीवी के सीरियल मन्नत में भाई आखिरकार मन्नत को जिस खबर का इंतजार था, आज वो खबर उस तक पहुंच ही गई। जी हाँ, मन्नत को ये पता चल गया है कि विक्रांत जिंदा है और ये बात उसने दुआ को तब बताई जब दुआ सवालों का घेरा लेकर उसके पास पहुंच गई। भाई इतना ही नहीं, उसने तो फिर एक बार मन्नत को धैर्य से शादी करने की बात कह दी।
11: शादी हुई है आपके पापा से और आपके पापा जिंदा है बेटा।

ऐसे में इसी बात को सुनकर भाई देखिए कैसे ये दोनों माँ बेटी झूम कर नाचने लगे और यहाँ पर यूवी भी पहुँच जाता है, जिसे अपने बड़ी की गुड न्यूज सुनकर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता।

0: ನೀವು ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ರು.
1: ಹೋ,

0: ऐसे में मन्नत कर रही है वनशेरपुर जाने की तैयारी, जहाँ पर रॉनी आ जाता है जो मन्नत से रिक्वेस्ट करता है कि वो धैर्य को साथ लेकर जाए।
1: समझो वो शख्स विक्रांत नहीं है। अगर बाय चांस तुम्हारे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से उसे उसे आइडेंटिफाई करने में कोई गलती हो गई तो फिर क्या करोगी तुम? उस अनजान शहर में देखो मन्नत, तुम मुझे पापा मानते हो, मुझे पापा बुलाते हो, तो प्लीज
2: बच्चों का ख्याल।
1: अरे मैं रख लूंगा, पहली बार थोड़ी ना है ये, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखने के लिए धैर्य का तुम्हारे साथ जाना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे तसल्ली होगी बेटा, प्लीज मेरे लिए।
0: ऐसे में धैर्य और मन्नत के बीच देखने को मिली बहसबाजी, क्योंकि मन्नत धैर्य से नाराज जो है।
3: क्या किया मैंने? आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने ऐसा किया क्या जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे
2: हैं? अपने छोटे भाई को ढूंढना बंद कर दो, अपने बेस्ट फ्रेंड की बात पर भरोसा नहीं किया, इसलिए अब कुछ बचा नहीं है डिस्कस करने।
4: विक्रांत मेरा भाई
2: है, विक्रांत आपके भाई है और वो जिंदा है, और जहां तक रही हमारे रिश्ते की बात, हमारी दोस्ती की बात, तो वो आपने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा ना करके वो दोस्ती आपने तो। हमारे बीच में अब बस एक रिश्ता है, ये आप मेरी जेट है और मैं आपके छोटे भाई की पत्नी, इस रिश्ते की इज्जत करती हूँ मैं और इस रिश्ते की मर्यादा का भी ख्याल रखूंगी, उम्मीद करती हूँ आप भी रखें।
0: तो वही दूसरी ओर अभिमन्यु के लिए तोहफा लेकर पहुंची है साम्रागी, जिसे देखकर अभिमन्यु बेहद खुश है। लेकिन अभिमन्यु को यानी कि विक्रांत को ये नहीं पता कि ये आने वाले आंधी के पहले की खुशी है जिसमें वो गुम हो चला है। इसी बीच होती है मान्यता की एंट्री, जो भाई अभिमन्यु और अपनी बहना दोनों से ही नाराज है। भाई रोके के बाद ये सभी तुरंत यहाँ जो आ गए और मान्यता को खिंचवानी थी तस्वीरें।
2: ये लो जी, आप लोगों को कहाँ कहाँ ढूंढा, अब पहली गली कितनी फोटो खिंचाऊंगी मैं? तुमको मैंने किसके भेजा था? क्या सुनो मैं? चुप रहो। चलो तो फोटो खिंचानी है मुझे अच्छी अच्छी।
0: ऐसे में देखिए कैसे अभिमन्यु ने पूरी की मान्यता की इच्छा और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में इस जीप पर खिंचवाई उसके साथ तस्वीरें।
5: अरे काम से यार, कल में शेरपुर पहुंचना है, नए असाइनमेंट को डिलीवर करना है, मैं सारी तैयारियां कर रहा हूँ, जब जरूरी हो जाएगा।
2: अरे ये क्या बात हुई, आज ही हमारे रुका हुआ है और आज ही तो बिजनेस के लिए बाहर भेज रहे हो, वो नहीं जाएगा और हमेशा वो ही जाता है ना।

0: भाई कंसाइनमेंट पहुंचाने के बहाने साम्राज्ञी चाइल्ड ट्रैफिकिंग करवा रही है और इस बात से अनजान अभिमन्यु और मान्यता दोनों ही साथ साथ जाने को तैयार हैं।
1: अमृतसर के पास एक शहर है बनशेरपुर, वहाँ के एक आदमी का कहना है कि उन्होंने आपके हस्बैंड को देखा है, वो हर हफ्ते के मंगलवार को वहाँ पर आते हैं।
2: अभिमन्यु ही हमारा कंसाइनमेंट लेकर जाएगा, वो मेरी बहन का पति बनकर रहेगा या अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बताएगा।
0: इसी बीच शुरू हो गई है शादी की तैयारियां भी और देखिए कैसे घरवाले जोरों शोरों से इस शादी की तैयारियों में शामिल हो रहे हैं। भाई नाच गाना हो रहा है और सेलिब्रेशन का तड़का भी लग रहा है।

0: जैसा कि मैं शो में विभा का कैरेक्टर कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे हर बात पे ताना मारते क्योंकि मैं मोटी हूँ, तो मैं उनको इम्प्रेस करने के लिए अपना वजन घटाना चाहती हूँ कैसे भी करके, और शायद मुझसे कुछ गलती हो रही है तो अभिमन्यु आके मुझे ठीक भी कर रहा है, और बस उसी बीच में सब की यहाँ पे मस्ती शुरू हो जाती है, सब डांस करने लग जाते हैं क्योंकि डांस से बेटर एक्सरसाइज कोई हो ही नहीं सकती।
1: ऐसे में अभिमन्यु की बाहों में किसी और को देखकर मान्यता गुस्सा हो जाती है और शुरू कर देती है बवाल।
2: ओए की किता, क्या कर रही है तू? हाथ उठा लिया तूने, गिर रही थी वो, मैंने उसे गिरने से बचाए, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इस तरह रिएक्ट करता है?
3: तो यहाँ क्या कर रही है? ट्यूशन पढ़ाने आ गया क्या तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने?
2: ओए कुड़ी वो, देखो अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे मुझ पर भरोसा है? भरोसा है? हमारी सगाई हुई है तो फिर इस तरह रिएक्ट करने की क्या बोलना
1: भाई। सीरियल में काफी सारे हंगामे, ट्विस्ट और फेरबदल हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या मन्नत विक्रांत को ढूंढ पाएगी और क्या साम्राज्ञी के जाल में फंस जाएगा अभिमन्यु यानी कि विक्रांत। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: देखिए अगर आप भी करते हैं ना अपने आईब्रोज से प्यार, तो आपके पास भी डेफिनेटली होना चाहिए ये आईब्रो ब्रश। इसमें एक तरफ ब्रश है और दूसरी तरफ फिलर ब्रश है, तो आप पहले अपने आईब्रोज को अच्छे से ब्रश करें और फिर कलर को लेके उसमें फिल कर लें, आई मीन टू से आई शैडो को। और इसी तरह हम भी फिल करेंगे आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट। फटाफट लेकर चलते हैं आपको हमारी इस अगली कहानी की ओर जिसमें है आपके लिए अनलिमिटेड ड्रामा। कैसे? ऐसे।
1: सुहागनों की खास पूजा, नयनिका को मिले ताने,
5: सुहागने चाहिए, ऐसे कोई भी आएगा तो कैसे चलेगा।
1: शुरू हुआ नया तमाशा स्टार प्लस के सीरियल सैराब में। आज घर में खास पूजा हो रही है और ये पूजा सुहागने करती है। ऐसे में घर में से किसी ने कह दिया कि इस पूजा में नयनिका को भी शामिल होना चाहिए, कि यहाँ बाकी औरतें नयनिका के रिश्ते पर सवाल उठाने लगी और देखिए कैसे उसकी तलाक को लेकर ताने कसे जा रहे हैं। ऐसे में नयनिका के सपोर्ट में उसके घर वाले आते हैं, लेकिन तमाशा इतना बढ़ जाता है कि नयनिका खुद इस पूजा में शामिल होने से इनकार कर देती है। हालांकि घर में खुशियां थी, सभी तैयार हुए थे और नयनिका रंगोली भी बना रही थी, लेकिन इस तमाशे के बाद वो इस पूजा से चली गई।
6: चलो अब सारे सुहागने जल चढ़ाएंगे।
7: बड़ो मामा इधर आओ।
8: मैं इस घर की बड़ो मामा, आप हैं, आइए।
6: इसका तलाक हो चुका है, ये शादीशुदा नहीं है।
5: सुहागने चाहिए, ऐसे कोई भी आएगा तो कैसे चलेगा?
9: दीदी यहाँ पे कौन वाले नहीं है?
5: आजकल तो मैं तो कोर्ट की जज बनती जा रही हूँ।
0: जैसे कि मैं नयन की नयनिका की सपोर्टर हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो पूजा में भाग ले सके और अच्छे से इंजॉय करे पूजा, उसके मान सम्मान की रक्षा और उसकी खुशी की रक्षा करती हूँ। लेकिन ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन हो ही जाती है जिसमें उसको थोड़ा अपमानित होना पड़ता है, उसको ठेस पहुँचती है। एंड अभी बताएंगी
10: मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो फंक्शन में इनवाइटेड हूँ क्योंकि बाहर रहती हूँ, मैं लेट आई हूँ ऐसा वो मुझे कंप्लेन कर दिया है ऑलरेडी कि जब छुट्टी थी तो तुम जल्दी क्यों नहीं आ सकती थी। हाँ मतलब वो ऐसा है, तो क्या है जो भी मैं जब भी आती हूँ तो आई एम नॉट सो वेलकम्ड इन द फैमिली, और आज भी वो कुछ कुछ फील हो रहा है मुझे इनकी वजह से और बाकी लोगों की वजह से, बट कुछ लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं तो खुशी का माहौल है, पर उसमें थोड़ा ड्रामा घुलना तो जरूरी है ना, तो फिर इसीलिए वही ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं।
11: ये गाना प्यार का गाना।
1: वही दूसरी तरफ ईशान प्यार के सपने सजा रहा है, अपने कॉन्सर्ट में अपने दिल की बातें कह रहा है।
11: ये गाना प्यार का गाना है।
12: आप किससे प्यार करते हो ईशान?
11: मैं जिससे प्यार करता हूँ वो एक आसमान का सितारा है, उसकी रोशनी को महसूस किया जा सकता है, उसे नहीं।
1: भाई असली तमाशा तो तब शुरू होगा जब ईशान और नयनिका का रिश्ता आगे बढ़ेगा, तब तो नयनिका पर कई सवाल उठेंगे, ये देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: तो फिर कैसा रहा ये आईब्रो स्पेशल एपिसोड? आप हमारी इन टिप्स को जरूर आजमाइएगा और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपको बाय बाय कहने का, तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तब तक आप रखिए अपना अच्छे से ख्याल। गुड आफ्टरनून, बाय बाय।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
14: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
15: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
14: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
16: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
17: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
21: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। जी हाँ, डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल से नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जहां पर साफ पानी भरा हुआ हो। यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है। लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। और इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और जीएनटी ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएं, जैसे घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचाकर रखें और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित रूप से इस्तेमाल जरूर करें। जब घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और जीएनटी के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
21: नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार वापसी, भारत ने अमेरिका को 2-3 से हराया, दीपिका ने दागे जोरदार 2 गोल। दो दिनों की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत, G7 की बैठक में होगी ट्रंप से मुलाकात। पुरुषोत्तम मास के समापन के बाद भी बद्रीनाथ में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए हैं बाबा बद्री विशाल के दर्शन। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने किए बद्रीनाथ के दर्शन, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया, 5 करोड़ किए दान। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में जारी किया आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में दिन में ही छाया अंधेरा, पश्चिमी यूपी के लिए भी येलो अलर्ट।

0: मीडिया पर लगेगा बैन, पीएम स्टार्मर का बड़ा ऐलान।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: दिल्ली एनसीआर में दोपहर के बाद मौसम ने जबरदस्त करवट ली, कई इलाकों में चली धूल भरी आंधी। दिल्ली एनसीआर में छाए काले घने बादल, हवा चलने से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मौसम बदलने के साथ ही विजिबिलिटी भी हुई बेहद कम, कई इलाकों में झमाझम बारिश। गुरुग्राम में तेज बारिश से मिली गर्मी से राहत, शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। उत्तराखंड की टिहरी झील में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी, रविवार को 1500 से ज्यादा पर्यटकों ने बोटिंग और एडवेंचर गतिविधियों का आनंद लिया। बद्रीनाथ धाम में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब, तप्त कुंड में स्नान और ब्रह्म कपाल में पिंड तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बद्रीनाथ में 10,70,000 श्रद्धालुओं ने किए अब तक दर्शन, बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बद्रीनाथ धाम पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी, दर्शन और विशेष पूजा अर्चना की, मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का किया दान। केदारनाथ दर्शनों के लिए अब तक पहुंचने सबसे ज्यादा श्रद्धालु, 12 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री में 11,49,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए, 4 धाम यात्रा के लिए 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। नैनीताल के कैंची धाम का आज 62वां स्थापना दिवस, नीम करौली बाबा के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। कैंची धाम में सुबह से दर्शनों के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार, बाबा नीम करौली महाराज को मालपुए का भोग लगाने के साथ हुई स्थापना दिवस की शुरुआत। बाबा के जयकारों और जय श्री राम के नारों के साथ श्रद्धालु कर रहे दर्शन पूजन, सेवादार भक्तों को दे रहे मालपुए का महाप्रसाद। कैंची धाम में लाखों की संख्या में पहुंचे भक्त, पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। कैंची धाम में दिख रहा भक्ति का शानदार नजारा, भक्त कर रहे हनुमान चालीसा का पाठ। देशभर में आज मनाई जा रही सोमवती अमावस्या, पवित्र नदियों में सुबह से ही स्नान दान का सिलसिला जारी। रामनगरी अयोध्या में सोमवती अमावस्या के मौके पर सरयू नदी के किनारे लगा आस्था का मेला, श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। सरयू नदी में स्नान के साथ ही लोगों ने सूर्यदेव को दिया अर्घ, दान देकर पुण्य भी अर्जित किया। हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं गंगा स्नान, कल से ही यहां जुटने लगे थे भक्त। प्रयागराज में सोमवती अमावस्या को लेकर लोगों ने गंगा स्नान किया, लेटे हुए हनुमान मंदिर में की गई विशेष पूजा।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
4: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachchai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje. Good news today पर
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाइयों और बहनों, नमस्कार।
1: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
2: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव
7: गुड
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार वापसी, भारत ने अमेरिका को 3-2 से हराया, दीपिका ने दागे जोरदार 2 गोल। 2 दिनों की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत, G7 की बैठक में होगी ट्रंप से मुलाकात। पुरुषोत्तम मास के समापन के बाद भी बद्रीनाथ में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने किए बद्रीनाथ के दर्शन, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया, 5 करोड़ किए दान। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में जारी किया आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में दिन में ही छाया अंधेरा, पश्चिमी यूपी के लिए भी येलो अलर्ट जारी। ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा, पीएम कीर स्टार्मर का बड़ा ऐलान।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
12: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आज सोमवती अमावस्या की तिथि है। देखिए, माना जाता है कि ये तिथि भगवान शिव की आराधना, चंद्रमा के पूजन, पितरों के तर्पण और अखंड सुहाग के लिए जानी जाती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सोमवती अमावस्या पर पीपल का पूजन करने, गंगा स्नान और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम अपनी इस खास पेशकश में जानेंगे कि सोमवती अमावस्या की महिमा क्या है, साथ ही ये भी जानेंगे कि इस तिथि से जुड़े कामना पूर्ति के महाप्रयोग क्या हैं।

बदलाएगी सोमवती अमावस्या। कीजिए स्नान दान और महादेव की तपस्या। पितरों के तर्पण और पिंडदान से होगा कल्याण। पीपल के पूजन से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान। ये तिथि है मंगलकारी, पुण्यकारी और चमत्कारी।

0: बताए महाप्रयोग करने से जीवन से सभी संकटों का नाश हो सकता है।
1: सोमयुक्ता अमावस्या सदैव पुण्यदायी और दुर्लभ मानी गई है, क्योंकि ये विशेष अधिक मास में पड़ने वाली है और ज्येष्ठ के अधिक मास में पड़ने के कारण से कई सहस्त्र वर्षों वाला पुण्य फल प्राप्ति का सुंदर समय है। धन की इच्छा रखने वाले को इस समय भोजन और अन्न दान करना चाहिए। सुख चाहने वाले व्यक्ति को शैया दान करना चाहिए। ऐसे अपने गुरु को शैया दान करने वाला व्यक्ति सारे सुखों की प्राप्ति कर लेता और उसके पश्चात मोक्ष प्राप्त कर लेता।
0: आज सूर्य नारायण ने राशि परिवर्तन किया है। सूर्य की मिथुन संक्रांति की महिमा भी आपको बताएंगे।

परिक्रमा करके सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन पितरों और नवग्रहों की कृपा मिल सकती है। इस दिन शिवजी और चंद्रदेव

0: विशेष लाभ मिल सकता है। सोमवती अमावस्या यानी एक ऐसा दिन जब चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव को एक ही बार में मनाया जा सकता है, उनसे वरदान पाया जा सकता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, यानी सोमवती अमावस्या का दिन मन संबंधी दोष के समाधान के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि इस बार क्यों खास है ये सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या पुरुषोत्तम मास में आ रही है। इस अमावस्या पर मृगशिरा नक्षत्र होगा, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में विद्यमान रहेंगे। इसी दिन सूर्यदेव की मिथुन संक्रांति भी होगी। बृहस्पति और शुक्र दोनों एक साथ होंगे। इस दिन संक्रांति और अमावस्या के कारण स्नान और दान का विशेष पुण्य मिलेगा।
1: सोमवती अमावस्या का मुख्यतया जो विधान है वो स्नान का और दान का कहा गया है। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड जैसे पवित्र स्थान, कुंभ क्षेत्रों में स्नान अथवा अपने घर में ही इन कुंभ क्षेत्रों, पवित्र नदियों का ध्यान करके स्नान करने मात्र से व्यक्ति को मन की इच्छा पूर्ण करने वाला, मोक्ष देने वाला और कई गुना पुण्य फल देने वाला फल प्राप्त हो जाता है।
0: मान्यता है कि इस तिथि पर आप भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन पीपल की छाया के स्पर्श करने से, प्रदक्षिणा करने से पापों का नाश होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। कहते हैं पीपल के पेड़ के मूल में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और अग्रभाग में भगवान ब्रह्मा का निवास है और इस तरह एक ही बार में त्रिमूर्ति का आशीर्वाद भक्तों को मिल सकता है। माना जाता है कि इस तिथि पर आप अपने जीवन साथी की दीर्घायु होने की कामना के साथ ही दाम्पत्य जीवन में मधुरता की महाप्रयोग भी कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की जड़ में जल और फूल अर्पित करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा पर पीला सूत लपेटें। पीपल के वृक्ष के समक्ष सर झुकाएं और प्रार्थना करें। तुलसी और माता पार्वती पर सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगाएं। अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है और ऐसा करने से तमाम कष्टों से मुक्ति होती है।
1: स्नान करने के पश्चात जो शैया दान करता है, गौदान करता है, स्वर्ण दान करता है, अन्न दान करता है और जो इस समय अपने गुरु को फलदार फल वाले जल वाले फल और विशेष तरह जल के पात्र दान करता है,

0: अमावस्या की तिथि पर काले तिल का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि सुबह स्नान के बाद जल में काले तिल मिलाकर पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करें और साथ ही तिल का दान करें। मान्यता है कि इससे पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। चलिए अब आपको इस तिथि से जुड़ी कर्ज मुक्ति के महाप्रयोग बताते हैं। पान के पत्ते पर धान और खड़ी हल्दी रखें। इसके बाद उस पान के पत्ते को तुलसी के पौधे के निकट रख दें। धन प्राप्ति की कामना करें।
1: इस समय के ऊपर यदि किसी व्यक्ति को भी धनागम की चिंता हो या किसी प्रकार की मन में कामना हो तो सोमवती अमावस्या इस बार ज्येष्ठ अधिक मास में पड़ने के कारण से विशेष फलदायी है, कल्प वृक्ष के समान है। इसमें स्नान करने के पश्चात जो मन की कामना हो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अपने गुरु को ध्यान करें। जैसे ही दान करेंगे उसके पुण्य फल स्वरूप जो कि आपके किए गए कार्य के कई हजार गुना फल बढ़ा देता है आपको प्राप्त हो जाता है।
0: सोमवती पर दीपदान और दान का भी महत्व बताया गया है, तो आप भी सोमवती अमावस्या पर महादेव को कीजिए प्रसन्न और साथ ही कीजिए ज्योतिष में बताए महाप्रयोग, जिससे आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो। आगे हम आपको सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश की महिमा बताएंगे। तब तक कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: हर माह सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। अब सूर्यदेव वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन होता है हम सभी के जीवन पर इसका असर पड़ता है। तो चलिए ऐसे में आपको बताते हैं कि सूर्य का ये जो गोचर है आपके जीवन और आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। पहले आपको बता देते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन का महत्व क्या है।

0: एक बार फिर से बदली है सूर्य ने अपनी चाल। मिथुन राशि में सूर्यदेव करेंगे संचारण। जानिए क्या होगा राशि परिवर्तन का प्रभाव। ज्योतिषी बताएंगे सफलता के उपाय। संसार को अपनी ऊर्जा से जीवन देने वाले भगवान भास्कर की महिमा अपरंपार है। संसार सूर्य के तेज से ही प्रकाशित है और संसार क्या ये ब्रह्मांड भी सूर्य की किरणों से जगमगा रहा है। दुनिया को शीतल रोशनी में सराबोर करने वाला चांद भी सूरज की रोशनी से ही प्रकाशमान है, यानी आकाश में चमकते लाखों तारों और ग्रहों में सूर्य की महिमा सबसे अद्भुत और चमत्कारी है। दूसरे ग्रहों की तरह सूर्य भी गतिमान रहता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य हर महीने राशि बदलता है। इस महीने सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर चुका है, तो क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का ज्योतिषी महत्व, चलिए जान लेते हैं।
1: देखिए, इस समय सूर्य मिथुन राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, बुध वहां पहले से ही विराजमान है, तो बहुत सुंदर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है और साथ में भद्र योग का भी निर्माण कर रहा है। इसके फलस्वरूप राजनैतिक पक्षों को, व्यापारी पक्षों को विशेष लाभ होने का समय है।
0: सूर्यदेव अभी तक वृषभ राशि में विद्यमान है। सूर्यदेव 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य 15 जुलाई तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। इस राशि में सूर्य की स्थिति उत्तम मानी जाती है। सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन अमावस्या तिथि को हो रहा है। अमावस्या तिथि पर मिथुन में सूर्य के जाने का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश का असर वर्षा और मौसम पर गहराई से पड़ता है। ये परिवर्तन अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक असर डालेगा।
1: सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश करने से, बुधादित्य योग निर्माण करने से, सूर्य की जो मित्र राशियां हैं जैसे मेष राशि, और सूर्य की जो और विशेष मित्र राशि यानी कि धनु और मीन,

0: कर्क राशि, स्वयं की सिंह राशि और बुध की दोनों राशियां कन्या और मिथुन, इनके लिए विशेष पुण्यदायी, विशेष लाभदायक होने वाला है।
1: ज्योतिष के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि अभी तक सूर्य वृषभ राशि में संचारण कर रहे थे, लेकिन मिथुन राशि में सूर्य के जाने पर हर राशि के लोगों के लिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह के असर देखने को मिलेंगे।
0: जिन लोगों के व्यापार मंद चल रहे थे वो कन्या और मिथुन राशि वाले जातक तो निश्चित समझ लीजिए कि व्यापार में तो लाभ प्राप्त करेंगे ही करेंगे और उनको विशेष तौर पे घर में सुख और आनंद की वृद्धि के योग चालू हो जाएंगे। मीन राशि वाले और धनु राशि वाले जो गुरु की राशियां हैं, इन लोगों को इस सुंदर परिवर्तन से आप ये समझ लीजिए राजनीतिक लोगों से बड़ा लाभ होने वाला है और राजनेताओं से लाभ के अतिरिक्त इस क्षेत्र में इस राशि वाले व्यक्तियों को कहीं ना कहीं पद सुशोभित हो सकते हैं।
1: सूर्य के राशि परिवर्तन के समय कन्या लग्न का उदय हो रहा है। अष्टम भाव में मंगल विद्यमान है। दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां और भड़केंगी। प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। भूकंप और मौसम की स्थिति में समस्या दिख रही है। इस समय राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है। ज्योतिष कहते हैं कि ग्रहों और नक्षत्रों में होने वाला परिवर्तन जीवन को भी प्रभावित करता है, इसलिए सूर्य के मिथुन राशि में जाने का असर सभी राशियों पर पड़ना तय है। चलिए ज्योतिष के नजरिए से जानते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से किसकी बदलेगी किस्मत और किसे होने वाली है परेशानी।
0: सूर्य की जो शत्रु राशियां हैं उनको विशेष तौर पे और सूर्य के सम राशि वाले हैं उनको भी, जैसे वृषभ राशि वालों को विशेष तौर पे मकर और कुंभ जो शनि की राशियां विपरीत हैं सूर्य से, उन लोगों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ा सा इस समय कष्टकारी साबित हो सकता है। इनके अतिरिक्त बाकी सबको ये शुभ संयोग बनाएगा।
1: सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सभी ग्रह इनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए सूर्य के राशि परिवर्तन का सभी ग्रहों पर और राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिस नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं उस समय मौजूद ग्रह सारे जीवन हमें प्रभावित करते हैं। अब ये प्रभाव सकारात्मक होने के साथ नकारात्मक भी हो सकता है।
2: तो देखिए, हम तो यही आशा करते हैं कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में खुशियां और सकारात्मकता लेकर आए। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: क्या आपको बार बार व्यापार में धोखा मिलता है? क्या आपके रिश्तों में भी धोखे की स्थिति बन जाती है? क्या आपके नजदीकी दोस्त ही आपको धोखा दे देते हैं? क्या है धोखे का कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
6: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
5: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
6: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
7: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। जी हाँ, डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल से नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जहां पर साफ पानी भरा हुआ हो। यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है। लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। और इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और जीएनटी ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएं, जैसे घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचाकर रखें और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित रूप से इस्तेमाल जरूर करें। जब घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और जीएनटी के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: क्या आपको बार बार व्यापार में धोखा मिलता है? क्या आपके रिश्तों में भी धोखे की स्थिति बन जाती है? क्या आपके नजदीकी दोस्त ही आपको धोखा दे देते हैं? क्या है धोखे का कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
15: That sound could mean a lot of things.
13: And when something's going wrong at home, the hardest part can be figuring out what the problem actually is. At Thumbtack, you can upload a voice message or a photo, and our AI-powered search will help diagnose your project. Plus, the pros we know have over 14 million five-star reviews, so you can hire with confidence. Thumbtack, we know homes. Hire the right pro today.
15: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
11: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
10: अविश्वास में विश्वास बसता है.
9: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
8: गुड न्यूज टुडे.
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: Nations Cup में भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार वापसी, भारत ने अमेरिका को 3-2 से हराया, दीपिका ने दागे जोरदार 2 गोल। दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे सुधांशु मोदी, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत, G7 की बैठक में होगी ट्रंप से मुलाकात। पुरुषोत्तम मैच के समापन के बाद भी बद्रीनाथ में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बद्री विशाल के दर्शन। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने किए बद्रीनाथ के दर्शन, भगवान बद्री विशाल के लिए आशीर्वाद, 5 करोड़ दान किए। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में जारी किया आंधी का ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में दिन में छाया अंधेरा, पश्चिमी यूपी के लिए भी येलो अलर्ट। मिशन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा बैन, पीएम स्टार्मर का बड़ा बयान।

नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शुभ कार्यों की 21 बार आ गई है शुभ घड़ी। आजादिक मास की समाप्ति हो रही है और इसी के साथ ही अब मंगल कार्यों का शुभ अवसर और मांगलिक कार्यों की शुभ शुरुआत भी होने जा रही है। तो अधिक मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ये एक महीने से बंद थे, लेकिन अब हो गई है अधिक मास की विदाई, तो शुभ कार्यों की मंगल बेला आई। विवाह, गृह प्रवेश के द्वार खुल गए हैं। शुभ कार्यों के लिए अब हैं 21 दिन 21 बार। तो इसी पर आज हम देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों से चर्चा करेंगे।

0: तो शुभ घड़ी आ गई है, शादी और दूसरे शुभ कार्यों पर इंतजार अब खत्म हो गया है। दरअसल आज अधिक मास समाप्त हो गया है और अधिक मास खत्म होते ही मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं। अभी तक शादी, गृह प्रवेश, मुंडन समेत दूसरे कार्यों पर रोक थी। वैसे आज सोमति अमावस्या पर महासंयोग भी बना है और इन्हीं तमाम संयोगों के बीच अब 21 जून से 11 जुलाई तक विवाह के शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं। एक महीने तक 12 शुभ मुहूर्त के रहेंगे और जून में अगर बात की जाए तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 ये दिन शादी के लिए शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं। जुलाई की बात करें तो 1, 6, 7 और 11 ये शुभ तारीखें बताई जा रही हैं। 30 दिन बाद फिर से गूंजेगी शहनाई। हालांकि फिर से 11 जुलाई के बाद से 4 महीने शादियां नहीं होंगी क्योंकि फिर से 25 जुलाई से चतुर्मास की शुरुआत हो रही है और चतुर्मास में भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। चतुर्मास से पहले जून और जुलाई में शादियों के बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं। वैसे आज सोमवती अमावस्या भी है, ऐसे में देश भर के नदी और तालाबों के घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं। अधिक मास का समापन भी हो रहा है और ये ज्येष्ठ का महीना जो बचा हुआ है अब लोग पहुंच रहे हैं आज अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए। अयोध्या के सरयू नदी के तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, घाटों पर पूजा पाठ हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में सुबह से त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए भक्त पहुंचे हैं। अधिक मास की अमावस्या है, हर कोई इस पावन पर्व पर आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। वहीं सोमवती अमावस्या पर उज्जैन में भी भगवान महाकाल का विशेष अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद भव्य भस्म आरती हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए मौजूद रहे।
1: आज के विशेष दिन पे सोमवती अमावस्या का दिन है। आज अधिक मास का अंतिम दिवस है और इस पावन पर्व पे आज बाबा महाकाल के दरबार में विशेष भस्म आरती पूजन की गई, भगवान को भोग लगाया गया, पंचामृत अभिषेक किया गया, आरती की गई और सभी भक्तों ने इस भस्म आरती का लाभ लिया और सभी का भगवान महाकाल कल्याण करे, सभी की मनोकामना पूर्ण करे, भगवान महाकाल सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, यही कामना सबके लिए आज की गई। जय श्री महाकाल।
0: खास बात यह भी है कि आज से सूर्य का मिथुन राशि में भी प्रवेश हो गया है, यानी आज अमावस्या भी है, संक्रांति भी है। 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश में रहेंगे और स्थिति से कई जातकों के करियर, धन और प्रतिष्ठा में भी फायदा होगा। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का आप पर कितना असर होगा राशिवार, इसको लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा।
2: सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश करने से, बुधादित्य योग निर्माण करने से सूर्य की जो मित्र राशियां हैं जैसे मेष राशि और सूर्य की जो और विशेष मित्र राशि यानी कि धनु और मीन, कर्क राशि, स्वयं की सिंह राशि और बुध की दोनों राशियां कन्या और मिथुन, इनके लिए विशेष पुण्यदायी, विशेष लाभदायक होने वाला है। जिन लोगों के व्यापार मंद चल रहे थे वो कन्या और मिथुन राशि वाले जातक तो निश्चित समझ लीजिए कि व्यापार में तो लाभ प्राप्त करेंगे ही करेंगे और उनको विशेष तौर पर घर में सुख और आनंद की वृद्धि के योग चालू हो जाएंगे। मीन राशि वाले और धनु राशि वाले जो गुरु की राशियां हैं, इन लोगों को इस सुंदर परिवर्तन से आप ये समझ लें राजनीतिक लोगों से बड़ा लाभ होने वाला है और राजनेताओं से लाभ के अतिरिक्त इस क्षेत्र में इस राशि वाले व्यक्तियों को कहीं ना कहीं पद सुशोभित हो सकते हैं।
0: चले, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रतीक भट्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। आचार्य राजमिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा मौजूद हैं, पंडित अरविंद शुक्ला भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। प्रतीक जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। सबसे पहले आज का दिन बहुत खास इसलिए हो जाता है, अमावस्या भी है, संक्रांति भी है, सूर्य का राशि परिवर्तन भी हुआ है और बड़ी बात यह कि कल से शुभ कार्यों की शुरुआत होने वाली है। ओवरऑल अगर आज की तारीख को, आज के दिन को, अभी की बेला को देखा जाए ग्रह गोचर के हिसाब से तो कैसे देखते हैं इसको?
3: तो नवजोत जी, जीएनटी के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। लेकिन एक चीज बात यहाँ समझनी होगी, ये जो आज अवसर है साधारण अवसर नहीं है। 9 नवंबर को इसके बाद सोमवती अमावस्या मिलेगी इस साल, मतलब 5 महीने इंतजार करना होगा। तो अगर अभी तक भी आपने दान नहीं निकाला है, सीधा नहीं निकाला है और शाम के समय का दान क्योंकि अमावस की तिथि है बहुत शुभ होता है, तो अपने आप में सोमवती अमावस्या, जब भी सोमवार को अमावस पड़ती है सोमवती अमावस्या कहलाती है, तो अपने आप से सबसे शुभ दिन पितरों के तर्पण के लिए, पितरों के आशीर्वाद के लिए, पीपल की पूजा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए। तो अपने आप में अभूतपूर्व दिन आज कहा जा सकता है, जिसके लिए आपको अगले 5 महीने इंतजार करना होगा। अब आपका दूसरा प्रश्न, देखिए अधिक मास हमें भौतिकता से आध्यात्मिकता तक ले जाता है, तो आध्यात्मिक उत्थान का समय होता है, इसीलिए गृह प्रवेश से लेके विवाह संस्कार, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं भौतिकता दर्शाते हैं, वहाँ पे उन सब पे विराम लगता है। अब जब पूजा पाठ हो जाती है मलमास की खत्म, तो फिर से शुभ कार्य शुरू होते हैं, तो आप कह सकते हैं शुभ कार्य की शुभ बेला शुरू हो गई। जैसा कि आपने बताया 21 जून से लगातार 21 वार मिलेंगे, जब गाजे बाजे के साथ शादी विवाह से लेकर तमाम और संस्कार हो सकते हैं। और आज का दिन और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष शास्त्र में सूर्य या तो मेष राशि और सिंह राशि के सर्वश्रेष्ठ हैं, उसके बाद दूसरी राशि को जो मैंने स्थान दिया है वो मिथुन और धनु। तो मिथुन राशि में जहाँ पे ज्योतिष ऋषि पराशर लिखते हैं, खासतौर से बुध आदित्य योग बन जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ सर्वबलि सेकंड नंबर पे मैं राशि मानता हूँ धनु और मिथुन, जहाँ पर सूर्य अति बलि हो जाते हैं। तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच ये गोल्डन टाइम है जब आप शुभ संस्कार भी कर पाएंगे, जिसकी शुरुआत आज दान पुण्य से हो रही है। और आज जब संक्रांति लग जाएगी मिथुन संक्रांति, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाला समय संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और आप देखिए इसका असर दुनिया पर भी पड़ रहा है नवजोत जी। जो ईरान का वॉर चला जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन हुआ, कम्युनिकेशन जो ब्रेक था वो शुरू हुआ, क्योंकि मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है। वहां जहां सूर्य आए तो जो राजसत्ता टकरा रही थी, क्योंकि सूर्य राजसत्ता है, उनमें कम्युनिकेशन वापस शुरू हो गया। तो ये अपने आप में अच्छी खबर है। आज मार्केट भी कहीं ना कहीं अच्छी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं मिथुन राशि शेयर को भी दर्शाती है, बुध शेयर मार्केट को भी दर्शाता है। तो आप सबके लिए, हम सबके लिए एक शुभ बेला है, ये आप कह सकते हैं।
0: बिल्कुल आचार्य राजमिश्रा जी, आपके पास आती हूँ। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, अगर कल से हम माने कि 21 दिन अति शुभ होने वाले, स्पेसिफिकली डेट्स पर आगे जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ओवरऑल ग्रह गोचर क्या कहता है, स्पेशली देश दुनिया इंडिविजुअल्स के लिए, सूर्य का भी राशि परिवर्तन हुआ है
4: जी। एक्चुअल में यह समय सबसे महत्वपूर्ण होगा, और अगर ग्रह गोचर की बात किया जाए, सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, सूर्य स्पेशली मिथुन राशि के अंतर्गत जाएंगे, जो आत्मा के कारक प्लैनेट हैं जिनको कहा जाता है, पंचम भाव के जो स्वामी हैं, अगर वो प्राकर्म के हाउस और यानी ज्ञान की राशि के अंतर्गत अगर प्रवेश करेंगे, तो ये संयोग अपने आप में एक बहुत शानदार संयोग है। यानी इस समय पर जो लोगों की आत्मा है, जो हमारी इंटरनल, जो हमारी सोल, जो हमारी आत्मा है, वो पावरफुल होने के लिए तैयार है। बस आवश्यक है कि हम उसको पावरफुल करने का प्रयास करें। अगर उस पर हम लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत इस समय किया गया दान, इस समय किया गया जप, और इस समय जो ग्रह गोचर की, अगर मैं आगे कुछ परिस्थितियों की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि दो आचार्य दैत्यों के आचार्य शुक्र, देवताओं के आचार्य बृहस्पति, दोनों एक साथ कर्क राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जिसको काल पुरुष में हृदय की राशि कही गई है, मनोकामना जो हमारे दिल की इच्छा है उसको पूर्ण करने वाली राशि कही गई है, और वहां पर बैठ करके वो 10th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं मकर राशि को, जिसको स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ की राशि कही गई है। तो ये संयोग अपने आप में बहुत शानदार संयोग है, इसको साधारण संयोग नहीं कहा जा सकता है। दूसरा, यहां पर लक्ष्मी कहा जाता है शुक्र को और विष्णु कहा जाता है बृहस्पति को, दोनों का एक्चुअल मिलन, और फिर दोनों एक त्रिकोण के स्वामी है, एक केंद्र के स्वामी है। शुक्र जो है वो अगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो 7th हाउस के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, और उसी के साथ अगर बृहस्पति को देखा जाए तो बृहस्पति 9th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी त्रिकोण के स्वामी है। तो एक प्रकार से विष्णु और लक्ष्मी का अगर मिलन कहा जाए तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। साथ में स्वयं जब सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश हो गया है, तो वहां पर कौन कौन इस समय विराजमान है, मिथुन राशि के अंतर्गत चंद्रमा स्वयं विराजमान है, उसके साथ बुध स्वयं विराजमान है, सूर्य का पहुंच जाना, एक बुद्धादित्य योग का भी अपने आप में निर्माण हो गया है, मंगल का स्वग्रही होना, राहु का इस टाइम पर अपने घर के अंदर समझ आऊंगा कुंभ राशि के अंतर्गत होना, ये संयोग अपने आप में शानदार संयोग है। सिर्फ आवश्यक है कि इस ग्रह गोचर का जो परिस्थितियां अभी बनी है उसका लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इस समय पर अपने कार्य पर जो पूरी निर्भीकता के साथ प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, उसको निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी। सूर्य का मिथुन राशि में जाकर के बुध के साथ गोचर करना, ये कहता है कि जो इस टाइम अपने काम में पूरी डेडिकेशन के साथ लगा रहेगा, अपने आत्मा को अच्छी चीजों की तरफ लगाएगा, अपनी आत्मा को जागृत करने का प्रयास करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में चाहे जितनी प्रॉब्लम चल रही हो लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का जो वे है, जो रास्ता है, वो उसकी अंदर अंतरात्मा खुद तैयार कर देगी। अगर कोई बहुत दिन का एंजाइटी या नेगेटिविटी या समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब क्या करूं कैसे करूं या कुछ हो भी पाएगा, तो क्योंकि सूर्य बुध के साथ चले जाएंगे मिथुन राशि में, और बुध को एस्ट्रोलॉजी में सरस्वती कहा जाता है, बुध को एक्चुअल में थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सही प्राकर्म है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जो कॉन्फिडेंस है चीजों को सॉल्व कैसे करना है वो उनसे मिलती है। तो जब आत्मा के कारक, उस कॉन्फिडेंस के कारक और सरस्वती जिनको कहा जाता है उनके साथ कनेक्ट होंगे, अगर इस समय को सही तरीके से उपयोग किया जाएगा तो वो रास्ता निश्चित रूप से आपको निकाल करके देंगे कि हाँ अब प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आवश्यक है कि समय को नवजोत जी सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, चंद्रा जी ना किया जाए, कि मंगल स्वयं मेष राशि में गोचर कर रहे हैं काल पुरुष की पहली राशि में, तो अगर आपने मतलब जल्दबाजी आपके अंदर लाने के लिए तैयार है, और वो कहते हैं ना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली पोजीशन होगी, खैर जीएनटी देखते रहेंगे तो कब क्या करना है वो पता
0: नहीं, नहीं यहीं पर आगे आपको बताते जाएंगे, आपकी राशि के हिसाब से भी बात करेंगे। और दूसरा जो 21 शुभ दिनों की चर्चा हम कर रहे हैं कि शुभ 21 बार ही बचे हैं, उस पर भी कौन से अति शुभ हैं आपके हिसाब से, उस पर आगे बात करेंगे। एक बार नितिशा जी आपके पास आते हुए, आज का दिन बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है, जैसे राज जी ने भी जिक्र किया, प्रतीक जी ने भी जिक्र किया, सोमवती अमावस्या कितनी अहम है। अभी भी देखिए 4 बजे का वक्त है, हालांकि तिथि के हिसाब से भले ही कहा जाए कि सुबह समाप्ति हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके पूरा दिन ये ऑन रहती है, तो क्या कुछ किया जा सकता है, कितनी इंपॉर्टेंट है अमावस्या।
5: थैंक यू नवजोत जी और जीएनटी के सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को, और आपको भी नवजोत जी राधे राधे, और सभी को जय माँ पीताम्बरा। देखिए आज का दिन बेहद शुभ है, और हम लोग भी बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो सब दर्शकों के लिए भी शुभ है और हमारे लिए भी शुभ है कि आज सोमवती अमावस का जो समापन है वो हो तो चुका है टाइम वाइज, लेकिन तिथि तो पूरा दिन वही मानी जाती है जो उदया तिथि होती है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार। तो शाम को 5:33 से लेकर 7:14 तक अमृत बेला लग रही है, जो बहुत ज्यादा विशेष हो जाती है। जिन्होंने अभी तक इस विशेष दिन का अवसर नहीं उठाया वो लोग अभी भी इस दिन विशेष अवसर उठाएं और ये कार्य जरूर करें। आज अपनी कुल देवी, अपने पितरों के तर्पण के लिए, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी, चाहे आप कामकाज की बात करें, चाहे आप विवाह की बात करें, जो भी रुकावटें हैं आपके जीवन में, वो सभी आप पितरों के आशीर्वाद से, कुल देवी के आशीर्वाद से समाप्त कर सकते हैं। खीर बनाइए अपने घर में, अपने कुल देवी को खीर का भोग लगाइए, पुरोहितों को, पंडितों को जाकर के खीर खिलाइए। अभी भी बहुत समय आपके पास है, क्योंकि अगले 5 महीने तक आपको सोमवती अमावस का वेट करना पड़ेगा और पितरों को प्रसन्न करने का भी वेट करना पड़ेगा। और जिनको माता से संबंधित कष्ट है या जिनकी माता बीमार है उनके लिए तो ये दिन बेहद शुभ हो जाता है। तो आज के दिन खीर बनाएं, और साथ ही साथ आज के दिन चावल, दूध, चीनी यानी सफेद वस्त्र, सफेद चीजों का दान जरूर करें। आज के दिन ये सब दान करने से आपका चंद्रमा भी अच्छा होता है और पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। तो आज का दिन शुभ भी है, और साथ ही साथ आज के दिन संक्रांति, मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश, ये बहुत स्पेशल माना जाता है कि मिथुन राशि में सूर्य महाराज आए हैं और अपने से एक आदर्श भाव आए हैं, यानी सिंह राशि से वो एक आदर्श गए हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, पुरोहित योग बना हुआ है और सर्वाध सिद्ध योग, और 18 जून जो आने वाला है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि गुरु महाराज पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, तो आने वाले दिन गुड न्यूज चैनल, एक तरह से ग्रहों को, ग्रह भी खुश हो चुके हैं कि अब हम भी गुड न्यूज के साथ साथ जुड़ जाते हैं, ग्रह अच्छे चलते हैं, और ताकि सभी के लिए गुड न्यूज की तरह परिवर्तन हो सके। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें देखी, अब ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत स्पेशल रहने वाला है।
0: अब आप ये ग्रहों की बात कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि गुड न्यूज टुडे पर ये गुड न्यूज आप दे रही हैं, अरविंद शुक्ला जी सबसे बड़ी गुड न्यूज
5: देख के, नवजोत जी आपका प्रोग्राम देख देख के ग्रहों को भी लगा कि अब हमें गुड न्यूज सबको देनी चाहिए।
0: इस वक्त मैं आप चारों लोग स्क्रीन पर बैठे हैं, इस वक्त सही मायने में अगर सबसे बड़ी गुड न्यूज की किसी को दरकार है ना, तो वो पूरी दुनिया को है। अरविंद शुक्ला जी, क्या पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज आएगी, क्योंकि देखिए हर जगह पर उथल पुथल मची हुई है, हर जगह पर अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, क्या ये जो ग्रह गोचर है, क्या ये ग्रह गोचर दुनिया के लिए गुड न्यूज ला रहा है?
6: नहीं, क्यों नहीं ला रहा। देखिए जैसे कि सूर्य का परिवर्तन मिथुन राशि पे, तो सूर्य के विषय में ऐसा नहीं कि कोई साधारण कहा जाए, सूर्य के विषय में वेद भी कहते हैं कि ऋग्वेदोथ यजुर्वेदो साम वेदो यथर्वणः। और यजुर्वेद में वैसे भी आया है, सूर्यो अजायता सूत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि राजायता। तो कहने का तात्पर्य कि सूर्य जो है जगत की आत्मा है, जगत के प्राण हैं और जगत को पोषण करने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्य की मात्र आराधना कर लेते हैं तो नवग्रहों की उसकी जो है तो ऊपर कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए सूर्य को प्रथम पूज्य कहा गया है और सूर्य प्रथम पंक्ति में आते हैं नवग्रहों में। तो सूर्य की आराधना मात्र से आपके जो है नवग्रहों की शांति होती है, एक बात ये। दूसरी बात जो अभी इससे पहले मिश्रा जी ने बड़े अच्छे से जो है विवेचन किया शुक्र और बृहस्पति का, तो शुक्र और बृहस्पति वाकई में ऐसे राशि में वर्तमान में विराजमान हैं जो वह राशि जो है बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो मन की मनोबल की मानसिकता की चित्त की चिंतन की कारक राशि है, अर्थात वह चंद्रमा की राशि। और चंद्रमा की राशि में उन दोनों ग्रहों का विराजमान होना निश्चित रूप से जो है शांति का प्रतीक है, क्योंकि एक यदि देवाचार हैं तो दूसरे जो है दैत्याचार हैं, लेकिन दोनों शुभत्व ग्रह हैं, तो इसलिए शुभ फल जो है प्रदान करेंगे और प्रकृति के ऊपर भी और मानव जनजाति के ऊपर भी, तो निश्चित रूप से शांति की स्थिति बनेगी। एक तो ये, दूसरा जो मलमास चल रहा था जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, यह मास भी अपने आप में बड़ा विशिष्ट था, 3 वर्ष के बाद प्राप्त होता है। इस मास में किया गया दान पुण्य कार्य जो भी किसी ने किया है वह अक्षय पुण्य को जो है प्रदान करने वाला है। अब आगामी जो समय है वह आपके शुभ और मांगलिक कार्यों का है और यह शुभ मांगलिक कार्य आपके जो है हरि शयनी एकादशी से रुक जाएंगे। जिस दिन आपकी जो है लगभग 25 जुलाई को हरि शयनी एकादशी है उस दिन रुक जाएंगे। इस बीच काफ़ी कुछ अच्छे जो है आपके आ रहे हैं, इसी बीच आपकी जो है निर्जला एकादशी आएंगी, इसी बीच 18 तारीख को गुरु का जो है पुष्य नक्षत्र में भ्रमण होना, आगे चल के आपकी जो है जुलाई में आपका जो आषाढ़ मास होगा तो उसमें गुप्त नवरात्रों का आना। तो कहने का तात्पर्य कि इस टाइम के अंतराल में काफ़ी कुछ शुभ मांगलिक कार्य करने वाले मुहूर्त जो है प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो समय है अपना आज का यह बड़ा विशिष्ट है, अमावस्या का दिन है और अमावस्या के दिन में किसी प्रकार का भी कोई भी आप दान करते हैं पुण्य करते हैं या भगवान शिव की आज जो है सोमवती अमावस्या है, भगवान शिव से संबंधित भी आप किसी प्रकार की पूजा पाठ करते हैं तो वह आपको परम फल जो है प्रदान करने वाले।
0: चलिए जल्दी से राज मिश्रा जी आपके पास आती हूँ क्योंकि शुभ कार्यों की अब 21 बार है और इन शुभ कार्यों की शुरुआत कल से शुरू हो जाएगी, तो जल्दी से बता दीजिए क्योंकि इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा है। सबसे बड़ा शुभ कार्य जो हर किसी के घर में हर किसी की जिंदगी में होता है वो है विवाह का शुभ कार्य। कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इन 21 दिनों में, चाहे हम जून की बात कर ले या फिर हम जुलाई की बात कर ले, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं?
4: जी अगर मैं बात कर लेता हूँ स्पेशली विवाह को लेकर के जो शुभ मुहूर्त है वो कौन कौन से हैं, और अगर हम स्पेशली बात करते हैं जहां से जो हमारा 21 दिन स्पेशली है, 19th ऑफ जून बहुत शानदार समय है विवाह के लिए। 19th ऑफ जून को विवाह का सुंदर मुहूर्त है जिस दिन कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि पड़ेगी और आषाढ़ का समय होगा और इस समय एक बहुत बेहतरीन समय है जिस पर किया जा सकता है। 20th जून, 22nd जून, ध्यान रखिएगा 20 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 26 जून और 27 जून, 29 जून, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई। अगर मैं इन 21 दिनों की स्पेशली बात करता हूं तो 7 जुलाई तक ये मैरिज को लेकर के बहुत शानदार दिवस है जिनके अंदर किया जा सकता है। अब कुछ और बहुत शानदार अगर दिवस की बात करूं मैरिज के साथ साथ अगर और चीजों की मैं बात करता हूं तो इनमें भी अगर आप कहेंगे कि इनमें भी सबसे सुंदर दिवस कौन से हो सकते हैं उसको आप निकाल करके दीजिए तो मैं ट्राई करूंगा कि वो सबसे सुंदर दिन जो हो सकते हैं
0: जिसको हम अबूझ मुहूर्त बोलते हैं।
4: जी तो इनमें देखिए अगर इनमें मैं और शानदार मुहूर्त की बात कर लेता हूं जैसे 18 जून की अगर मैं बात कर लेता हूं, 19 जून से जनरली विवाह का मुहूर्त स्टार्ट है और 19 जून के बाद जो है वो 22 जून है विवाह का मुहूर्त और उसके साथ 26 जून, तो 26 जून के दिन क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग भी 26 जून को होगा तो 26 जून अगर मैं सारे इन डेट्स में से बात करता हूं तो 26 जून बहुत शानदार रहेगा अगर कोई जातक विवाह करना चाहते हैं उस दिन। तो अच्छा उसके साथ अगर हम विवाह को लेकर के और ऐसे डेट की बात करते हैं जो बहुत शानदार रहने वाला है, 29 तारीख की अगर बात करते हैं तो 29 तारीख एक अच्छा डेट होगा, साथ में 3 जुलाई, 3 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग होने के कारण 3 जुलाई बहुत बेहतरीन रहेगा। तो 3 जुलाई और उसके साथ 7 जुलाई, 3 और 7 और उसके साथ हमने इसकी बात की है, 3 और 7 के साथ हमने 26 तारीख की बात की है। तो जो 3 डेट होंगे ये विवाह के लिए सबसे उत्तम डेट होंगे। इस दिन विवाह करने से एक शानदार रिजल्ट प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। किसी भी कार्य के लिए अगर नवजोत की बात किया जाए तो फिर 18, 21, 26, 28, 3 और 7 ये सभा सिद्धि योग होंगे जो शानदार होगा जी,
0: जिनको अब उस डेट्स भी कहते हैं। चले, क्योंकि शुभ कार्यों की शुरुआत ही हमने विवाह की चर्चा की, लेकिन ऐसे इसके अलावा बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं जिसके लिए, चाहे वो गृह प्रवेश की बात हो, बच्चे का मुंडन हो, या फिर इस तरह के तमाम जो शुभ कार्य होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स कैसी है, नितिशा जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है ये सबके लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज लेकर आ रहा है, देश और दुनिया की भी अगर हम बात करें, पहली 3 राशियां प्रतीक जी।
3: देखिए, निश्चित तौर पर अगर मेष लग्न मेष राशि वालों की बात करें, तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव किसका? पराक्रम का, आपके भाई का, पठन पाठन लेखन का। तो इनमें कार्य करने वाले लोगों को जबरदस्त सफलता मिलेगी। जो लोग कम्युनिकेशंस का काम करते हैं, कम्युनिकेशन की वजह से चीजें ब्रेक हो रही थी, उन्हें लाभ मिलेगा। अब यहां से तृतीय भाव से बैठ के सप्तम दृष्टि नवम भाव में पिता से लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, विदेश यात्रा का लाभ, पीआर वीजा का लाभ, उसी के साथ साथ कोई बड़ा कार्य अगर रुका हुआ था मेष लग्न मेष राशि वालों का, कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ था, पूर्ण हो जाएगा। क्या करें, गुड़ का सेवन कर घर से निकले, अगले 1 महीने तक लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के, द्वितीय भाव में है तो पैसा इनकम रुपया पैसा बढ़ेगा। अब चौथे का स्वामी जब द्वितीय में होता है तो असेट बढ़ते हैं, घर गाड़ी बंगले में लाभ होगा, अचानक तनख्वाह बढ़ जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। लेकिन द्वितीय भाव वाणी का भी है तो ओजस्वी वाणी तो अच्छी है लेकिन कर्कश नहीं होनी चाहिए, उस पर ध्यान देना होगा। अब द्वितीय से अष्टम को देख रहे होंगे, ससुराल पक्ष से छोटा मोटा विवाद हो सकता है, पति पत्नी के बीच अनबन बढ़ सकती है। क्या करें, रुद्राभिषेक कर लीजिएगा किसी भी सोमवार के दिन, या फिर बेलपत्री 3 या 7 की मात्रा में शिवजी को चढ़ा दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों की। आपके लग्न में है तो निश्चित तौर पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, ऑरा मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। उसी के साथ साथ जब लग्न में होते हैं तो मनचाही इच्छा भी पूर्ण होती है, क्योंकि पराक्रम के स्वामी तृतीय भाव के स्वामी लग्न में कोई बड़ा कार्य पूर्ण होगा, बड़ी राजनीतिक इच्छा पूर्ण हो सकती है। यहाँ से सप्तम को देखेंगे तो पार्टनरशिप में, विवाह में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, उसको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका ईगो की वजह से ये सब चीज़ें बिखर सकती है। यहाँ पे बहुत फोकस करना होगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो लाभ मिलेगा।
0: तो चलिए, यहाँ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन शुभ तिथियां 21 और 21 दिन में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, देश और दुनिया के लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज ये 21 दिन लेकर आ रहे हैं, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।

0: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
1: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
0: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
2: Williams keeps it. First down. Touchdown!
0: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
3: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है.
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है.
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है.
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.

0: बार जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है और इन 21 दिनों में कौन से अति शुभ दिन है और किस दिन आप क्या कार्य कर सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आचार्य राज मिश्रा जी हमें बता रहे थे कि विवाह के लिए शुभ घड़ियां कौन सी, अबूझ मुहूर्त कौन से हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शुभ कार्य होते हैं जिसके लिए हम इंतजार करते हैं उन शुभ तिथियों का, उन शुभ दिनों का जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है। डॉक्टर नितिशा, आप ही के पास आती हूं, चाहे वो गृह प्रवेश की बात हो, बच्चे के मुंडन की बात हो या फिर कोई भी और अन्य शुभ कार्यों की बात हो, उसके लिए शुभ तिथियां, शुभ डेट्स, शुभ मुहूर्त और अबूझ मुहूर्त कौन कौन से हैं?
1: सर्वप्रथम 17 और 18 की डेट बहुत अच्छी है क्योंकि 17 को उधर वसंत नक्षत्र और गज के भी योग बन रहा है, रुचित नाम राजयोग बन रहा है और साथ ही साथ 18 को तो गुरु महाराज पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये दिन ऐसा है गुरु पुष्य जो किसी भी तरह के मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं, आप सभी कार्य इस डेट पर कर सकते हैं। इसके बाद 22 जून को हस्त नक्षत्र में चंद्रमा शुभ स्थिति में रहने वाले हैं तो 22 जून की डेट भी बेहद शुभ रहने वाली है। 24 जून को गंगा दशहरा है, ये अपने आप में गंगा जी का अवतरण दिवस है, अपने आप में ही शुभ है हर तरह के दान के लिए, हर तरह के संस्कार के लिए और हर तरह के कार्य के लिए। 25 जून को निर्जला एकादशी भी है और ये एकादशी सभी एकादशियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भी हम 16 संस्कारों में किए गए जो संस्कार है वो कर सकते हैं। 29 जून जो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है, पूर्णिमा तिथि अपने आप में ही बेहद स्पेशल मानी जाती है, इसलिए ज्येष्ठ माह की जो पूर्णिमा तिथि है वो भी बेहद शुभ रहने वाली है। इसके बाद 2 जुलाई 3 जुलाई और 9 जुलाई ये जो 3 डेट्स है ये और भी ज्यादा स्पेशल रह हो जाती है। अब 7 जो डेट्स मुझे मिल रही है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, जिसमें पहली 18 जून है, दूसरी 22 जून है, तीसरी 24 जून है, पांचवी 25 जून है, छठी 2 जुलाई, सातवीं 3 जुलाई। ये जो डेट्स है ये अपने आप में 7 डेट्स बहुत ज्यादा स्पेशल है। आप किसी भी तरह के कार्य करते हैं, अपना नया व्यापार शुरू करते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं, मुंडन संस्कार या विद्या आरंभ संस्कार करते हैं तो भी ये डेट्स बेहद शुभ रहने वाली।
0: बिल्कुल अरविंद शुक्ला जी, आपके पास आऊंगी। मैं चाहूंगी कि साथ ही साथ आप इन 21 दिनों में, क्योंकि हम 21 बार की बात कर रहे हैं, ऐसे समय जो अबूझ मुहूर्त है, जिस दिन हमें किसी भी शुभ मुहूर्त या फिर तिथि की आवश्यकता नहीं है, जरा उसके बारे में बता दीजिए जिस दिन हम कोई भी कार्य कर सकते हैं।
2: देखिए, ये जो हमारे शुभ दिन शुरू हो गए हैं और मलमास ये खत्म हो गया है, तो जो कार्य आपके अभी तक नहीं हो रहे थे, गृह प्रवेश है, मुंडन संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, विवाह है आदि आदि चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसमें एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, अन्य मुहूर्तों में जो आपकी डेटें बताई गई हैं उन डेटों में आप वह कार्य कर सकते हो, गृह प्रवेश कर सकते हो, मुंडन संस्कार कर सकते हो, आप आदि ये चीजें कर सकते हो, लेकिन जहां विवाह की बात हो रही है, शादी की बात हो रही है, तो शादी आपको जो तारीख बता रहे हैं ये सार्वजनिक तारीख है, मतलब इस तारीख में शादी का मुहूर्त है, लेकिन हर व्यक्ति कर ले ये मुहूर्त नहीं है, इस बात को यहां समझना होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि शादी में जो है लड़की का गुरु बल, लड़के का सूर्य बल और दोनों का चंद्रमा बल बहुत जरूरी होता है देखना। अर्थात लड़की का गुरु पूज्य तो नहीं है, लड़के का सूर्य पूज्य तो नहीं है और दोनों का चंद्रमा उस दिन अरिष्ट तो नहीं है जिस दिन शादी हो रही हो, फेरे हो रहे हो। इसको आप जो है जिन पंडित जी से आप अपनी शादी तय करवाते हैं, शादी सुधवाते हैं, उनसे अवश्य आप जानकारी लें। ऐसा नहीं कि हम चैनल में बता रहे हैं उन डेटों को आपने नोट करके और शादी के लिए आपने फिक्स कर दिया, ऐसा ना करेंगे। एक बात ये, दूसरी बात शादी किस राशि से निकालते हैं और किस राशि किस से जो है अन्य कार्य करते हैं। प्रायः व्यक्ति के दो नाम होते हैं, एक होता है राशि का नाम, एक होता है चलतु नाम। तो शादी प्रायः जो हम करते हैं वो राशि से करते हैं, जो हमारा जन्म से जो है राशि होती है, जन्म राशि होती है। कहते हैं कि जन्म राशि प्रधानित्वम नाम राशि न चिंतयेत, नाम राशि प्रधानित्वम जन्म राशि न विद्येत। कुछ कार्य नाम राशि पे होते हैं, कुछ कार्य जन्म राशि पे होते हैं। जन्म राशि पे क्या क्या होते हैं? शादी है, विवाह है, मुंडन है, यज्ञोपवीत है, ये आदि आदि चीजें आपकी जो है जन्म राशि से होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, एक तो आप उसी डेट जो डेटें शादी की बताई हैं आप जरूर उस पर करें, लेकिन अपने किसी पंडित जी से, किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से ये जरूर पूछें कि क्या त्रिबल शुद्धि है दोनों की, लड़की और लड़के की, गुरु की जो है शुद्धि लड़के की और सूर्य नहीं, गुरु की शुद्धि जो है बच्ची की, लड़की की, और सूर्य की जो है शुद्धि लड़के की, और दोनों की उस दिन जो है चंद्रमा की स्थिति ठीक होनी चाहिए। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना। अब ये जो इतने दिन आपके वो मिल रहे हैं, तो इन दिनों में ग्रह प्रवेश की जो तारीख बता रहे हैं उसमें आप आंख बंद करके ग्रह प्रवेश कर सकते हैं, उसके लिए किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। मुंडन संस्कार की जो आपको मुहूर्त बता रहे हैं उस दिन भी आप कर सकते हैं, उसमें भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है जो पूछें जो समझें वो सिर्फ आप अपने शादी के विषय में।
0: बिल्कुल।
2: और ये जो समय है आपका, यह समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे हरिशयनी एकादशी आएगी, चार माह के लिए फिर से आपके मांगलिक कार्य रुक जाएंगे,
0: चतुर्मास की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन की भी क्योंकि बात हो रही है, आज संक्रांति है तो सूर्य का भी परिवर्तन है, इसका असर कितना होगा देश और दुनिया के लिए, क्या अच्छी खबर आ रही है? प्रतीक जी, छह राशि अगली कर्क से धनु तक।
3: देखिए, कर्क लग्न कर्क राशि वालों की बात करें, 12वें भाव पे हो रहा है, तो विदेश से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, किसी बड़ी एमएनसी से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, वीजा पीआर रुका हुआ था वो मिल सकता है। लेकिन 12वें भाव में अगर सूर्य जाता है तो जरूर, खासतौर से क्योंकि मिथुन का स्ट्रांग है, द्वितीय भाव का स्वामी 12वें पे जा रहा है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा अपने धन पर। धन चोरी होने का भय रहेगा, धन लॉस का होगा डर, उसी के साथ कर्ज लेन देन में बचना होगा इस दौरान। पैसे का कहीं ना कहीं संचय करना अगले एक महीने आपके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि लग्न में बृहस्पति शुक्र बैठे हैं इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बृहस्पति ऋषि पराशर कहते हैं बृहस्पति लग्न में एक लाख दोष दूर करते हैं, और निश्चित तौर पर आपका जीवन यहां से बेहतर रहेगा। सिंह राशि की बात करें 11वें भाव में, तो निश्चित तौर पर लग्नेश जब 11वें भाव में चले जाएं तो कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी, कोई बड़ा लाभ मिलेगा, कोई बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी, जबरदस्त पैसे का लाभ दिखता है, अचानक धन कहीं ना कहीं समृद्धि आती हुई दिखती है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसी के साथ साथ यहां से आपके मित्र भी देखे जाते हैं, मित्रों से सहयोग, कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति से बड़ा जबरदस्त सहयोग आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को, आपकी आमदनी को आगे ले जाएगा। अब कन्या राशि की बात करें, कन्या लग्न कन्या राशि वालों दशम में होंगे, दशम में सूर्य को सबसे ज्यादा बली माना गया है, तो करियर में कोई बड़ा मूवमेंट, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे मिल जाएगी, जो लोग प्रमोशन की बात कर रहे थे हो जाएगा, जिन लोगों की चीजें अटकी हुई थी करियर में किसी भी रूप में वो पूर्ण होंगी। निश्चित तौर पर दशम का सूर्य जब चौथे को भी देखता है तो राजसत्ता का लाभ होता है, सरकारी पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, सरकारी घर गाड़ी बंगला मिल सकता है, ओवरऑल लाभ के संकेत हैं। तुला लग्न तुला राशि की बात करें, नवम भाव में होगा, एकादश का स्वामी अपने से एकादश, लाभ ही लाभ लेके आया, कोई जबरदस्त लाभ का संकेत इस समय मिलेगा, उसी के साथ साथ विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश जाने की तरफ कहीं ना कहीं डेट फ्रीज हो सकती है। भाग्य भाव में होने की वजह से भाग्य का साथ जबरदस्त मिलेगा, पिता का साथ जबरदस्त मिलेगा, धार्मिकता की तरफ बढ़ेंगे, किसी बड़े मंदिर भी जा सकते हैं इस दौरान। नवम भाव में होने की वजह से पैतृक संपत्ति से लाभ और अधिकारी वर्ग से ऊपर बैठे हुए व्यक्तियों से जबरदस्त लाभ के संकेत हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों की, तो आपके लिए थोड़ी सी यहाँ उथल पुथल का टाइम है, क्योंकि दशमेश अष्टम में चले गए हैं, सरकारी बाधा आ सकती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस सकते हैं, अधिकारी नाराज हो सकते हैं, उसी के साथ साथ गाड़ी ध्यान से चलाना, चालान कट सकता है। अष्टम भाव में होने की वजह से ससुराल से दिक्कतें, विवाह में दिक्कतें आ सकती हैं, नौकरी व्यापार में बाधा उलझने बढ़ेंगी, इन सब चीज़ों को टालना ही बेहतर रहेगा, कोई बड़े डिसीजन बिजनेस में डिसीजन मेकिंग जॉब में नहीं करिएगा। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों की, आपके सप्तम भाव में होगा कौन, नवमेश, तो निश्चित तौर पर विवाह की में कहीं ना कहीं जो दिक्कतें थी खत्म होंगी, जिन लोगों के डाइवोर्स या सेपरेशन चल रहे थे खत्म होंगे, उसी के साथ साथ कोई नया रास्ता खुलेगा, पार्टनरशिप के लिए बड़ा अच्छा समय, व्यापार के लिए बड़ा अच्छा समय, व्यापार बढ़ता हुआ इस दौरान नजर आता है। क्या उपाय करें, निश्चित तौर पर केसर का तिलक बृहस्पतिवार और रविवार लगाकर घर से निकले तो लाभ मिलेगा।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 21 दिनों के शुभ बात कर रहे हैं कि कैसे 21 दिन शुभ रह सकते हैं। आचार्य राजमिश्रा जी, आपके पास आऊंगी, हमने विवाह की चर्चा कर ली और नितिशा जी ने बता दिया कि कौन से अन्य शुभ कार्य जो किए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई इच्छा पूर्ति हो, कोई अच्छी इच्छा पूर्ति चाहे, कोई प्रमोशन चाहे, नौकरी चेंज करना चाहे, नया वाहन कोई खरीदना चाहे, किसी रिलेशनशिप में अगर आप जा रहे हैं, तो क्या उसके लिए भी समय शुभ हो सकता है?

0: यूनिट से स्टार्ट करेंगे, तो आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं तो 18 जून इज गुड, एंड उसके साथ 11th ऑफ जुलाई बहुत बेहतर डेट है हेल्थ से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे ऑपरेशन है, किसी भी चीज के लिए आप करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। उसी प्रकार से यदि आप डिस्कस करना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आप कुछ करना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, आप कुछ कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं, कोई न्यू अप्लाई आप करना चाहते हैं, अपने बॉस से डिस्कस करना चाहते हैं, तो रवि योग प्राप्त होगा आपको। 17th ऑफ जून है, 19th ऑफ जून है, 22nd ऑफ जून है, 23rd ऑफ जून है, 27th ऑफ जून है, 5th ऑफ जुलाई है, 6th ऑफ जुलाई है, 16th ऑफ जुलाई, अगर मैं जस्ट 21 डेज की बात कर रहा हूं, तो ये डेज आपके लिए जितने भी रिलेटेड टू गवर्नमेंट क्षेत्र के जो वर्क है, रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ जितने वर्क है, इनसे रिलेटेड जो भी आप काम करना चाहेंगे उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ में उस काम के लिए भगवान से प्रार्थना करने पर आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो ये दो चीजें आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगी। कोई भी काम लाइक दीपुष्कर योग प्राप्त हो, जो आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, इसको लेकर के प्रॉब्लम ना हो, त्रिपुष्कर योग रहेगा। 16th ऑफ जून को त्रिपुष्कर योग है, किसी भी चीज की कंटिन्यूटी के लिए, ऐसा मेरी लाइफ में बार बार होता रहे, उसको लेकर के परिस्थितियां हैं, तो ये कर सकते हैं। ऐसा एक चीज और बता दूं, हमारे यहाँ क्या नाम है, अरविंद जी ने बहुत चिंता जताई थी, दैट इज करेक्ट कि सभी राशियों के लिए एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जनरली मकर राशि, दो तीन राशियां हैं, कर्क राशि है, जिनके लिए विवाह की डेट ये जो हम लोगों ने बताई है एक समय नहीं है, जून के अंदर नहीं है, इसी प्रकार वृश्चिक राशि के लिए नहीं है, बट अदर जनरली जितनी भी राशियां हैं 19th और 20th जून, 19 जून और 20 जून जनरली बाकी सभी राशियों के लिए, चाहे वो लड़का है या लड़की है। यस
1: बिल्कुल प्रतीक जी, आखिरी तीन राशि के बारे में बता दीजिए।
2: देखिए मकर लग्न मकर राशि की बात करें तो छठे भाव में गोचर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुछ चीज़ों के लिहाज से आपको प्रेम में दिक्कतें आ सकती हैं, घर में सुख शांति की कमी रह सकती है, लेकिन नौकरी में शत्रुओं पर विजय होगी, नौकरी में लाभ होगा, किसी रोग पर विजय हो सकती है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, गौ माता को गुड़ बृहस्पतिवार और रविवार के दिन खिला देना है। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के। पंचम भाव में ये गोचर, तो इंटेलिजेंस बढ़ेगा, चिल्ड्रन को कहीं ना कहीं संतान को लाभ होगा, जो माताएं बहनें कंसीव नहीं कर पा रही थी कर पाएंगी, जिन लोगों के विवाह में समस्या आ रही थी उनके घर में बात घर वाले मानेंगे। समस्या यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि आपका प्रेम में ईगो नहीं आना चाहिए, अगर प्रेम में ईगो आया तो स्थितियाँ खराब होंगी, तो ईगो को कंट्रोल करना है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अच्छा समय है, उनको विदेश भेजने के लिए एक अच्छा समय है, विदेश में उच्च शिक्षा भी वो ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। पंचम का सूर्य जबरदस्त गवर्नमेंट सफलता भी देता है, तो जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की सफलता का इंतजार कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं उसमें आराम मिलेगा। अब क्या करें, ओम घणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करते रहिएगा। अब मीन राशि मीन लग्न वालों की बात करें, चौथे भाव में होगा तो निश्चित तौर पर चौथे भाव में राजसत्ता, क्योंकि यहां से दशम को देखेंगे, राज की गाड़ी, राज में बड़ा पद मिल सकता है। चौथे भाव में होने की वजह से थोड़ा सा माता को कष्ट या फिर थोड़ा सा हेल्थ खराब हो सकती है उनकी। सुख समृद्धि तो बढ़ाता है चौथे का सूर्य निश्चित तौर पर, लेकिन घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी कराता रहता है, उस पर ध्यान देना होगा। उसी के साथ साथ चौथे का सूर्य निश्चित तौर पर शिक्षा के लिहाज से अच्छा है, पद प्रतिष्ठा के लिहाज से अच्छा है, कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई सडन गेन हो सकता है आपको, और ये सब ऐसे ही बना रहे तो उसके लिए उपाय कर लीजिएगा गायत्री मंत्र का पाठ।
1: बिल्कुल, चले चलते चलते एक छोटा सा उपाय शुक्ला जी आपकी तरफ से।
3: जी जी, देखिए कहते हैं कि आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जया वहम जपम नित्यम मक्षम परमम शिवम। यदि आपको परम सुख को प्राप्त करना है तो आदित्य की आप आराधना करें, और आदित्य के आराधना के लिए अर्घ से ऊंची और कोई चीज आराधना नहीं है। आप भगवान सूर्य नारायण को नित्य अर्घ दें, तांबे के पात्र में गुलाब का फूल डाल के, गंगा जल डाल के, ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि गतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहण अर्घ्यम दिवा।
1: बिल्कुल, एक छोटा सा उपाय नितिशा जी आपकी तरफ से।
4: जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी आज के दिन अपनी चौखट पर हल्दी वाला लेपन करें और दो दीपक अपने मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं, और जो भी कार्य आपके नहीं हो रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें कि ये कार्यों में रुकावट आ रही है, पितृ देवता कुल देवता ये सभी कार्य मेरे हो, और पीपल के पेड़ के नीचे भी जरूर जाकर एक दीपक जला करके आए, और कुछ पंजीरी जरूर चींटियों को डाले, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
1: बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। शुभ दिनों की शुरुआत होने वाली है 21 मार्च, कौन सी शुभ डेट है, किस कार्य के लिए, सब जान

0: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
2: गुड न्यूज टुडे.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
10: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भरपूर उत्साह देखा जा रहा है। मौसम की उठापटक के बावजूद भगवान के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बद्रीनाथ में 11 लाख से ज्यादा तो केदारनाथ में 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए।

0: उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। उत्तर काशी जनपद में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी आमद जारी है। कपाट खुलने के बाद से अब तक दोनों धामों में 11.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। प्री मानसून की बौछारों ने पर्वतीय क्षेत्रों में दस्तक दे दी है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। मौसम में बदलाव के बावजूद बड़ी संख्या में यात्री लगातार धामों की ओर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि स्थानीय प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सक्रिय है। स्थानीय कारोबारी भी इस साल की चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी से खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जून महीने में यात्रियों की अच्छी संख्या आने और व्यवस्थाएं बेहतर रहने से पर्यटन कारोबार और स्थानीय आमदनी में सकारात्मक बढ़ोतरी हुई है।
1: बढ़िया चल रहा भगवान की कृपा से, इस बार सभी व्यवसायी खुश हैं।
2: इस साल जो यात्रा चल रही है वो पिछले वर्ष की तुलना में भारी उत्साह है और श्रद्धालुओं की संख्या में काफी भीड़ है।
0: बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुले थे, उसके बाद से बद्रीनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ रही है। अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। चाहे बारिश हो या ठंड या फिर सड़कों पर लगता जाम, लेकिन यात्रियों की आस्था में कोई कमी नहीं है। ऐसे में इस बार की चार धाम यात्रा नए आयाम की ओर बढ़ रही है और उम्मीद है कि इस बार यात्रियों की संख्या के नए रिकॉर्ड बनेंगे।
3: बद्रीनाथ धाम की यात्रा का उत्साह अभी भी लगातार बना हुआ है। श्रद्धालु देश के कोने कोने से बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर लगातार पहुंच रहे हैं, तो वहीं यात्रा मार्गों के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई भगवान बद्री विशाल के साथ उत्तराखंड के तमाम जितने भी बद्री मंदिर रास्तों में पड़ते हैं उन मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ है।
0: बद्रीनाथ समेत चार धाम यात्रा में सुगम व्यवस्थाओं से तीर्थयात्री गदगद नजर आ रहे हैं। पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के दौरान बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जत्था लगातार पहुंच रहा है, क्योंकि शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास के दौरान भगवान बद्री विशाल के दर्शन और आराधना को विशेष मानी गई है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान बद्री विशाल के दर्शन से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में तीर्थयात्री अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
4: अधिक मास पुरुषोत्तम मास में जो बद्रीनाथ धाम का दर्शन का लाभ मिला, ये बहुत संयोग से मिला। और जैसा टीवी में दिखाया जा रहा है कि भीड़ है, भीड़ तो है पर व्यवस्था सब अनुकूल है। थोड़ा थोड़ा रुक के ट्रैफिक भी चलता है, दर्शन भी मिल जाता है, आराम से दर्शन मिल रहा है। सब भक्त को आना ही चाहिए और अच्छा बद्रीनाथ का दर्शन है।
5: यमुनोत्री तब गंगोत्री तब केदारनाथ तब बद्रीनाथ, बहुत अच्छा लगा। मौसम भी बढ़िया रहा,
6: यात्रा भी अच्छा।
7: शासन का काम बहुत ही अच्छा है, कोई इतना पैनिक करने की बात नहीं है, ना इतना भीड़ है, कुछ नहीं है। हम बहुत आराम से और अच्छी तरह से बिना किसी तकलीफ के यहाँ तक पहुँचे हैं।
0: बद्रीनाथ धाम पहुँचने वाले भक्त भगवान विष्णु के दिव्य मूल मंत्रों और भजनों को सुनकर भाव विभोर हो रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और बद्री विशाल लाल की जय के उद्घोष से गुंजायमान है। श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर शांतिपूर्ण तरीके से भगवान विष्णु के दर्शन कर रहे हैं और दिव्य वातावरण का आनंद ले रहे हैं, तो छोटे बच्चे भी यात्रा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
8: शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुवेशन सहार वक्षस्थल कोस भक्ष्यम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम।
0: केदारनाथ धाम में भी अब तक दर्शन के लिए 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। भले ही मौसम यात्रियों के लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन यात्रा में उत्साह देखते ही बन रहा है। मॉनसून का सीजन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन विशेष तैयारी कर रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं, ये गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है, कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी या साफ पानी भरा हो। यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है, लेकिन लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या फिर एक संस्था नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और जीएनटी ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट्स की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएं, जैसे कि घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलते रहें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचा कर रखें, और दिन हो या फिर रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित इस्तेमाल जरूर करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और जीएनटी के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड,
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, चाय पर चर्चा में स्वागत है आपका। और आज भाई बात होने वाली उन दो फिल्मों की जो अपनी 25th एनिवर्सरी मना रहे हैं, मतलब कि 25 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी दो फिल्मों ने। आई एम श्योर ये दोनों फिल्में सबने देखी होंगी, हम बात लगान और गदर की कर रहे हैं, आई एम श्योर आप सबने वो फिल्में देखी होंगी।
5: ऑफ कोर्स आइकॉनिक फिल्में हैं,
3: है ना,
6: भुवन कौन भूल सकता है।
3: एग्जैक्टली, मेरे को आप पे डाउट हो रहा था, लेकिन शुक्र है भाई इन्होंने भी वो फिल्में देखी है।
6: तो आज फिल्में सबको देखनी चाहिए, जेंजीज को भी देखनी चाहिए,
3: जेंजी को भी देखनी चाहिए। तो दोनों फिल्मों का जश्न हम भी मनाएंगे चाय के साथ,
5: क्योंकि हमने पूरा लगान लिया है, हमने एक एक लगान वसूल किया है, तो इसलिए उस फिल्म की बात हम करेंगे, चर्चा जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। तो देखिए 25 साल इनके पूरे हुए हैं, इसकी तो बात करेंगे ही, लेकिन बड़े लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज से नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। एक और अच्छी गुड न्यूज इस खास मौके पर आपको बता दें, विमान में पहले वो लोग सवार हुए जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी थी। तो नोएडा का ये एयरपोर्ट कैसे बदलने जा रहा है यूपी की तकदीर, ये भी जानेंगे।
3: नमस्कार, मैं श्री गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर हैं, जहां उनका स्वागत बड़े ही पारंपरिक अंदाज में किया गया। इस स्वागत के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उस वंदे मातरम की हो रही है, जिसे स्लोवाकिया के कलाकारों ने बड़े ही अनूठे अंदाज में गुनगुनाया है। इसकी भी झलक आई है, दिखाएंगे आपको।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आगे आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराएंगे जिन्होंने कार पूलिंग के सारे आइडियाज को ही बदल दिया है। और इस शख्स की पहल कार पूलिंग के जरिए आज 900 से ज्यादा लोगों को यूपी के गाजियाबाद से गुरुग्राम तक पहुंचा रही है। तो क्या है ये स्टोरी है ये भी जानेंगे, लेकिन पहले जल्दी से देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: Sage University, transforming your passion into profession.
9: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: रेतीले तूफान की चादर में ढका राजस्थान का चुरू शहर, 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, भरी दोपहरी में विजिबिलिटी हुई शून्य। दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छिटपुट बारिश, पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत, G7 की बैठक में होगी ट्रंप से मुलाकात। पुरुषोत्तम मास के समापन के बाद भी बद्रीनाथ में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बद्री विशाल के दर्शन। नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार वापसी, भारत ने अमेरिका को 3-2 से हराया, दीपिका ने दागे जोरदार 2 गोल। ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा बैन, प्रधानमंत्री स्टार्मर का बड़ा ऐलान।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल।
10: तो चलिए जाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आज हम करेंगे सिनेमा के जश्न की, क्योंकि दो आइकॉनिक फिल्में जिसकी हम चर्चा कर रहे थे 25 साल उन्होंने पूरी की है भारतीय सिनेमा के इतिहास में। 15 जून 2001 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया है। आज से 25 साल पहले यानी कि 15 जून 2001 को आमिर खान की लगान और सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। एक तरफ देश प्रेम और क्रिकेट का अनोखा रोमांच था तो दूसरी तरफ तारा सिंह का दमदार और भावुक कर देने वाला सफर था। बात इसी की करेंगे। सबसे पहले आपको कोई डायलॉग याद है तारा सिंह का?
6: तारा सिंह का नहीं, मुझे तो अभी दिमाग में वही भुवन का, हाँ। दुगना लगान वसूलेगा, वो तो वसूल नहीं पाए, देखे उल्टा चले गए हम लोगों को, है ना, उस मैच के जरिए।
3: नहीं, हाँ। लेकिन हाँ। ये याद है दोनों में से पहले कौन सी फिल्म देखी थी?
10: आई थिंक लगान।
3: मुझे लगता है लगान देखी।
10: मुझे लगान,
3: आपने भी लगान देखी? आपने कौन सी देखी?
6: मैंने भी लगान ही देखी।
3: लगान देखी मैंने, सनी देओल वाली फिल्म गदर, गदर देखी थी सिनेमा हॉल।
6: चलो फिर गदर का कोई डायलॉग सुनाओ।
3: अरे डायलॉग नहीं, मुझे तो उसका उर्जा काले कावा गाना बहुत पसंद था, आज भी बहुत पसंद। वो हैंडपंप वाला तो वो है। गा मैं नहीं सकती, आप लोगों की आवाज ज्यादा अच्छी, आप सुनाइए।
6: हैंडपंप वाला वो डायलॉग है ना, वो भी नहीं याद अभी, बट
10: अमेजिंग। लेकिन amazing. उसके गाने भी एआर रहमान के गाने थे, आपको बता दें हम, उसमें आमिर खान की जो मूवी थी उसमें एआर रहमान के गाने थे, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत। और उनकी जो एक्ट्रेस थी पहली बार, वो आई थिंक सबकी नजरों में भी वो आई थी आमिर खान के ऑपोजिट जो थी उसमें,
6: आमिर खान हाँ, के ऑपोजिट थी,
10: नाम शायद हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, लेकिन उनका नाम, हाँ उनका हम भूल रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म, दमदार भूमिका में हम सबने देखा। और मुझे लगता है कि दोबारा भी अगर वो देखनी हो तो देखना चाहे तो उसको पसंद
3: करेंगे, दोनों फिल्में देखी जा सकती है। इनफैक्ट मैं लगान तो देख ही सकती हूँ दूसरी बार,
6: लगान कितनी बार भी आप देख सकते हैं। मुझे लगता है अभी जिन लोगों ने नहीं देखी है उनको भी ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि गदर का सीक्वल भी तो बना, वो कितना अच्छा रहा, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं रही। कई बार ऐसा होता है कि पुरानी जो आइकॉनिक फिल्में होती है उनका सीक्वल जब बनता है तो कई बार डिसअपॉइंट करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा और गाने भी अमेजिंग हैं
5: बिल्कुल। और इसी स्टूडियो में हम सबने बैठ करके चाय पे चर्चा पे बोला था कि गदर 2 ने वाकई गदर मचा दिया है, तो उसने मचाया था, तो इसी की बात हो रही है। शगुफ्ता और बताइए क्या कुछ है।
3: बिल्कुल देखिए ये बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन पहले आमिर खान की लगान का जिक्र कर लेते हैं जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। आमिर के लिए तो ये जैसे डबल धमाका है, क्योंकि एक तरफ उनकी लगान ने बड़े पर्दे पर अपने 25 साल पूरे किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आमिर खान प्रोडक्शन भी अपनी सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट कर रहा है। आमिर खान ने इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी रखी। इस पार्टी में आमिर खान के लिए जश्न मनाने के लिए उनके साथ उनका साथ देने के लिए बॉलीवुड की कई हस्तियां पहुंची। देखिए कौन कौन पहुंचा इस खास पार्टी में।

0: जब फिल्मों में कामयाबी के 25 साल का जश्न मनाया तो उन्हें बधाई देने के लिए सितारों की महफिल सज गई। ये जश्न सिर्फ आमिर खान प्रोडक्शन का ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने का भी था। बड़े पर्दे पर 25 साल की कामयाबी को आमिर ने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की सिल्वर जुबली पर आमिर ने एक खास इवेंट रखा। इस इवेंट में बड़े पर्दे की तमाम जानी मानी हस्तियां पहुंची। आमिर यहां अपनी होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ दिखे। इस पार्टी में आमिर खान का पूरा परिवार भी पहुंचा। उनकी बेटी आयरा और बेटा जुनैद इस पार्टी में शामिल थे। आमिर की एक्स वाइफ किरण राव अपने बेटे के साथ इस इवेंट में पहुंची थी। इस जश्न के खास मेहमान थे सलमान खान, जो अपने बिल्कुल नए लुक के साथ यहां दिखे। सलमान का ये लुक सामने आते ही चर्चा होने लगी कि ये उनकी नई फिल्म का ही लुक है। आमिर ने सलमान को गले लगाकर उनका स्वागत किया और दोनों ने एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कुछ ही देर में करीना ने भी इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही काजोल, सानिया मल्होत्रा, रेखा, अली फजल, ऋचा चड्ढा भी इस जश्न का हिस्सा बने। जूही चावला यहां अपने पति के साथ पहुंची। जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी इस पार्टी में दिखे। लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, राजकुमार ईरानी समेत तमाम जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस जश्न में शामिल थे। आमिर ने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी कई यादगार फिल्में बनाई हैं। आमिर की फिल्में हमेशा दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं और ऐसी ही फिल्में वो प्रोड्यूस भी करते हैं। 25 साल के सफर में आमिर खान प्रोडक्शन ने कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। आमिर खान प्रोडक्शन की सिल्वर जुबली के मौके पर उन तमाम फिल्मों को याद भी किया गया जो बड़े पर्दे पर आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सनी देओल की गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ कमाई के रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े थे बल्कि थिएटर्स में किसी फेस्टिवल जैसा माहौल था। गदर एक प्रेम कथा ने आज ही के दिन 25 साल पहले जैसे ही पर्दे पर दस्तक दी एक कोहराम समझ गया था।
2: और एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे सरहदों की दीवारें नहीं रोक पाई और एक ऐसा एक्शन जिसने दर्शकों को कुर्सियों से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। आज 25 साल पूरे होने पर गदर सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक इमोशन बन चुकी है।
3: मुझे वो सबसे पहली मेमोरी आती है कि जैसे ही गदर का पोस्टर देखता हूँ तो या कोई भी चीज़, गदर तो इतना है कि गदर वन अपने आप में, उसकी मेकिंग ही अपने आप में एक फिल्म है। वो तो बहुत सारी चीज़ें, मगर एक चीज़, हम अहमदाबाद से आए थे, रात को वहाँ पे कुछ शो हुआ था, प्रेस शो था। सुबह सुबह मैं उठा, थर्सडे मॉर्निंग थी, 9:30 बजे, सुबह सुबह 6 बजे मैं आया था, सोफे पर ही सो गया था, अंदर बेडरूम में भी नहीं गया। 9:30 बजे एक फ़ोन की घंटी बजती, उन दिनों बड़े बड़े फ़ोन होते थे, ट्रिंग टैंग टिंग, फ़ोन उठाया, बोले वो एक उड़ीसा से एक थिएटर से फ़ोन है, मैनेजर से फ़ोन है। मैनेजर थर्सडे को पिक्चर रिलीज हो जाती थी उड़ीसा वगैरह में, बहुत सारी जगह। तो उसने बोला आपने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, क्या फिल्म बना दी है, क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ क्या, अरे बोले बवाल हो गया है, 3,000 आदमी अंदर है, 3,000 आदमी बाहर है। मैंने कहा 3,000 कैसे, को घुस गए थिएटर के अंदर, मैं क्या करूं, इतने ही बाहर है, पब्लिक पागल हो गए। पब्लिक को कैसे पता लगा, पूरे इंटरवल पे सब मोबाइल पे फोन कर दिया सब लोगों ने और पब्लिक अगले शो के लिए आ गई है, पागल हो गए हैं लोग, पैसे फेंक रहे हैं, मेरा थिएटर टूट जाएगा, फूट जाएगा। मैंने कहा पिक्चर की तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। बोले मैं कह रहा हूँ ऐसी पिक्चर आज तक कभी बनी नहीं है, इसलिए मैं एक्साइटमेंट में आपका नंबर कहाँ से ढूंढा और आपको फोन किया है। थिएटर ही मेरा टूटे टूटे परवाह नहीं, लेकिन पिक्चर कमाल है। ये इंटरवल पे मेरे को इस गदर का रिएक्शन था। अभी तो सिर्फ इंटरवल ही हुआ था, हैंड पंप तक पहुंचे ही नहीं थे। सालों से चल रहा था गदर टू बनानी है, जीते की कहानी बनानी है, जीते को आगे, जीते बड़ा हो रहा है, पर कहानी नहीं आ रही थी। गदर वन गदर टू में ऐसे नहीं बना सकता था कि गदर वन के नाम को मुझे इनकैश करना, जब तक मेरे पास कहानी नहीं आएगी मैं गदर टू नहीं बनाऊंगा। बस गुजरते गए, अब लोग बोलने लगे अभी तो उत्कर्ष भी बड़ा हो गया, अब तो बना लो, अब तो जीते को आप उत्कर्ष ही ले सकते हो। अरे मैंने कहा भाई उत्कर्ष ले सकता हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी आ जाए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, समझे ना। अगर 10 साल पहले भी कहानी आ जाती थी किसी और को जीते लेके मैं बना देता, उत्कर्ष बच्चा था, तो वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। वो तो मेरे लिए फिल्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं फिल्मकार पहले हूँ, बाप बाद में हूँ। हमेशा मैं सबको समझाता हूँ, लोग उल्टा सोचते हैं, शायद लोगों का मानसिकता ऐसी है, वो खुद ऐसे हैं तो ऐसे लिए सोचते हैं, मैं किसी को बदल तो नहीं सकता। तो बस जब कहानी आ गई मुझे लगा एटम बम आ गया तो मैंने फोड़ दिया।
4: और क्या फोड़ा, बट गदर थ्री का कोई प्लानिंग है या?
3: बिल्कुल प्लानिंग है, गदर थ्री की कहानी बदस्तूर चल रही है, वही स्ट्रगल जारी है कि जब लगेगा कि गदर वन और गदर टू से बेहतर है मैं लेके आऊंगा। मेरे पास तो सनी भी है, अनुषा भी है, जीते भी है, जी भी है, सब है, मेरे लिए तो बड़ा आसान है शुरू कर देना। लेकिन वो लेवल की स्टोरी तो होनी चाहिए, क्योंकि गदर एक मेरी फिल्म नहीं है, गदर ऑडियंस की फिल्म है। गदर में जब भी बनाऊंगा, जब मुझे एज ए ऑडियंस लगेगा कि इससे बेटर नहीं हो सकती गदर थ्री, तभी बनाऊंगा। और मेरा काम चालू है, ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हो सकता है 2027 में या 26 में सम टाइम हम इसको अनाउंस करें।
1: चलिए सिनेमा के बाद रुक कर लेते हैं विकास के एक नए इबारत का। आज देश को एक और नया एयरपोर्ट का तोहफा मिला है। दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनता के लिए फाइनली खुल चुका है। इसी के साथ सालों का इंतजार भी खत्म हो गया है।
5: बिल्कुल, जेवा एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किसानों ने पहली फ्लाइट ली, और जिन किसानों की जमीन एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई थी, इससे पहले जब एयरपोर्ट पर विमान उतरा तो वाटर कैनन से स्वागत किया गया। देखिए किस तरह से सल्यूट दिया गया, वाटर कैनन से सल्यूट दिया गया इन विमानों को। ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा और इसमें 30 एकड़ का कार्गो हब भी बनाया गया है। तो अपने आप में शानदार ये एयरपोर्ट बनकर अब तैयार है। तो अब दिल्ली NCR के लोगों को हर बार IGI एयरपोर्ट नहीं जाना होगा, अब वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जा सकते हैं।
1: और अब बात उस पहल की जो हम सब के लिए एक सीख है। दिल्ली NCR की सड़कों पर लंबे जाम, कारों की कतारें आम है, लेकिन गाजियाबाद के विवेक अरोड़ा ने इसी समस्या में एक ऐसा समाधान ढूंढ निकाला जो अब सैकड़ों लोगों के सफर को आसान और मजेदार बना रहा है।
2: विवेक अरोड़ा के कारपूल मॉडल में लोग अपनी खाली सीटें साझा करते हैं, साथ सफर करते हैं, खर्च बांटते हैं और रास्ते भर नई दोस्तियां भी बना लेते हैं। नतीजा यह है कि ऑफिस जाने का रोज का बोरिंग सफर अब फन राइड में बदल रहा है। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल कम खर्च करें, पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? तो आप कह सकते हैं कि कार पूलिंग कर लें, एक ही जगह से अगर एक ही लोकेशन की तरफ कई लोग जा रहे हैं तो वो एक ही कार में चले जाएं, बजाय इसके कि अलग अलग कार लेकर जाएं। ये फॉर्मूला है तो बहुत पहले से, लेकिन अक्सर ये फॉर्मूला काफ़ी हद तक किसी एक सोसाइटी में या किसी एक मोहल्ले में सिमट कर रह जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ने इस कार पूलिंग के फॉर्मूले को इतना सक्सेसफुल बना दिया कि वो आज एक मॉडल के रूप में सबके सामने हैं और सैकड़ों लोग उनके इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रोज एक दूसरे का साथ देते हुए ऑफिस जाते हैं, ऑफिस आते हैं।
1: ये है हिमांशु, गाजियाबाद में रहते हैं और गुरुग्राम में नौकरी करते हैं। पिछले 10 साल से हिमांशु रोज अपनी कार से इस लंबे सफर पर निकलते रहते हैं, लेकिन अब सफर शुरू होते ही सबसे पहले कार का इंजन नहीं बल्कि एक फोन कॉल एक्टिव होता है।
2: तो ठीक है बसंत, 2-3 मिनट में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे को हार्डली 10 मिनट्स लेंगे आपके पास तक पहुँचने में, तो आप आ जाइएगा ना।
1: कुछ ही देर में रास्ते में नैना और अनुज भी साथ जुड़ जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कभी ये सभी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप ने इन्हें जोड़ा और आज ये रोज साथ ऑफिस जाते हैं। ऑफिस आने जाने के तमाम संघर्ष के बीच गाजियाबाद के विवेक अरोड़ा ने 2016 में एक ऐसी पहल शुरू की जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी आसान बना दी।
3: देखिए शुरुआत ऐसे हुई कि खुद को भी लगा कि कुछ होना चाहिए, तो एक इंटरनेट पे सर्च करके एक फ्रेंच कंपनी है जो वर्ल्ड ओवर कारपूलिंग करती है, तो उनकी ऐप के थ्रू जाना शुरू किया। कोई साथ वाले मिले, इंदिरापुरम वाले थे, उन्होंने ऐसी बातचीत में कहा कि विवेक ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ऐसा कुछ शुरू करो, तो वहाँ से शुरुआत की। उनके साथ मिलके 2-3 बार ट्रैवल किया, तो व्हाट्सएप बनाया और फिर प्राइमरीली जो हमारा ये ग्रुप बना है।
4: चले फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे अमेरिकी पुलिस पर चढ़ा है फुटबॉल का फीवर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: 48, 49, 50
7: What you doing?
6: Oh, hey Watson, just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
7: No, Buzz, we get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months.
6: More expensive when we're needed most? Weird flex.
7: Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E. Then it's the same predictable rate every month.
8: Learn more at APGE.com.
9: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover. Interested in what's going on around the world?
10: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
9: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: देखिए फुटबॉल का जुनून जब शहर पर छा जाए ना तो पुलिसिंग का अंदाज भी यहाँ पर बदल सा जाता है। फीफा विश्व कप के रंग में रंगे शहर में पुलिसकर्मी सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था संभालते ही नहीं दिखे बल्कि प्रशंसकों के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। बॉस्टन में सिटी हॉल प्लाजा में आयोजित फीफा फैन फेस्ट के पहले दिन ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां बॉस्टन पुलिस के अधिकारी स्थानीय और दुनिया के अलग अलग देशों से आए फुटबॉल प्रेमियों के साथ उत्सव में शामिल हुए। किसी ने सेल्फी ली, किसी ने बातचीत की, हर ओर फुटबॉल के प्रति दीवानगी ही नजर आ रही थी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला। That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
15: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
16: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
15: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
17: You're listening to MSNBC.
15: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
18: Today.
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
12: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
11: अविश्वास में विश्वास बसता है.
19: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
15: गुड न्यूज टुडे.
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
19: तो नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक. आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप. डेंगू एक ऐसी बीमारी जो जानलेवा होने के साथ साथ तेजी से फैलने के लिए भी जानी जाती है. आमतौर पर इसे बारिश के मौसम से जोड़कर देखा जाता है. बारिशों में जहां बरसती बूंदे राहत लेकर आती हैं मच्छरों से, लेकिन उनकी बढ़ती तादाद डेंगू के खतरे को कई गुना बढ़ा देती है. लेकिन हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उनका कहना है कि डेंगू अब सिर्फ एक मौसम या बरसाती मौसम से जुड़ा खतरा नहीं है, बल्कि अब ये सिलसिला पूरे साल जोखिम बनकर हमारे ऊपर मंडराने लगा है. आज पूरे भारत के लगभग हर क्षेत्र में डेंगू अपने पांव पसार रहा है. घरों में, गलियों में, हर कस्बे में, हर शहर में डेंगू की जो उसका विस्तार है वो हो रहा है. हमें डेंगू के बढ़ते प्रकोप को यहीं रोकना होगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता. और इसीलिए इस मुहिम की शुरुआत, क्योंकि डेंगू की सही समझ, इसके रोकथाम के उपाय और यही मकसद है ऑल आउट की इस मुहिम का. साथ लड़ेंगे डेंगू से इन एसोसिएशन विद आज तक. आज विश्व डेंगू दिवस है और इस पर हम इस बीमारी से जुड़े कई अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, ताकि इस बीमारी को भी कम कर सके और इससे होने वाली मौतें रोक सके. आखिर डेंगू फैलता कैसे है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, मरीज को अस्पताल ले जाना कब जरूरी हो जाता है, इसके असर को भी समझेंगे. डेंगू के बारे में क्या मिथक फैला दिए जाते हैं और सबसे अहम, क्या हम अपने घर, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखकर डेंगू को रोक सकते हैं? इन तमाम सवालों पर आज बड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है जिसमें कई शख्सियतें हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर तनु जैन। ये हेड है नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेस कंट्रोल की। डॉक्टर निवेदिता गुप्ता हेड है डिविजन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली में। और डॉक्टर संजीव बगई हमारे साथ चेयरमैन नेफ्रॉन क्लिनिक सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नेफ्रोलॉजिस्ट पद्मश्री अवार्डी जुड़ रहे हैं। संजय सरीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कॉन्टिनेंटल लीग एशिया एंड साउथ एशिया डायरेक्टर हैं DNDI के। और खास मेहमान रतनजीत दास जी हमारे साथ हैं। तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। CEO हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिटर्न कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के, जिनका एक प्रोडक्ट हर घर में मौजूद रहता है, ऑल आउट को वो हेड करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ संजीव बगई जी शुरुआत करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि अभी तक हम ये मानते थे कि भाई कुछ महीने आ रहे हैं, है ना, तो उन दिनों सिर्फ हमको बचना है किसी तरह डेंगू से। लेकिन डेंगू के मच्छर ना पनपे ना फैले क्या क्या प्रिकॉशन रखने की जरूरत है? ये क्या वाकई एक जानलेवा बीमारी है जिससे हम लोग को अभी से सतर्क होना चाहिए?
18: जो डेंगू अब हम चर्चा कर रहे हैं ये खाली मॉनसून में सीमित नहीं है। जो डेंगू की जो इन्फेक्शन है 12 महीने देखी जाती है, पर मॉनसून में ज्यादा इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, बारिशों के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण। जो इंडिविजुअली हमें करना चाहिए, अपना घर साफ रखना चाहिए, फ्लावर पॉट्स, वाटर कूलर्स में पानी नहीं स्टैग्नेट होना चाहिए। जो लोकल आपके घर के आसपास कोई अगर वाटर स्टैग्नेशन है वो प्रिवेंट करें। जो फीवर है उसको ठीक तरह क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेक करना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी टेस्ट कराना फॉल्स नेगेटिव आता है, अगर आप डिले कर दे तो फॉल्स नेगेटिव आता है। तो जो आपका विंडो पीरियड है ब्लड टेस्ट के लिए वो इम्पोर्टेंट है। हर पेशेंट को केयरफुली एग्जामिन करें, स्पेशली स्किन, क्योंकि उसमें लक्षण देखे जाते हैं। डेंगू जानलेवा हो सकता है, स्पेशली बच्चों में, एल्डरली में और जिनमें कोमॉर्बिड हो। अब जो देखा जा रहा है क्योंकि डेंगू की रिपीट अटैक्स हो रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है जैसे आपका प्रोग्राम बढ़ेगा मैं आई विल बी हैप्पी टू शेयर, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट, यानी हर सब्सिक्वेंट अटैक डेंगू का। सो आपको चार अटैक पोटेंशियली लग सकते हैं। एक बारी डेंगू हुआ उसका ये मतलब नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन हो, हर सब्सिक्वेंट अटैक मोर सिवियर हो सकता है।
19: डॉक्टर तनु जैन मुझे पता नहीं उनकी बातों से हिम्मत कितनी बढ़ी और कितना डर और लगा है, बट इतने तरह तरह के बुखार, भाई अब वायरल बुखार एक चल पड़ा है जो 6 दिन 8 दिन तक चल रहा है, हाई फीवर, मतलब तरह तरह के वायरल फीवर्स होते हैं जो हम सुनते हैं बहुत सारे। कुछ घर में कहते हैं कि भाई 2-3 दिन जुकाम लग गया है आपको, 2-3 दिन का बुखार है फिर ठीक हो जाएंगे, बट क्या डिफरेंशिएटर क्या है जब कोई सतर्क हो जाए कि भाई नहीं दिस इज सीरियस, आपको जाने की जरूरत है डॉक्टर के पास?
20: ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि बुखार तो होता ही है इस सीजन में, जैसा आपने कहा कि बरसात का सीजन आता है तो वायरल इन्फेक्शन, खांसी जुकाम भी होता है, मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है और भी कई सारी जो वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं वो भी बुखार के साथ। तो जैसा फीवर जो होता है वो एक सिंड्रोम है, मतलब इट इज़ नॉट क्लियरली इंडिकेटिंग कि आपको है क्या। तो अगर नॉर्मल बुखार है, खांसी जुकाम के साथ है, तो आप 1 या 2 दिन उसको आप वेट करके देख सकते हैं खाली पैरासिटामोल ने। ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बताने वाली है कि कोई भी और दवाई का सेवन ना करें क्योंकि डेंगू में ये स्पेशली खतरनाक हो सकता है। 3 या 4 दिन के बाद भी अगर बुखार नहीं उतर रहा है, और जैसे डेंगू का जो लिटरल मीनिंग है वो ब्रेक बोन फीवर है, यानी बहुत तेज बॉडी एक होता है, दर्द होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, और ये बहुत सिवियर पेन होता है और काफ़ी रैशेस भी आ सकते हैं बॉडी के ऊपर, तो वो देखना भी जरूरी है। अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली आपको डेंगू हो सकता है। तो सेल्फ ट्रीटमेंट कम करें लेकिन पैनिक ना क्रिएट करें। आप 1st, 2nd और 3rd डे वेट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है या 5 दिन बाद आपका बुखार उतर गया है फिर भी आप ठीक नहीं फील कर रहे, आपको लग रहा है आपको ठीक नहीं लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं या रैशेज नजर आ रहे हैं, ये डेंजर साइंस होते हैं, इस वक्त आपका जाना बहुत जरूरी है। और एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि प्लेटलेट्स के लिए कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लेटलेट काउंट तो 10,000 के नीचे जाना शुरू हो या 10,000 के आसपास आता है तभी एक टेंशन की बात होती है। भारत सरकार के द्वारा अभी क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं डेंगू मैनेजमेंट की, चिकनगुनिया की, मलेरिया की, ये सारी अभी दोबारा से रिवाइज की गई हैं और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग चल रही है और केस फेटालिटी रेट बहुत कम हो गया है।
19: डॉक्टर निवेदिता, कोमॉर्बिडिटीज की बात करते हैं कि भाई आपको पहले से अन्य बीमारियां कुछ हैं या आजकल डायबिटीज तो वैसे ही एक एपिडेमिक की तरह देश में है, ब्लड प्रेशर से कई लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इसमें क्या खास ध्यान रखने की जरूरत है?
20: पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें डेंगू सीवियर क्यों हो सकता है। सो जैसा कि पहले बताया गया कि डेंगू के जितने भी इन्फेक्शन होंगे, चार अलग सीरोटाइप होते हैं डेंगू की, और आप अपनी लाइफ में चार बार इन्फेक्ट हो सकते हैं। और ये जो इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज होती हैं, ये एक दूसरे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करती हैं। तो अगर आप डेंगू वन से इन्फेक्ट हुए तो आप टू के लिए फिर भी ससेप्टेबल हैं, आप टू से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो बुजुर्गों में क्या होता है कि ऑलरेडी कई सारे डेंगू इन्फेक्शन हो जाते हैं, और डेंगू जितनी बार होता है, सेकेंडरी टर्शरी डेंगू इन्फेक्शन जब होते हैं तो वो ज़्यादा सीवियर होते हैं। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों में जो इम्यून सिस्टम होता है वो बनने की स्टेज में होता है, वो वीक इम्यून सिस्टम होता है, इसलिए बच्चों में डेंगू इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। और अगर छोटे बच्चे हैं तो वो ठीक से अपने सिम्टम्स बता भी नहीं पाते हैं, और इसलिए ये कई बार अनदेखा हो जाता है। तो इसमें एक तो इम्यून सिस्टम ठीक से नहीं बना है, प्लस वो बता भी नहीं पा रहे हैं, तो दिस कैन लीड टू सीवियर इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन। और इसीलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो हॉलमार्क साइंस डॉक्टर तनु ने बताए कि हमें जो है जल्दी देखना है कि वॉमिटिंग ना हो, पेट में दर्द ना हो, बच्चा अननेसेसरली रो ना रहा हो, ये सारे सिम्टम्स, और यूरिन आउटपुट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्लूइड लीकेज और शॉक हो रहा है सीवियर डेंगू में तो यूरिन आउटपुट अपने आप कम हो जाएगा।
0: अब आपके पास मैं संजय सरीन जी आना चाहती हूँ। आपकी जो संस्था जिससे आप जुड़े हुए हैं, DNDI जैसी संस्थाएं, ये क्या कर रही हैं डेंगू के नियंत्रण के लिए?
21: जैसा कि अभी कहा गया, डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ज़्यादातर केसेस में पेशेंट्स को सपोर्टिव केयर के साथ मैनेज किया जाता है, और यही कारण है कि डेंगू के लिए और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को लाना बहुत ज़रूरी है। सो DNDI या ड्रग्स फॉर निगलेक्टेड डिजीजेज इनिशिएटिव एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा फोकस है रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर, और हम एक डेंगू अलायंस के तहत डेंगू के लिए नई दवाइयाँ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सो डेंगू अलायंस के तहत इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया और ब्राज़ील, जहाँ पे डेंगू के काफ़ी केसेस पाए जाते हैं, ये लोग सभी मिलकर रिसर्च कर रहे हैं डेंगू की नई ट्रीटमेंट ऑप्शंस बनाने के लिए।
0: अब आते हैं रतन जी दास जी के पास, आप CEO हैं, और इसीलिए आपसे मेरा सवाल ये है कि आपका ये पूरी मुहिम चलाने के पीछे क्या वजह है, और आप इसको कैसे देश तक पहुंचाना चाहते हैं?
22: सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डेंगू मच्छरों से फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है जो बढ़ती जा रही है दुनिया में, और इसका असर हम अपने देश में भी बहुत देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इसके बारे में लोगों को कुछ खास पता नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये खतरनाक बीमारी एक मच्छर से कैसे फैलता है, और उसके लिए उनको क्या क्या सावधानी बरतनी है, और उससे कैसे वो बच सकते हैं। ऑल आउट ने साथ लड़ेंगे डेंगू से एक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य यह है कि हम किस तरीके से अवेयरनेस बिल्ड करें, हम लोगों को बताएं कि अपने आप को कैसे बचाएं, अपने परिवारों को कैसे बचाएं, और ऐसे क्या क्या चीज़ें करें जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें मिलकर इस पे बहुत काम करना है।
0: डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अब कई लोग ये भी मानते हैं कि शहरों के इलाके हैं, साफ हैं बिल्कुल, तो वहां नहीं हो सकता डेंगू का मच्छर, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, पानी जमा होगा उसमें डेंगू के मच्छर होंगे। मतलब इस शो का मकसद, इस पूरे एक तरह से आंदोलन का मकसद यही है, भाई डेंगू इतने सालों से हो रहा है, उसकी वजह से मौतें ना हो, तो फिर उसमें जिम्मेदारी सबकी होती है कि वो डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोके।
20: ये आपने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, एंड इनफैक्ट ये जो डेंगू की बीमारी है वो सरकार या डॉक्टर से ज़्यादा आप सबके हाथ में है इसको कंट्रोल करना। ये एक ऐसी बीमारी है जो कम्युनिटी अगर अपना बिहेवियर चेंज कर ले तो ये बहुत कायदे से कंट्रोल हो सकती है। इंडिया के किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाइए, कहीं भी जाइए, आपको पॉलीथिन बैग्स हर जगह पड़े हुए मिलेंगे, एंड वो सारे के सारे ब्रीडिंग स्पॉट्स होते हैं। जैसे ही बारिश आती है या पानी कलेक्ट होता है उसमें ब्रीडिंग होती है, उसमें मच्छर पनपता है। एक रेलेवेंट एग्जाम्पल है सिंगापुर का। सिंगापुर में बहुत सारे इम्पोर्टेड केसेस डेंगू के आते हैं, लेकिन उनके वेक्टर कंट्रोल मेजर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वहाँ कम्युनिटी इतनी सेंसिटाइज्ड है कि वो लोग कभी भी डेंगू को पनपने नहीं देते, वो उसी स्टेज पे उसको रोक देते हैं। हमें सबको मिलजुल कर साफ सफाई रखकर ब्रीडिंग प्लेसेस को एलिमिनेट करना होगा, तभी डेंगू हमारे देश से कम होगा।
19: डॉक्टर बागई, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बॉडी पर क्या होते हैं?
18: ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने सब देखा है, सब लोगों ने देखा है द इफेक्ट ऑफ कोविड एज लॉन्ग कोविड, जिसे हम कहते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम और पोस्ट कोविड कंडीशन। 10-15% पूरे वर्ल्ड में लोगों को पोस्ट कोविड हो रहा है। एक एंटिटी अब कॉइन होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं पोस्ट डेंगू सिंड्रोम। 19% ऑफ डेंगू पेशेंट्स आफ्टर 300 डेज ऑफ इन्फेक्शन, ये कोलैबोरेटिव स्टडी है, 19% दैट इज इवन हायर देन पोस्ट कोविड, कंटिन्यू टू हैव मल्टी ऑर्गन सिम्टम्स, जिसमें से कार्डियक, जिसमें से पैल्पिटेशन, ब्लड प्रेशर चेंजेस, ऑटोनॉमिक फंक्शन चेंजेस, हार्ट रेट एबनॉर्मैलिटीज, किडनी का डिसफंक्शन, लिवर डिसफंक्शन, ब्रेन का डिसफंक्शन, इन चीज़ों के साथ ये लॉन्ग टर्म डैमेज या इफेक्ट रहता है। ये ऑल्सो ये देखा गया है कि क्योंकि ये एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करता है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी पर भी इम्पैक्ट करता है। तो इसका लॉन्ग टर्म मल्टी ऑर्गन का डिजीज का इसका बहुत ज्यादा असर रहता है। इसलिए द बेस्ट वे टू मैनेज दिस इज टू प्रिवेंट इट।
19: मिस्टर दास, आप किसको किस तरह से देख रहे हैं इसको, क्योंकि साल दर साल ये होता है और ये बहुत अच्छा है कि हम लोग ये शो कर रहे हैं ताकि लोग भी समझे कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, बट थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है कि भाई हर साल यही होता है।
22: जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये अब एक घर या एक परिवार का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है पूरे समाज का। जब तक हम एक साथ मिलके सारे स्टेक होल्डर साथ में आके नहीं काम करेंगे, इसका हल हम नहीं निकाल पाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो ये साथ लड़ेंगे डेंगू से का अभियान है, इससे हमारी ये कोशिश है कि हम किस तरीके से बाकी स्टेक होल्डर से मिलके काम करें। हमारा एक

0: अच्छा है और इसीलिए इंटरेस्टिंग है कि यहाँ रिसर्च के से भी लोग जुड़े हुए हैं और डॉक्टर्स भी हैं और मीडिया भी चाह रहा है कि ये घर तक, हर घर तक जानकारी पहुंचे. कम से कम हम इतना तो कर सकें कि डेंगू की वजह से मौतें ना हो, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने. डॉक्टर जैन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब इस डेंगू वायरस के बारे में जरा समझना चाहते हैं कि इस वायरस के कितने सीरोटाइप हैं और क्या उसके आधार पर डिपेंड करता है कि उस आपको जो अटैक हुआ या जिसको भी हुआ है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कितना गंभीर होगा.
1: वायरस एक वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होता है. तो वेक्टर जिसको हम टाइगर मस्किटो कहते हैं, एडीज एजिप्टाई या एडीज एल्बोपिक्टस होता है. इसका बहुत ही टिपिकल बिहेवियर है जो बाकी लोगों ने भी बताया, बट बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कहीं भी ब्रीड कर सकता है. और एक हफ्ते तक अगर क्लीन वाटर कहीं भी स्टैग्नेट कर गया तो वहां पे ब्रीडिंग हो सकती है. ये इंडोर भी हो सकती है और पेरिडोमेस्टिक में आउटडोर भी हो सकती है. इसका जो एग होता है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग उसका एक कैरेक्टर होता है कि वो एक साल तक ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है. तो जो हम कहते हैं स्क्रब करना है, तो अगर आपने ड्राई कर दिया और अच्छे से स्क्रब क्लीन नहीं किया और उसमें जब आप पानी डालेंगे तो 1 वीक के अंदर वो फिर से एग जो है लार्वा में बन के एडल्ट बनने का पोटेंशियल रखता है विद इन 7 to 10 days. सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज हैं, जो इंटरसेक्टोरल अप्रोच की बात हो रही है, तो ये किसी एक जने का काम नहीं है, ये सबको मिलजुल के करना है. उसमें सबसे बड़ा रोल कम्युनिटी प्ले करता है. तो एक ड्राइंग डे, बहुत से स्टेट्स हैं हमारे जो एक 1 day को ड्राइंग डे मनाते हैं. मतलब हर हफ्ते में एक बार आपको अपने घर के चारों तरफ चेक करना है कि कोई ब्रीडिंग प्लेसेस तो नहीं है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी. और 4 तरह के वायरस, जैसे कि अंजना जी ने मुझे पूछा है, ये Den 1, Den 2, Den 3 और Den 4 होता है. Den 2 बहुत विरुलेंट होता है, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रेन से पहले हो चुका है तो उसके बाद किसी भी सब्सिक्वेंट स्ट्रेन से जब आपको दोबारा से इन्फेक्शन होगा तो वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है.
0: डॉक्टर, आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें. इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी कि उसके जो एग्स हैं वो सर्वाइव करते हैं ड्राई कंडीशंस में भी अप टू अ ईयर, यू सेड एक साल तक. तो भाई हमने तो पानी पलटा और उसको समझ लिया कि अब तो हमने मच्छर भगा दिया है, फिर उसमें पानी डल गया, बाद में वो फिर से हो गया. तो ये तो मतलब ये एक नया एस्पेक्ट है जो हम सबको समझना पड़ेगा.
2: यस, तो एडिंग ऑन टू जो डॉक्टर तनु ने कहा, ICMR ने एक स्टडी करी थी, दिल्ली में ही करी थी, जिसमें लोकल RWS के साथ एंगेज करके जो नॉन ब्रीडिंग सीजन होता है, जो पोस्ट मानसून दिसंबर से लेकर अप्रैल तक के जो मंथ्स होते हैं, वो हर घर में सेलेक्टेड RWS के थ्रू हम लोगों ने हर घर में जाके हर एक ब्रीडिंग साइट चेक करी थी, पानी की टंकियां चेक करी थी, सारे गमले और जो भी पॉसिबल ब्रीडिंग साइट्स हो सकती थी. और हमें नॉन जैसे कहते हैं ना आउटब्रेक सीजन में काफ़ी सिग्निफिकेंट ब्रीडिंग मिली थी और हम लोगों ने सारे पॉट, सारे टायर्स, टंकियाँ नॉन ब्रीडिंग दिसंबर जनवरी के मंथ्स में क्लीन करवाई थी. और वैसे ही जैसे ये रेकमेंड कर रही हैं कि प्रॉपर स्क्रब करके क्लीन करा के, एंड देन जब नेक्स्ट डेंगी सीजन आया एंड वी कंपेयर्ड कि लास्ट सीजन के कंपैरिजन में इस सीजन में कितने केसेस हैं, तो देयर वाज अ ड्रास्टिक रिडक्शन.
0: और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े पर नजर डालें तो साल 2024 में दुनिया ने डेंगू का अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप देखा है. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम और आप तैयार होकर इन आने वाले महीनों में सावधानी के साथ बढ़े. एक साल में दुनिया भर में 1,44,00,000 से अधिक मामले, 11,000 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई. आप सोचिए कि डेंगू की वजह से इतने दशकों के बाद भी अगर 11,000 लोग मर रहे हैं तो कुछ तो हमें करना होगा. साल 2025 में ये बीमारी दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों तक पहुंच गई. सवाल यह है कि क्या डेंगू अब एक मौसमी बीमारी ना रहकर वैश्विक स्वास्थ्य चैलेंज बन गया है. अब हम जैसे ही इस कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ. और 2 या 3 चीजें जो आप सोचते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेंगू आया तो यहाँ पर दिमाग सबसे ज्यादा जाना चाहिए, आपसे शुरू करते हैं.
3: जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत जरूरी है जिसके अंदर प्रिवेंशन भी रहे, डायग्नोस्टिक्स भी रहे और रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर भी सरकार को एफर्ट रखनी चाहिए ताकि भीषण केसेस में या गंभीर केसेस के अंदर हम पेशेंट्स को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मुहैया करा सकते.
4: ये हमने बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि अगर पहला फीवर कम हो वो पूरी तरह बीमारी नहीं गई है, इट इज कैन कम बैक अगेन, एंड उस टाइम प्लेटलेट्स गिरते हैं. प्लेटलेट्स के बारे में ज्यादा आप फिक्र मत करिए. बेस्ट वे टू प्रिवेंट प्लेटलेट्स फॉलिंग इज टेक लॉट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब आपको हाइड्रेट रखना है.
0: डॉक्टर तनु जैन, और भी कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जिसमें बच्चे अगर शाम में खेलने वेले जा रहे हैं तो आप कैसे कवर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस मच्छर को कैसे पहचान सकते हैं, ये कब निकलता है, वो आप जल्दी से बता दें.
1: बच्चों का खास करके है, या बच्चे हों या बड़े हों, पर्सनल प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ये डे बाइटर है और दिन के टाइम पे काटता है, इनडोर रेस्टिंग है. तो यानी दिन में घर के अंदर है या स्कूल्स के अंदर

0: है जब बच्चे होते हैं स्कर्ट्स पहने हैं या शॉर्ट शॉर्ट्स पहने हैं तो वो टेबल के नीचे डार्क ह्यूमिड प्लेसेस वो प्रेफर करता है. मॉर्निंग आवर्स से लेके इवनिंग आवर्स तक वो काट सकता है. और एक मच्छर 100 to 300 meters ही इसकी फ्लाइट रेंज है, पर एक मच्छर 10 से 15 लोगों के काटने के बाद अपना ब्लड मील खत्म करता है. दैट मीन्स इट कैन इन्फेक्ट, वन मॉस्किटो कैन इन्फेक्ट अप टू 10 to 15. दीज आर द रिकॉर्ड्स विच आर अवेलेबल.
1: डॉक्टर निवेदिता गुप्ता,
2: तो हमें ये साइंस जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सिवियर बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है, लिथार्जी हो रही है और उसके बाद वॉमिटिंग्स हो रही हैं, ये सब साइंस हैं कि बॉडी में फ्लूइड लीकेज शुरू हो गया है. तो ये साइंस जैसे ही डेवलप होते हैं हमें तुरंत मेडिकल केयर सीक करनी चाहिए, चाहे हमारे प्लेटलेट काउंट्स नॉर्मल रेंज में भी हो. तो
1: साथ लड़ेंगे डेंगू से, जान बचाएंगे डेंगू से. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. आप लोगों का भी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
4: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
5: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
6: You're listening to CNBC.
7: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
8: Keep it on smooth jazz.
9: This is Roots Reggae
10: exclusively on TuneIn.
11: This is classic hip-hop
12: exclusively on TuneIn.
5: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
13: जिम्मेदारी इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
15: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
14: अविश्वास में विश्वास बसता है
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
16: गुड न्यूज टुडे.
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का दौरा खास बन गया है। ब्रातिस्लावा पहुंचते ही उनकी गर्मजोशी से स्वागत की यहां पर तैयारियां भी की गई थी, स्वागत किया गया। स्वागत की सबसे खास बात यह रही कि भारतीय और स्लोवाक संस्कृति का शानदार मेला यहां पर लगा हुआ दिखाई दिया। यहां पर मशहूर ग्रुप ने अपने अंदाज में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की प्रस्तुति दी, जिसने सभी का दिल जीत लिया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
2: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर, लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। जी हाँ, डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल से नहीं, बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जहां पर साफ पानी भरा हुआ हो, यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है। लेकिन यह लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा, और इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और जीएनटी ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएं, जैसे घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचाकर रखें, और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित रूप से इस्तेमाल जरूर करें। जब घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और जीएनटी के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
9: रेतीले तूफान की चादर में ढका राजस्थान का चूरू शहर, 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, भरी दोपहरी में विजिबिलिटी हुई शून्य। दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छिटपुट बारिश, पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। आम के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट, अलग अलग राज्यों की 70 से ज्यादा वैरायटीज मौजूद, गुलाब खास, अंगूरदाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वाद की दीवानगी। दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत, G7 की बैठक में होगी ट्रंप के साथ मुलाकात। नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार वापसी, भारत ने अमेरिका को 3-2 से हराया, दीपिका ने दागे जोरदार 2 गोल। ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर होगी पाबंदी, प्रधानमंत्री की स्टामर का बड़ा ऐलान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात एक ऐसे संत की जिनके चमत्कार की कहानियों से दुनिया अभिभूत रही है। आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनके अनुयायी उन्हें भगवान मानते हैं। हम बात कर रहे हैं नीब करौरी बाबा की, जिनकी आस्था का सैलाब आज उत्तराखंड की वादियों में मुड़ा हुआ है। मौका है कैंची धाम में बाबा नीब करौरी धाम के स्थापना दिवस का। नैनीताल में बाबा नीब करौरी के कैंची धाम में धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में बाबा नीब करौरी के भक्त कैंची धाम पहुंचे हैं। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों इस मंदिर में लोगों की इतनी ज्यादा आस्था है। हम आपको बाबा नीब करौरी के चमत्कारों की कहानियां भी सुनाएंगे और साथ ही ये दिखाएंगे कि अमेरिका जैसे देश में भी कैसे भारत के एक संत के प्रति लोगों के दिलों में श्रद्धा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आखिर इस बार कैंची धाम का स्थापना दिवस कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: लगी लंबी लंबी कतारें। कड़ी धूप में बड़े धैर्य के साथ अपनी बारी आने का इंतजार करते श्रद्धालु। ये तस्वीरें नैनीताल के कैची धाम की है। मौका है बाबा नीप करौरी के आश्रम में सालाना भंडारे का। आश्रम में भंडारे के पहले दिन बाबा के दर्शन और प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
1: आस्था बाबा में बहुत है, मैं लगभग 25 बार आ चुका हूँ। मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ और भंडारे में इस स्थापना दिवस पर पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है और ऐसी भक्ति ऐसी शांति पहले कहीं और देखने को नहीं मिली।
2: गुड़गांव हरियाणा से आया हूँ, आस्था है तभी आए हैं, बहुत आस्था है। बाबा ने चमत्कार किया, मैं पिछले 4 साल से आ रहा हूँ, जब से आया हूँ जब से मेरा जीवन बदल गया।
0: ये भीड़ बताती है कि नीप करौरी बाबा के प्रति भक्तों में कितनी आस्था है। हर साल 15 जून को मंदिर के स्थापना दिवस पर यहाँ 2 दिन का मेला लगता है जिसमें हजारों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इस बार भी बाबा नीप करौरी के प्रति आस्था देश और विदेश से हजारों भक्तों को यहाँ खींच लाई है।
3: विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर आज कैंची धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। देश और दुनिया से हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए और बाबा का महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए कैंची धाम पहुंच रहे हैं। सुबह से ही कैंची धाम बाबा के जयकारों से गूंज रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ रही है। मान्यता है कि बाबा के दरबार में जो भी सच्ची श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। आईजी कुमाऊं, कमिश्नर कुमाऊं, डीएम और एसएसपी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कैची धाम से आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह केवल एक मेले की नहीं बल्कि बाबा नीम करौली महाराज के प्रति करोड़ों लोगों की अटूट आस्था और विश्वास की कहानी बयां कर रही हैं।
0: वैसे तो नीम करौली बाबा के मंदिर देश में कई स्थानों पर हैं, लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल में बाबा का मुख्य धाम है। कैची धाम नाम का ये पवित्र स्थल उत्तराखंड में नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाबा नीप करौली का ये धाम दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहा है।
4: मेरी बहुत आस्था और मैंने बहुत सारे ऐसे अपने जीवन में चमत्कार देखे जिन्हें मैं मतलब इसलिए बाबा जी को बहुत मानती हूँ और आज मेरा सौभाग्य है जो मैं बाबा जी की इधर आई हूँ और बाबा की ही कृपा है। बिल्कुल, और मैं तो हमेशा जब इंतजार नहीं, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जरूर आती हूँ।
5: हजारों की तादाद में भक्त यहाँ कैची धाम में पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे सब लोगों में बहुत ही उत्साह है। महाराज जी का आशीर्वाद सभी को चाहिए और उसके लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ देश विदेश से आए हुए हैं। बहुत एक अच्छा यहाँ पर एक माहौल चल रहा है।
0: बताया जाता है कि बाबा नीप करौरी पहली बार 1961 में कैची धाम आए थे। तब उन्होंने अपने पुराने दोस्त पूर्णानंद जी के साथ मिलकर आश्रम बनाने का विचार किया था और इसके बाद 1964 में यह आश्रम बन गया था। कैची धाम में 1965 से मंदिर के स्थापना दिवस पर विशाल भंडारा लगता है। कहा जाता है कि बाबा नीप करौरी ने खुद ही इस भंडारे की शुरुआत की थी। तब से हर साल बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस मौके पर यहाँ पहुँचते हैं। कैची धाम में अब की बार बजरंग बली की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। दरअसल इस बार का स्थापना दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल यहां हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के 50 साल पूरे हुए हैं। बताया जाता है कि 15 जून 1976 को यहां हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी। इसके बाद से हर साल 15 जून को यहां पर प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में स्थापना दिवस मनाया जाता है। मान्यता है कि बाबा नीप करौरी महाराज हनुमान जी के परम भक्त थे और अपने पास आने वाले श्रद्धालुओं को भी हनुमान जी की पूजा प्रार्थना के लिए प्रेरित करते थे। बाबा में आस्था रखने वाले उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं।
6: देखते हैं महाराज जी के बारे में बहुत सारी बातें चर्चा होते हैं, पर फैक्ट ये है कि हमने जो बचपन से देखा सुना वो ये था कि जो भी महाराज जी के पास आता था महाराज जी उसे सबसे पहले कहते थे जाओ हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाओ। और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के लिए कह देते थे और विदा कर देते थे।
0: श्रद्धालु बताते हैं कि बाबा का बसाया कैची धाम उन तीर्थ स्थलों में से है जहां आने पर लोगों को परम शांति और ईश्वर से नजदीकी का आभास होता है। शायद यही वजह है कि यहां इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। यूं भी बाबा नीब करौरी ने वर्षों पहले भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग चींटियों की तरह कैची धाम आएंगे और यहां एक पूरा शहर बस जाएगा। आज नैनीताल के इस क्षेत्र में उनकी बात सच होती दिखती है।
3: बाबा भविष्य वक्ता भी थे। बाबा ने एक बार कहा था कि कैची धाम एक समय ऐसा आएगा जब कैची धाम में भक्त चींटियों की तरह आएंगे और यहाँ एक शहर बस जाएगा, जो अब भविष्यवाणी उनकी चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। बाबा के दरबार में जो कोई भी भक्त आता है और श्रद्धा से विश्वास से बाबा से कुछ भी मांगता है तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, और इसी श्रद्धा और विश्वास की वजह से देश और दुनिया से हजारों भक्त आज कैची धाम पहुँच रहे हैं।
0: अब की बार भी कैची धाम में मनाए जा रहे स्थापना दिवस के उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। आपको बता दें, कैची धाम में स्थापना दिवस के मौके पर भक्तों को विशेष प्रसाद दिया जाता है, जिसे बनाने की तैयारी कई दिन पहले शुरू हो जाती है। स्थापना दिवस के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं को विशेष मालपुए का प्रसाद दिया जाता है। इसके लिए कई दिन पहले से ही आश्रम में कई बड़े बड़े चूल्हों पर ये महा प्रसाद तैयार किया जाता है। बताया जा रहा है कि अब की बार मथुरा और वृंदावन से 45 अनुभवी कारीगरों ने आकर मालपुए के इस विशेष प्रसाद को तैयार किया है। कैची धाम में स्थापना दिवस की अद्भुत छटा बिखरी है। भंडारे से उठ रही प्रसाद और पकवानों की महक हवाओं में घुली है। जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिर परिसर रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ है। स्थापना दिवस समारोह के लिए पूरे मंदिर परिसर को कई दिन पहले से शानदार लाइटिंग से सजा दिया गया था। जैसे ही पहाड़ों पर शाम ढलती है, पूरा धाम रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो उठता है। आश्रम का ये भव्य और दिव्य स्वरूप यहाँ पहुँचने वाले हर श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर रहा है। श्रद्धा, समर्पण और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर ये माहौल बता रहा है कि इस बार स्थापना दिवस पर श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। माना जा रहा है कि इस बार दो दिनों के इस उत्सव में शामिल होने के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं। लिहाजा श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन, सुरक्षित आवागमन और सुविधाजनक यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए नैनीताल पुलिस और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है और लोगों से नियम कायदों का पालन करने की अपील भी की है, ताकि कोई परेशानी ना हो। कैची धाम में मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और जाम की स्थिति से बचने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 400 से ज्यादा गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था है।
7: 1500 प्लस पुलिस पर्सन्स हैव बीन डिप्लॉयड हियर। 4 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीस इंक्लूडिंग बी हैव बीन डिप्लॉयड। अपार्ट फ्रॉम दैट 8 एडिशनल एसपीस, 14 सीओस एंड स्पेशल यूनिट्स, इफ आई स्टार्ट नेमिंग फायर, पीएसी, एलआईयू, सीपीयू, ट्रैफिक, BDS, ATS has been deployed, and Ministry of Home Affairs have sanctioned the paramilitary for us, and 2 company paramilitary forces are in the area. I want to assure you that you come from any part of the Kumaon, you can reach this place in 1.5 hours. That is our challenge. That is the criticality and the refinedness of our arrangements, where we have given shuttle systems and no entries for all heavy vehicles and shuttle systems from various places.
0: वैसे तो साल भर इस कैची धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन धाम के स्थापना दिवस का अवसर इतना खास है कि इस मौके पर बाबा नीब करौरी में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति यहां जरूर पहुंचना चाहता है। स्थापना दिवस पर नीब करौरी बाबा के कैची धाम में आकर लंदन और फ्रांस के विदेशी भक्तों से लेकर देश भर से तमाम भक्त पहुंचते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाकर धन्य हो जाते हैं।
8: I decided to dedicate my life to service to Maharaji. So now in America, I do Maharaji Seva only. And I had been hoping and praying to come here, and some other devotees supported me and paid for my trip. So now I'm here and I'm able to be in his presence.
0: आज हम नीब करौरी बाबा के चमत्कारों की कहानी आपको सुनाएंगे, उनके विश्व विख्यात भक्तों की फेहरिस्त दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बाबा के आशीर्वाद से उनकी तकदीर बदल गई। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: देखिए, विश्वास के बारे में यही सबसे अनोखी बात है, विश्वास है तो सब कुछ है। बाबा नीब करौरी और उनके चमत्कारों पर ये भक्तों का विश्वास ही है जिसने उन्हें भगवान का दर्जा दिया है। और इन्हीं अनुयायियों में कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिन्हें सारी दुनिया जानती है, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल और टेक जगत के बादशाह भी बाबा के भक्तों में शुमार हैं। जरा सोचिए, देश अलग, धर्म अलग, रहन सहन अलग, आचार विचार अलग, यहां तक कि जिंदगी जीने का तरीका भी अलग। फिर ये कौन सी बात है जिसने इन अमेरिकन्स को बाबा नीब करौरी का मुरीद बना दिया? आखिर बाबा ने ऐसा कौन सा आशीर्वाद दिया था कि टेक जायंट्स से लेकर हॉलीवुड के सुपरस्टार्स तक उनकी याद में श्रद्धा के साथ सिर झुकाते हैं?

0: कंबल में लिपटा शरीर, चेहरे पर मुस्कान, साधुओं की वेशभूषा से कोसों दूर, कोई माला नहीं, त्रिपुंड नहीं, कुछ ऐसे थे बाबा नीप करोरी। उन्हें देखकर यकीन होता था कि मठ और गढ़ चलाने वाले सन्यासियों के वैभवशाली संसार से इतर एक संसार उन योगियों और तपस्वियों का अब भी है, जहां इंसान की मुक्ति के रास्ते तलाशे जाते हैं। वो बाबा जो मनुष्य के हृदय को पढ़ लेते, वो बाबा जो लोगों के दिमाग को भांप लेते और अपने आशीर्वाद से उनकी किस्मत सवार देते। आज नीप करोरी बाबा दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आश्रम में जुटा श्रद्धालुओं का ये सैलाब इस बात की गवाही देता है कि भक्तों के मन पर आज भी उनकी कितनी गहरी छाप है। यही वजह है कि कैंची धाम का साधक पूरे साल कहीं भी रहे, लेकिन 15 जून को नैनीताल के कैंची धाम जरूर पहुंचता है, मंदिर का स्थापना दिवस मनाने और बाबा का आशीर्वाद लेने। बाबा नीप करोरी और उनके इस आश्रम के चमत्कार से जुड़ी कई कहानियां यहां आज भी सुनाई जाती हैं। पहली लीला तो बाबा के जन्म स्थान फिरोजाबाद से ही जुड़ी है। ये उस समय की बात है जब बाबा गुजरात के वैष्णव मठ से साधना करके फिरोजाबाद के नीप करोरी गाँव जा रहे थे। उस समय उनकी उम्र महज 17 साल थी। बताया जाता है कि किसी कारण से टीटी ने बाबा को रेलगाड़ी की फर्स्ट क्लास बोगी से नीचे उतार दिया था। बाबा के उतरते ही ट्रेन में कोई खराबी आ गई। 2 घंटे तक ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी रही। बताया जाता है कि रेल का इंजन स्टार्ट था, लेकिन पहिए नहीं घूम रहे थे। बाबा ने टीटी को अपना टिकट दिखाया और फिर क्या था, उनके बैठते ही ट्रेन चलने लगी। उनसे जुड़ी मान्यताओं और कहानियों के हिसाब से ये बाबा से जुड़ा पहला चमत्कार था। फिर इसके बाद तो लीलाओं का दौर शुरू हो गया। उनसे जुड़ी एक और कहानी आज भी बेहद श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है।
1: बाबा नीम करोरी महाराज का कैंची धाम एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि बाबा के चमत्कारों के बारे और बाबा की लीलाओं का भी साक्षी रहा है। कहते हैं कि एक बार भंडारे के दिन यहाँ कैंची धाम में घी खत्म हो गया, तो भक्त बाबा के पास पहुंचे कि बाबा घी खत्म हो गया है। रास्ते नहीं थे, सारा सामान हल्द्वानी से आता था, तो बाबा ने भक्तों से कहा कि जाओ नीचे जाकर नदी से 3 कनस्टर पानी भर लाओ। और जब वह पानी कड़ाहों में डाला गया तो वह घी में परिवर्तित हो गया। उसके बाद जब कुछ समय बाद घी हल्द्वानी से कैंची धाम पहुंचा, तो बाबा ने कहा कि जाओ अब जाकर यह घी नदी को वापस कराओ। ऐसे बाबा के चमत्कार थे।
0: 20वीं सदी के इस संत को अपनी आंखों से देखने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। उनके चमत्कार को महसूस करने वाले भक्तों की भरमार है, और भारत ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार बैठे भक्तों में भी बाबा नीप करोरी के प्रति उतनी ही आस्था है। गुजरे सालों में कई हाई प्रोफाइल विदेशी भक्त बाबा नीप करोरी की शरण में आए। उनके विदेशी भक्तों में कई ऐसे खास नाम हैं जिनका दुनिया में अलग मुकाम है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया को जोड़ने वाला फेसबुक जब खुद संकट में था और कंपनी बिकने के कगार पर थी, तब स्टीव जॉब्स की सलाह पर कंपनी के मालिक मार्क जकरबर्ग नीप करोरी बाबा की शरण में आए थे।
2: 4 things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company. I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be.
0: वैसे स्टीव जॉब्स ने मार्क जकरबर्ग को कैंची धाम जाने की सलाह इसलिए दी क्योंकि इसी धाम में दर्शन के बाद खुद उनकी किस्मत भी चमकी थी, और वो भी ऐसी कि वे शून्य से शिखर तक पहुंच गए थे। बात 1974 की है। स्टीव जॉब्स का करियर ठीक नहीं चल रहा था, ऐसे में वो आध्यात्मिक शांति के लिए भारत पहुंचे। नीप करोरी बाबा की चर्चा उन तक भी पहुंची थी, सो वो बाबा के दर्शन के लिए गए। चूंकि स्टीव जॉब्स अप्रैल 1974 में कैंची धाम आए थे, जबकि बाबा सितंबर 1973 में देह त्याग चुके थे, ऐसे में वो बाबा के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन नीप करोरी बाबा का आशीर्वाद उन पर खूब बरसा। इसी तरह नीम करोली बाबा के चमत्कारों ने सात समंदर पार से और भी कई भक्तों को खींचा था। मसलन हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स तो बाबा की तस्वीर देखकर ही उनकी भक्त हो गई थी। ये नीम करोली बाबा के प्रति गहरी आस्था ही थी जिसने देश धर्म परवरिश रहन सहन और आचार विचार के सात समंदर चौड़े फासले को भी पाट दिया था। देश विदेश के इन भक्तों ने कभी बाबा नीम करोली को नहीं देखा, लेकिन उनके विचार और चमत्कार के आगे आज तक श्रद्धा से अपना शीश झुकाते हैं। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए इसी के साथ आज के हमारी बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Take It Easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
1: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।

0: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: में पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: क्या आपको बार बार व्यापार में धोखा मिलता है? क्या आपके रिश्तों में भी धोखे की स्थिति बन जाती है? क्या आपके नजदीकी दोस्त ही आपको धोखा दे देते हैं? क्या है धोखे का कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश, का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी, तापमान में दर्ज की गई 4 से 6 डिग्री की गिरावट, आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। रेतीले तूफान की चादर में ढका राजस्थान का चुरू शहर, 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली तेज हवाएं, भरी दोपहर में विजिबिलिटी हुई शून्य। दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छिटपुट बारिश, पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। आम के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट, अलग अलग राज्यों की 70 से अधिक वैरायटी मौजूद, गुलाब खास, अंगूरदाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वाद की दीवानगी। दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत, G7 की बैठक में होगी ट्रंप से मुलाकात। नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार वापसी, भारत ने अमेरिका को 3-2 से हराया, दीपिका ने दागे जोरदार 2 गोल। ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर होगी पाबंदी, प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का बड़ा ऐलान।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, IGI एयरपोर्ट इलाके में तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश। बानवे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तूफानी हवाएं, कर्तव्य पथ इलाके से धूल भरी आंधी की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में आंधी तूफान, कुछ इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं। मौसम में अचानक बदलाव से सड़कों पर विजिबिलिटी रही बेहद कम, द्वारका में वाहन चालकों को दिन में जलानी पड़ी हेडलाइट। दिल्ली में छाए रहे बादल, तापमान में भारी गिरावट, मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी, वाहन चालकों और राहगीरों को हुई परेशानी। राजस्थान के चुरू में रेतीले तूफान का कहर, पूरा शहर रेतीले बमंडर से ढका, पिछले हफ्ते भी राजस्थान में आया था रेतीला तूफान। शुरू में धूल भरी आंधी के बाद दोपहर में ही छाया अंधेरा, विजिबिलिटी रही बेहद कम, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। राजस्थान के शेखावटी में धूल भरी आंधी से ढका आसमान, हवाओं की रफ्तार भी काफी तेज। शिमला में तेज बारिश के साथ पड़े ओले, जाखू इलाके में सड़कों पर ओलों की परत, पारा भी लुढ़का। दिल्ली एनसीआर में दोपहर के बाद मौसम ने ली जबरदस्त करवट, कई इलाकों में चली धूल भरी आंधियां। दिल्ली एनसीआर में छाए घने काले बादल, हवा चलने से तापमान में दर्ज हुई गिरावट। मौसम बदलने के साथ ही विजिबिलिटी भी हुई बेहद कम, कई इलाकों में झमाझम बारिश। गुरुग्राम में तेज बारिश से मिली गर्मी से राहत, शहर के कई इलाकों में हुआ भारी जलभराव। उत्तराखंड के टिहरी झील में पर्यटकों की भारी भीड़, रविवार को 1500 से अधिक पर्यटकों ने बोटिंग और एडवेंचर गतिविधियों का लिया आनंद। बद्रीनाथ धाम में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब, तप्त कुंड में स्नान और ब्रह्म कपाल में पिंड तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बद्रीनाथ में 10,70,000 श्रद्धालुओं ने किए अब तक दर्शन, बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बद्रीनाथ धाम पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी, दर्शन और विशेष पूजा अर्चना की, मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का कर दिया दान। केदारनाथ दर्शन के लिए अब तक पहुंचने में सबसे अधिक श्रद्धालु, लगभग 12 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के कर चुके हैं दर्शन। गंगोत्री यमुनोत्री में 11,49,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, चारधाम यात्रा के लिए 50 लाख से अधिक भक्त करा चुके रजिस्ट्रेशन। नैनीताल के कैंची धाम का आज 62वां स्थापना दिवस, नीम करोड़ी बाबा के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। कैची धाम में सुबह से दर्शन के लगी भक्तों की लंबी कतार। बाबा नीम करोड़ी महाराज को मालपुए का भोग लगाने के साथ हुई स्थापना दिवस की शुरुआत। बाबा के जयकारों और जय श्री राम के नारों के साथ श्रद्धालु कर रहे दर्शन पूजन। सेवादार भक्तों को दे रहे मालपुए का महाप्रसाद। कैची धाम में लाखों की संख्या पहुंचे भक्त। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। कैची धाम में दिख रहा भक्ति का शानदार नजारा। भक्त कर रहे हनुमान चालीसा का पाठ। देश भर में आज मनाई जा रही सोमवती अमावस्या। पवित्र नदियों में सुबह से ही स्नान दान का सिलसिला जारी। रामनगरी अयोध्या में सोमवती अमावस्या के मौके पर सरयू नदी के किनारे लगा आस्था का मेला। श्रद्धालु लगाई पवित्र डुबकी। सरयू नदी में स्नान के साथ ही लोगों ने सूर्यदेव को दिया अर्घ्य। दान देकर पुण्य भी किया अर्जित। हरिद्वार में बड़ी संख्या में भक्तों ने किए गंगा स्नान। कल से ही यहां जुटने लगे थे भक्त। प्रयागराज में सोमवती अमावस्या को लेकर लोगों ने किया गंगा स्नान। लेटे हुए हनुमान मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। सोमवती अमावस्या पर हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर लगा आस्था का मेला। लाखों भक्तों ने लगाई मां गंगा में आस्था की डुबकी। ब्रजघाट पर पूजा पाठ के साथ लोगों ने किया पिंडदान और तर्पण। आसपास के जिलों से पहुंचे श्रद्धालु। सोमवती अमावस्या पर अकोला के राजेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। लोगों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। राजेश्वर धाम में लोगों ने लिया भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद। जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। महाराष्ट्र के जेजुरी में के खंडोबा मंदिर में सोमवती अमावस्या पर पहुंचे लाखों भक्त। मंत्रोच्चार के साथ लोगों ने की विधिवत पूजा। सोमवती अमावस्या पर महिलाओं ने की पीपल के पेड़ की पूजा। पति की लंबी उम्र का मांगा आशीर्वाद। उज्जैन में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का मेला। बड़ी संख्या में भक्तों ने महाकाल का किया दर्शन पूजन। बाबा महाकाल का सोमवती अमावस्या पर किया गया भव्य श्रृंगार। महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। अनंतनाग के मारतंड सूर्य मंदिर में बाण मास मेले का भव्य आयोजन। पूजा पाठ के साथ भक्तों ने लिया आध्यात्मिक अनुष्ठान में हिस्सा। अनंतनाग के बाण मास पारंपरिक मेले पूरे इलाके में पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर परिसर भक्तों को विशेष प्रसाद परोसा गया। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज। रथों को अंतिम रूप देने का काम शुरू। जल्द पूरी तरह से होंगे तैयार। अक्षय तृतीया के दिन पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद शुरू किया गया रथ का निर्माण काम। सैकड़ों कारीगर पारंपरिक तकनीक से रथ निर्माण में जुटे। भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष, बलभद्र के तालध्वज और देवी सुभद्रा के दर्प दलन का रथ का हो रहा निर्माण। हर साल नए सिरे से रथ बनाए जाने की परंपरा। 16 जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन बनाई योजना। पूरी शहर में इस साल एलईडी स्क्रीन लगाने की तैयारी। लाखों भक्त रथ यात्रा का देख सकेंगे सीधा प्रसारण। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ। एयरपोर्ट पर पहुंचे इंडिगो के विमान का पानी की बौछार से किया गया स्वागत। नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों ने पहली फ्लाइट से की यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में किसानों का किया स्वागत। अंग वस्त्र पहनाकर किया सम्मानित। इंडिगो के विमान में अभिनेत्री गुल पनाग ने भी किया सफर। इस फ्लाइट में सवार होकर अभिनेत्री पनाग भी नोएडा पहुंची। साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद। एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री करने की योजना। फ्रांस से स्लोवाकिया दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। रक्षा और मोबिलिटी में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद। स्लोवाकिया में पीएम मोदी का हो भव्य स्वागत। पारंपरिक गीत और संगीत का किया गया आयोजन। स्लोवाकिया के कलाकारों का पीएम मोदी ने बढ़ाया उत्साह, कलाकारों ने की महादेव की स्तुति।

स्लोवाकिया में वंदे मातरम की गूंज, लोक नृत्य से गूंजा पीएम मोदी का स्वागत समारोह। ब्रेड सॉल्ट परंपरा ने खींचा ध्यान, एंसेंबल ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम।

रतौल आम की मिठास और खुशबू बनी चर्चा का विषय। हाथी झोल आम के विशाल आकार ने खींचा ध्यान, गुलाब आम में महसूस होती है गुलाब जैसी महक। रसगुल्ला और मोतीचूर नाम के आम बने आकर्षण, अनारकली आम ने भी जीता लोगों का दिल। मैंगो पिज्जा, मैंगो शुसी ने लोगों को किया चकाया, मैंगो आइसक्रीम बनी बच्चों की पहली पसंद, मैंगो माचा ने जोड़ा नया फ्लेवर ट्विस्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फीफा वर्ल्ड कप का छाया खुमार, पसंदीदा खिलाड़ियों की लोगों ने लगाए पोस्टर। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में फैंस ने की आतिशबाजी, 45 और 60 फीट ऊंचाई के लगाए गए कटआउट। चंडीगढ़ में भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम से सीएम सैनी ने की मुलाकात, 23 जून चीन में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में टीम लेगी हिस्सा। जयपुर की कला ने फ्रांस में बटोरी तारीफ, पीएम मोदी मैक्रों ने की कलाकृतियों की तारीफ, दो फ्रेंच कलाकारों ने किया तैयार। रामपुर जनपद में पालतू बिल्ली के लिए दिखा मालिक का अनोखा प्रेम, लापता होने पर शहर भर में लगाए गए पोस्टर, 5,000 रुपए के इनाम का भी किया गया ऐलान। इस्कॉन ने हुबली में श्री श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर के पहले चरण का किया उद्घाटन, 22 जून को होगी प्राण प्रतिष्ठा, श्रद्धालुओं के लिए 10 अगस्त को खुलेंगे कपाट। बस्तर में पहली बार आम की प्रदर्शनी, पर्यटकों ने अनूठे स्वाद, सुगंध और गुणवत्ता वाले आमों का लिया आनंद। आमों की प्रदर्शनी को देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग, 200 किस्मों की प्रदर्शनी में सरगुजा के मियाजाकी आम ने मारी बाजी। वाराणसी के नमो घाट पर मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर योग सप्ताह की शुरुआत, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में सीआरपीएफ ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, जवानों के साथ स्थानीय लोगों ने भी किया रक्तदान। करीना कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शंस के 25 साल पूरे होने के जश्न में की शिरकत, फिल्म लगान से जुड़ी यादों को किया ताजा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोपिक सुभाष का ऐलान, आर्यन श्याम निभाएंगे मुख्य भूमिका। प्रभास की पीरियड फॉर फिल्म फौजी को लेकर बड़ा अपडेट, फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज हो सकती है। कॉकटेल 2 को सेंसर बोर्ड से मिला ई सर्टिफिकेट, फिल्म में शाहिद कपूर कृति सेनन और रश्मिका मंदाना नजर आएंगे। तमिल एक्शन फिल्म ब्लास्ट का बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन, 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की फिल्म की कमाई। चीन में शिनजियांग का योगर्ट जोंगजी बना नया फूड सेंसेशन, योगर्ट और जैम के साथ परोसा जा रहा जोंगजी। लोगों को खूब भा रहा खट्टा मीठा स्वाद, होतान की खास डिश पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय, ग्रैंड बाजार में योगर्ट जोंगजी की भारी मांग। स्टॉलों पर दिन भर लगी रहती है भीड़, पारंपरिक जोंगजी का आधुनिक अवतार बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। मीठे खजूर वाले जोंगजी को मिल रही चुनौती, ताजगी भरे स्वाद ने जीता लोगों का दिल, योगर्ट जैम कॉम्बिनेशन बना बड़ा हिट। होतान सेकंड स्ट्रीट की नई पहचान बना स्नैक, त्योहार की डिश अब साल भर उपलब्ध, विदेशी और घरेलू पर्यटक हुए दोनों दीवाने। एआई लैब का भविष्य चीन में तैयार, बीजिंग में एआई चला रहा पूरी लैब, इंसान सिर्फ निगरानी करेंगे। लाइट्स आउट लैब में बिना स्टाफ होते हैं एक्सपेरिमेंट, एआई खुद करता है रिसर्च, खुद निकालता है नतीजे। लैब में नहीं होंगे बटन स्क्रीन या एलसीडी डिस्प्ले, एआई को सुधारता है प्रक्रियाएं, बढ़ाता है दक्षता। चीन में रोबोट बना दुकानदार, बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट बेच रहा मिस्ट्री बॉक्स, रोबोट को देखने और खरीदारी करने उमड़ी भीड़। वांग फुजिंग स्ट्रीट पर खुला अनोखा पॉप अप स्टोर, टैबलेट पर पसंद चुनो और ह्यूमनॉइड रोबोट से सामान लो। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले चीन में रेस का रोमांच, चोंगकिंग की फुरोंग नदी में उतरी 18 टीमों की चुनौती। करीब 500 पैडलर्स ने दिखाई ताकत और तालमेल, 200 और 500 मीटर रेस में दिखा जबरदस्त मुकाबला। वांगझू में 600 एथलीट ने रेस में लिया हिस्सा, रिटर्न ड्रैगन फॉर्मेट ने बढ़ाया रोमांच कई गुना।
दिन में 600 साल पुरानी ओपेरा कला की धमाकेदार वापसी, हिट टीवी ड्रामा ने

0: यांग ओपेरा को फिर बनाया सुपरहिट। शियान की बालकनियों पर अचानक होने लगे ओपेरा शो, कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में जीता दर्शकों का दिल। चीन के शंघाई में डॉग्स के लिए चलाया जा रहा एक खास किंडरगार्टन, खेल ट्रेनिंग, संगीत और डे केयर जैसी मिल रही सुविधाएं। चीन में पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा मानते हैं लोग, उनके खान पान, देखभाल और ट्रेनिंग पर बढ़ रहा खर्च। शंघाई डॉग स्कूल में डॉग्स के लिए हर दिन संगीत सत्र भी किया जा रहा है आयोजित, पियानो शिक्षक खुद आकर डॉग्स को सुनाते हैं संगीत। डॉग स्कूल में फिलहाल 200 डॉग्स की हो रही देखभाल, बढ़ती मांग को देखते हुए दूसरा केंद्र खोलने की तैयारी। चीन में लगातार बढ़ रहा पालतू जानवरों से जुड़ा कारोबार, अगले कुछ सालों में 400 अरब युआन तक व्यापार के पहुंचने का अनुमान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: Sports fans, tune in premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
3: Lee looks for someone, finds the right someone, and Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
2: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
4: Because people who all watch games, they hear the voice.
2: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
9: दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों टूटी लाखों की भीड़? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के वीडियो का सच। पेरिस में फुटबॉल फैंस ने सड़कों पर मचाया कोहराम। पुरानी दिल्ली का रिक्शा वाला बना इंटरनेट स्टार। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।

0: क्या आपको बार बार व्यापार में धोखा मिलता है? क्या आपके रिश्तों में भी धोखे की स्थिति बन जाती है? क्या आपके नजदीकी दोस्त ही आपको धोखा दे देते हैं? क्या है धोखे का कारण और क्या है निवारण? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Byers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
2: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
1: Experience the Byers difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
3: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
4: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
5: News Today. Achhi khabar, sachi khabar.
6: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt. रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे. अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
12: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है. डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं है, यह गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है, कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जहां साफ पानी भरा हो। यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है, लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा और इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और जीएनटी ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएंगे, जैसे घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचाकर रखें और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित इस्तेमाल जरूर करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा और ऑल आउट और जीएनटी के साथ कहिए साथ लड़ेंगे डेंगू से।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
14: बाबा नीप करौरी महाराज के कैची धाम में उमड़ा आस्था का जन समंदर। 59वें स्थापना दिवस के मौके पर देश दुनिया से पहुंचे भक्त, बाबा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी, तापमान में दर्ज की गई 4 से 6 डिग्री की गिरावट। आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। रेतीले तूफान की चादर में ढका राजस्थान का चुरू शहर, 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, भरी दोपहरी में विजिबिलिटी हुई 0। दिल्ली NCR पर भी मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छिटपुट बारिश, पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट, अलग अलग राज्यों के 70 से ज्यादा वैरायटी मौजूद, गुलाब खास, अंगूरदाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वाद की दीवानगी। दो दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत। G7 की बैठक में होगी ट्रंप से मुलाकात।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
14: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। जिस जेवर एयरपोर्ट का लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे वो आज से शुरू हो गया है। यहां आज से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो गई हैं। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, नोएडा एयरपोर्ट का शुभारंभ। नोएडा एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ ही पश्चिमी यूपी में विकास, रोजगार और वैश्विक कनेक्टिविटी का नया दौर खुल गया है, नया द्वार खुला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किसानों ने आज पहली फ्लाइट भी ली।
15: कभी सरसों और गेहूं की लहलहाती फसलों के लिए पहचाने जाने वाला जेवर आज विश्व स्तरीय हवाई अड्डे के रूप में नई पहचान बना चुका है। हजारों करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए अत्याधुनिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो गई है।
16: ये एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहली फ्लाइट लैंड हो चुकी है। लखनऊ से यह फ्लाइट आई है, तमाम यात्री आप निकलते हुए देख रहे हैं।
15: जैसे ही लखनऊ से उड़ान भरकर इंडिगो की फ्लाइट 6E2278 जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर उतरी, वैसे ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इतिहास का नया अध्याय शुरू हो गया और विमान को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। यह सम्मान आमतौर पर किसी नए एयरपोर्ट के उद्घाटन या पहली बार उड़ान शुरू होने के ऐतिहासिक अवसर पर दिया जाता है। नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान की खासियत ये रही कि इसे किसानों के नाम किया गया, जिन किसानों की जमीन एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई थी। सबसे पहली फ्लाइट उन किसानों के लिए ही बुक की गई। इस ऐतिहासिक उड़ान में अभिनेत्री गुल पनाग भी नोएडा पहुंची। एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सफल संचालन पर खुशी जाहिर की।
17: एक पायलट होने के नाते, एक एविएशन इंथ्यूजियास्ट होने के नाते, एक एविएशन फैन होने के नाते, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे इस पहली उड़ान पे उड़ान भरने का मौका मिला।
15: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली NCR को एक नया एविएशन हब मिला है। पहले चरण में लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत कई प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ान सेवाएं संचालित हो रही हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसरों के लिए सुनहरा मौका है। अभी इस एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर हर घंटे 12 विमान टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही से बढ़ाकर 20 विमान प्रति घंटा करने की योजना है। इसमें 3900 मीटर लंबा रनवे है, साथ ही एक टर्मिनल बिल्डिंग और ATC टावर भी है। वहीं एयरपोर्ट पर 30 एकड़ में कार्गो हब भी बनाया गया है। इस एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 1,20,00,000 से ज्यादा यात्रियों की है। जाहिर है दिल्ली NCR के लोगों को अब उड़ान भरने के लिए हर बार IGI एयरपोर्ट की ओर दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
14: बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि आज अधिक मास का समापन हो रहा है और उसके बाद कल से मंगल बेला की शुरुआत हो रही है, यानी कि अधिक मास की समाप्ति के बाद कल से शुभ कार्यों का श्री गणेश होने जा रहा है। अधिक मास भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। अब जब अधिक मास समाप्त हो रहा है तो कल से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है अधिक मास समाप्त आई मंगल बेला। आज सोमवती अमावस्या पर पूजा पाठ स्नान दान का सिलसिला जारी है। सोमवती अमावस्या पर देश भर की पवित्र नदियों में आस्था का महाउत्सव देखने को मिल रहा है। अयोध्या में सरयू में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में भी त्रिवेणी किनारे भक्त स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसी ही आस्था और भक्ति महाकाल की नगरी उज्जैन में भी देखने को मिल रही है। यहाँ सोमवती अमावस्या पर भगवान महाकाल का विशेष अभिषेक हुआ। फिलहाल गुड न्यूज ये है कि आज अधिक मास का समापन हो रहा है। सनातन संस्कृति में इसका विशेष महत्व बताया गया है। ये श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का शुभ अवसर भी है। अब कल से मुंडन, गृह प्रवेश और शादी जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी, यानी अब कल से मंगल बेला की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध कैची धाम आस्था के रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि ये मौका है बाबा नीब करौरी महाराज के आश्रम में हनुमान जी की प्रतिमा के स्थापना दिवस का। और इस पवित्र दिन पर बाबा के दर्शन के लिए देश दुनिया से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज है और वो है स्थापना दिवस के लिए सजा कैची धाम। कैची धाम में सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। पूरा मंदिर परिसर पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं।

0: नैनीताल का कैची धाम भक्तों की आस्था से सराबोर है। बाबा नीपकरौरी के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज बाबा की कृपा और कैची धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा में विश्वास रखने वालों के लिए बेहद खास दिन है। आज बाबा नीपकरौरी जी महाराज के इस विशिष्ट धाम में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना दिवस का दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है।
1: विश्व प्रसिद्ध कैची धाम का स्थापना दिवस आज दिव्य और भव्य रूप से मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब कैची धाम में उमड़ रहा है और बाबा के दर्शनों के लिए और बाबा का महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में कतार में भक्त आज सुबह से ही बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं।
0: इस बार ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के 50 साल पूरे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15 जून 1976 को यहाँ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी। इसके बाद से हर साल 15 जून को यहाँ पर प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विशेष रूप से स्थापना दिवस मनाया जाता है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि नीपकरौरी महाराज ने यहाँ पर 1964 में ही इस आश्रम की स्थापना कर दी थी।
2: हर कोने देश का हर कोने से यहाँ पर को लोग पहुंचे हुए हैं। रात को आप अगर यहाँ पर मौजूद होते आप देखते कि रात को ही यहाँ पर को लोग जमीन में दरी बिछा करके सो चुके थे।
0: बाबा नीपकरौरी के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर है। पूरा क्षेत्र बाबा नीपकरौरी महाराज की जय के गगन भेदी जयकारों से गूंज रहा है। श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन, सुरक्षित आवागमन और सुविधाजनक यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए नैनीताल पुलिस और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं और लोगों से नियम कायदों का पालन करने की अपील की जा रही है ताकि कोई परेशानी न हो।
3: प्रातः 5 बजे से यहां पर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा की गई है। उनके सेवादार प्रसाद वितरण में लगे हुए हैं। जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए हल्द्वानी काठगोदाम से ही शटल सेवा की व्यवस्था परिवहन पुलिस प्रशासन विभाग द्वारा की गई है।
0: बाबा के भक्तों के लिए स्थापना दिवस जितना अहम है उससे कहीं ज्यादा अहम है इस मौके पर मिलने वाला विशेष प्रसाद, जिसे बनाने की तैयारी कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। दरअसल स्थापना दिवस के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं को विशेष मालपुए का प्रसाद दिया जाता है। इसके लिए कई दिन पहले से ही आश्रम में 9 बड़े बड़े चूल्हों पर ये महाप्रसाद तैयार किया जाता है। खास बात यह है कि इस विशेष मालपुए के प्रसाद को बनाने में मथुरा और वृंदावन से 45 अनुभवी कारीगरों को यहां न्योता दिया गया और जो इस विशेष प्रसाद को बनाते हैं। कैची धाम से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और भगवान विष्णु के पावन धाम बद्रीनाथ में आस्था और भक्ति की अद्भुत तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। देश और दुनिया से भारी संख्या में भक्त बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है चारधाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। चारधाम यात्रा हर दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रही है। बाबा बद्रीनाथ के धाम में भी पिछले वर्षों के मुकाबले भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। करीब 12 लाख से ज्यादा भक्त बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। खास बात यह है कि बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आम से लेकर खास तक सभी पहुंच रहे हैं। आज ही देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी भी बाबा के दरबार पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि अंबानी परिवार की बद्रीनाथ धाम के प्रति गहरी आस्था रही है। वर्ष 2015 से लगातार अंबानी परिवार बद्रीनाथ धाम पहुंच रहा है और भगवान बद्री विशाल के दर्शन के साथ साथ मंदिर एवं धार्मिक कार्यों के लिए उदारतापूर्वक सहयोग भी करता रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार में मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का दान दिया। दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक और बढ़ते खर्च के बीच एक ऐसा मॉडल सामने आया है जिसने हर रोज सफर करने वाले हजारों लोगों को फायदा पहुंचा है। दरअसल गाजियाबाद में कार पूलिंग मॉडल कार में खाली सीटों को शेयर करने वाले लोगों को न सिर्फ सफर का खर्च बचा रहा है बल्कि इससे पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। कार पूलिंग ने बदला सफर का तरीका। गाजियाबाद के विवेक अरोड़ा का कारपूल मॉडल सैकड़ों लोगों की ऑफिस राइड को फन राइड बना रहा है। इससे पैसों की बचत तो हो ही रही है साथ ही पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है।

0: दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक और पेट्रोल डीजल के बढ़ते खर्चों के बीच एक ऐसा मॉडल सामने आया है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। ये मॉडल है कारपूलिंग का, जिसमें कार में खाली सीटों को शेयर करके लोग न सिर्फ सफर का खर्च बचा रहे हैं बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने में भी योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शुरू हुआ ये कारपूलिंग मॉडल अब लोगों के लिए मिसाल बनता जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल कम खर्च करें, पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? तो आप कह सकते हैं कि कारपूलिंग कर लें, लेकिन एक व्यक्ति ने इस कारपूलिंग के फॉर्मूले को इतना सक्सेसफुल बना दिया कि वो आज एक मॉडल के रूप में सबके सामने है।
0: यह है गाजियाबाद के रहने वाले विवेक अरोड़ा। विवेक गुरुग्राम में नौकरी करते हैं। पहले विवेक अकेले ऑफिस जाया करते थे, लेकिन हर रोज ऑफिस, पेट्रोल डीजल का खर्च और लंबे ट्रैफिक जाम में उनका ऑफिस का सफर बोझिल हो जाता था। ऐसे में विवेक अरोड़ा ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसने सैकड़ों लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ भी कम कर दिया।

0: फायदे हैं।
1: विवेक ने जो कारपूलिंग मॉडल शुरू किया उसमें एक ही रूट पर जाने वाले लोगों ने अपनी गाड़ी शेयर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग इस मॉडल से जुड़ते चले गए और आज इस नेटवर्क में 900 से ज्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं।
0: साथ वाले मिले इंदिरापुरम वाले थे, उन्होंने ऐसी बातचीत में कहा कि विवेक ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ऐसा कुछ शुरू करो, तो वहाँ से शुरुआत की। उनके साथ मिलके दो तीन बार ट्रैवल किया तो व्हाट्सएप बनाया और फिर प्राइमरीली जो हमारा ये ग्रुप बना है और जिस तरह से इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, आप ले लीजिए कि फ्रॉम जीरो टू नियरली 1000।
1: 2016 में शुरू हुए इस मॉडल में लोग रोज अकेले गाड़ी लेकर निकलने के बजाय एक साथ सफर करते हैं, जिससे पेट्रोल का खर्च बढ़ जाता है, पार्किंग का दबाव घटता है और ट्रैफिक में भी कमी आती है। जो कार लेकर आता है उसे हर सवारी 150 रुपए एक ट्रिप के देती है, यानी वाहन मालिक को एक सवारी से आने जाने के कुल 300 रुपए मिलते हैं। एक गाड़ी में राइडर के अलावा तीन लोग बैठते हैं, यानी पांच सीटर कार में कुल चार लोग सफर करते हैं। पीछे सिर्फ दो ही लोगों को बिठाया जाता है ताकि सफर ज्यादा कम्फर्टेबल लगे। इतना ही नहीं, महिला यात्रियों की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जाता है। ग्रुप के नियम के मुताबिक महिला राइडर को आगे की सीढ़ी ऑफर की जाती है।
0: हमने कहा कि ठीक है, अभी 105 रुपए तक जब तक फ्यूल नहीं पहुंचता हम 150 पर रखेंगे, फिर हम देखते हैं कि हो सकता है हम इसको राइड शेयर कॉस्ट को थोड़ा बढ़ा दें। कुछ लोग हैं उनको आपत्ति होती है, हमने कहा भाई देखिए आप कमाने के लिए नहीं कर रहे। आप
2: फलों का राजा आम, और आम के शौकीनों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है गुरुग्राम में आयोजित मैंगो फेस्ट। यहाँ एक तो नहीं बल्कि 70 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए।
0: माने के लिए नहीं कर रहे।
2: फलों का राजा आम, और आम के शौकीनों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है गुरुग्राम में आयोजित मैंगो फेस्ट। यहाँ एक तो नहीं बल्कि 70 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। आमों की खुशबू से महका गुरुग्राम। गुरुग्राम के मैंगो फेस्ट में चौसा, लंगड़ा और केसर जैसे लोकप्रिय आमों के साथ साथ रतोल, पान पत्ता, नाजुक बदन, अनारकली और हाथी झोल जैसे आम की दुर्लभ किस्में भी देखने को मिली।
3: मैंगो फेस्ट में आम प्रेमियों का जमघट है। तरह तरह के आम खाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस मैंगो उत्सव में पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम के फेलिक्स प्लाजा में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई 70 से ज्यादा किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। हर आम की अपनी अलग पहचान, अलग स्वाद और अलग कहानी है।
4: फेलिक्स प्लाजा में लगा है आम का एक बहुत बड़ा और अच्छा वाला एग्जीबिशन। यहाँ पर दुनिया के 70 से ज्यादा अलग अलग किस्मों के आपको आम जो है वो मिलने वाले हैं, और सिर्फ आम ही आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे बल्कि आम से बने स्वादिष्ट व्यंजन भी आपको यहाँ पर जो है वो अच्छे से चखाए जाएंगे। तो क्या कुछ खास है एग्जीबिशन में मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छी खासी वेराइटी सबसे पहले आपको जो है आमों के यहाँ पर दिखने वाली है। और इस वक्त मेरे साथ है अनिशा धैया जो कि इवेंट क्यूरेटर है और हर साल इस तरीके के मैंगो फेस्टिवल जो है आयोजित करती है। इस बार क्या कुछ खास है, क्या खास वेराइटी जो है वो यहाँ लाई गई?
5: इस बार हमारी सबसे स्पेशल अट्रैक्शन है ये रेड आइवरी मैंगो।
4: ये मैंगो ही है क्योंकि इतना बड़ा मैंगो मैंने कभी नहीं देखा।
5: ये मैंगो है, इट ग्रोज अप टू 1.5 feet।
3: इस मैंगो फेस्ट में चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, बंगनपल्ली, नीलम, केसर, तोतापुरी, सिंदूरी, फजरी और बॉम्बे ग्रीन जैसी लोकप्रिय किस्मों के साथ साथ कई दुर्लभ वेराइटी भी मौजूद है। रतोल आम अपनी बेहतरीन खुशबू और मिठास के लिए मशहूर है, जबकि केसर को आमों की रानी कहा जाता है। हाथी झोल अपने विशाल आकार के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
6: इस एरिया में फर्स्ट टाइम लगा है मैंगो फेस्टिवल, सो वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। बच्चों ने अंदर भी एक्टिविटी की, यहाँ पे भी की है, अभी इनका खाने का बचा हुआ है, आई थिंक उसके लिए ये वेट कर रहे हैं।
4: मैंगो की वेराइटी कैसी लगी यहाँ पे?
6: मैंगो की बहुत अच्छी है और आई थिंक फ्रेश है। और
3: वैसे मैंगो फेस्ट सिर्फ आमों की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है, यहाँ आम से बने कई व्यंजन भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। मैंगो पिज्जा, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो माचा, मैंगो सुशी और कई तरह की स्वादिष्ट डिशेज लोगों को आम के नए स्वादों से रूबरू करा रही हैं।
7: हमने सोचा कि इंडियन फ्लेवर्स जैसे मैंगो है और मेक्सिकन फ्लेवर्स जैसे नाचोस है, हम उनको फ्यूजन करके अपने ब्रांड में लेके आएंगे। एंड लोगों को लगता है पिज्जा पे मैंगो कैसा लगेगा, लेकिन हमने सारा बैलेंस किया हुआ है और उस पर क्रश नाचोस भी हैं। ये आ गया आपका पिज्जा,
4: तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो मैंगो पिज्ज़ा है, मैंगो मैक्सिकन, एक्चुअली मैंगो मैक्सिकन पिज्ज़ा जो है वो पूरी तरीके से रेडी है। और जो मुझे सोच में लग रहा था ना कि यार चीज़ के साथ मैंगो कैसे लगने वाला है, लेकिन अगेन इन्होंने मैक्सिकन टच दिया है।
3: दरअसल आम केवल फल नहीं, लोगों के लिए इमोशन भी है, और यही वजह है कि मैंगो फेस्ट लोगों को आम की अनगिनत किस्मों, उनके इतिहास और उनके अनूठे स्वाद से परिचित कराने का काम कर रहा है। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का खूबसूरत पर्यटन स्थल भद्रवाह इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच बड़ी संख्या में लोग सुहाने मौसम, हरे भरे मैदानों और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, पहाड़ों की ओर चले सैलानी। मैदानों में बढ़ती गर्मी की वजह से पहाड़ गुलजार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डोडा के भद्रवाह को अक्सर मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां जून के महीने में मौसम बेहद खुशनुमा बना रहता है, और इस खूबसूरत मौसम को अपनी यादों में बसाने के लिए मैदानी इलाकों से सैलानी यहां का रुख करते हैं। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, दैट पेप्सी टेस्ट यू लव विद नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ओनली 30 कैलोरीज, जस्ट 5 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 3 ग्राम्स ऑफ प्रीबायोटिक फाइबर। That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
10: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
11: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
10: Big 12 Radio.
12: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
10: and
12: down.
10: Talk sports.
13: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
10: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
14: Good news today. अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: यूएस ईरान में खत्म तकरार समझौते को तैयार। नोएडा एयरपोर्ट का हो गया श्री गणेश। अधिक मास की विदाई, बजने वाली है शहनाई। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर व्रतार्थ।
1: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
2: continue to face political pressure to reach a peace deal,
1: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
0: बाबा नीप करौरी महाराज के कैंची धाम में उमड़ा आस्था का जन समंदर। 59वें स्थापना दिवस के मौके पर देश विदेश से पहुंचे भक्त बाबा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। तापमान में दर्ज की गई 4 से 6 डिग्री की गिरावट। आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। रेतीले तूफान की चादर से ढका राजस्थान का चुरू शहर। 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, भरी दोपहरी विजिबिलिटी हुई शून्य।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है, और लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे परखे ने सच मान लेते, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार या टीवी के पन्नों तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में वायरल हो जाता है, और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। पुरानी घटना को नहीं बताकर परोसा जाता है, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से बिल्कुल दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे परखे ने शेयर करते हैं, और यहीं से अफवाहों का दौर शुरू होता है। तो ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं। वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की बात करेंगे जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जहां पर लाखों की भीड़ जुटी। क्या है इसकी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो हाल फिलहाल में पेरिस में भड़की हिंसा का है। इस वीडियो की सच्चाई भी आगे जानी, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोगों का हुजूम देखा जा सकता है, और कुछ लोग वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
11: देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के नाम पर अब 6 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मानकर कई यूजर्स शेयर कर रहे हैं। वीडियो में आजादी के नारे भी सुने जा सकते हैं। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो अपलोड करते हुए लिखा, ओ माय गॉड, इतनी भीड़ तो किसी नेता मंत्री की रैली में भी नहीं होती होगी। कुछ भी हो, लेकिन एक नौजवान ने आज देश की राजधानी को हिला डाला। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में सबसे बड़ी भीड़। सोशल मीडिया की अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में हजारों की भीड़ देखी जा सकती है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का ये वीडियो है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को ध्यान से देखा। इसमें हमें जंतर मंतर वेधशाला के अंदर प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आई। यहां ऐसा संभव है कि वेधशाला के अंदर प्रदर्शनकारियों की एंट्री संभव नहीं थी। जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये प्रदर्शन स्थल के पास स्थित है। यहां टिकट के जरिए ही एंट्री होती है। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए बाकायदा एक जगह तय की गई है, स्थान पर प्रदर्शन होता है और यहां पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत लेनी होती है। इसके लिए बाकायदा पुलिस की गाइडलाइंस भी हैं। जंतर मंतर वेधशाला का एंट्री गेट दूसरी ओर है। जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल और वेधशाला के बीच में टॉलस्टॉय मार्ग है जहां पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम को वीडियो में ऐसी कोई भी गलती नजर नहीं आए जिससे हमें इसके असली होने पर शक हो। मसलन कि यदि फोटो को जूम करके देखने पर वीडियो में कई आकृतियां ऐसी नजर आ रही हैं, साथ ही साथ इसमें अलग से आवाज को भी जोड़ा गया है। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो उसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। देखिए सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में।
11: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखने पर हमें इसके असली होने पर संदेह हुआ। मसलन फोटो को जूम करके देखने पर वीडियो में कई आकृतियां एक ही जैसी दिख रही हैं। इमेज में अलग से आवाज जोड़कर इस वीडियो को बनाया गया है। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक वेरिफाइड इंस्टाग्राम हैंडल पर ये मिला। इसे 6 जून 2026 को अपलोड किया गया था। वीडियो के कमेंट में बड़ी संख्या में लोगों ने इसे एआई से बना हुआ बताया था। हालांकि इस हैंडल पर इस एआई लेबल के साथ पोस्ट किया गया है, जिसका मतलब हुआ कि कंटेंट को पूरा या उसके कुछ हिस्से को बनाने या उससे बेहतर करने में एआई का इस्तेमाल हुआ है। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए एआई डिटेक्शन टूल्स की मदद ली। हमने वायरल वीडियो के कई स्क्रीनशॉट्स निकाले। दो स्क्रीनशॉट को हाइव मॉडरेशन टूल पर इसे स्कैन किया गया। इसके एनालिसिस में वायरल वीडियो के 70.2% एआई से बनाए जाने की अधिकतम संभावना की पुष्टि हुई। जांच के दौरान एक दूसरे एआई डिटेक्शन टूल साइट इंजन का भी इस्तेमाल किया गया। इस टूल के नतीजों ने भी वायरल वीडियो के 99% तक एआई से बने होने की संभावना जताई। इसके लिए भी हमने स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो एआई एडिटेड है। हालांकि ये सही है कि 6 जून के सीजेपी के प्रदर्शन में जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वायरल वीडियो फेक है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी के चैंपियन लीग जीतने के बाद पेरिस में हिंसा भड़क गई थी और इसी घटना से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है, जिसमें जलती गाड़ियां बस स्टैंड पर तोड़फोड़ के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
12: तीस मई की रात को पेरिस पीएसजी के चैंपियंस लीग जीतने की खबर सामने आने के बाद पेरिस समेत फ्रांस के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई। जश्न मनाने के दौरान उपद्रवियों ने कुछ जगहों पर दुकानों में भी तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इसके अलावा कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। फ्रेंच पुलिस ने इस मामले में करीब 780 लोगों को हिरासत में लिया था। इसी घटना से जोड़कर सोशल मीडिया पर 37 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शुरुआती 18 सेकंड में एक सड़क पर कई गाड़ियां पलटी और उनमें से कुछ में आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है। आगे के हिस्से में भीड़ एक बस और ट्राम स्टेशन को तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए इसे पेरिस में हुई हालिया हिंसा का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जलती गाड़ियों और बस स्टैंड पर तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। लोग गुस्से में गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। पीएसजी के चैंपियंस लीग जीतने के बाद पेरिस में हिंसा भड़क गई, इस दावे का साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने का वायदा किया है, इसीलिए हमने इसकी पड़ताल के लिए एक एक फ्रेम को गौर से देखा। हाँ, ये बात सच है कि 30 मई की रात को पेरिस के सेंट जर्मेन चैंपियन लीग जीतने की खबर सामने आने के बाद पेरिस समेत फ्रांस के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी। जश्न मनाने के दौरान उपद्रवियों ने कुछ जगहों पर दुकानों में भी तोड़फोड़ की थी, उसमें आग लगाई थी। इसके अलावा कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया था, लेकिन ये वीडियो उसी हिंसा से जुड़ा हुआ था, ये जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में तोड़फोड़ मचा रहे लोगों के कपड़ों पर गया। लोग जैकेट पहने हुए हैं, कोट पहने हुए, टोपी लगाए हैं, मफलर लगाए हुए हैं। अगर वीडियो 30 मई का होता तो इस दौरान फ्रांस में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। फ्रांस में मई का महीना साल के सबसे बेहतरीन समय में से एक होता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है, बसंत का मौसम होता है, दिन में खुशमा धूप, शाम में हल्की ठंडी होती है, बारिश कभी कभार हो जाती है। मतलब ये कि वायरल वीडियो हाल फिलहाल का तो नहीं हो सकता, लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो हाल फिलहाल का है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई।

0: यह हमला 69 वर्षीय विलियम एम नाम के एक शख्स ने किया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पेरिस में हिंसा भड़कने के दावे से शेयर हो रहे इस वीडियो में मौजूद दोनों ही दृश्य हालिया नहीं बल्कि करीब 3 साल पुराने हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
4: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
5: You're listening to CNBC.
6: This is 80s hits, exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
7: Keep it on smooth jazz.
8: This is Roots Reggae.
9: Exclusively on TuneIn.
10: This is classic hip-hop.
11: Exclusively on TuneIn.
4: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected. The shows, music, and news you love, anytime you want.
12: संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं,

0: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इन दिनों सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक रिक्शे वाले भैया खूब छाए हुए हैं। इनका नाम मोहम्मद असलम है, जिन्हें लोग इंटरनेट पर असलम रिक्शा वाला के नाम से जानते हैं। दरअसल इस रिक्शे वाले का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो विदेशी पर्यटकों से कोई टूटी फूटी नहीं बल्कि एकदम फर्राटेदार स्पेनिश और अंग्रेजी में बतियाते दिख रहे हैं। असलम के इस हुनर को देखकर न सिर्फ विदेशी बल्कि देश की जनता भी हैरान है। असलम पिछले 17 सालों से पुरानी दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चला रहे हैं। वो सिर्फ सवारी को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम नहीं करते बल्कि उनके लिए एक टूर गाइड भी बन जाते हैं। वो विदेशी मेहमानों को दिल्ली के इतिहास की कहानियां सुनाते हैं, उन्हें घूमने और फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगहों की सलाह देते हैं। साड़ी में सजी एक लड़की ने ऐसा शानदार डांस किया कि पूरा समारोह तालियों और सीटियों से गूंज उठा। उसके दमदार मूव्स, बेहतरीन एक्सप्रेशंस और ग्रेसफुल अंदाज ने सभी का दिल जीत लिया। लड़की का डांस केवल स्टेप्स तक सीमित नहीं था बल्कि उसके एक्सप्रेशंस भी बेहद आकर्षक थे। गाने के हर बोल और हर बीट के साथ उसने जिस तरह तालमेल बिठाया, उसने प्रेजेंटेशन को और भी खास बना दिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में एक ऐसा कछुआ दिखाई दे रहा है जिसके एक नहीं बल्कि दो दो मुंह हैं। जिसने भी ये वीडियो देखा वो दंग रह गया। वायरल वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपने हाथ में एक छोटा सा कछुआ पकड़े नजर आता है। पहली नजर में तो ये बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही कछुए का अगला हिस्सा सामने आता है, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस अनोखे कछुए के दो मुंह और चार आंखें हैं। दिलचस्प बात यह है कि कछुए के दोनों मुंह पूरी तरह एक्टिव हैं। जब वो शख्स अपनी उंगली कछुए के मुंह के पास ले जाता है तो दोनों मुंह उसे पकड़ने के लिए एक साथ खुल जाते हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में देश के कई हिस्सों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस प्रेरणादायक वीडियो को उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जो इन दिनों देश के कई हिस्सों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तेज धूप और तपती गर्मी के बीच एक बंदर बेहद प्यासा नजर आता है। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकता है और आखिरकार उसे एक सार्वजनिक पानी का नल दिखाई देता है। इसके बाद जो सीन कैमरे में कैद होता है वो हर किसी को हैरान कर देता है। बंदर नल के पास पहुंचकर बड़ी सहजता से उसे खोलता है। ऐसा लगता है मानो उसे पूरी तरह पता हो कि पानी कैसे निकाला जाता है। नल खुलते ही वो आराम से पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ तक तो सीन नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो इस वीडियो को खास बनाता है। पानी पीने के बाद बंदर तुरंत वहाँ से नहीं जाता, वो कुछ पल रुकता है, फिर अपने हाथों से नल की टोटी बंद कर देता है। उसकी ये छोटी सी हरकत लोगों के लिए बड़ी सीख बन गई। जहाँ अक्सर इंसान सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, वहीं इस जानवर ने पानी की एक एक बूंद की अहमियत समझते हुए उसे बंद कर दिया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $38.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
4: What about me, Jack? What about me?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: Well played, Jack. Well played.
3: Jack FM, playing what we want.
5: तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर, लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं, यह गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक पर बात आ जाती है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर कहीं दूर जंगल में नहीं, बल्कि हमारे घरों में, हमारे आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या फिर कहीं भी जहां पानी भरा हो। यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से होती है। लेकिन लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या फिर एक संस्था नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और गुड न्यूज टुडे ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। और इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट्स की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएं, जैसे कि घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलते रहें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचा कर रखें। दिन हो या रात, मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित इस्तेमाल करना जरूरी है। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और गुड न्यूज टुडे के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट
1: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधवा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आने वाली है दुनिया के लिए गुड न्यूज, 19 जून को US और ईरान के बीच शांति समझौते पर लगेगी मोहर। NCR को मिला जेवर एयरपोर्ट का तोहफा, पहली उड़ान के साथ किसानों का सम्मान। और अच्छे दिनों के स्वागत के लिए हो जाइए तैयार, अधिक मास खत्म, अब बजेगी शहनाई। कौन से हैं शुभ मुहूर्त, आगे जानिए शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
1: बाबा नीम करौरी महाराज के कैंची धाम में उमड़ा आस्था का जन समंदर। 59वें स्थापना दिवस के मौके पर देश दुनिया से पहुंचे भक्त बाबा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी, तापमान में दर्ज की गई 4 से 6 डिग्री की गिरावट। आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। रेतीले तूफान की चादर में ढका राजस्थान का चूरू शहर, 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, भारी दोपहरी विजिबिलिटी शून्य हुई। दिल्ली NCR में मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। आम के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट, अलग अलग राज्यों की 70 से ज्यादा वैरायटी मौजूद, गुलाब खास, अंगूरदाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वाद की दीवानगी। 2 दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत। G7 की बैठक में होगी ट्रंप से मुलाकात। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे आज एक ऐसी खबर से जो पूरी दुनिया के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी गुड न्यूज बनकर सामने आई है। यह खबर है ईरान और अमेरिका के बीच होने जा रहे शांति समझौते की, जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये समझौता कितना अहम है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दस्तखत से पहले ही भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में उछाल आ गया, कच्चे तेल के दाम में गिरावट आने लगी। ऐसे में उम्मीद है कि पिछले 3.5 महीने से दुनिया जिस भंवर जाल में फंसी हुई थी उससे मुक्त होने का समय अब आ गया है।

0: साढ़े तीन महीने बाद मिडिल ईस्ट के क्षितिज पर उम्मीद का नया सवेरा हुआ है। 28 फरवरी 2026 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर पहली बार पूर्ण विराम लग गया है। यूएस ईरान डील फाइनल होने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों समेत पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर शांति समझौते की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, यह शानदार समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का पैगाम लेकर आएगा। इससे पहले कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। इस रीजन के नेताओं को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो असली शांति ला सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि डील पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में साढ़े तीन महीने से जारी तनाव को खत्म होने का इंतजार पूरी दुनिया को था, क्योंकि इस जंग की वजह से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। कच्चे तेल के दाम न सिर्फ बेतहाशा बढ़ चुके थे बल्कि आपूर्ति भी चरमरा गई थी। इससे दुनिया के कई देशों की आर्थिक व्यवस्था जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रही थी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत समेत पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में तेल गैस का जबरदस्त संकट पैदा हो गया था।
1: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर 19 जून को होने हैं, लेकिन इस फैसले से पूरी दुनिया ने खुशी और राहत महसूस की है। तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने अपने संदेश भेजकर इसका स्वागत किया है और सबसे ज्यादा राहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने की खबर से महसूस की जा रही है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल और क्रूड का कारोबार होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने से अब तमाम जहाजों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सकेगी और तमाम सी फेयरर्स जो इस इलाके में फंसे हैं अपने घरों को सकुशल लौट पाएंगे। पूरी दुनिया इंतजार रही है 19 जून का, जब ईरान और अमेरिका इस हस्ताक्षर के साथ शांति का एक नया पैगाम देंगे और लंबे वक्त से आर्थिक संकट झेल रहे देशों को भी इससे राहत प्राप्त होगी।
0: भारत भी इस संघर्ष विराम और समझौते का न सिर्फ बेसब्री से इंतजार कर रहा था बल्कि इसके लिए कूटनीतिक कोशिशें भी कर रहा था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस डील का तहे दिल से स्वागत किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डील का स्वागत करते हुए लिखा, मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच बनी आपसी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक गतिरोध पैदा हो गया था और कई देशों में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। भारत को आशा है कि इस समझौते के लागू होने के बाद क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और नेविगेशन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश बातचीत जारी रखेंगे जिससे आने वाले समय में एक स्थायी हल निकल सके। इस डील का भारतीय शेयर बाजार पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। डील के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। बाजार खुलने के बाद से ही उसमें तेजी दिखने लगी, जिससे निवेशकों के चेहरे पर कई हफ्ते बाद मुस्कान देखने को मिली है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने और हॉर्मुज स्ट्रेट के फिर से खुलने की खबरों से कच्चे तेल की कीमतों में भी 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।
2: हॉर्मुज के संबंध में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर वहां पे इश्यू रिजॉल्व होता है सभी के लिए अच्छा है, सप्लाईज डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी।
0: कहने की जरूरत नहीं है कि ईरान अमेरिका शांति समझौते से पूरी दुनिया में खुशी की लहर है, इसलिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष बाहें फैलाकर इसका स्वागत कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि आज अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता युद्ध खत्म करने, क्षेत्र में स्थिरता लाने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की दिशा में एक बेहद अहम कदम है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान, कतर और अन्य मध्यस्थों को बधाई देता हूँ। काफी वक्त से टेंशन कम करने की अपील की जा रही थी और ये सकारात्मक प्रगति है जिसकी उम्मीद भी थी। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे अमेरिका, ईरान और रीजन के दूसरे देशों के साथ मिलकर इस मौके का भरपूर लाभ उठाने के लिए मिलकर काम करेंगे। E4 समूह ने अपने बयान में कहा कि वो इस कूटनीतिक सफलता के लिए अमेरिका, ईरान के साथ ही बातचीत की प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों को बधाई देते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ये कई देशों के कूटनीतिक प्रयासों का प्रतिफल है। मैं सभी पक्षों से अपील करता हूँ कि इस समझौते को जल्द और पूरी तरह लागू किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को बगैर किसी देरी के और बिना किसी शर्त के फिर से खोला जा सकेगा। यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मिशन इस प्रक्रिया में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। बिना किसी गतिरोध या अतिरिक्त शुल्क के समुद्री यातायात को दोबारा चालू करना क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। इस समझौते के जरिए ईरान और अमेरिका को जो नफा नुकसान हुआ हो, समझौते का जो मसौदा सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया के लिए ये विन विन सिचुएशन है। पूरी दुनिया को इससे फायदा ही फायदा होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर सहमत हो गया है। उधर अमेरिका भी हॉर्मुज स्ट्रेट में नौसेना की नाकेबंदी हटाने को राजी हो गया है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की अनुमति देगा। इसके अलावा ईरान संवर्धित यूरेनियम के भंडार को नष्ट करने पर सहमत हो गया है।
3: एक बड़ा इफेक्ट ये होगा कि हॉर्मुज की स्ट्रेट खुलेंगी ताकि दुनिया भर में जो चोक हो रखा है फिलहाल तेल की सप्लाई, फर्टिलाइजर की सप्लाई, एलएनजी की सप्लाई, कई और चीजों की सप्लाई, वो खुलेगी धीरे धीरे। दूसरी बड़ी बात जो इस समझौते में है, अब वो देखना कितनी अमल होगी कि लेबनान में भी युद्ध रुकेगा। तो अगर ये समझौता होल्ड करता है तो लेबनान में जो इजराइल हिजबुल्ला का जो युद्ध चल रहा है वो भी रुकेगा। तीसरी बड़ी बात इसमें यह है कि ईरान को कुछ या किसी तरीके का फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन या रिटर्न मिलेगा, या तो ईरान का जो पैसा फ्रीज हो रखा है विदेशी बैंकों में, खास करके कतर में जो है, वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा क्योंकि अमेरिका ये नहीं कहना चाहता कि मैंने पैसा दे दिया ईरान को वापस। तो उस पैसे के अगेंस्ट एक लाइन ऑफ क्रेडिट खोल दी जाएगी जिसको ईरान इस्तेमाल कर सकेगा अपने देश की इकोनॉमिक हालात को सुधारने के लिए।
0: आपको बता दें कि इस डील के मसौदे पर दोनों पक्षों की ओर से दस्तखत 19 जून यानी शुक्रवार को किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही पूरी दुनिया में उत्साह उमंग की तरंग दिखाई देने लगी है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: आगे बढ़ते हैं अगली अच्छी खबर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है, जहां पर आज से उड़ान सेवा की शुरुआत हो गई है। लखनऊ से इंडिगो की पहली फ्लाइट पहली बार उतरी, जिसे वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया, जबकि दूसरी फ्लाइट से एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले 172 किसान नोएडा से लखनऊ पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर अब दुनिया के उन चुनिंदा बड़े महानगरीय क्षेत्रों में शामिल हो गया है जहां एक से अधिक प्रमुख हवाई अड्डे ऑपरेट होंगे।

0: खत्म हुआ इंतजार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की हुई शुरुआत। जैसे ही लखनऊ से इंडिगो की पहली उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, विमान में बैठे यात्रियों ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। इसके बाद विमान को वाटर कैनन सैल्यूट देकर इस पल को और भी खास बना दिया गया और फिर एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों ने यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये उड़ान देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के लिए भी खास रही, क्योंकि इंडिगो जेवर एयरपोर्ट से उड़ान सेवा का संचालन करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है।
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो चुका है। इस वक्त हम उसी एयरपोर्ट के डिपार्चर पॉइंट पर मौजूद हैं और यहां से एयरपोर्ट के लिए आज से कमर्शियल फ्लाइट का संचालन शुरू हो चुका है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया।
1: कहां से हैं आप?
2: नोएडा से ही हैं।
1: क्या करते हैं?
2: लखनऊ गए थे हम इसी फ्लाइट के लिए ही।
1: अच्छा, इसलिए आप लोग लखनऊ गए थे इसी फ्लाइट के लिए?
2: जी जी जी।
1: क्या करते हैं?
2: मैं जॉब करता हूँ।
1: जॉब करते हैं?
2: जी जी।
1: क्यों ऐसा कि पहली फ्लाइट के लिए आप वहाँ लखनऊ गए स्पेशली? क्या
2: हमारा एक मेरा बकेट लिस्ट था, वो आज पूरा हुआ कि नोएडा का एयरपोर्ट जब खुलेगा तो विल टेक द फर्स्ट फ्लाइट।
1: कैसा एक्सपीरियंस रहा?
3: नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा नोएडा में भी अब एयरपोर्ट है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का। थैंक यू।
1: यही बात कही जा रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जो उद्योग है नोएडा का और आसपास के जिलों का, उनको बड़ा फायदा मिलेगा।
3: बिल्कुल फायदा मिलेगा, उद्योगों को भी और यहाँ के नागरिकों को भी।
1: कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
4: बहुत बढ़िया। हमको तो बहुत इच्छा थी कि हम इस फर्स्ट फ्लाइट को लें और लखनऊ से ही स्टार्ट हो रही थी, हम लखनऊ में ही रहते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगा।
0: इस नए नवेले एयरपोर्ट से दूसरी फ्लाइट लखनऊ के लिए रवाना हुई, जिसमें एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन देने वाली 20 महिलाओं समेत 170 किसान नोएडा से लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट निर्माण में इन किसानों के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से ये विशेष उड़ान आयोजित की गई, जिसमें जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह भी किसानों के साथ लखनऊ गए। इन किसानों ने कहा कि उनकी जमीन देश और राज्य के विकास में इस्तेमाल हो रही है, ये उनके लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया।
5: पहली बार सिर्फ विमान उड़ान नहीं भरेगा, ये महिलाएं भी अपने सपनों को उड़ान भरते हुए देखेंगी, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं इनमें इस वक्त इस टिकट के साथ यहां खड़ी हैं, वो पहली बार किसी फ्लाइट में बैठेंगी। राजवती जी नाम है आपका। इससे पहले हवाई जहाज की यात्रा की है आपने?
6: नहीं की है।
5: कैसा लग रहा है?
6: अच्छा लग रहा है। दो दिन है गए, भूख न लगी।
5: से भूख नहीं लगी आपको?
6: खुशी के मारे।
5: आपकी जमीन गई है?
6: हाँ।
5: कितनी जमीन गई है?
6: हमारी जमीन काफी गई थी।
5: लेकिन आप खुशी हो रही है कि हवाई जहाज?
6: हाँ, खुशी हो रही है।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने पर जानी मानी अभिनेत्री गुल पनाग ने भी खुशी जाहिर की। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में गुल पनाग ने कहा कि लखनऊ से नोएडा के लिए पहली उड़ान का हिस्सा बनना उनके लिए रोमांचक और यादगार रहा।
1: पहली फ्लाइट से आपने भी फ्लाई किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
7: एक पायलट होने के नाते, एक एविएशन इंथ्यूजियास्ट होने के नाते, एक एविएशन फैन होने के नाते, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे इस पहली उड़ान पे उड़ान भरने का मौका मिला। एक एविएशन हिस्ट्री का एक छोटा सा पहलू मैं हूँ, उसका एक मुझे पार्ट होने का मौका मिला, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते हैं और मेरे लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू है टू बी ऑन द इनॉग्रल फ्लाइट दैट लैंडेड इन टू नोएडा।
0: वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत के पहले दिन टर्मिनल से एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर सामने आई है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये तस्वीर है पायलट की ड्रेस पहनकर आई छोटी बच्ची सफा की। इस बच्ची को देख सभी की निगाहें इसी पर टिक गईं। एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारी और यात्री सभी उससे मिले और फोटो खिंचवाई। सफा के घर वालों ने बताया कि उनकी इच्छा है कि बच्ची बड़ी होकर पायलट बने।
8: लखनऊ से जो नोएडा के लिए इनॉग्रल फ्लाइट है उसके लिए हमने प्रिपरेशन किया था, तैयारी की थी, जो हम हमारी बच्ची को मेरी वाइफ के साथ में हम इसको लेकर आए और इसका हम लुत्फ उठाएं नए एयरपोर्ट के लिए। इसकी मदर का है ऐसा एक्सप्रेशन कि ये पायलट बने और फिर उसके जो भी उसके प्रोफेशन में वो जो भी चूज करेगी उसे हमें मंजूर।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही दिल्ली NCR अब दुनिया के उन चुनिंदा बड़े महानगरीय क्षेत्रों में शामिल हो गया है जहां एक से अधिक प्रमुख हवाई अड्डे ऑपरेशनल हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो सकती है।
9: इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब से, ये बड़ा सवाल है।
10: नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जैसे ही हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए ये टर्मिनल अप्रूव करेंगे उसके बाद ही जरूर इंटरनेशनल ऑपरेशंस करने के लिए भी काफी उत्साहित है एयरलाइंस। तो जैसे उसकी व्यवस्था यहाँ पे बन जाएगी और हम भी उसके ऑपरेशंस के लिए लाइसेंस दे देंगे तो इंटरनेशनल भी शुरुआत।
0: हालांकि अभी इसका पहला ही चरण पूरा हुआ है जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा चरण अभी बाकी है। इन चारों चरणों के पूरा होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा एयरपोर्ट होगा जिससे न सिर्फ देश के एविएशन सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों का हवाई सफर भी आरामदायक और सुविधाजनक होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मनीष चौरसिया और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: आगे बढ़ते हैं बात पुरुषोत्तम मास की जिसका समापन आज हो गया। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इसके खत्म होने के बाद शुभ तिथियों के आगमन के साथ ही सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों की रौनक एक बार फिर से लौटने वाली है। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक 16 जून से शुद्ध ज्येष्ठ मास आरंभ हो रहा है और इसके साथ ही विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे शुभ कार्यों पर लगा विराम भी खत्म हो जाएगा।

0: खत्म हुआ मलमास और इसके साथ ही पिछले 30 दिनों से रुके हुए सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। परंपरा के मुताबिक अधिक मास विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण और मुंडन संस्कार जैसे मांगलिक कार्यों के लिए सही नहीं माना जाता, इसीलिए इस दौरान ऐसे शुभ काम नहीं किए जाते। लेकिन सोमवती अमावस्या के साथ ही अधिक मास अब खत्म हो गया है।
1: जैसे ही अधिक मास की अवधि समाप्त होती है वैसे ही शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाते हैं। तो अधिक ज्येष्ठ मास सोमवार को 15 जून 2026 दिन सोमवार को सुबह लगभग 9 बजे के बाद से समाप्त हो जा रहा है और शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आरंभ हो जा रही है। लेकिन उदयकालिक मान्यताओं के अनुसार 16 जून को यह माना जाएगा कि शुद्ध ज्येष्ठ मास आरंभ होगा और यहीं से शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाते हैं और चारों तरफ शहनाई की गूंज सुनाई देगी। विवाह होंगे, गृह प्रवेश के मुहूर्त मिलेंगे, तो यह समय बड़ा ही शुभ कारक हो जाएगा मांगलिक कार्यों के लिए।
0: ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक शुभ कार्यों की शुरुआत 16 जून से हो रही है, जबकि विवाह के लिए सबसे सही मुहूर्त 19 जून से उपलब्ध होंगे। इसके बाद से शादी विवाह से जुड़े आयोजन देश भर में शुरू हो जाएंगे। पंचांग के मुताबिक जून और जुलाई में मिलाकर 12 शुभ लाभ हैं, जिनमें जून में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 जून शादी के मुहूर्त रहेंगे, जबकि जुलाई में 1, 6, 7 और 11 चार प्रमुख शुभ मुहूर्त होंगे। यानी आने वाले 2 महीनों में कुल मिलाकर 12 ऐसे शुभ मुहूर्त हैं जो शुभ कार्यों के लिए बेहतर बताए जा रहे हैं।
2: अब आगामी जो समय है वह आपके शुभ और मांगलिक कार्यों का है और यह शुभ मांगलिक कार्य आपके जो है हरि शयनी एकादशी से रुक जाएंगे। जिस दिन आपकी जो है लगभग 25 जुलाई को हरि शयनी एकादशी है उस दिन रुक जाएंगे। इस बीच काफ़ी कुछ अच्छे जो है आपके आ रहे हैं। इसी बीच आपकी जो है निर्जला एकादशी आएंगी। इसी बीच 18 तारीख को गुरु का जो है पुष्य नक्षत्र में भ्रमण होना, आगे चल के आपकी जो है जुलाई में आपका जो आषाढ़ मास होगा तो उसमें गुप्त नवरात्रों का आना। तो कहने का तात्पर्य कि इस टाइम के अंतराल में काफी कुछ शुभ मांगलिक कार्य करने वाले मुहूर्त जो है प्राप्त हो रहे हैं।
3: जिस दिन कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि पड़ेगी और आषाढ़ का समय होगा और इस समय एक बहुत बेहतरीन समय है जिस पर किया जा सकता है 20 जून 22 जून, ध्यान रखिएगा 20 जून 22 जून 23 जून 24 जून 26 जून और 27 जून 29 जून, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई। अगर मैं इन 21 दिनों की स्पेशली बात करता हूं तो 7 जुलाई तक ये मैरिज को लेकर के बहुत शानदार दिवस है जिनके अंदर किया जा सकता है।
0: ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि इस साल 25 जुलाई से देव शयनी के साथ ही चतुर्मास शुरू हो जाएगा। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे, इसीलिए अगले 4 महीनों तक मांगलिक कार्य फिर से बंद हो जाएंगे। इसके बाद देवउठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी या देवउत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन से फिर से शुभ कार्यों का श्री गणेश होगा। पौराणिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं और चतुर्मास का समापन भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
5: क्या आपको बार बार व्यापार में धोखा मिलता है? क्या आपके रिश्तों में भी धोखे की स्थिति बन जाती है? क्या आपके नजदीकी दोस्त ही आपको धोखा दे देते हैं? क्या है धोखे का कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
6: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits. timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
7: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे धोखे की। प्रेम में, विवाह में, दोस्ती में कब धोखा मिलता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं? बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जीवन की अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग मामलों में धोखा कब मिलता है और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं। हर आदमी को जीवन में धोखा नहीं मिलता और कुछ को लगातार मिलता है। आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, आम जीवन में हम लोगों से काम के लिए या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं। उस समय जब लोगों से जुड़ते हैं, लोगों का साथ पकड़ते हैं, तो उस समय व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के अनुरूप काम नहीं करता या भरोसे के विपरीत काम करता है तो इसको धोखा कहा जाता है। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने के मामले में और धोखा देने के लिए 4 ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। चंद्रमा, बुध, शनि और राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी इन ग्रहों के हिसाब से मिलकर अलग अलग समय पर भूमिका निभाते हैं। जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको सबसे ज्यादा धोखा जीवन में मिलता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को धोखा सर्वाधिक मिलता है। और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, सामान्यतः ये राशियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी तत्व की सारी राशियों वाले धोखेबाज होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशियों के अंदर चालाकी पाई जाती है और उस चालाकी का इस्तेमाल करके ये लोग धोखा देने का प्रयास करते हैं। काफी हद तक, लगभग 50-60% तक पृथ्वी तत्व के लोग चालबाजियां दिखा देते हैं। मेष राशि, व्यर्थ के विवादों से आपको बचना चाहिए। खान पान का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। धोखा व्यापार में, पार्टनरशिप में, कारोबार में काफी होता है। पार्टनरशिप किसी के साथ की, उसने बेवकूफ बनाया और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया, आपको बाहर कर दिया। व्यापार के मामले में, कारोबार के मामले में धोखा कब मिलता है? कुंडली का सप्तम भाव जो आपके पार्टनर का है, जो आपके व्यापार का है, अगर ये भाव कमजोर हो तो व्यापार में, कारोबार में धोखा होता है। अगर कुंडली के आठवें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, तो भी धोखा कारोबार में मिल सकता है। राहु के ऊपर या राहु का सूर्य या चंद्र पर प्रभाव हो तो भी ये व्यापार में, कारोबार में धोखा दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में धोखे की संभावना बहुत होती है। जिनका बुध कमजोर हो ऐसे लोग सोच समझ कर व्यापार करें, वरना व्यापार में झटका जरूर लगेगा। अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे के योग हैं तो क्या करें? साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार कभी मत करिएगा। व्यापार का लेन देन मंगलवार को बिल्कुल मत करिएगा और संभव हो तो बुधवार को भी ना करें। और अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे का योग है तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। ऐसा करने से व्यापार में धोखे से बच जाएंगे। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती फिलहाल दिखाई दे रही हैं। काम की बाधाएं समाप्त होंगी, व्यर्थ की चिंता ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सबसे ज्यादा धोखा जो मिलता है और लोग कहते भी हैं, वो प्रेम और विवाह के मामले का धोखा है। आपको बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, पता चला लड़का कुछ करता ही नहीं है। आपको बताया गया कि लड़की बिल्कुल ठीक है, पता चला लड़की को कोई बड़ी बीमारी है। तो प्रेम और विवाह के मामले में भी धोखा मिलता है। कब मिलता है? अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य का या मंगल का संबंध हो तो इस तरह का धोखा जरूर होता है। शुक्र के साथ सूर्य वाले बड़े लापरवाह होते हैं रिश्तों के मामले में और अक्सर धोखे के शिकार हो जाते हैं। सातवें स्थान में अगर चंद्रमा बैठ गया या बृहस्पति बैठ गया तो ऐसी स्थिति में या तो विवाह होता नहीं या अगर विवाह हुआ तो विवाह में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। अगर बृहस्पति खराब है, खास तौर से किसी महिला का बृहस्पति अगर खराब है तो विवाह के मामले में उसे धोखा जरूर मिलता है। पति पत्नी के जो ग्रह हैं आपसी, अगर उनमें मित्रता नहीं है तो विवाह में धोखा मिलता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब गड़बड़ हो जाता है और विवाह में धोखे की संभावना बनती है। पुरुष का शुक्र खराब हो, पुरुष को धोखा मिलेगा। महिला का बृहस्पति खराब हो, महिला को धोखा जरूर मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह या प्रेम के मामले में धोखे के योग हैं तो क्या करें? शादी या प्रेम में बहुत ज्यादा अपेक्षा मत पालिए। जो लोग बहुत ज्यादा ठोंकने बजाने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं शादी या प्रेम में, उनको धोखा जरूर मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम या विवाह के मामले में धोखे के योग हैं तो काले और भूरे रंग के कपड़ों का प्रयोग जीवन में कम करिएगा। खास तौर से ब्राउन कलर का ज्यादा प्रयोग करने से राहु एक्टिव हो जाता है, धोखा अवश्य मिलता है। राधा कृष्ण को रोज प्रातः गुलाबी फूल चढ़ाइए। अगर कुंडली में धोखे का योग है प्रेम या विवाह के मामले में, देखिए अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी कुंडली में ऐसे संकेत हैं कि विवाह के मामले में या प्रेम के मामले में धोखा मिलेगा, अगर धोखे के योग प्रबल हैं तो हीरा कभी मत पहनिएगा। हीरा पहनना आपको धोखे तक खींच करके ले जाएगा, इसलिए अगर कुंडली में धोखे के योग हों तो हीरा धारण

धोखे की संभावना बड़ी प्रबल होती है दोस्ती में। अगर किसी का बुद्ध खराब है तो आपको जो दोस्त मिलेंगे जीवन में वो अपने स्वार्थ के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के मित्र स्वार्थ के लिए उनके साथ जुड़ते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत होता है ना, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला आदमी मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी वो चुप रहकर इंतजार करते हैं कि सही समय आने पर बात करेंगे। बृहस्पति शुभता वाला प्लेनेट है, इसलिए कुंडली में अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति शांत रहकर अपने साथ होते हुए धोखे को देखता है और सही समय पर इसका जवाब देता है। जिनका बुध खराब है वो दोस्ती में धोखा खाते भी हैं, और बुध अगर चौपट है तो वो धोखा देते भी हैं, तो जैसा करते हैं वैसा जीवन में उनको मिलता है। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ दोस्ती में बार बार धोखा हो जाता है, बार बार दोस्तों की तरफ से धोखे की स्थिति बन जाती है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। भगवान कृष्ण को रोज सवेरे पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण से ज्यादा मूल्यवान मित्र कोई भी नहीं है। और अगर दोस्ती में बार बार धोखा मिल रहा है तो एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। सूर्य का एक रत्न आता है, उसे कहते हैं गार्नेट। एक गार्नेट का लॉकेट बनवा लें और इसको तांबे या सोने के लॉकेट में बनवा कर अपने गले में पेंडेंट की तरह धारण करें। इससे भी आप धोखा खाने से बचेंगे, धोखा मिलने के पहले आप सतर्क हो जाएंगे। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शत्रु और विरोधी शांत होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर की बाधा समाप्त होगी। जल्दबाजी में काम ना करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में बराबर उतार चढ़ाव रहता हो, कभी पैसा ज्यादा, कभी पैसा कम, कभी बिल्कुल नहीं, तो एक स्टील का छल्ला बनवा लीजिए। स्टील का छल्ला दाहिने हाथ की, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।

0: अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है और अशुभ बृहस्पति की दशा चल रही है तो क्या करें? बृहस्पति की अशुभ दशा में अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। और बृहस्पति की अगर अशुभ दशा चल रही है तो पीला रंग और पीले रंग की वस्तुओं से परहेज करें। बृहस्पति की कितनी भी अशुभता है, अगर आप निरंतर शिव जी की पूजा करेंगे तो बृहस्पति की अशुभता दूर हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
1: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं है, यह एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है, कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जहां साफ पानी भरा हो। यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है, लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा और इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और GNT ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएंगे, जैसे घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचाकर रखें और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित इस्तेमाल जरूर करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा और ऑल आउट और GNT के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर।
3: नमस्कार, के साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा अधिक मास की सोमवती अमावस्या पर आस्था की डुबकी की भी।
6: सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर देश भर की पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। अधिक मास की अंतिम दिन पड़ी इस अमावस्या पर हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान ध्यान के साथ श्रद्धालु पूजा पाठ में लीन नजर आए। प्रयागराज में संगम के तट पर तो अयोध्या में सरयू नदी में, हापुड़ में गंगा तो चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास के साथ ही सोमवार में अमावस्या का शुभ संयोग श्रद्धालुओं के लिए विशेष फलदायी होता है, इसलिए इस विशेष अवसर पर देश भर के मंदिरों में भी पूजा पाठ के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित मारतंड सूर्य मंदिर में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ बनमास मेला आयोजित हुआ। पुरुषोत्तम मास में मनाए जाने वाले इस उत्सव में विशेषकर हर रविवार को यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते रहे और यहां पूजा अर्चना करने के साथ अनुष्ठानों में शामिल होते रहे। पूरे पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में यहां विशेष प्रार्थनाएं और भक्तिमय कार्यक्रम आयोजित होते रहे, जिसने श्रद्धालुओं के साथ ही पर्यटकों को भी खूब आकर्षित किया। पुरुषोत्तम मास के दौरान मट्टन में स्थित इस सूर्य मंदिर में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा की जाती है। श्रद्धालु विशेष रूप से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करने यहां पहुंचते हैं और यहां लंगर का प्रसाद भी पाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से इस विशेष आयोजन के लिए हर तरह की उचित व्यवस्था रही। बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर देश और दुनिया से उमड़ा आस्था का सैलाब। कैंची धाम के स्थापना दिवस पर सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लगने लगी और हर ओर बाबा नीम करौली के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। इन सब के बीच भक्त बाबा के दर्शन पूजन कर महाप्रसाद ग्रहण करते रहे। इस विशेष अवसर पर विशाल भंडारे में भक्त बाबा का महाप्रसाद ग्रहण कर भक्ति भाव के रंग से सराबोर दिखे। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से उनकी सुरक्षा और सुविधाओं के भी विशेष प्रबंध किए गए। कमिश्नर आईजी से लेकर डीएम और एसएसपी तक व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रहे। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के रायपुर में स्थित श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर के पहले चरण का उद्घाटन इस्कॉन की आध्यात्मिक शिक्षा और भक्ति भाव को बढ़ावा देने की कोशिशों के तहत इस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो श्री राधा गोविंद देव जी को समर्पित है। इस नए मंदिर परिसर में सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामुदायिक सेवा से गतिविधियां आयोजित होंगी। इस मंदिर के पहले चरण के उद्घाटन के अवसर पर भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को फैलाने और सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देने में मंदिर की भूमिका पर जोर दिया गया। गर्मी के इस मौसम में फलों का राजा आम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जगह जगह मैंगो फेस्टिवल का आयोजन देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम की सेक्टर 82 स्थित फेलिक्स प्लाजा में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में 70 से ज्यादा आम की किस्म प्रदर्शित किए गए, जिनमें चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, नीलम, केसर, सिंदूरी, फजरी, बॉम्बे ग्रीन जैसे आम शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर का पहला आम कार्निवल आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग किस्मों के आम देखने को मिले। यहां किसानों को अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने का मंच भी मिला और साथ ही स्थानीय उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों ने भी आम से बने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया।
3: और अब बात करते हैं नोएडा एयरपोर्ट की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों की शुरुआत शुरू हो चुकी है। नोएडा एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट लखनऊ से आई। इसके कुछ ही देर बाद यहां से पहली उड़ान भी लखनऊ के लिए गई। नोएडा एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये एयरपोर्ट दिल्ली के आईजीआई की भीड़ को कम करेगा और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए उड़ान को बहुत आसान बना देगा। यही नहीं, इस एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ पश्चिमी यूपी में विकास, रोजगार और वैश्विक कनेक्टिविटी का नया द्वार खुल गया है।
7: पहले गुड़गावा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ दुनिया में भागे, आज हमारे दरवाजे पे रोजगार मिली। वो
8: बहुत रोजगार मिलेंगे, नए आएगा आने वाली पीढ़ी।
9: बहुत अच्छा लगा, ये एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है और यहाँ के सब सुविधा भी अच्छी है।
3: दिल्ली एनसीआर का दूसरा हवाई अड्डा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा की शुरुआत हो गई। इसी के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो गया। उन्हें लगने लगा कि उनका शहर अब गुरुग्राम से आगे नहीं तो उसके बराबर तो हो ही जाएगा। जैसे ही लखनऊ से इंडिगो की पहली उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, विमान में बैठे यात्रियों ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। इसके बाद विमान को वाटर कैनन सल्यूट देकर इस पल को और भी खास बना दिया गया और फिर एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों ने यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये उड़ान देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के लिए भी खास रही, क्योंकि इंडिगो जेवर एयरपोर्ट से उड़ान सेवा का संचालन करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है।
10: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो चुका है। इस वक्त हम उसी एयरपोर्ट के डिपार्चर पॉइंट पर मौजूद हैं और यहां से एयरपोर्ट के लिए आज से कमर्शियल फ्लाइट का संचालन शुरू हो चुका है। कैसा आपका एक्सपीरियंस?
11: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया।
10: कहां से हैं आप?
11: नोएडा से ही हैं।
10: क्या करते हैं?
11: लखनऊ गए थे हम इसी फ्लाइट के लिए ही।
10: अच्छा, इसलिए आप लोग लखनऊ गए थे इसी फ्लाइट के लिए?
11: जी जी जी।
10: क्या करते हैं?
11: मैं जॉब करता हूँ।
10: जॉब करते हैं?
11: जी जी।
10: क्यों ऐसा कि पहली फ्लाइट के लिए आप वहाँ लखनऊ गए स्पेशली? क्या
11: है हमारा एक मेरा बकेट लिस्ट था, वो आज पूरा हुआ कि नोएडा का एयरपोर्ट जब खुलेगा तो विल टेक द फर्स्ट फ्लाइट।
10: कैसा एक्सपीरियंस रहा?
12: नहीं नहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा नोएडा में भी अब एयरपोर्ट है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का। थैंक यू।
10: लगातार यही बात कही जा रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जो उद्योग है नोएडा का और आसपास के जिलों का उनको बड़ा फायदा मिलेगा।
12: बिल्कुल फायदा मिलेगा उद्योगों को भी और यहाँ के नागरिकों को भी।
10: कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
13: बहुत बढ़िया, हमको तो बहुत इच्छा थी कि हम इस फर्स्ट फ्लाइट को लें और लखनऊ से ही स्टार्ट हो रही थी, हम लखनऊ में ही रहते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगा।
3: इस एयरपोर्ट से जब दूसरी फ्लाइट लखनऊ के लिए रवाना हुई तब एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जिन ग्रामीणों की जमीन ली गई थी वे इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने। उन्होंने नए शुरू हुए एयरपोर्ट से लखनऊ जाने वाली पहली पैसेंजर फ्लाइट में उड़ान भरी जिसमें जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह भी किसानों के साथ लखनऊ गए। इन किसानों ने कहा कि उनकी जमीन देश और राज्य के विकास में इस्तेमाल हो रही है, ये उनके लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आभार जताया।
14: पहली बार सिर्फ विमान उड़ान नहीं भरेगा, ये महिलाएं भी अपने सपनों को उड़ान भरते हुए देखेंगी क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं इनमें इस वक्त इस टिकट के साथ यहाँ खड़ी हैं वो पहली बार किसी फ्लाइट में बैठेंगी। राजवती जी नाम है आपका, इससे पहले हवाई जहाज की यात्रा की है आपने?
15: नहीं की।
14: नहीं की है?
15: नहीं की।
14: कैसा लग रहा है?
15: अच्छा लग रहा है, दो दिन है गए भूख न लगी।
14: दिनों से भूख नहीं लगी आपको?
15: खुशी के मारे।
14: तो आपकी जमीन गई है?
15: हाँ।
14: कितनी जमीन गई है आपसे?
16: हमारी जमीन काफी गई थी।
14: लेकिन आप खुशी हो रही है कि हवाई जहाज?
16: हाँ खुशी हो रही है।
3: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने पर जानी मानी अभिनेत्री गुल पनाग ने भी खुशी जाहिर की। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा कि लखनऊ से नोएडा के लिए पहली उड़ान का हिस्सा बनना उनके लिए रोमांचक और यादगार रहा।
10: पहली फ्लाइट से आपने भी फ्लाई किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
17: एक पायलट होने के नाते, एक एविएशन इंथ्यूजियास्ट होने के नाते, एक एविएशन फैन होने के नाते मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे इस पहली उड़ान पे उड़ान भरने का मौका मिला। एक एविएशन हिस्ट्री का एक छोटा सा पहलू मैं हूँ, उसका एक मुझे पार्ट होने का मौका मिला, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते हैं और मेरे लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू है टू बी ऑन द इनॉग्रल फ्लाइट दैट लैंडेड इन टू नोएडा।
3: वहीं एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पायलट की ड्रेस पहनकर आई छोटी बच्ची सफा को देख सभी की निगाहें इसी पर टिक गई। एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारी और यात्री सफा से मिले और फोटो खिंचवाई। सफा के घर वालों ने बताया कि उनकी इच्छा है कि बच्ची बड़ी होकर पायलट बने।
18: लखनऊ से जो नोएडा के लिए इनॉग्रल फ्लाइट है उसके लिए हमने प्रिपरेशन किया था, तैयारी की थी, जो हम हमारी बच्ची को मेरी वाइफ के साथ में हम इसको लेकर आए और इसका हम लुत्फ उठाएं। इसकी मदर का है ऐसा एक्सप्रेशन कि ये पायलट बने और फिर उसके जो भी उसके प्रोफेशन में वो जो भी चूज करेगी उसे हमें मंजूर है।
3: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे 3900 मीटर लंबा है, साथ ही एक टर्मिनल बिल्डिंग और ATC टावर है। वहीं इस एयरपोर्ट पर 30 एकड़ में कार्गो हब भी बनाया गया है। इस एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 1,20,00,000 से ज्यादा यात्रियों की है। अभी इस एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर हर घंटे 12 विमान टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही इसे बढ़ाकर 20 विमान प्रति घंटा करने की योजना है।
14: इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब से? ये बड़ा सवाल है।
19: नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जैसी हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए ये टर्मिनल अप्रूव करेंगे उसके बाद ही जरूर इंटरनेशनल ऑपरेशंस करने के लिए भी काफी उत्साहित है एयरलाइंस, तो जैसे उसकी व्यवस्था यहाँ पे बन जाएगी और हम भी उसके ऑपरेशंस के लिए लाइसेंस दे देंगे तो इंटरनेशनल भी शुरुआत।
3: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही दिल्ली NCR अब दुनिया के उन चुनिंदा बड़े महानगरीय क्षेत्रों में शामिल हो गया है जहां एक से अधिक प्रमुख हवाई अड्डे ऑपरेशनल है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो सकती है। जाहिर है दिल्ली NCR के लोगों को अब उड़ान भरने के लिए हर बार IGI एयरपोर्ट की ओर दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों को फायदा होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मनीष चौरसिया और अमित भरद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी में आज विश्व डेंगू दिवस मना, तो दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस मनाकर किया गया यात्रियों का स्वागत। आइए सीधे आपको लिए चलें न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भगवान विष्णु के पावन धाम बद्रीनाथ में आज देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ में उन्होंने विधि विधान से पूजा संपन्न कर श्री हरि के चरणों में शीश नवाया और देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। साल 2015 से लगातार अंबानी परिवार बद्रीनाथ धाम जाता है और पूजा अर्चना के साथ धार्मिक कार्यों के लिए भी सहयोग करता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी मुकेश अंबानी ने यहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का दान दिया। बद्रीनाथ धाम में दर्शन और विशेष पूजा अर्चना के बाद मुकेश अंबानी केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। वाराणसी के नमो घाट पर योग सप्ताह की शुरुआत हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में हिस्सा लेने के लिए लोग उमड़े। परिवार कल्याण अभियान के तहत विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर ये योग वीक आयोजित किया गया। साथ ही 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाएगा। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने और उन्हें जोड़ने के लिए ये पहल की जा रही है। वाराणसी के पंडितपुर गांव के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। आज विश्व डेंगू दिवस पर यहां साथ लड़ेंगे डेंगू से कैंपेन की पहली सालगिरह मनाई गई। पिछले साल वर्ल्ड डेंगू डे पर मच्छर भगाने वाली कंपनी ऑल आउट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर ये पहल शुरू की थी। इस बार इस कैंपेन की इंपैक्ट रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक इस गांव में डेंगू और मलेरिया के प्रति जागरूकता 97% तक बढ़ चुकी है। एनिवर्सरी इवेंट में बच्चों को भी केंद्र में रखा गया। दबंग डेंगू जासूस के तौर पर बच्चों ने डेंगू सुरक्षित घर रिपोर्ट कार्ड के जरिए घरों में जांच की। इस एक्टिविटी ने इस संदेश को और मजबूत किया कि डेंगू से बचाव की शुरुआत घर से होती है और इसे हर हफ्ते की आसान जांच से और बेहतर बनाया जा सकता है। बिहार के दरभंगा में सरकार की उड़ान योजना के तहत कम समय में ही देश का नंबर 1 हवाई अड्डा बन जाने से चर्चा में आए दरभंगा हवाई अड्डा पर आज यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। एयरपोर्ट पर आने वाले सभी हवाई यात्रियों को तिलक लगाकर गुलाब का फूल भेंट करके स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर मिथिला की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली, जहां बच्चों ने मिथिला की लोक कला और गीत संगीत के माध्यम से पारंपरिक नृत्य पेश किया। इससे पहले यहां वृक्षारोपण भी किया गया और यात्रियों और कर्मचारियों के लिए एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें फ्री हेल्थ चेकअप के साथ रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। तमिलनाडु में वेल्लोर का मुदायूर गांव पत्थर पर नकाशी की प्राचीन परंपरा को पीढ़ियों से जीवित रखने के लिए जाना जाता है। गांव के लोग आज भी इस पारंपरिक कला को संजोए हुए हैं। यहां पीढ़ियों से ये काम हो रहा है। गांव के कुशल कारीगर पत्थरों पर देवी देवताओं की बारीक मूर्तियां, सांस्कृतिक आकृतियां बनाते हैं और उन्हें सजाते भी हैं। भारत की समृद्ध मूर्ति कला विरासत को बचाने में योगदान के लिए इस गांव को पहचान मिली है। इस कला को बचाए रखने के लिए नई पीढ़ी को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अब बात मौसम की। देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में दोपहर के बाद मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। जिस दिल्ली एनसीआर में सुबह से कड़क धूप थी, वहां दोपहर बाद धूल भरी तेज आंधी चलने लगी और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। लिहाजा मौसम के मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने आंधी, तूफान और बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मॉनसून अब धीरे धीरे देश के बड़े हिस्से को कवर करता जा रहा है। अब लोगों की नजर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों पर टिकी हुई है, जहां गर्मी अभी भी लोगों को परेशान कर रही है।

0: धूल भरी आंधी और धुंध की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली एनसीआर की हैं। आज दोपहर में दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के इलाकों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली, जिससे सड़कों पर धुंध छा गई। धूल भरी आंधी के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई। लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि इस धूल भरी आंधी और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी गिरावट आई।
1: एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली का मौसम बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो हवाओं का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। हालांकि कुछ देर पहले जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश भी दर्ज हुई है। सुबह के वक्त भी जो है कई इलाकों पर बारिश हुई थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद गर्मी जो है वो वापस से शुरू हो गई थी। धूप ने लोगों को परेशान किया हुआ था, लेकिन इस वक्त की आपको मैं ताजा तस्वीर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इंडिया गेट का जो मौसम है वो पूरा बदल चुका है। और इस वक्त चाहे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए या आसपास के मैदानी राज्यों की बात की जाए, इसी तरीके से जो मौसम है वो इस वक्त बना हुआ है। लगातार हवाएं जो है वो चल रही है, कहीं कहीं जगह बारिश भी जो है वो देखी जा रही है, और साथ ही साथ धूल भरी आंधी जो है सबसे पहले दस्तक दी और उसके बाद एकदम हवाओं का जो सिलसिला है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। और ये पहले से अनुमान भी था कि जो पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त सक्रिय है उसका असर जो है 2 से 3 दिन के बाद तक भी नजर आने वाला है।
0: दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल छाए हुए हैं और कुछ जगहों पर बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में हालात और खराब होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने बिगड़ते मौसम को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर ऑरेंज तो कुछ जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि तापमान में गिरावट आने से गर्मी से परेशान लोग मौसम का आनंद लेने के लिए घरों से बाहर निकले।
1: सकते कि किस तरीके से मौसम जो है वो देश की राजधानी दिल्ली का बना हुआ है, और इसी तरीके से अगर मौसम रहा तो तापमान में भी गिरावट होगी और लोगों को भी राहत मिलेगी। तो मौसम एक बार दिखा रही हूँ, कर्तव्य पथ की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि हर कोई आपको जो है इस वक्त घरों से बाहर नजर आएगा मौसम का आनंद उठाते हुए। सर बहुत अच्छी खासी हवा चल रही है, पहले तो बताओ कितना एंजॉय कर रहे हैं?
2: बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय। अगर धूप होती तो एंजॉय भी नहीं कर पाते।
1: हाँ जी, अभी इससे पहले तो धूप ही थी, ये तो मौसम एकदम से बदला है मैम।
3: हाँ, वेदर प्लेजेंट हो गया तो इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा आना सक्सेसफुल हो गया। अच्छा। एंजॉय कर पा रहे हैं हर चीज को, इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस।
1: देखने के लिए निकले हो या बाहर ही थे और एकदम से मौसम बदल गया?
2: हाँ, जैसे यहाँ पे आए तो एकदम मौसम बदल गया। आए देखने के लिए यही लग रहा था धूप होगी तो कैसे देख पाएंगे, लेकिन वेदर इतना बढ़िया हो गया कि जो है वो अच्छा लग रहा है देखते हुए।
1: जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलो हर कोई जो है अच्छा मौसम ही एक्सपेक्ट करता है, और एकदम से जिस तरीके से मैंने बताया कि कुछ देर पहले जो है वाकई में धूप थी, तापमान जो है वो थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब एकदम से तापमान बदल चुका है। आप देख सकते हैं कि मौसम किस तरीके से हो गया है। बादल अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से बादल जो है वो छाए रहने की जो है आशंका मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जो है वो जताई गई है कि इसी तरीके से मौसम जो है वो रहेगा। लगातार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, बारिश भी जो है वो देखी जाएगी, लेकिन तापमान में गिरावट जरूर दर्ज होगी।
0: मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा है। बता दें कि रेड अलर्ट का मतलब है कि मौसम काफी खराब रहने वाला है और लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। दिल्ली में मॉनसून की एंट्री 27 जून के आसपास होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार मॉनसून निर्धारित समय के आसपास या थोड़ा पहले भी दिल्ली पहुंच सकता है। फिलहाल राजधानी में प्री मॉनसून बारिश, तेज हवाएं और धूल भरी आंधी का दौर जारी रहने की संभावना है।
1: हालांकि मॉनसून में भी जो है अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले गर्मी हर किसी को परेशान कर रही थी, उमस हर किसी को परेशान कर रही थी, और उसी से राहत पाने के लिए हर किसी को इंतजार था कि बारिश जो है वो दिल्ली एनसीआर में देखी जाए। हालांकि बारिश अभी यहां पर तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हवाएं चल रही है उसने तापमान भी कम किया और लोगों को गर्मी से राहत भी दी है।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रोशनी के बीच बारिश की बूंदे और चमकती हुई बिजली से तापमान में काफी गिरावट तो आई, लेकिन भारी बारिश की वजह से लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम में गिरावट आने से ठंड भी काफी बढ़ गई है।
4: कांगड़ा की वादी में पिछले 22 घंटों से बारिश हो रही है और उसके साथ सड़कों पर ट्रैफिक का जाम और मौसम में ठंडक। इतना ही नहीं, जो यात्री कांगड़ा में माता ब्रजेश्वरी के मंदिर में आ जाते हैं वो सर छुपाने के लिए बारिश के कारण दुकानों में बैठे हुए हैं। बारिश के कारण सारे शहर में कहीं कहीं ट्रैफिक का जाम हुआ जो बाद में रेस्टोर हो गया। मौसम के कारण ठंडक बहुत ज्यादा हुई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
0: जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश की वजह से भारी भूस्खलन हुआ है। पिछले कुछ घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते पुंछ को जोड़ने वाले हाईवे पर अचानक लैंडस्लाइड हो गया जिससे मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। सड़क बंद होने के कारण हाईवे के दोनों ओर 200 से अधिक छोटे बड़े वाहन फंस गए और लोग घंटों तक सड़क पर ही फंसे रहे।
5: मैं आज जम्मू जा रहा था और मैंने यहाँ पे हम लगभग 10:30 बजे पहुँचे थे, उसी समय यहाँ पर जो है भूस्खलन हुई और पूरा पहाड़ जो है वो नीचे आ गया। वहीं देखा गया कि तुरंत ही प्रशासन ने यहाँ पर 2 JCB जो है वो भेज दी और उन्होंने यहाँ से मलबा हटाना शुरू कर दिया। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि दोनों JCB जो है इस समय बहुत ज्यादा मलबा जो है वो उठा चुके।
0: मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मॉनसून की रफ्तार बढ़ सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रही अनुकूल मौसमी परिस्थितियां और नमी से भरी हवाएं मॉनसून को मध्य और उत्तर भारत की ओर आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। ऐसे में जून के आखिरी सप्ताह तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय होता दिखाई दे सकता है। हिमाचल के कांगड़ा से अशोक रैना के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
6: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा से करीबी
6: आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा से करीबी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिला। सोमवार को 30 शेयर वाला BSE सेंसेक्स 736 अंकों की बढ़त के साथ 76,264 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 231 अंकों की बढ़त के साथ 23,853 पर बंद हुआ। अमेरिका ईरान के बीच पीस डील का खाका तैयार होने से सोमवार को गोल्ड की कीमतों में फिर मजबूती देखने को मिली। सराफा व्यापारियों के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव चढ़कर 1,59,400 रुपए तक पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए चढ़कर 2,60,700 रुपए पर पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें और अमेरिका की ईरान के साथ डील होने से 15 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में मजबूती देखने को मिली। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 47 पैसे मजबूत होकर 94.71 के स्तर पर बंद हुआ।
6: महेश भट्ट ने किया अपनी नई फिल्म का ऐलान। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
7: बॉलीवुड के जाने माने निर्माता महेश भट्ट ने अपनी नई फिल्म की घोषणा की है। इस फिल्म का टाइटल टू लिव इज वॉर रखा गया है जिसका निर्देशन सिद्धांत सचदेव कर रहे हैं। फिल्म के अनाउंसमेंट को लेकर शेयर की गई तस्वीर में महेश भट्ट के साथ डायरेक्टर सिद्धांत सचदेव, वरुण शर्मा और वीर पहाड़िया दिखाई दे रहे हैं। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में वीर पहाड़िया और वरुण शर्मा नजर आएंगे। फिल्म का नाम टू लिव इज वॉर की लीड एक्ट्रेस कौन होंगी ये फैसला होना बाकी है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ऑब्सेस 19 जून 2026 को सिनेमा घरों में फिर से रिलीज होने जा रही है। उत्तर भारत में इस डिमांड को देखते हुए इस शुक्रवार यानी 19 जून को सिनेपोलिस और दूसरे सिनेमा घरों में ये फिल्म बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। पीटर विल्सन निर्देशित इस फिल्म में पीटर विल्सन के साथ ईशा सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म को पीटर विल्सन एंटरटेनमेंट, जगराज मोशन पिक्चर्स, राजेंद्र गिल और जगदीश सिंह ने प्रोड्यूस किया है। पैन इंडिया फिल्म नागबंधम की टीम ने हैदराबाद में अनंत पद्मनाभ स्वामी रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ किया। फिल्म की रिलीज से पहले शुरू की गई यह अनूठी पहल, भगवान अनंत पद्मनाभ स्वामी की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। आकर्षक शिल्पकला और दिव्य आभा से सजी ये प्रतिमा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। विराट कर्ण और नाभा नतेश की मुख्य भूमिका निभाने वाली फिल्म नागबंधम 3 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। उससे पहले नागबंधम की टीम की ओर से शुरू की गई ये अनंत पद्मनाभ स्वामी रथ यात्रा देश के कई शहरों में जाएगी। फिल्म आर्यभट्ट का जीरो का पोस्टर सामने आ गया है। इस पोस्टर में ही फिल्म की रिलीज डेट भी दी गई है। शून्य से अनंत संभावनाओं तक थीम पर आधारित पोस्टर में इस फिल्म के 7 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने की जानकारी दी गई है। हिमांश कोहली, सोनाली सहगल और रवि किशन स्टारर इस फिल्म को कमल चंद्र ने निर्देशित किया है।
6: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
6: बाबा नीप करौरी महाराज के कैची धाम में उमड़ा आस्था का जन समंदर। 59वें स्थापना दिवस के मौके पर देश दुनिया से पहुंचे भक्त, बाबा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। तापमान में दर्ज की गई 4 से 6 डिग्री की गिरावट। आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली NCR पर भी मौसम मेहरबान। राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छिटपुट बारिश। पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। आम के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट। अलग अलग राज्यों की 70 से ज्यादा वैरायटी मौजूद। गुलाब खास, अंगूरदाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वाद की दीवानगी। अहमदाबाद से बीकानेर के बीच जल्द शुरू होगी नई ट्रेन। गुजरात और राजस्थान के हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत। दोनों राज्यों के बीच 740 किलोमीटर लंबा सफर होगा आसान। यात्रा पर स्लोवाकिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, वंदे मातरम के साथ शानदार स्वागत। G7 की बैठक में होगी ट्रंप से मुलाकात। न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
7: दुनिया में फुटबॉल फीवर छाया हुआ है, ऐसे में ब्राजील की इन तस्वीरों को देखिए जरा। फुटबॉल फीवर के इस दौर में ये शख्स फुटबॉल खिलाड़ियों की जर्सी पहनकर सड़क पर फुटबॉल के साथ दिखाई दे रहा है और वो चलते चलते फुटबॉल से खेलता नजर आ रहा है, लेकिन इस फुटबॉल को खेलने में वो कुशल तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें इतनी वायरल हो चुकी हैं कि यूजर्स पूछ रहे हैं, शायद ब्राजील में फुटबॉल खेलने में खराब होना गैर कानूनी होगा, वरना ऐसे खेल से फुटबॉल प्रेमियों का दिल दुखाने की सजा तो जरूर मिलती। अब इस वीडियो में दीदी के मंकेश भाई यानी इस बंदर जी को देखिए जरा। बंदर शीशे के उस तरफ है और दीदी उसको घूर रही है। बंदर जी को घूरना बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो मुंह दूसरी तरफ कर देते हैं। दीदी वहाँ भी उनको ताकने लगती है। कहाँ मंकेश भाई घर में एंट्री लेने की जुगत में थे, घर वालों को डराने वाले थे, लेकिन दीदी ने आज उसके साथ खेला कर दिया। परेशान बंदर भैया भाग खड़े हुए। अब परेशान हुए बंदर को भागता देख यूजर्स मुस्कुरा रहे हैं। बच्चा बच्चा होता है, जानवर का हो या इंसान का। चिंपैंजी के इस छुटको बच्चे को मोटर बाइक पर चढ़ना है। पहले मोटर बाइक पर बैठा ये शख्स उसे सीट पर बैठाता है, फिर उतार देता है। तब शुरू होते हैं इस छुटको के तमाशे। मानो कोई इंसान का बच्चा सड़क पर नाटक नौटंकी कर तमाशा मचा रहा हो। छुटकू चिंपैंजी के नाज नखरे, रोना पीटना देखकर वीडियो देखने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बच्चे को देख कौन नहीं मानेगा कि चिंपैंजी वाकई हमारे पूर्वज ही थे। इस वीडियो को देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में नन्हे डॉगी की जीजी विशा को देख सलाम कर रहे हैं। ये बेचारा पपी नन्हे फरिश्ते से कम नहीं। अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद वो जिंदा रहने और जिंदगी को जैसे है वैसे ही उसका आनंद लेने में खुश है। कहीं न कहीं उसे भी अपनी इस भावना पर मन ही मन गर्व ही होगा। आखिर वो लोगों को जीवन से प्यार करने का संदेश भी तो दे रहा है। अब इस महाशय की कलाकारी देखिए। सड़क पर बाइक चलाते हुए हुनर दिखाने निकले और पीछे से बाइक का चक्का ही निकल गया। अब वो पिछले पहिए के बिना ही बाइक चलाने का कौशल दिखा रहे हैं। वीडियो वायरल हो गया है, यूजर्स हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि बाइकर के इस जुनून से बाइक इतना परेशान थी कि उसका पिछला पहिया नाराजगी से चलते चलते इस्तीफा दे गया।
6: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश के हाईटेक सिटी नोएडा की। राज्य को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर में बनी हाई राइज बिल्डिंग के घटिया निर्माण की पोल खोलने वाले मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालात ये हैं कि इन सोसाइटी में रहने वाले लोग अब इस कदर डरने लगे हैं कि वे हेलमेट पहनकर हाउसिंग सोसाइटी में निकलने को मजबूर हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके मुताबिक नोएडा के सेक्टर 78 में अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 सोसाइटी के लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए सिर पर हेलमेट पहनकर चल रहे हैं। बच्चे भी सोसाइटी में खेलने के लिए निकलने से पहले खुद को हेलमेट लगाकर बचा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी के टावर जर्जर हालत में है, जिससे कि लोगों को डर सता रहा है कहीं प्लास्टर का हिस्सा निकलकर उन पर गिर ना जाए। यही नहीं, डर इतना ज्यादा है कि लोग खुले रास्तों पर जाने के बजाय बेसमेंट को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं ताकि सुरक्षित रह सके। दरअसल इस सोसाइटी में 2 दिन पहले एक खड़ी कार पर अचानक प्लास्टर का बड़ा हिस्सा गिर गया था, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। गनीमत यह रही कि इस दौरान कार के पास ही पैदल चल रहे 2 लोग बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद सोसाइटी के लोगों ने मेंटेनेंस टीम से उम्मीद छोड़ दी है और अपनी सुरक्षा को लेकर खुद ही सजग हो गए हैं और कुछ लोग हेलमेट पहनने लगे। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि बिल्डिंग मेंटेनेंस में काफी कमजोरियां हैं और इसकी शिकायत जिलाधिकारी से लेकर हाईकोर्ट और रेरा तक में कर दी गई है, मगर समस्या जस की तस बनी हुई। इससे पहले पिछले महीने ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अरिहंत अंबर सोसाइटी में टावर के प्लास्टर का एक हिस्सा एक बाइक सवार युवक पर जा गिरा था। इस हादसे में बाइक बेकाबू होकर एक दीवार से जा टकराई थी। हादसे में घायल विकास चावला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में सोसाइटी के मेंटेनेंस मैनेजर को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया। हाल ही में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक में बनी हाउसिंग सोसाइटी के कई फ्लैट में प्लास्टर गिरने की घटनाएं सामने आई। इसके अलावा बिल्डिंग के बाहर का प्लास्टर गिरने के मामले लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने नोएडा की सोसाइटी में रहने वाले लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
10: यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब प्लास्टर जो गिर रहा है कब से गिर रहा है, किस तरह की समस्या है?
11: सब मैं तो देख रहा हूँ कि 2022 से मेरा ही बालकनी, दो बालकनी, 3 बालकनियों में प्लास्टर गिरा है, जिसमें से 1 बालकनी का और दूसरी बालकनी का आधा करीब मैंने प्लास्टर तो खुद ही अपने प्राइवेट से करा लिया, और जो बाहर का पोर्शन का काम करना है वो बिल्डर 2022 से आज तक नहीं करा पाया। और वो रोज अभी झूला लटकाएंगे, झूले से होगा और वो तो बाहर से होना है, यही सब कहानी बता के वो कुछ करते नहीं है।
10: जो ये बालकनी का प्लास्टर है, हम भी देख रहे हैं कि सोसाइटी की बहुत बुरी हालत है, तो इस पे आपने बिल्डर से कितनी बार कंप्लेन करी है, उसके बाद कभी कोई कार्रवाई हुई?
11: अरे साहब 2022 से मैं कम से कम नहीं 25 बार कंप्लेंट कर लिखा पड़ी मैं 25 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। हर बार ये दो महीने एक महीने बाद ये मिटा देता है, कंप्लेंट को डिलीट कर देगा, फिर हम दोबारा डिलीट करके डालेंगे कंप्लेंट, फिर ये ऐसे ही दो महीने बाद डिलीट कर देगा, बाकी दिखाता रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस, करता कुछ नहीं है अभी।
10: आपने आपने पुलिस से या फिर अथॉरिटी किसी से कंप्लेंट करी?
11: अथॉरिटी रेरा और दुनिया भर की हर जगह अखबारों में सब जगह कंप्लेंट कर करके थक गए, कोई असर नहीं हुआ।
12: सोसाइटी में घूमने में इतना डर लगता है कि अब हमने सामने वेदवन में जाना शुरू कर दिया, हमने घूमना ही बंद कर दिया, मजबूरी में अगर निकलना भी पड़ता है कहीं पे तो हम जिधर दीवार होती है उससे उधर को ना जा करके उसके दूसरी साइड से जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने ही अभी 2-3 दिन पहले की बात है ऊपर से प्लास्टर गिरा और वो लेडी के कंधे पे लगा, और अगर वो एक मिनट मतलब एक सेकंड का भी अंतर हो जाता शायद उनके सिर पर गिरता। और 2 साल पहले जो है मिस्टर वत्स हैं डी टावर में, उनकी कार के ऊपर जाकर मतलब वो गिरा, वो चांस की बात है कि वो कार खाली थी उसके अंदर नहीं बैठे हुए थे, वरना तो उस दिन जो कोई ट्रेजेडी उस दिन भी हो जाती।
13: हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन ये जो तत्कालिक समस्या है प्लास्टर गिरने वाली, ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इससे हमारे जान माल की क्षति होने का डर रहता है। अभी हम लोग घर में बैठे रहते हैं, कोई कोई प्लास्टर धड़ाम से गिर जाता है तो हम लोग देखने लगते हैं कि क्या गिरा, मालूम आता है कि आगे की बालकनी की छत गिरी हुई है, कुछ और गिरी हुई है, इस तरह से जो है हर जगह गिरता रहता है। अभी हम लोग टहलते हैं, ये देहवार तेज चलती है तो हम लोग बिल्डिंग के बगल में नहीं जाते, बिल्डिंग से दूर दूर टहलते हैं क्योंकि अक्सर हवा चलने पे ये प्लास्टर गिरता रहता है।
14: हम लोगों ने अलग अलग माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्स के माध्यम से हमने मैसेज तो पहुंचा दिया उनके पास, और पहुंचाने का सिलसिला लगातार ये पिछले 1-2 सालों से कायम है, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ऐसे लगता है कि वो एकदम इन सब चीजों से अनभिज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं कि इस तरह की चीजें हो।
6: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ऐसा ही कुछ किया है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक महिला ने, सरकारी योजना की मदद से इस महिला ने अपने पति के साथ मिलकर एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर दिया और अब वो स्थानीय महिला और युवा दोनों को रोजगार देने का काम भी कर रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी इस उद्यमी महिला के बारे में जानिए।

0: सरकारी योजनाओं का सही तरीके से फायदा उठाकर भविष्य को बेहतर बनाने की कला अगर सीखनी हो तो उसकी मिसाल है अभिलाषा सलारिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की रहने वाली अभिलाषा सलारिया ने मसालों के प्रोडक्शन का एक बिजनेस शुरू किया और फिर बागवानी योजना की मदद से अपने इस ऑर्गेनिक मसाले के बिजनेस सलारिया फूड एंड स्पाइसेस को एक मुकाम तक पहुंचा दिया है। अभिलाषा ने भारत सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन यानी MIDH योजना के तहत सहायता प्राप्त करते हुए उधमपुर के बट्टल बल्लियां औद्योगिक क्षेत्र में अपनी मसाला उत्पादन इकाई स्थापित की, जो केंद्र सरकार की वोकल फॉर लोकल पहल में भी योगदान देती नजर आती है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के सपने से शुरू हुआ ये सफर आज एक सफल व्यवसाय में तब्दील हो चुका है। अभिलाषा की यह मसाला उत्पादन इकाई उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणिक स्थानीय मसालों का प्रसंस्करण और उत्पादन करती है। इसके लिए लहसुन, अदरक, हल्दी सब सीधे किसानों से खरीदे जाते हैं।
1: हमारे यूनिट का नाम है सलारिया फूड एंड स्पाइसेस और यहाँ पे हम मसालों का काम करते हैं। जैसे यहाँ के लोकल किसानों से हम लहसुन वगैरह, हल्दी वगैरह लेते हैं, अदरक वगैरह ये सब डायरेक्ट किसानों से लेके परचेज करके और यहाँ पे मतलब इनका प्रोसेस करके यहाँ पे हमने जो यूनिट लगाया है यहाँ पे प्रोसेस करके टिक्की मसाला और भी काफ़ी सारे मसाले जो है वो बनाते हैं और बिल्कुल मतलब साफ सुथरे ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे मसाले जो हैं वो तैयार किए जाते हैं।
0: अपने पति की मदद से वो अपने इस उद्यम को आगे बढ़ा रही हैं। इस बिजनेस को बढ़ाने में भारत सरकार के बागवानी विभाग और योजना एवं विपणन विभाग से काफी सपोर्ट मिला है। सरकार ने उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाने और बड़े खरीदारों से सीधे मिलने के बेहतर मौके दिए हैं। अभिलाषा के पति रोहित सलारिया के मुताबिक उधमपुर जिले को लहसुन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत चुना गया है। इस स्कीम के तहत वो लहसुन का अचार और लहसुन पाउडर बड़े पैमाने पर बना रहे हैं। इसके अलावा कश्मीरी टिक्की मसाला, गरम मसाला, मीट मसाला, राजमा मसाला और लोकल मिर्च, हल्दी जैसे मसाले भी खुद ही प्रोसेस करके यहाँ तैयार किए जाते हैं।
2: लहसुन का पिकल्स बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, उसके बाद हमारे पास हमारा कश्मीरी टिक्की मसाला है उसमें लहसुन का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम और भी बहुत किस्म के मसाले बनाते हैं, जैसे गर्म मसाला हो गया, मीट मसाला, राजमा मसाला हो गया, हमारी यहाँ की मिर्ची हो गई, हल्दी जो हम किसानों से लेते हैं उसको प्रोसेस करके हल्दी का पाउडर है, हमारे पास हल्दी का अचार है, ये चीज़ें हम यहाँ पर प्रोसेस करके बना रहे हैं। और हम काफ़ी देर से इस काम को कर रहे हैं जिसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग हो गया, उनकी तरफ से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है।
0: कोई महिला किस तरह सशक्त बन सकती है इसका अभिलाषा सलारिया बेहतरीन उदाहरण है। आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करने के साथ ही अभिलाषा रोजगार भी दे रही है। वो महिलाएं या युवा जिन्हें यहाँ रोजगार मिला है वो इस बात से बेहद खुश नजर आते हैं कि उन्हें कहीं बाहर जाने की जगह अपने यहाँ ही काम करने का मौका मिल रहा है।
3: हमारा रोजगार सब कुछ मतलब कि यहाँ से नॉर्मल हो रहा है और सैलरी भी ठीक ठाक है और हमें लोकल यहाँ पे अच्छा काम मिल गया और यहाँ पे नॉर्मल पाँच छः बंदे मेंबर हैं, उसमें से कुछ लेडीज भी हैं जो हमारे काम की हेल्प करती हैं और कुछ मेंबर्स हैं जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं।
0: अभिलाषा के सफलता की कहानी ये बताती है कि कैसे सरकारी योजनाएं ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्यमियों को सशक्त बना सकती है। इसलिए खुद अभिलाषा भी महिलाओं से आगे आने और केंद्र सरकार की कल्याणकारी और MSME योजनाओं का फायदा उठाने की अपील करती हैं।
1: अभी लेडीज़ को मैसेज है कि घर से थोड़ा बाहर निकलें, जो मतलब कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं, नई नई स्कीमें निकाल रही हैं, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें, मतलब कि पूरा गवर्नमेंट का जो स्कीमों का है वो फ़ायदा लें।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
5: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
5: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
7: You're listening to MSNBC.
5: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर.

0: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
1: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
0: More top sports.
2: And he's gonna go! There's the tying goal!
0: And everything in between.
3: The game is over!
0: Upgrade now for the premium listening experience.
4: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
1: दोहा डायमंड लीग में वापसी करने जा रहे हैं नीरज चोपड़ा। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा का साल 2026 का पहला थ्रो दोहा में होगा। वो 19 जून को दोहा डायमंड लीग में वापसी करने जा रहे हैं। पीठ की चोट से उबरने के चलते नीरज चोपड़ा इस साल किसी भी कंपटीशन में अब तक हिस्सा नहीं ले पाए थे। दोहा डायमंड लीग में जैवलिन थ्रो की प्रविष्टियों में उनका नाम शामिल है। उन्होंने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था और अब इसी से मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं। भारत के शानदार जैवलिन थ्रोअर ने आखिरी बार सितंबर 2025 में टोक्यो में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। भारतीय महिला हॉकी टीम ने नेशंस कप में अमेरिका को हरा दिया। FIH के पूले के अपने पहले मैच में शानदार वापसी करते हुए भारत ने 3-2 से जीत दर्ज की। मुकाबले में 2 गोल से पिछड़ने के बाद दीपिका के शानदार 2 गोल्स ने खेल का रुख पलट दिया। अब मंगलवार को भारत का सामना जापान से जबकि गुरुवार को उरुग्वे से होगा।

0: भारत में भी फुटबॉल विश्व कप को लेकर गजब की दीवानगी देखी जा रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फुटबॉल के फैंस अपनी पसंदीदा टीम और खिलाड़ियों को लेकर अपना समर्थन जताते नजर आ रहे हैं। शहर में जगह जगह फुटबॉल के इस महाकुंभ का माहौल दिख रहा है। ढोल ताशा और आतिशबाजी करने के साथ ही फैंस शहर में लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जूनियर जैसे फुटबॉल स्टार्स के 45 से लेकर 60 फीट तक के कटआउट्स लगाए हुए हैं।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज पूरे।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक।
3: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: To right field, and it will.
3: From the first pitch of the season to the stretch run,
4: and that's the ball game.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: I drive my bus in a busy city. That's why road safety is so important to me. I know that I must slow down and be extra careful when I make a wide turn. Buses need more room than cars. Everyone can help keep our roads safe. Next time you're driving, remember to give buses plenty of time and space to finish turning before driving ahead. Let's all plan to share the road safely. Learn how at www.sharetheroadsafely.gov.
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
3: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachchai ki kasauti par kaste hain. तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं। एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी है जो कि तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को हो सकता है। चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है। कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जहां पर साफ पानी भरा हो, यानी कि डेंगू से जंग की शुरुआत ही हमारे घर से ही होती है। लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति या फिर एक परिवार या एक संस्था की नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और जीएनटी ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएं, जैसे कि घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें, खास करके बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचा कर रखें, और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित इस्तेमाल जरूर करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और जीएनटी के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: बाबा नीम करोरी महाराज के कैची धाम में उमड़ा आस्था का जनसमंदर। 59वें स्थापना दिवस के मौके पर देश दुनिया में पहुंचे भक्त, बाबा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी, तापमान में दर्ज की गई 4 से 6 डिग्री की गिरावट। आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छिटपुट बारिश। पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट।

0: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं मंगल से शुरू हो रहे मंगल दिनों की। 15 जून को अधिक मास समाप्त हो गया और इस तरह शुभ कार्यों पर जो रोक लगी थी वो भी खत्म हो गई। मंगल से शादी विवाह गृह प्रवेश और नया काम शुरू हो सकता है। आज आपको सबसे पहले जून और जुलाई में शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताएंगे जब आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही बात होगी अधिक मास की, जिसके खत्म होने के साथ कई दुर्लभ संयोग बने हैं, इनका घर परिवार और देश दुनिया पर असर होगा। जानकार मान रहे हैं कि इससे सुख समृद्धि और शांति आएगी और इसी बीच भारत समेत पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब रहा अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने की खबर आ चुकी है। दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते पर सितारों की चाल का क्या असर होगा और इस बार क्या शांति पक्की होगी, इस पर भी आज बात होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे मंगल से शुरू रही मंगल बेला की।
1: मंगल बेला आई, गूंजेगी शादी की शहनाई। अधिक मास खत्म, विवाह के मुहूर्त शुरू। शादी के लिए जून में 8 मुहूर्त, जुलाई में शादी के दिन 4। बैंड बाजा बारात, मंगल से मंगल।
0: अधिक मास की समाप्ति के साथ ही मंगल बेला की शुरुआत हो रही है। दुर्लभ संयोग रहा कि अधिक मास के आखिरी दिन सोमवार के दिन अमावस्या भी रही। देश भर में गंगा और दूसरी पवित्र नदियों में के किनारे लाखों लोगों ने भक्तिभाव से स्नान ध्यान किया, पूजा अर्चना की। असल में यह संयोग 3 दशक के बाद आया है जब अधिक मास सोमवार की अमावस्या के साथ खत्म हुआ हो। जानकार मान रहे हैं कि अधिक मास के बाद घर परिवार समाज और देश में सुख समृद्धि और शांति आएगी। देखिए हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ और प्रयागराज तक कैसे हुई पूजा अर्चना।
1: संगम की पवित्र धरती, गंगा का पवित्र जल, हाथ जोड़कर भगवान भास्कर की आराधना, आस्था की अद्भुत तस्वीरें हैं जो सोमवती अमावस्या पर प्रयागराज में नजर आई। बेहिसाब भीड़, अगाध श्रद्धा, संगम के तमाम घाटों पर स्नान के बाद पूजा पाठ, क्योंकि ऐसा संयोग कम ही होता है कि सोमवार की अमावस्या हो और साथ ही अधिक मास का आखिरी दिन। जानकारों के मुताबिक कई दशकों के बाद ये दुर्लभ संयोग हुआ है, इसीलिए प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
2: आज सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या को संगम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। सुबह से ही भक्त संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहां पर पूजा पाठ कर रही हैं और पूजा पाठ करने के बाद अपने देश और अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रही है। सुबह से ही महिलाएं सूर्य देवता की पूजा कर रही हैं और गंगा जल चढ़ा करके यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। माँ गंगा यहाँ पर सबको आशीर्वाद देती हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ लगी हुई है, पूजा पाठ किया जा रहा है और जो लोग हैं अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए भी यहाँ पर आते हैं और महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं जिससे अपने उनके पति और बच्चों की लंबी उम्र हो और माँ गंगा से प्रार्थना करती हैं कि देश में और उनके घर में सुख शांति रहे।
1: प्रयागराज नहीं, देश के सभी तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों में सोमवार को ऐसा ही विहंगम दृश्य देखने को मिला। खासतौर पर माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य का लाभ भी मिलता है।
3: यही कामना है घर में सबको, परिवार सभी आशीर्वाद देती, गंगा माँ सब मनोकामना लेकर उनकी मनोकामना गंगा माँ पूर्ण करती है सबकी।
4: इस जन्म और उस जन्म के वो यहाँ गंगा माँ के स्नान करने समाप्त हो जाता है और हमारे हृदय भक्ति और सनातन धर्म का उद्गम यहीं से प्रारंभ होता है। जो एक महीने का अधिक मास का स्नान करता है भगवान श्री नारायण के चरणों में इस जन्म में सुख संपदा प्राप्त करता है और अंतिम चरण में भी वह मोक्ष प्राप्त करता है।
1: सोमवती अमावस्या का ज्यादा महत्व दो तीन वजहों से है। पहला तो ये कि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। संगम पर भी महिलाओं ने पीपल के पेड़ की दूध जल और अक्षत से पूजा की। पेड़ के चारों ओर कलावा लपेट कर परिक्रमा की गई।
5: आज के दिन जो भी कार्य किया जाएगा उसका हजार गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है और जो दान है या जो पुण्य है वो भी हजार गुना बढ़ जाता है ना। जैसे अगर आप किसी को 100 रुपया दिया तो हजारों हजार रुपये हो जाते।

0: अधिक मास की समाप्ति के साथ एक बड़ी गुड न्यूज जंग के मोर्चे से भी आई है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बन गई है और दोनों देशों के रुख से माना जा रहा है कि 19 जून को शांति समझौते पर मुहर लग सकती है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, जो भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। तय है कि अब सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे देशों से सप्लाई दोबारा शुरू होने से हालात बेहतर होंगे।
1: साढ़े तीन महीने बाद मिडिल ईस्ट के क्षितिज पर उम्मीद का नया सवेरा हुआ है। 28 फरवरी 2026 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर पहली बार पूर्ण विराम लग गया है। यूएस ईरान डील फाइनल होने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों समेत पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर शांति समझौते की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, यह शानदार समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का पैगाम लेकर आएगा। इससे पहले कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। इस रीजन के नेताओं को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो असली शांति ला सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि डील पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में साढ़े तीन महीने से जारी तनाव को खत्म होने का इंतजार पूरी दुनिया को था, क्योंकि इस जंग की वजह से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। कच्चे तेल के दाम न सिर्फ बेतहाशा बढ़ चुके थे, बल्कि आपूर्ति भी चरमरा गई थी। इससे दुनिया के कई देशों की आर्थिक व्यवस्था जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रही थी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत समेत पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में तेल गैस का जबरदस्त संकट पैदा हो गया था।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर 19 जून को होने हैं, लेकिन इस फैसले से पूरी दुनिया ने खुशी और राहत महसूस की है। तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने अपने संदेश भेजकर इसका स्वागत किया है और सबसे ज्यादा राहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की खबर से महसूस की जा रही है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल और क्रूड का कारोबार होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से अब तमाम जहाजों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सकेगी और तमाम सी फेयरर्स जो इस इलाके में फंसे हैं अपने घरों को सकुशल लौट पाएंगे। पूरी दुनिया इंतजार रही है 19 जून का, जब ईरान और अमेरिका इस हस्ताक्षर के साथ शांति का एक नया पैगाम देंगे और लंबे वक्त से आर्थिक संकट झेल रहे देशों को भी इससे राहत प्राप्त होगी।
1: भारत भी इस संघर्ष विराम और समझौते का न सिर्फ बेसब्री से इंतजार कर रहा था, बल्कि इसके लिए कूटनीतिक कोशिशें भी कर रहा था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस डील का तहे दिल से स्वागत किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डील का स्वागत करते हुए लिखा, मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच बनी आपसी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक गतिरोध पैदा हो गया था और कई देशों में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। भारत को आशा है कि इस समझौते के लागू होने के बाद क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और नेविगेशन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश बातचीत जारी रखेंगे, जिससे आने वाले समय में एक स्थायी हल निकल सके। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: जाहिर है यह खबर पूरी दुनिया समेत भारत के लिए बड़ी राहत की है। अब सवाल है कि युद्ध और लंबी तनातनी के बाद क्या मध्य एशिया और दुनिया में शांति का दौर लौटने वाला है? क्या कहते हैं सितारे, आइए समझते हैं।
3: दोनों देशों के लिए ही नहीं, ईरान और अमेरिका के लिए ही नहीं, अभी तो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो एक बड़े परिवर्तन की स्थिति दिखाई देगी। कैसे? क्योंकि एक तो देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में चले गए हैं, मिथुन राशि से उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं। बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है जो कि मीन राशि में है, तो शनि के नकारात्मकता में कमी आ गई है, शुभता में वृद्धि हो जाएगी। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है, तो दोनों ही गुरु कर्क राशि में है, जबकि देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में है, लेकिन दोनों का जो योग होता है

0: में उसको बड़ा ही सम्मान की दृष्टि से बड़ा ही सकारात्मक देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसका शुभ परिणाम आम जनमानस को प्राप्त होगा। तो वैश्विक स्तर पर यह परिवर्तन, यह हस्ताक्षर, यह योग, यह संयोग जो घटित होने जा रहा है वह सकारात्मक होगा।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected.
1: This is 80s hits, exclusively on TuneIn.
0: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
2: You're listening to MSNBC.
0: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now, and thank us later.
3: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: बाबा नीप करोड़ी महाराज के कैंची धाम में उमड़ा आस्था का जन समंदर। 59वें स्थापना दिवस के मौके पर देश दुनिया से पहुंचे भक्त, बाबा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। तापमान में दर्ज की गई 4 से 6 डिग्री की गिरावट। आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली NCR पर भी मौसम मेहरबान। राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छिटपुट बारिश। पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी। आम के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट। अलग अलग राज्यों की 70 से ज्यादा वैरायटी मौजूद। गुलाब खास, अंगूर दाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वाद की दीवानगी। अहमदाबाद से बीकानेर के बीच जल्द शुरू होगी नई ट्रेन। गुजरात और राजस्थान के हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत। दोनों राज्यों के बीच 740 किलोमीटर लंबा सफर होगा आसान। गिर जंगल सफारी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए गुड न्यूज। पर्यटकों को एक हफ्ते और मिलेगा शेरों के दीदार का मौका। सैलानियों के लिए अब 23 जून से बंद होगी गिर सेंचुरी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम का 62वां भव्य स्थापना दिवस। देश विदेश से लाखों की संख्या पहुंचे श्रद्धालु। नैनीताल स्थित कैंची धाम में उमड़ा आस्था भक्ति का सैलाब। बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। मंदिर परिसर बना भक्ति, सेवा और श्रद्धा के अद्भुत संगम का साक्षी। हर ओर सुनाई दे रही बाबा नीम करौली के जयकारों की गूंज।
3: और धीरे धीरे
2: श्रद्धालुओं ने की जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। विशाल भंडारे में हजारों लोगों ने ग्रहण किया बाबा का महाप्रसाद। कैंची धाम में बाबा के दर्शन के लिए दिखी भक्तों की लंबी कतार। पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। तप्त कुंड में स्नान और ब्रह्म कपाल में पिंड तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बद्रीनाथ में 10,70,000 भक्तों ने किया अब तक दर्शन। बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बद्रीनाथ धाम पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी, दर्शन और विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का दिया दान। केदारनाथ दर्शन के लिए अब तक पहुंचने सबसे अधिक श्रद्धालु। लगभग 12 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के कर चुके हैं दर्शन। गंगोत्री यमुनोत्री में 11,49,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा के लिए 50 लाख से अधिक भक्त करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज। रथों को अंतिम रूप देने का काम शुरू। जल्द होंगे पूरी तरह तैयार। अक्षय तृतीया के दिन पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद शुरू किया गया था रथ निर्माण का काम। सैकड़ों कारीगर पारंपरिक तकनीक से रथ निर्माण में जुटे। भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष, बलभद्र के तालध्वज और देवी सुभद्रा के दर्प दलन रथ का हो रहा निर्माण। हर साल नए सिरे से रथ बनाए जाने की परंपरा। 16 जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने बनाई योजना। पूरी शहर में इस साल LED स्क्रीन लगाने की तैयारी। लाखों भक्त रथ यात्रा का देख सकेंगे सीधा प्रसारण। सहारनपुर का चकवाली गांव बना नुक्कड़ टूरिज्म मॉडल। भारत के नक्शे जैसा भारत सरोवर बना आकर्षण। हरियाली और स्वच्छता ने बदली पहचान। सुभाष चंद्र बोस भारत सरोवर ने खींचा ध्यान, सब कभी डंपिंग ग्राउंड, अब बना सुंदर पर्यटन स्थल, ड्रोन विजुअल्स में दिखी चकवाली गांव की भव्यता। संसद के तर्ज पर बना ग्राम पंचायत भवन, रात में तिरंगे लाइट जगमगाता दिखा गांव का गेट, पर्यटकों के लिए बना फोटो हॉटस्पॉट। गांव में ओपन जिम की भी सुविधा, युवा और बुजुर्ग कर रहे हैं नियमित व्यायाम, ग्रामीण पर्यटन का नया मॉडल बना गांव। ग्रामीणों की मेहनत से बदली गांव की तस्वीर, तालाबों के चारों ओर विकसित की गई हरियाली, फुटपाथ और लैंडस्केपिंग ने बढ़ाई सुंदरता। गुरुग्राम में सजा आमों का महाकुंभ, मैंगो फेस्ट का भव्य शुभारंभ, एक जगह प्रदर्शित हुई 70 से अधिक आम की किस्में। चौसा, लंगड़ा और केसर आम ने बटोरा आकर्षण, रतौल आम की मिठास और खुशबू बनी चर्चा का विषय। हाथी झोल आम के विशाल आकार ने खींचा ध्यान, गुलाब आम में महसूस होती है गुलाब में सी महक। रसगुल्ला और मोतीचूर नाम के आम बने आकर्षण, अनारकली आम ने भी जीता लोगों का दिल। मैंगो पिज्जा, मैंगो सुशी ने लोगों को चौंकाया, मैंगो आइसक्रीम बनी बच्चों की पहली पसंद, मैंगो माचा ने जोड़ा नया फ्लेवर ट्विस्ट। सहारनपुर के किसान ने रचा खेती में नया इतिहास, थरोली गांव में उग रहा दुनिया का महंगा मियाज़ाकी आम, 3 लाख रुपए किलो है कीमत। लाल बैंगनी रंगत वाला आम बना आकर्षण का केंद्र, किसानों को इस सीजन में बेहतर उत्पादन की उम्मीद। दरभंगा एयरपोर्ट पर दिखी मिथिला संस्कृति की शानदार झलक, धूमधाम से मनाया गया यात्री सुविधा दिवस। यात्रियों का गुलाब फूल देकर किया गया स्वागत, माथे पर तिलक लगाकर निभाई गई मिथिला परंपरा। लोकगीत संगीत से गूंजा दरभंगा एयरपोर्ट परिसर, कलाकारों ने पेश की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान, एयरपोर्ट पर पहुंचे इंडिगो के विमान का पानी की बौछार से स्वागत किया गया। नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों ने पहले फ्लाइट से की यात्रा, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में किसानों का किया स्वागत, अंगवस्त्र पहनाकर किया सम्मानित। इंडिगो के विमान में अभिनेत्री गुल पनाग ने भी किया सफर, इस फ्लाइट में अभिनेत्री गुल पनाग ने नोएडा तक पहुंची। साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद, एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री करने की योजना। देहरादून में सहस्त्रधारा के बाद गुजू पानी बन रहा पर्यटकों की पहली पसंद, वीकेंड पर उमड़ रही भारी भीड़। उत्तराखंड का चमोली पर्यटकों से गुलजार, हिमालय ट्रैक रूट लग रही पर्वतारोहियों की भीड़। चमोली की पहाड़ियों पर माइनस में पहुंचा तापमान, बर्फ को गलाकर पीने का पानी बनाते दिखे ट्रैकर। शिमला में 5 दिवसीय समर फेस्टिवल का रंगारंग समापन, जबरदस्त लाइटिंग के बीच लोगों ने की मस्ती। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ महाप्रसादम योजना से महिला समूहों को मिल रहा रोजगार, मोटे अनाज के उत्पाद बनाकर महिलाएं बढ़ा रही अपनी आय। फ्रांस से स्लोवाकिया दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, रक्षा और मोबिलिटी में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद। स्लोवाकिया में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, पारंपरिक गीत और संगीत का किया गया आयोजन। स्लोवाकिया के कलाकारों का पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला, कलाकारों ने दी महादेव की स्तुति की। स्लोवाकिया वंदे मातरम की गूंज, लोकनृत्य से गूंजा पीएम मोदी का स्वागत समारोह। रेड सॉल्ट परंपरा ने खींचा ध्यान, एंसेंबल ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम।

0: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, आईजीआई एयरपोर्ट इलाके में तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश। बानवे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तूफानी हवाएं, कर्तव्य पथ इलाके से धूल भरी आंधी की तस्वीर आई सामने। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में आंधी तूफान, कुछ इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चली हवाएं। मौसम में अचानक बदलाव से सड़कों पर विजिबिलिटी रही बेहद कम, द्वारका में वाहन चालकों को दिन में जलानी पड़ी हेडलाइट। दिल्ली में छाए रहे बादल, तापमान में भी भारी गिरावट, मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का जारी किया येलो रेड अलर्ट। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी, वाहन चालकों और राहगीरों को ही परेशानी। राजस्थान के चुरू में रेतीले तूफान का कहर, पूरा शहर रेतीले बमंडर से ढका, पिछले हफ्ते भी राजस्थान में आया था रेतीला तूफान। चुरू में धूल भरी आंधी के बाद दोपहर में ही छाया अंधेरा, विजिबिलिटी रही बेहद कम, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चली हवाएं। राजस्थान के शेखावाटी में धूल भरी आंधी से ढका आसमान, हवाओं की रफ्तार भी रही काफी तेज। शिमला में तेज बारिश के साथ पड़े ओले, जाखू इलाके में सड़कों पर ओलों की परत, पारा भी लुढ़का। वाराणसी में साथ लड़ेंगे डेंगू से अभियान के एक साल पूरे, डेंगू के खिलाफ अभियान की मनाई गई पहली वर्षगांठ, पंडितपुर गांव में हुआ विशेष आयोजन। इम्पैक्ट रिपोर्ट जारी कर उपलब्धियां की गई साझा, डेंगू मलेरिया जागरूकता 97% तक पहुंची, पंडितपुर गांव बना डेंगू रोकथाम का मॉडल। बच्चों ने निभाई डेंगू जासूस की भूमिका, आदर्श किचन गार्डन ने खींचा ध्यान, तालाब और सार्वजनिक स्थलों का हुआ कायाकल्प। भिलाई में दौड़ी फिटनेस की लहर, नमो मैराथन फेज 3 सफल, 5 किलोमीटर दौड़ में 1000 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। बच्चों युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक दिखा जबरदस्त उत्साह, फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली का दिया गया संदेश। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने की सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया पर हुई चर्चा, अपेक्स बैंक की कार्यप्रणाली पर हुई समीक्षा। अमित शाह ने सहकारी अनाज भंडारण योजना की भी समीक्षा की, ग्रामीण भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर, किसानों को बेहतर स्टोर सुविधा देने पर फोकस। बीकानेर अहमदाबाद के बीच नई ट्रेन की तैयारी पूरी, 25 जून से लालगढ़ से साबरमती तक होगा संचालन, करीब 740 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, व्यापारियों और छात्रों के लिए बनेगा आसान रूट, मेहसाणा पाटन जालौर नागौर सहित कई स्टॉप। करनाल में धान की सीधी बिजाई को मिल रहा बढ़ावा, इससे 25-30% तक हो रही पानी की बचत, किसानों को मिल रही 4500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि। इस्कॉन ने हुबली में श्री श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर के पहले चरण का उद्घाटन किया, 22 जून को होगी प्राण प्रतिष्ठा, श्रद्धालुओं के लिए 10 अगस्त से खुलेंगे कपाट। बस्तर में पहली बार आम की प्रदर्शनी, पर्यटकों ने अनूठे स्वाद सुगंध और गुणवत्ता वाले आमों का लिया आनंद। आमों की प्रदर्शनी को देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग, 200 किस्मों की प्रदर्शनी में सरगुजा के मियाजाकी आम ने मारी बाजी। वाराणसी के नमो घाट पर मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर योग सप्ताह की शुरुआत, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में सीआरपीएफ ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, जवानों के साथ स्थानीय लोगों ने भी किया रक्तदान। करीना कपूर ने आमिर खान प्रोडक्शंस के 25 साल पूरे होने के जश्न में की शिरकत, फिल्म लगान से जुड़े यादों को किया गया ताजा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोपिक सुभाष का ऐलान, आर्यन श्याम निभाएंगे मुख्य भूमिका। प्रभास की पीरियड फॉर फिल्म फौजी को लेकर बड़ा अपडेट, फिल्म में दिसंबर 2026 में रिलीज हो सकती है। कॉकटेल 2 को सेंसर बोर्ड से मिला सर्टिफिकेट। फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना आएंगे नजर। तमिल एक्शन फिल्म ब्लास्ट का बॉक्स ऑफिस में प्रदर्शन, 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की फिल्म ने की कमाई। चीन में शिनजियांग का योगर्ट जोंगजी बना नया फूड सेंसेशन, योगर्ट और जैम के साथ परोसा जा रहा जोंगजी। लोगों को खूब भा रहा खट्टा मीठा स्वाद, होतान की खास डिश पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय, ग्रैंड बाजार में योगर्ट जोंगजी की भारी मांग। स्टॉलों पर दिन भर लगती रहती है भीड़, पारंपरिक जोंगजी का आधुनिक अवतार बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। मीठे खजूर वाले जोंगजी को मिल रही चुनौती, ताजगी भरे स्वाद में जीता लोगों का दिल, योगर्ट जैम कॉम्बिनेशन बना बड़ा हिट। होतान सेकेंड यू स्ट्रीट की नई पहचान बना स्नैक, त्योहार की डिश अब साल भर उपलब्ध, विदेशी और घरेलू पर्यटक दोनों हुए दीवाने। एआई लैब का भविष्य चीन में तैयार, बीजिंग में एआई चला रहा है पूरी लैब, इंसान सिर्फ निगरानी करेंगे। लाइट्स आउट, लैब में बिना स्टाफ होते हैं एक्सपेरिमेंट, एआई खुद करता है रिसर्च, खुद निकालता है नतीजे। लैब में नहीं होंगे बटन, स्क्रीन या एलसीडी डिस्प्ले, एआई खुद सुधारता है प्रक्रियाएं, बढ़ाता है दक्षता। चीन में रोबोट बना दुकानदार, बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट बेच रहा मिस्ट्री रोबोट्स, रोबोट को देखने और खरीदारी करने उमड़ी भीड़। वॉन्ट फोर्सिंग स्ट्रीट पर खुला अनोखा पॉप स्टोर, टेबलेट पर पसंद चुनो और ह्यूमनॉइड रोबोट से सामान लो। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले चीन में रेस का रोमांच, चोंगकिंग की फोरोंग नदी में उतरी 18 टीमों की चुनौती। करीब 500 पैडलर्स ने दिखाई ताकत और तालमेल, 200 और 500 मीटर रेस में दिखा जबरदस्त मुकाबला। वांगजू में 600 एथलीटों ने रेस में लिया हिस्सा, रिटर्न ड्रैगन फॉर्मेट ने बढ़ाया रोमांच का यूना। चीन में 600 साल पुरानी ओपेरा कला की धमाकेदार वापसी, हिट टीवी ड्रामा ने किनकियांग ओपेरा को फिर बनाया सुपरहिट। शियान की बालकनियों पर अचानक होने लगे ओपेरा शो, कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में जीता दर्शकों का दिल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: Tunein's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: क्या आपको बार बार जीवन में धोखा मिलता है? प्रेम, विवाह, रिश्ते, दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
6: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
5: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक बुखार नहीं है, यह गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास ही पनपता है, कूलर में, गमलों में, बालकनी में या कहीं भी जहां साफ पानी भरा हो। यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है, लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा, और इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और जीएनटी ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट की सलाह और बचाव के आसान उपाय देश के घर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाएंगे, जैसे घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, कूलर और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से बचाकर रखें, और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मच्छर भगाने वाली चीजों का नियमित इस्तेमाल जरूर करें। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा, और ऑल आउट और जीएनटी के साथ कहिए साथ लड़ेंगे डेंगू से।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
0: बाबा नीम करोड़ी महाराज के कैंची धाम में उमड़ा आस्था का जनसमंदर। 62वां स्थापना दिवस के मौके पर देश दुनिया से पहुंचे भक्त, बाबा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुफ्त नजर आए सैलानी, तापमान में दर्ज की गई 4 से 6 डिग्री की गिरावट। आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छिटपुट बारिश। पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में बन रहे धोखे के योग के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हमें धोखा मिलता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे पैसे रुपए का लेन देन हो। तो धोखे के योग और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आपकी आर्थिक स्थिति में बराबर उतार चढ़ाव रहता हो, कभी पैसा ज्यादा, कभी पैसा कम, कभी बिल्कुल नहीं, तो एक स्टील का छल्ला बनवा लीजिए। स्टील का छल्ला दाहिने हाथ की, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि कब हमें मिलता है धोखा और क्या कहता है ज्योतिष।
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जीवन की अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग मामलों में धोखा कब मिलता है और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं। हर आदमी को जीवन में धोखा नहीं मिलता और कुछ को लगातार मिलता है। आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, आम जीवन में हम लोगों से काम के लिए या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं। उस समय जब लोगों से जुड़ते हैं, लोगों का साथ पकड़ते हैं, तो उस समय व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के अनुरूप काम नहीं करता या भरोसे के विपरीत काम करता है, तो इसको धोखा कहा जाता है। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने के मामले में और धोखा देने के लिए चार ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। चंद्रमा, बुध, शनि और राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी इन ग्रहों के हिसाब से मिलकर अलग अलग समय पर भूमिका निभाते हैं। जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको सबसे ज्यादा धोखा जीवन में मिलता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को धोखा सर्वाधिक मिलता है। और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, सामान्यतः ये राशियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी तत्व की सारी राशियों वाले धोखेबाज होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशियों के अंदर चालाकी पाई जाती है और उस चालाकी का इस्तेमाल करके ये लोग धोखा देने का प्रयास करते हैं। काफी हद तक, लगभग 50-60% तक पृथ्वी तत्व के लोग चालबाजियां दिखा देते हैं।
0: और अब बात कर लेंगे राशिफलों के बारे में। तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, व्यर्थ के विवादों से आपको बचना चाहिए। खान पान का ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए अब जानते हैं कब मिलता है कारोबार के मामले में धोखा और कैसे इससे बचा जाए।
1: धोखा व्यापार में, पार्टनरशिप में, कारोबार में काफी होता है। पार्टनरशिप किसी के साथ की, उसने बेवकूफ बनाया और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया, आपको बाहर कर दिया। व्यापार के मामले में, कारोबार के मामले में धोखा कब मिलता है? कुंडली का सप्तम भाव जो आपके पार्टनर का है, जो आपके व्यापार का है, अगर ये भाव कमजोर हो तो व्यापार में, कारोबार में धोखा होता है। अगर कुंडली के आठवें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, तो भी धोखा कारोबार में मिल सकता है। राहु के ऊपर या राहु का सूर्य या चंद्र पर प्रभाव हो तो भी ये व्यापार में, कारोबार में धोखा दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में धोखे की संभावना बहुत होती है। जिनका बुध कमजोर हो ऐसे लोग सोच समझ कर व्यापार करें, वरना व्यापार में झटका जरूर लगेगा। अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे के योग हैं तो क्या करें? साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार कभी मत करिएगा। व्यापार का लेन देन मंगलवार को बिल्कुल मत करिएगा और संभव हो तो बुधवार को भी ना करें। और अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे का योग है तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। ऐसा करने से व्यापार में धोखे से बच जाएंगे।
0: और अब बारी है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने की।
1: कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और गुड लक में वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी वक्त हो गया है आपके पहले सवाल का, लेकिन सवाल लेने के पहले आपको बता दूं कि जब भी आप हमें मेल करते हैं अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये तीनों साफ तौर पर लिखें और फिर अपना प्रश्न लिखें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते, टाइम नहीं लिखते, या कई बार सीधा सवाल लिख देते हैं, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान नहीं लिखते हैं तो हम आपके प्रश्न नहीं ले पाते हैं। इसलिए जब भी मेल करें सावधानी से करें ताकि आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। आज का पहला प्रश्न टीशा ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखती हैं। 1 नवंबर 1983 का जन्म है, 4:51 शाम को बोरीवली मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खराब है और मेरे पति ने हमेशा मुझे धोखा दिया है, हमेशा मेरे साथ छल किया है। क्या ये विवाह चल पाएगा? क्या मैं इससे बाहर निकल पाऊंगी? टीशा, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और सिंह राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। कुंडली में ज्यादातर जो ग्रह हैं वो निचले पृथ्वी तत्व के इलाके में हैं। 6ठे और 8ठवें भाव में ज्यादातर ग्रह हैं जो कि वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, विवाह आप आगे दूसरा करें या ना करें, लेकिन इस विवाह से निकलिए वरना आप फंस जाएंगी किसी बड़े धोखे में। कोई लीगल कानूनी कार्रवाई के चक्कर में आप आ सकती हैं, इसलिए बुद्धिमानी कहती है कि इस विवाह से बाहर निकलिए, आगे दूसरा विवाह करिए या ना करिए। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका पाठ करिएगा और जितना संभव हो हनुमान जी की पूजा करें, उनका दर्शन करें, आपको लाभ होगा।
0: हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं।
1: जी अगला प्रश्न इंदु गोयल जी ने हमें लिखा है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 दिसंबर 1995, दोपहर में 12:02 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इंदु जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और तुला राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। आपके पुत्र के विवाह तय होने का समय इस साल के जून के महीने से शुरू हो रहा है और साल 2026 के अंत तक जाते जाते इनका विवाह अवश्य हो जाना चाहिए, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। जब भी इनका विवाह करें कुंडली एक बार मिलाइएगा ताकि तालमेल थोड़ा बेहतर रह सके। एक इनको ओपल बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाएं और इनको कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें तो इनको लाभ होगा।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं धोखे के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं प्रेम और विवाह के मामलों में कब धोखा हमें मिलता है।
1: देखिए, सबसे ज्यादा धोखा जो मिलता है और लोग कहते भी हैं वो प्रेम और विवाह के मामले का धोखा है। आपको बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, पता चला लड़का कुछ करता ही नहीं है। आपको बताया गया कि लड़की बिल्कुल ठीक है, पता चला लड़की को कोई बड़ी बीमारी है। तो प्रेम और विवाह के मामले में भी धोखा मिलता है। कब मिलता है? अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य का या मंगल का संबंध हो तो इस तरह का धोखा जरूर होता है। शुक्र के साथ सूर्य वाले बड़े लापरवाह होते हैं रिश्तों के मामले में और अक्सर धोखे के शिकार हो जाते हैं। सातवें स्थान में अगर चंद्रमा बैठ गया या बृहस्पति बैठ गया तो ऐसी स्थिति में या तो विवाह होता नहीं, या अगर विवाह हुआ तो विवाह में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। अगर बृहस्पति खराब है, खास तौर से किसी महिला का बृहस्पति अगर खराब है तो विवाह के मामले में उसे धोखा जरूर मिलता है। पति पत्नी के जो ग्रह हैं आपसी, अगर उनमें मित्रता नहीं है तो विवाह में धोखा मिलता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब गड़बड़ हो जाता है और विवाह में धोखे की संभावना बनती है। पुरुष का शुक्र खराब हो, पुरुष को धोखा मिलेगा। महिला का बृहस्पति खराब हो, महिला को धोखा जरूर मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह या प्रेम के मामले में धोखे के योग हैं तो क्या करें? शादी या प्रेम में बहुत ज्यादा अपेक्षा मत पालिए। जो लोग बहुत ज्यादा ठोंकने बजाने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं शादी या प्रेम में, उनको धोखा जरूर मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम या विवाह के मामले में धोखे के योग हैं तो काले और भूरे रंग के कपड़ों का प्रयोग जीवन में कम करिएगा। खास तौर से ब्राउन कलर का ज्यादा प्रयोग करने से राहु एक्टिव हो जाता है, धोखा अवश्य मिलता है। राधा कृष्ण को रोज प्रातः गुलाबी फूल चढ़ाइए। अगर कुंडली में धोखे का योग है प्रेम या विवाह के मामले में, देखिए, अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी कुंडली में ऐसे संकेत हैं कि विवाह के मामले में या प्रेम के मामले में धोखा मिलेगा, अगर धोखे के योग प्रबल हैं तो हीरा कभी मत पहनिएगा। हीरा पहनना आपको धोखे तक खींच करके ले जाएगा। इसलिए अगर कुंडली में धोखे के योग हो तो हीरा धारण ना करें।
0: और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल।
1: तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती फिलहाल दिखाई दे रही हैं। काम की बाधाएं समाप्त होंगी, व्यर्थ की चिंता ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: तो लगातार हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं हमें मिलने वाले धोखे के बारे में, कभी शादी में धोखा तो कभी दोस्ती में धोखा, और अब बात कर रहे हैं हम दोस्ती की कि हमें दोस्ती में कब धोखा मिलता है।
1: देखिए, प्रेम और विवाह के अलावा जिस मामले में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है आज के समय में वो दोस्ती है। आपने दोस्त पर भरोसा करके उसकी सहायता की, आपको सहायता की जरूरत है, आपके दोस्त ने फोन बंद कर दिया, मुंह फेर लिया, तो दोस्ती में धोखा बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को मिलता है। कारण क्या है? चंद्रमा या शुक्र अगर कुंडली में खराब हैं आपके, तो हमेशा दोस्ती में सावधानी रखें, क्योंकि ऐसी दशा में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा खराब होगा तो आपकी दोस्ती ही गलत लोगों से होगी, जो अपना काम निकाल कर चलते बनेंगे। शुक्र खराब होगा तो अपोजिट जेंडर के साथ आपकी मित्रता होगी, पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से, और वो मौका पड़ने पे धोखा देंगे। तो चंद्र या शुक्र खराब हो तो धोखे की संभावना बड़ी प्रबल होती है दोस्ती में। अगर किसी का बुध खराब है तो आपको जो दोस्त मिलेंगे जीवन में वो अपने स्वार्थ के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के मित्र स्वार्थ के लिए उनके साथ जुड़ते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत होता है ना, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला आदमी मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी वो चुप रहकर इंतजार करते हैं कि सही समय आने पर बात करेंगे। बृहस्पति शुभता वाला प्लेनेट है, इसलिए कुंडली में अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति शांत रहकर अपने साथ होते हुए धोखे को देखता है और सही समय पर इसका जवाब देता है। जिनका बुध खराब है वो दोस्ती में धोखा खाते भी हैं, और बुध अगर चौपट है तो वो धोखा देते भी हैं। तो जैसा करते हैं वैसा जीवन में उनको मिलता है। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ दोस्ती में बार बार धोखा हो जाता है, बार बार दोस्तों की तरफ से धोखे की स्थिति बन जाती है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। भगवान कृष्ण को रोज सवेरे पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण से ज्यादा मूल्यवान मित्र कोई भी नहीं है। और अगर दोस्ती में बार बार धोखा मिल रहा है तो एक लोहे का छल्ला

0: लॉकेट बनवा लें और इसको तांबे या सोने के लॉकेट में बनवा कर अपने गले में पेंडेंट की तरह धारण करें, इससे भी आप धोखा खाने से बचेंगे, धोखा मिलने के पहले आप सतर्क हो जाएंगे।
1: और अब वक्त हो गया है आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर की बाधा समाप्त होगी, जल्दबाजी में काम ना करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, एक सवाल था, अगर समानता कुंडली में हमें धोखा मिल रहा है, मतलब दिख रहा है कि हमें लगातार धोखा मिलेगा, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं?
0: जी देखिए, बहुत सारे लोगों की कुंडली में मल्टीपल जगहों से, लगभग हर जगह से धोखा मिलने के योग होते हैं, विवाह में भी, प्रेम में भी, परिवार से भी, व्यापार में भी। और कारण होता है कुंडली का खराब राहु या बहुत बुरी तरह से खराब चंद्रमा। तो अगर आपकी कुंडली में जीवन के हर जगह पर, हर स्थिति में आपको धोखा मिलता है अपने लोगों से, अपने परिवार से, तो आपको मुख्यतः हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में जगह जगह से धोखे के योग हैं और धोखा मिलता भी है, तो आप निरंतर सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और हर मंगलवार और हर शनिवार को शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी मूर्ति के ठीक सामने खड़े हो जाइए और प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे जीवन में किसी भी तरह के धोखे और अपयश से बचाओ। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी धोखे से सुरक्षा होगी।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न भावना जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। 13 मई 1982 का जन्म है, 1:05 AM मध्यरात्रि, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, मेरा वैवाहिक जीवन कब तक बेहतर होगा।

0: काम करना चाहती हूं, कौन सा व्यापार करना मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। भावना आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। देखिए वैवाहिक जीवन की जहां तक बात है, आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन एवरेज ही रहेगा, उसके बहुत बेहतर होने की संभावना नहीं लगती है। हाँ, जितना निगेटिव अभी है उतना निगेटिव आगे नहीं होगा, आगे कुछ हद तक सुधार होना चाहिए, लेकिन कुल मिला के वैवाहिक जीवन देखिए एवरेज दिखाई दे रहा है। जहां तक व्यापार की बात है, आप कोशिश कर सकती हैं इस साल के आखिरी से व्यापार शुरू करने के लिए कला, सौंदर्य, शिक्षा या कपड़ों से संबंधित आर्ट, क्रिएटिविटी, कॉस्मेटिक्स, कपड़ा या पढ़ाना लिखाना, टीचिंग ट्रेनिंग देना, ऐसा काम करना आपके लिए सूटेबल होगा और अक्टूबर 2026 के बाद आप ऐसा जरूर कर सकती हैं। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न पल्लवी ने हमें लिखा है और पल्लवी हमें पश्चिम बंगाल से मेल लिखती हैं। 5 जून 1986 का जन्म है, 5:35 शाम को दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मैं अभी एडहॉक पे एक विद्यालय में, एक कॉलेज में पढ़ा रही हूं जहां पैसे बहुत कम मिलते हैं। मैं नेट एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रही हूं ताकि नेट क्वालिफाई करके मुझे बढ़िया नौकरी मिल सके, तो आगे मेरे करियर के लिए मैं क्या करूं, क्या स्थितियां बन रही हैं। दूसरा ये पूछ रही हैं कि मेरी इतनी उम्र हो गई, लगभग 39 साल, मेरा विवाह अब तक नहीं हुआ है, तो मेरी कुंडली में विवाह के योग कैसे हैं। पल्लवी आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मेष राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। आप नेट का एग्जाम इस बार दीजिएगा, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब या परमानेंट कॉलेज में नौकरी साल 2027 के आरंभ में दिखाई दे रही है। देखो विवाह होने के योग इस कुंडली में बड़े कमजोर हैं और अगर विवाह होता है तो हो सकता है किसी डिवोर्सी से या किसी विडोवर से आपकी शादी हो या ऐसे व्यक्ति से शादी हो जो थोड़ा उम्र में बड़ा हो, तो इसके लिए आप अगले साल प्रयास करके फरवरी के बाद देखिए, थोड़ी बहुत संभावना साल 2027 में आपकी विवाह की बन सकती है। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में बड़ी सफलताएं मिलेंगी, इस साल आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन इस साल में स्वास्थ्य के मामलों में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें, कम से कम हनुमान चालीसा ही पूरे साल पढ़ें, तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि रविवार के दिन कौन सा काम करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। देखिए, रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन है और रविवार के दिन सरकारी काम करना, राजनीति के काम करना, गवर्नमेंट से संबंधित काम करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इसमें भी अगर रविवार को आप किसी मंदिर चले जाएं, धर्म स्थान पर जाकर दर्शन करें, तो और भी ज्यादा अच्छा होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर कौन सा है।
0: शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को बृहस्पति कैसा परिणाम देता है। आज की गुडलक राशि है कर्क, कैंसर। बृहस्पति इनको आम तौर पर भाग्यशाली तो बनाता है, हालांकि कभी कभी यही बृहस्पति इनको बीमार भी कर देता है।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है और अशुभ बृहस्पति की दशा चल रही है, तो क्या करें? बृहस्पति की अशुभ दशा में अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। और बृहस्पति की अगर अशुभ दशा चल रही है तो पीला रंग और पीले रंग की वस्तुओं से परहेज करें। बृहस्पति की कितनी भी अशुभता है, अगर आप निरंतर शिव जी की पूजा करेंगे तो बृहस्पति की अशुभता दूर हो जाएगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
3: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
2: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
3: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.

0: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं मंगल से शुरू हो रहे मंगल दिनों की। 15 जून को अधिक मास समाप्त हो गया और इस तरह शुभ कार्यों पर जो रोक लगी थी वो भी खत्म हो गई। मंगल से शादी विवाह गृह प्रवेश और नया काम शुरू हो सकता है। आज आपको सबसे पहले जून और जुलाई में शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताएंगे, जब आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही बात होगी अधिक मास की, जिसके खत्म होने के साथ कई दुर्लभ संयोग बने हैं, इनका घर परिवार और देश दुनिया पर असर होगा। जानकार मान रहे हैं कि इससे सुख समृद्धि और शांति आएगी। और इसी बीच भारत समेत पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब रहा अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने की खबर आ चुकी है। दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते पर सितारों की चाल का क्या असर होगा और इस बार क्या शांति पक्की होगी, इस पर भी आज बात होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे मंगल से शुरू रही मंगल बेला की।
1: मंगल बेला आई, गूंजेगी शादी की शहनाई। अधिक मास खत्म, विवाह के मुहूर्त शुरू। शादी के लिए जून में 8 मुहूर्त, जुलाई में शादी के दिन 4। बैंड बाजा बारात, मंगल से मंगल।

0: अधिक मास की समाप्ति के साथ ही मंगल बेला की शुरुआत हो रही है। दुर्लभ संयोग रहा कि अधिक मास के आखिरी दिन सोमवार के दिन अमावस्या भी रही। देश भर में गंगा और दूसरी पवित्र नदियों में के किनारे लाखों लोगों ने भक्तिभाव से स्नान ध्यान किया, पूजा अर्चना की। असल में यह संयोग 3 दशक के बाद आया है, जब अधिक मास सोमवार की अमावस्या के साथ खत्म हुआ हो। जानकार मान रहे हैं कि अधिक मास के बाद घर परिवार समाज और देश में सुख समृद्धि और शांति आएगी। देखिए हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ और प्रयागराज तक कैसे हुई पूजा अर्चना।
1: संगम की पवित्र धरती, गंगा का पवित्र जल, हाथ जोड़कर भगवान भास्कर की आराधना, आस्था की अद्भुत तस्वीरें हैं जो सोमवती अमावस्या पर प्रयागराज में नजर आई। बेहिसाब भीड़, अगाध श्रद्धा, संगम के तमाम घाटों पर स्नान के बाद पूजा पाठ, क्योंकि ऐसा संयोग कम ही होता है कि सोमवार की अमावस्या हो और साथ ही अधिक मास का आखिरी दिन। जानकारों के मुताबिक कई दशकों के बाद ये दुर्लभ संयोग हुआ है, इसीलिए प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
2: आज सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या को संगम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई। सुबह से ही भक्त संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहां पर पूजा पाठ कर रही हैं और पूजा पाठ करने के बाद अपने देश और अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रही है। सुबह से ही महिलाएं सूर्य देवता की पूजा कर रही हैं और गंगा जल चढ़ा करके यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। माँ गंगा यहाँ पर सबको आशीर्वाद देती हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ लगी हुई है, पूजा पाठ किया जा रहा है और जो लोग हैं अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए भी यहाँ पर आते हैं और महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं जिससे अपने उनके पति और बच्चों की लंबी उम्र हो और माँ गंगा से प्रार्थना करती हैं कि देश में और उनके घर में सुख शांति रहे।
1: प्रयागराज नहीं, देश के सभी तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों में सोमवार को ऐसा ही विहंगम दृश्य देखने को मिला। खास तौर पर माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य का लाभ भी मिलता है।
3: यही कामना है, घर में सबको परिवार सभी आशीर्वाद देती, गंगा माँ सब मनोकामना लेकर उनकी मनोकामना गंगा माँ पूर्ण करती है सबकी।
4: इस जन्म और उस जन्म के वो यहाँ गंगा माँ का स्नान करने समाप्त हो जाता है और हमारे हृदय भक्ति और सनातन धर्म का उद्गम यहीं से प्रारंभ होता है। जो एक महीने का अधिक मास का स्नान करता है भगवान श्री नारायण के चरणों में इस जन्म में सुख संपदा प्राप्त करता है और अंतिम चरण में भी वह मोक्ष प्राप्त करता है।
1: सोमवती अमावस्या का ज्यादा महत्व 2-3 वजहों से है। पहला तो ये कि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। संगम पर भी महिलाओं ने पीपल के पेड़ की दूध जल और अक्षत से पूजा की, पेड़ के चारों ओर कलावा लपेट कर परिक्रमा की गई।
5: आज के दिन जो भी कार्य किया जाएगा उसका 1000 गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है और जो दान है या जो पुण्य है वो भी 1000 गुना बढ़ जाता है ना। जैसे अगर आप किसी को 100 रुपया दिया तो हजारों हजार रुपये हो जाता है। इसी प्रकार से प्रयाग में जो भी की काम किया जाए, सोच समझ किया जाए, शांति के साथ किया जाए। आज के दिन लोग महिलाएं जाकर के पेपर में फेरी देंगी, भगवान विष्णु की पूजा करेंगी, पितरों के नाम से आस्था तर्पण किया जाता है। इसके करने से हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं और घर में जाकर माता पिता को प्रणाम करेंगे, उनकी सेवा की जाए तो भी फल प्राप्त होता है। आज जो भी गोदान करे या तर्पण करे या जो भी कार्य करेगा उससे उसके घर के अंदर हर प्रकार की मर्यादा बनी रहेगी, कभी कोई कमी नहीं होगी। और प्रयाग में खास करके जो प्रयाग निवासी हैं बड़े भाग्यवान हैं।
1: सोमवती अमावस्या का दूसरा महत्व पितरों की शांति से जुड़ा है, इसीलिए संगम पर काले तिल मिले जल से पीपल की जड़ में तर्पण किया गया। मान्यता है कि तर्पण और दान से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या का संबंध भगवान शिव और पार्वती से भी है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ से न सिर्फ घरों में बल्कि समाज और देश में सुख शांति और समृद्धि आती

0: हजारों की तादाद में जो आस्थावान संगम पर मौजूद थे, उन्होंने घर परिवार में शांति के लिए पूजा अर्चना की। देश भर में भक्ति भाव से भरी ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि सोमवार को अधिक मास की अमावस्या का दुर्लभ संयोग बना। पुरुषोत्तम मास, जिसका संबंध भगवान विष्णु से है, और सोमवार, जो भगवान शिव का दिन माना जाता है, दोनों का संयोग होने से हरिहर की संयुक्त कृपा मानी गई। जानकारों के मुताबिक ऐसा संयोग वर्ष 1999 में बना था, यानी 3 दशक बाद अधिक मास के आखिरी दिन सोमवार की अमावस्या आई है।
1: ऐसा कहा जाता है कि इस सोमवती अमावस्या में जो व्यक्ति हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड अथवा और अधिक कुंभ क्षेत्र अथवा किसी पवित्र नदी में स्नान करे, अन्यथा इन नदियों का पवित्र स्थानों का ध्यान करके घर में ही स्नान करे, तो वो इतना पुण्य फल प्राप्त कर लेता है जैसे स्वयं अश्वमेध यज्ञ कर लिया हो। और एक नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञों का, कई लाख वाजपेयी यज्ञों का जो फल है वो सोमवती अमावस्या में इन कुंभ क्षेत्रों में या पवित्र नदियों में स्नान का कहा गया है। और आज सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन, जो व्यक्ति स्नान करे, पितरों के लिए तर्पण करे और अपने पितरों के निमित्त शैया दान करे, ऐसा व्यक्ति अपने पितरों को तो अनंत काल के लिए स्वर्ग में विस्थापित कर देता है, स्वयं शरीर समाप्त होने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है और जीवन में सारे सुखों की कामना कर लेता है।
0: पवित्र पावन दिन पर हरिहर का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का हुजूम हरिद्वार के घाटों पर भी उमड़ा। कहीं भी तिल रखने तक की जगह नहीं थी। आरती, आराधना, पूजा पाठ और दान पुण्य। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाने से यूं भी मोक्ष की मान्यता है, लेकिन ये स्नान खास तौर पर पितरों की शांति और सुख समृद्धि के लिए खास है। हरिद्वार की तरह भव्य तस्वीरें चित्रकूट से भी नजर आई। मान्यता ये है कि इस पवित्र मंदाकिनी नदी में भगवान राम ने वनवास के दौरान डुबकी लगाई थी और इसी राम घाट में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम ने बालक रूप में दर्शन दिए थे। इसलिए हमेशा अमावस्या पर भक्त यहां आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। सोमवती अमावस्या का अवसर विशेष था, इसीलिए करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चित्रकूट में डुबकी लगाई और कामतनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की पूजा की और श्रद्धालुओं ने नदी के तट पर पार्थ पूजन किया। आज तक की ऐसी तस्वीरें भगवान राम की नगरी अयोध्या और बद्री विशाल से भी सामने आई हैं। अयोध्या में सरयू के पावन जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की, तो वहीं प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। बद्री विशाल के धाम पर यूं भी अधिक मास में पूजा पाठ का विशेष महत्व है, उस पर सोमवती अमावस्या का संयोग, इसलिए अलकनंदा तट पर मौजूद तप्त कुंड में पवित्र स्नान के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म कपाल पहुँच कर अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण किया। सोमवती अमावस्या के साथ अधिक मास भी समाप्त हो गया और शुभ कार्यों के लिए मंगल बेला की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, अयोध्या से मयंक शुक्ला और बद्रीनाथ से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अधिक मास के समाप्त होने के साथ शुभ और मांगलिक काम की शुरुआत होने वाली है। पिछले 30 दिनों से शादी, विवाह, गृह प्रवेश पर रोक थी, लोगों ने नए काम की शुरुआत भी नहीं की, पर अब शादियों के शुभ मुहूर्त है और जून में 8 दिन और जुलाई में 4 दिन विवाह के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आगे 12 महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से होने वाले हैं।

0: जिस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो आ गई। अब जून से लेकर जुलाई तक शहनाई गूंजेगी। न सिर्फ शादी बल्कि तमाम मंगल कार्य जो रुके हुए थे उनका श्री गणेश होगा। कोई घर बसाएगा तो कोई नए घर में जाएगा, किसी की जिंदगी में नए काम की शुरुआत होगी। जो भी होगा शुभ होगा, मंगल होगा, क्योंकि 15 जून को अधिक मास समाप्त हो चुका है।
1: परंतु जैसे ही अधिक मास की अवधि समाप्त होती है वैसे ही शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाते हैं। तो अधिक ज्येष्ठ मास सोमवार को 15 जून 2026 दिन सोमवार को सुबह लगभग 9 बजे के बाद से समाप्त हो जा रहा है और शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आरंभ हो जा रही है। लेकिन उदयकालिक मान्यताओं के अनुसार 16 जून को यह माना जाएगा कि शुद्ध ज्येष्ठ मास आरंभ होगा और यहीं से शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाते हैं और चारों तरफ शहनाई की गूंज सुनाई देगी। विवाह होंगे, गृह प्रवेश के मुहूर्त मिलेंगे, तो यह समय बड़ा ही शुभ कारक हो जाएगा मांगलिक कार्यों के लिए।
0: हालांकि धार्मिक तौर पर अधिक मास या मलमास का महीना शुभ माना जाता है, लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए इसे अनुकूल नहीं समझा जाता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अधिक मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, यानी सूर्य इस अवधि में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करता। सौर चक्र में इस संक्रमण विहीन अवधि के कारण इस मास को मलमास कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, इसलिए इस समय शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय और दूसरे मांगलिक काम रोक दिए जाते हैं। लेकिन अधिक मास का एक दूसरा पक्ष भी है। मान्यता है कि इस माह को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना सर्वोत्तम नाम यानी पुरुषोत्तम प्रदान किया, तब से अधिक मास पुरुषोत्तम मास हो गया और इस दौरान पूजा, जप तप, व्रत और दान का महत्व कहीं ज्यादा हो गया। लेकिन जहाँ तक बात है शादी विवाह और नए काम की, तो उसके लिए अधिक मास अनुपयुक्त ही रहा। इस साल 17 मई से इसकी शुरुआत हुई थी। 30 दिनों बाद इसकी समाप्ति से यानी 16 जून से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के साथ मांगलिक कार्यों पर अब कोई रोक नहीं होगी। वैसे तो अधिक मास के समाप्त होते ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, पर विवाह के लिए सही मुहूर्त 19 जून से है। इसके बाद ये शादी ब्याह से जुड़े आयोजन देश भर में शुरू हो जाएंगे। पंचांग के अनुसार जून और जुलाई में मिलाकर 12 शुभ लग्न है, जिनमें जून में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 जून शादी के मुहूर्त हैं, जबकि जुलाई में 1, 6, 7 और 11 चार प्रमुख शुभ मुहूर्त हैं। यानी आने वाले दो महीनों में कुल मिलाकर 12 ऐसे मुहूर्त हैं जो शुभ कार्यों खासकर शादी के लिए उत्तम है।
2: अभी जो समय है वह आपके शुभ और मांगलिक कार्यों का है और यह शुभ मांगलिक कार्य आपके जो है हरि शनि एकादशी से रुक जाएंगे। जिस दिन आपकी जो है लगभग 25 जुलाई को हरि शनि एकादशी है उस दिन रुक जाएंगे। इस बीच काफ़ी कुछ अच्छे जो है आपके आ रहे हैं। इसी बीच आपकी जो है निर्जला एकादशी आएंगी। इसी बीच 18 तारीख को गुरु का जो है पुष्य नक्षत्र में भ्रमण होना, आगे चल के आपकी जो है जुलाई में आपका जो आषाढ़ मास होगा तो उसमें गुप्त नवरात्रों का आना। तो कहने का तात्पर्य कि इस टाइम के अंतराल में काफ़ी कुछ शुभ मांगलिक कार्य करने वाले मुहूर्त जो है प्राप्त हो रहे हैं।
3: सुंदर मुहूर्त है जिस दिन कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि पड़ेगी और आषाढ़ का समय होगा और इस समय एक बहुत बेहतरीन समय है जिस पर किया जा सकता है। 22 जून ध्यान रखिएगा, 20 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 26 जून और 27 जून, 29 जून, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई। अगर मैं 21 दिनों की स्पेशली बात करता हूं तो 7 जुलाई तक ये मैरिज को लेकर के बहुत शानदार दिवस है जिनके अंदर किया जा सकता है।
0: अधिक मास बीता तो विवाह के दिन आए, पर इसके लिए भी मुहूर्त सीमित है, क्योंकि 25 जुलाई से देव शयनी के साथ चतुर्मास शुरू हो जाएगा। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए अगले 4 महीनों तक मांगलिक कार्य फिर से बंद हो जाएंगे। इसके बाद देवउठनी एकादशी से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होगी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं और चतुर्मास का समापन होता है।

0: लेकिन उससे पहले जून और जुलाई में मांगलिक कार्यों के 12 महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त हैं। जिन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी है उनके लिए तैयारी के भी अच्छे खासे दिन है, और जिन्हें अगले 4 महीने इंतजार नहीं करना उनके लिए भी अच्छा और सुविधाजनक मुहूर्त तय करने की देर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अधिक मास की समाप्ति के साथ एक बड़ी गुड न्यूज जंग के मोर्चे से भी आई है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बन गई है और दोनों देशों के रुख से माना जा रहा है कि 19 जून को शांति समझौते पर मुहर लग सकती है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, जो भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। तय है कि अब सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे देशों से सप्लाई दोबारा शुरू होने से हालात बेहतर होंगे।
2: साढ़े 3 महीने बाद मिडिल ईस्ट के क्षितिज पर उम्मीद का नया सवेरा हुआ है। 28 फरवरी 2026 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर पहली बार पूर्ण विराम लग गया है। यूएस ईरान डील फाइनल होने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों समेत पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर शांति समझौते की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ये शानदार समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का पैगाम लेकर आएगा। इससे पहले कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। इस रीजन के नेताओं को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो असली शांति ला सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि डील पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में 3.5 महीने से जारी तनाव को खत्म होने का इंतजार पूरी दुनिया को था, क्योंकि इस जंग की वजह से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। कच्चे तेल के दाम न सिर्फ बेतहाशा बढ़ चुके थे बल्कि आपूर्ति भी चरमरा गई थी। इससे दुनिया के कई देशों की आर्थिक व्यवस्था जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रही थी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत समेत पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में तेल गैस का जबरदस्त संकट पैदा हो गया था।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर 19 जून को होने हैं, लेकिन इस फैसले से पूरी दुनिया ने खुशी और राहत महसूस की है। तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने अपने संदेश भेजकर इसका स्वागत किया है, और सबसे ज्यादा राहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की खबर से महसूस की जा रही है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल और क्रूड का कारोबार होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से अब तमाम जहाजों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सकेगी और तमाम सी फेयरर्स जो इस इलाके में फंसे हैं अपने घरों को सकुशल लौट पाएंगे। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है 19 जून का, जब ईरान और अमेरिका इस हस्ताक्षर के साथ शांति का एक नया पैगाम देंगे और लंबे वक्त से आर्थिक संकट झेल रहे देशों को भी इससे राहत प्राप्त होगी।
2: भारत भी इस संघर्ष विराम और समझौते का न सिर्फ बेसब्री से इंतजार कर रहा था बल्कि इसके लिए कूटनीतिक कोशिशें भी कर रहा था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस डील का तहे दिल से स्वागत किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डील का स्वागत करते हुए लिखा, मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच बनी आपसी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक गतिरोध पैदा हो गया था और कई देशों में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। भारत को आशा है कि इस समझौते के लागू होने के बाद क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और नेविगेशन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश बातचीत जारी रखेंगे जिससे आने वाले समय में एक स्थायी हल निकल सके। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जाहिर है ये खबर पूरी दुनिया समेत भारत के लिए बड़ी राहत की है। अब सवाल है कि युद्ध और लंबी तनातनी के बाद क्या मध्य एशिया और दुनिया में शांति का दौर लौटने वाला है? क्या कहते हैं सितारे, आइए समझते हैं।
4: दोनों देशों के लिए ही नहीं, ईरान और अमेरिका के लिए ही नहीं, अभी तो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो एक बड़े परिवर्तन की स्थिति दिखाई देगी। कैसे? क्योंकि एक तो देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में चले गए हैं, मिथुन राशि से उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं। बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है जो कि मीन राशि में है।

शनि के नकारात्मकता में कमी आ गई है, शुभता में वृद्धि हो जाएगी। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है, तो दोनों ही गुरु कर्क राशि में है, यद्यपि देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में है, लेकिन दोनों का जो योग होता है कुंडली में उसको बड़ा ही सम्मान की दृष्टि से बड़ा ही सकारात्मक देखा जाता है और ऐसा माना जाता है।

0: होता है कुंडली में, उसको बड़ा ही सम्मान की दृष्टि से बड़ा ही सकारात्मक देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसका शुभ परिणाम आम जनमानस को प्राप्त होगा। तो वैश्विक स्तर पर यह परिवर्तन, यह हस्ताक्षर, यह योग, यह संयोग जो घटित होने जा रहा है वह सकारात्मक होगा।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
4: और अब बात आमिर खान की फिल्म लगान की करते हैं। आमिर के लिए तो ये जैसे डबल धमाका है, क्योंकि एक तरफ उनके लगान ने बड़े पर्दे पर 25 साल पूरे कर लिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आमिर खान प्रोडक्शन भी अपनी सिल्वर जुबली बना रहा है। आमिर खान ने इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी। इस पार्टी में आमिर के साथ जश्न मनाने के लिए बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां जुटी। देखिए कौन कौन पहुंचा इस पार्टी में।

0: जब फिल्मों में कामयाबी के 25 साल का जश्न मनाया तो उन्हें बधाई देने के लिए सितारों की महफिल सज गई। ये जश्न सिर्फ आमिर खान प्रोडक्शन का ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने का भी था। बड़े पर्दे पर 25 साल की कामयाबी को आमिर ने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की सिल्वर जुबली पर आमिर ने एक खास इवेंट रखा। इस इवेंट में बड़े पर्दे की तमाम जानी मानी हस्तियां पहुंची। आमिर यहां अपनी होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ दिखे। इस पार्टी में आमिर खान का पूरा परिवार भी पहुंचा। उनकी बेटी आयरा और बेटा जुनैद इस पार्टी में शामिल थे। आमिर की एक्स वाइफ किरण राव अपने बेटे के साथ इस इवेंट में पहुंची थी। इस जश्न के खास मेहमान थे सलमान खान, जो अपने बिल्कुल नए लुक के साथ यहां दिखे। सलमान का ये लुक सामने आते ही चर्चा होने लगी कि ये उनकी नई फिल्म का ही लुक है। आमिर ने सलमान को गले लगाकर उनका स्वागत किया और दोनों ने एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कुछ ही देर में करीना ने भी इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही काजोल, सानिया मल्होत्रा, रेखा, अली फजल, ऋचा चड्ढा भी इस जश्न का हिस्सा बने। जूही चावला यहां अपने पति के साथ पहुंची। जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी इस पार्टी में दिखे। लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, राजकुमार ईरानी समेत तमाम जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस जश्न में शामिल थे। आमिर ने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी कई यादगार फिल्में बनाई हैं। आमिर की फिल्में हमेशा दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं और ऐसी ही फिल्में वो प्रोड्यूस भी करते हैं। 25 साल के सफर में आमिर खान प्रोडक्शन ने कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। आमिर खान प्रोडक्शन की सिल्वर जुबली के मौके पर उन तमाम फिल्मों को याद भी किया गया जो बड़े पर्दे पर आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा खास बन गया है। ब्रासिलावा पहुंचते ही उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत की सबसे खास बात रही भारतीय और स्लोवाक संस्कृति का शानदार मेल। यहां मशहूर ग्रुप ने अपने अंदाज में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की प्रस्तुति दी, जिसने सभी का दिल जीत लिया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: Schwarber to right field, and it will leave.
1: From the first pitch of the season to the stretch run,
2: and that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: क्या आपको बार बार जीवन में धोखा मिलता है? प्रेम, विवाह, रिश्ते, दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: बनी पौड़ी महाराज के कैची धाम में उमड़ा आस्था का जन समंदर। 62वां स्थापना दिवस के मौके पर देश दुनिया से पहुंचे भक्त, बाबा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। तापमान में दर्ज की गई 4-6 डिग्री की गिरावट। आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छिटपुट बारिश। पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। आम के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट। अलग अलग राज्यों की 70 से ज्यादा वैरायटी मौजूद। गुलाब, खास, अंगूरदाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वागत की दीवानगी। अहमदाबाद से बीकानेर के बीच जल्द शुरू होगी नई ट्रेन। गुजरात और राजस्थान के हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत। दोनों राज्यों के बीच 740 किलोमीटर लंबा सफर होगा आसान। गिर जंगल सफारी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए गुड न्यूज। पर्यटकों को एक हफ्ते और मिलेगा शेरों के दीदार का मौका। सैलानियों के लिए अब 23 जून से बंद होगी गिर सेंचुरी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार या टीवी के पन्नों तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। पुरानी घटना को नहीं बताकर परोसा जाता है, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से बिल्कुल दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने शेयर करते हैं और यहीं से अफवाहों का दौर शुरू होता है। तो ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं। वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज इन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की बात करेंगे जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जहां पर लाखों की भीड़ जुटी। क्या है इसकी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो हाल फिलहाल में पेरिस में भड़की हिंसा का है। इस वीडियो की सच्चाई भी आगे जानी, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
5: सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोगों का हुजूम देखा जा सकता है और कुछ लोग वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
6: देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के नाम पर अब 6 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मानकर कई यूजर्स शेयर कर रहे हैं। वीडियो में आजादी के नारे भी सुने जा सकते हैं।
7: अपक्षवाद से हम लेके रहेंगे।
6: एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो अपलोड करते हुए लिखा, ओ माई गॉड, इतनी भीड़ तो किसी नेता मंत्री की रैली में भी नहीं होती होगी। कुछ भी हो, लेकिन एक नौजवान ने आज देश की राजधानी को हिला डाला। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में सबसे बड़ी भीड़। सोशल मीडिया की अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में हजारों की भीड़ देखी जा सकती है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का ये वीडियो है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को ध्यान से देखा। इसमें हमें जंतर मंतर वेधशाला के अंदर प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आई। यहां ऐसा संभव है कि वेधशाला के अंदर प्रदर्शनकारियों की एंट्री संभव नहीं थी। चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को ध्यान से देखा। इसमें हमें जंतर मंतर वेधशाला के अंदर प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आई। यहां ऐसा संभव है कि वेधशाला के अंदर प्रदर्शनकारियों की एंट्री संभव नहीं थी। जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये प्रदर्शन स्थल के पास स्थित है। यहां टिकट के जरिए ही एंट्री होती है। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए बाकायदा एक जगह तय की गई है, स्थान पर प्रदर्शन होता है और यहां पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत लेनी होती है। इसके लिए बाकायदा पुलिस की गाइडलाइंस भी हैं। जंतर मंतर वेधशाला का एंट्री गेट दूसरी ओर है। जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल और वेधशाला के बीच में टॉलस्टॉय मार्ग है, जहां पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम को वीडियो में ऐसी कोई भी गलती नजर नहीं आए जिससे हमें इसके असली होने पर शक हो। मसलन कि यदि फोटो को जूम करके देखने पर वीडियो में कई आकृतियां ऐसी नजर आ रही हैं, साथ ही साथ इसमें अलग से आवाज को भी जोड़ा गया, लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यह कि अगर वीडियो सच्चा है तो उसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। देखिए सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में।
6: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखने पर हमें इसके असली होने पर संदेह हुआ। मसलन फोटो को जूम करके देखने पर वीडियो में कई आकृतियां एक ही जैसी दिख रही हैं। इमेज में अलग से आवाज जोड़कर इस वीडियो को बनाया गया है। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक वेरिफाइड इंस्टाग्राम हैंडल पर ये मिला। इसे 6 जून 2026 को अपलोड किया गया था। वीडियो के कमेंट में बड़ी संख्या में लोगों ने इसे एआई से बना हुआ बताया था। हालांकि इस हैंडल पर इस एआई लेबल के साथ पोस्ट किया गया है, जिसका मतलब हुआ कि कंटेंट को पूरा या उसके कुछ हिस्से को बनाने या उससे बेहतर करने में एआई का इस्तेमाल हुआ है। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए एआई डिटेक्शन टूल्स की मदद ली। हमने वायरल वीडियो के कई स्क्रीनशॉट्स निकाले। दो स्क्रीनशॉट को हाइव मॉडरेशन टूल पर इसे स्कैन किया गया। इसके एनालिसिस में वायरल वीडियो के 70.2% एआई से बनाए जाने की अधिकतम संभावना की पुष्टि हुई। जांच के दौरान एक दूसरे एआई डिटेक्शन टूल साइट इंजन का भी इस्तेमाल किया गया। इस टूल के नतीजों ने भी वायरल वीडियो के 99% तक एआई से बने होने की संभावना जताई। इसके लिए भी हमने स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो एआई एडिटेड है। हालांकि ये सही है कि 6 जून के सीजेपी के प्रदर्शन में जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वायरल वीडियो फेक है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी के चैंपियन लीग जीतने के बाद पेरिस में हिंसा भड़क गई थी और इसी घटना से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है, जिसमें जलती गाड़ियां बस स्टैंड पर तोड़फोड़ के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
8: तीस मई
6: मंडे की रात को पेरिस पीएसजी के चैंपियंस लीग जीतने की खबर सामने आने के बाद पेरिस समेत फ्रांस के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई। जश्न मनाने के दौरान उपद्रवियों ने कुछ जगहों पर दुकानों में भी तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इसके अलावा कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। फ्रेंच पुलिस ने इस मामले में करीब 780 लोगों को हिरासत में लिया था। इसी घटना से जोड़कर सोशल मीडिया पर 37 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शुरुआती 18 सेकंड में एक सड़क पर कई गाड़ियां पलटी और उनमें से कुछ में आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है। आगे के हिस्से में भीड़ एक बस और ट्राम स्टेशन को तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए इसे पेरिस में हुई हालिया हिंसा का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
8: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में जलती गाड़ियों और बस स्टैंड पर तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। लोग गुस्से में गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। पीएसजी के चैंपियंस लीग जीतने के बाद पेरिस में हिंसा भड़क गई, इस दावे का साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने का वायदा किया है, इसीलिए हमने इसकी पड़ताल के लिए एक एक फ्रेम को गौर से देखा। हाँ, ये बात सच है कि 30 मई की रात को पेरिस के सेंट जर्मेन चैंपियन लीग जीतने की खबर सामने आने के बाद पेरिस समेत फ्रांस के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी। जश्न मनाने के दौरान उपद्रवियों ने कुछ जगहों पर दुकानों में भी तोड़फोड़ की थी, उसमें आग लगाई थी। इसके अलावा कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया था, लेकिन ये वीडियो उसी हिंसा से जुड़ा हुआ था, ये जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रही वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में तोड़फोड़ मचा रहे लोगों के कपड़ों पर गया। लोग जैकेट पहने हुए हैं, कोट पहने हुए, टोपी लगाए हैं, मफलर लगाए हुए हैं। अगर वीडियो 30 मई का होता तो इस दौरान फ्रांस में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। फ्रांस में मई का महीना साल के सबसे बेहतरीन समय में से एक होता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है, बसंत का मौसम होता है, दिन में खुशमा धूप, शाम में हल्की ठंडी होती है, बारिश कभी कभार हो जाती है। मतलब ये कि वायरल वीडियो हाल फिलहाल का तो नहीं हो सकता, लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो हाल फिलहाल का है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं किसी पुराने वीडियो को जानबूझकर नया एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
6: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो एक पत्रकार के एक्स अकाउंट से 24 दिसंबर 2022 को पोस्ट किया हुआ मिला। इसके अलावा हमें एक फेसबुक अकाउंट से 25 दिसंबर 2022 को अपलोड किया गया दूसरा वीडियो भी मिला, जिसमें वायरल वीडियो से जुड़े दृश्य मौजूद थे और इसे रेनी बोइसरी नाम के एक पत्रकार ने रिपोर्ट किया था। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे पेरिस के कोर्डिश कल्चरल सेंटर के सामने हुए हमले के बाद हिंसा भड़कने का बताया गया था। इसके बाद हमने आग के दृश्यों की पड़ताल की, जिसमें भीड़ एक बस और ट्राम स्टेशन तोड़ती दिखाई दे रही है। रिवर्स सर्च में हमें ये वीडियो एक फेसबुक अकाउंट से 25 दिसंबर 2022 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे पेरिस का बताया गया था। जांच में हमें एक यूरोपियन मीडिया आउटलेट की वेबसाइट पर भी 24 दिसंबर 2022 को प्रकाशित रिपोर्ट में वायरल वीडियो से जुड़े दृश्यों वाली तस्वीर मिली। ये रिपोर्ट 23 दिसंबर 2022 को पेरिस में कुर्दिश कल्चरल सेंटर पर हुए हमले के बाद पेरिस में भड़की हिंसा की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 23 दिसंबर 2022 को पेरिस में मौजूद कुर्दिश कल्चरल सेंटर के पास गोलीबारी हुई थी और इसमें करीब 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर हिंसा भड़क गई थी। यह हमला 69 वर्षीय विलियम एम नाम के एक शख्स ने किया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पेरिस में हिंसा भड़कने के दावे से शेयर हो रहे इस वीडियो में मौजूद दोनों ही दृश्य हालिया नहीं बल्कि करीब 3 साल पुराने हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
8: फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
9: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
10: To Live Sports Talk Radio to keep you in the game in between games.
11: Because people who all watch games, they hear the voice.
10: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
5: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
6: इन दिनों सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक रिक्शे वाले भैया खूब छाए हुए हैं। इनका नाम मोहम्मद असलम है, जिन्हें लोग इंटरनेट पर असलम रिक्शा वाला के नाम से जानते हैं। दरअसल इस रिक्शे वाले का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो विदेशी पर्यटकों से कोई टूटी फूटी नहीं बल्कि एकदम फर्राटेदार स्पेनिश और अंग्रेजी में बतियाते दिख रहे हैं। असलम के इस हुनर को देखकर न सिर्फ विदेशी बल्कि देश की जनता भी हैरान है। असलम पिछले 17 सालों से पुरानी दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चला रहे हैं। वो सिर्फ सवारी को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम नहीं करते बल्कि उनके लिए एक टूर गाइड भी बन जाते हैं। वो विदेशी मेहमानों को दिल्ली के इतिहास की कहानियाँ सुनाते हैं, उन्हें घूमने और फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगहों की सलाह देते हैं। साड़ी में सजी एक लड़की ने ऐसा शानदार डांस किया कि पूरा समारोह तालियों और सीटियों से गूंज उठा। उसके दमदार मूव्स, बेहतरीन एक्सप्रेशंस और ग्रेसफुल अंदाज ने सभी का दिल जीत लिया। लड़की का डांस केवल स्टेप्स तक सीमित नहीं था बल्कि उसके एक्सप्रेशंस भी बेहद आकर्षक थे। गाने के हर बोल और हर बीट के साथ उसने जिस तरह तालमेल बिठाया, उसने प्रेजेंटेशन को और भी खास बना दिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में एक ऐसा कछुआ दिखाई दे रहा है जिसके एक नहीं बल्कि दो दो मुंह हैं। जिसने भी ये वीडियो देखा वो दंग रह गया। वायरल वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपने हाथ में एक छोटा सा कछुआ पकड़े नजर आता है। पहली नजर में तो ये बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही कछुए का अगला हिस्सा सामने आता है, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस अनोखे कछुए के दो मुंह और चार आंखें हैं। दिलचस्प बात यह है कि कछुए के दोनों मुंह पूरी तरह एक्टिव हैं। जब वो शख्स अपनी उंगली कछुए के मुंह के पास ले जाता है तो दोनों मुंह उसे पकड़ने के लिए एक साथ खुल जाते हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में देश के कई हिस्सों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस प्रेरणादायक वीडियो को उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जो इन दिनों देश के कई हिस्सों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तेज धूप और तपती गर्मी के बीच एक बंदर बेहद प्यासा नजर आता है। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकता है और आखिरकार उसे एक सार्वजनिक पानी का नल दिखाई देता है। इसके बाद जो सीन कैमरे में कैद होता है वो हर किसी को हैरान कर देता है। बंदर नल के पास पहुंचकर बड़ी सहजता से उसे खोलता है। ऐसा लगता है मानो उसे पूरी तरह पता हो कि पानी कैसे निकाला जाता है। नल खुलते ही वो आराम से पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ तक तो सीन नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो इस वीडियो को खास बनाता है। पानी पीने के बाद बंदर तुरंत वहाँ से नहीं जाता, वो कुछ पल रुकता है, फिर अपने हाथों से नल की टोटी बंद कर देता है। उसकी एक छोटी सी हरकत लोगों के लिए बड़ी सीख बन गई। जहाँ अक्सर इंसान सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, वहीं इस जानवर ने पानी की एक एक बूंद की अहमियत समझते हुए उसे बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर एक उदास और गहरी सोच में डूबे गोरिल्ले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को अपने घर का क्लेश याद आ रहा है। वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में एक नर गोरिल्ला तेजी से भागता दिखाई देता है, जबकि उसके पीछे एक मादा गोरिल्ला गुस्से में उसका पीछा कर रही होती है। पूरा सीन ऐसा लगता है मानो दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद हो गया हो और मेल गोरिल्ला वहाँ से जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो इंटरनेट यूजर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। इसमें गोरिल्ला अकेले घास पर बैठा दिखाई देता है। उसका चेहरा बेहद गंभीर है, एक हाथ ठुड्डी के नीचे टिका हुआ है और उसकी नजरें कहीं दूर जीरो में खोई हुई हैं। ऐसा लगता है मानो वो अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब बैठा कर किसी गहरे कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि कुछ सतर्क सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही ये जानकारी शेयर कर दी कि वीडियो के दोनों हिस्से अलग अलग जगहों के हैं और अलग अलग समय के हैं और उन्हें जोड़कर एक नई कहानी बनाई गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सोशल मीडिया ने इस गोरिल्ला के लिए अपनी अलग ही कहानी गढ़ ली थी।
12: और लोगों से कियोमासा की वैवाहिक परेशानी का नाम देने लगे। प्यार में दिल टूटने की कहानियां तो आपने इंसानों की बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी बिल्ली का हार्ट ब्रेक देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार और भावुक कर देने वाला वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी बिल्ली से होती है। बिल्ली अपने मुंह में एक छोटे से चूहे को दबाए हुए नजर आती है, जिसे लोग गिफ्ट या तोहफा बता रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी खास को यह तोहफा देने के लिए उत्साहित होकर वहाँ पहुँची हो। बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर जाती दिखाई देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार एक बड़े सरप्राइज से होने वाला है। जैसे ही बिल्ली आगे पहुंचती है, उसकी नज़र दूसरी बिल्लियों पर पड़ती है। दोनों बिल्लियां एक दूसरे के साथ बेहद प्यार भरे अंदाज में समय बिताती दिखाई देती हैं। ये दृश्य देखकर पहली बिल्ली कुछ पल के लिए रुक जाती है। वीडियो में उसका रिएक्शन ऐसा लगता है जैसे उसे अचानक एहसास हो गया हो कि जिस खास के लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी, वो अब किसी और के साथ खुश है। हालांकि जानवरों की भावनाओं को इंसानों की तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन वीडियो का ये पल लोगों को काफी दिलचस्प लग रहा है। वीडियो का सबसे भावुक और मजेदार हिस्सा तब आता है जब बिल्ली बिना कोई शोर किए अपना गिफ्ट जमीन पर रख देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से वापस लौट जाती है। इन दिनों पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच यूके के एक जू ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जा रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हाथी के बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के प्रति उसकी जिज्ञासा और मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही है। यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों का भी खूब ध्यान आकर्षित कर रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़ी वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती रहती है। कभी किसी जानवर की मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत लेती हैं, तो कभी जंगल के जीवों की ताकत और आक्रामक अंदाज से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर छा जाते हैं। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कई हाथी एक घिरे हुए प्लॉट के अंदर दिखाई देते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन कुछ ही पलों में एक हाथी ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं। हाथी सामने बनी दीवार की ओर बढ़ता है और पूरी ताकत के साथ उसे जोरदार धक्का मार देता है। ये धक्का इतना जोरदार था कि मजबूत दिखाई देने वाली दीवार कुछ ही सेकंड में ढह जाती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दीवार गिरने के बाद हाथियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इसके बाद वो आराम से उस स्थान से बाहर निकल जाते हैं। हाथी की ताकत और उसके आत्मविश्वास को देखकर लोग दंग रह गए। आमतौर पर ऐसी दीवारों को तोड़ने के लिए मशीनों या भारी उपकरणों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस हाथी ने केवल एक जोरदार धक्के से पूरी दीवार को गिरा दिया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: और अब बात आमिर खान की फिल्म लगान की करते हैं। आमिर के लिए तो ये जैसे डबल धमाका है, क्योंकि एक तरफ उनके लगान ने बड़े पर्दे पर 25 साल पूरे कर लिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आमिर खान प्रोडक्शन भी अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। आमिर खान ने इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी। इस पार्टी में आमिर के साथ जश्न मनाने के लिए बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां जुटी। देखिए कौन कौन पहुंचा इस पार्टी में।

0: ने जब फिल्मों में कामयाबी के 25 साल का जश्न मनाया तो उन्हें बधाई देने के लिए सितारों की महफिल सज गई। ये जश्न सिर्फ आमिर खान प्रोडक्शन का ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने का भी था। बड़े पर्दे पर 25 साल की कामयाबी को आमिर ने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की सिल्वर जुबली पर आमिर ने एक खास इवेंट रखा। इस इवेंट में बड़े पर्दे की तमाम जानी मानी हस्तियां पहुंची। आमिर यहां अपनी होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ दिखे। इस पार्टी में आमिर खान का पूरा परिवार भी पहुंचा। उनकी बेटी आयरा और बेटा जुनैद इस पार्टी में शामिल थे। आमिर की एक्स वाइफ किरण राव अपने बेटे के साथ इस इवेंट में पहुंची थी। इस जश्न के खास मेहमान थे सलमान खान, जो अपने बिल्कुल नए लुक के साथ यहां दिखे। सलमान का ये लुक सामने आते ही चर्चा होने लगी कि ये उनकी नई फिल्म का ही लुक है। आमिर ने सलमान को गले लगाकर उनका स्वागत किया और दोनों ने एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कुछ ही देर में करीना ने भी इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही काजोल, सानिया मल्होत्रा, रेखा, अली फजल, ऋचा चड्ढा भी इस जश्न का हिस्सा बने। जूही चावला यहां अपने पति के साथ पहुंची। जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी इस पार्टी में दिखे। लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, राजकुमार ईरानी समेत तमाम जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस जश्न में शामिल थे। आमिर ने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी कई यादगार फिल्में बनाई हैं। आमिर की फिल्में हमेशा दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं और ऐसी ही फिल्में वो प्रोड्यूस भी करते हैं। 25 साल के सफर में आमिर खान प्रोडक्शन ने कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। आमिर खान प्रोडक्शन की सिल्वर जुबली के मौके पर उन तमाम फिल्मों को याद भी किया गया जो बड़े पर्दे पर आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सनी देओल की गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ कमाई के रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े बल्कि थिएटर्स में किसी फेस्टिवल जैसा माहौल बना दिया था। गदर एक प्रेम कथा ने आज ही के दिन 25 साल पहले जैसे ही पर्दे पर दस्तक दी एक कोहराम समचा दिया था। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे सरहदों की दीवारें नहीं रोक सकी और एक ऐसा एक्शन जिसने दर्शकों को कुर्सियों से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया था। आज 25 साल पूरे होने पर गदर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुकी है।
2: मुझे वो सबसे पहली मेमोरी आती है कि जैसे ही गदर का पोस्टर देखता हूँ तो या कोई भी चीज़, गदर तो इतना है कि गदर वन अपने आप में उसकी मेकिंग ही अपने आप में एक फिल्म है। वो तो बहुत सारी चीज़ें, मगर एक चीज़, हम अहमदाबाद से आए थे, रात को वहाँ पे कुछ शो हुआ था, प्रेस शो था। सुबह सुबह मैं उठा, थर्सडे मॉर्निंग थी, 9:30 बजे, सुबह सुबह 6 बजे मैं आया था, सोफे पर ही सो गया था, अंदर बेडरूम में भी नहीं गया। 9:30 बजे एक फ़ोन की घंटी बजती, उन दोनों बड़े बड़े फ़ोन होते थे, ट्रिंग टैंग टिंग, फ़ोन उठाया, बोले वो एक उड़ीसा से एक थिएटर से फ़ोन है, मैनेजर से फ़ोन है। मैनेजर थर्सडे को पिक्चर रिलीज़ हो जाती थी उड़ीसा वगैरह में, बहुत सारी जगह। तो उसने बोला आपने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, क्या फिल्म बना दी है, क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ क्या, अरे बोले बवाल हो गया है, 3,000 आदमी अंदर है, 3,000 आदमी बाहर है। मैंने कहा 3,000 कैसे को घुस गए थिएटर के अंदर, मैं क्या करूं, इतने ही बाहर है, पब्लिक पागल हो गए। पब्लिक को कैसे पता लगा, पूरे इंटरवल पे सब मोबाइल पे फोन कर दिया सब लोगों ने और पब्लिक अगले शो के लिए आ गई है, पागल हो गए हैं लोग, पैसे फेंक रहे हैं, मेरा थिएटर टूट जाएगा, फूट जाएगा। मैंने कहा पिक्चर की तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। बोले मैं कह रहा हूँ ऐसी पिक्चर आज तक कभी बनी नहीं है, इसलिए मैं एक्साइटमेंट में आपका नंबर कहाँ से ढूंढा रहा, आपको फोन किया है, थिएटर ही मेरा टूटे टूटे परवाह नहीं, लेकिन पिक्चर कमाल है। ये इंटरवल पे मेरे को इस गदर का रिएक्शन था। अभी तो सिर्फ इंटरवल ही हुआ था, हैंडपंप तक पहुंचे ही नहीं थे। सालों से चल रहा था गदर टू बनानी है, जीते की कहानी बनानी है, जीते को आगे, जीते बड़ा हो रहा है, पर कहानी नहीं आ रही थी। गदर वन गदर टू में ऐसे नहीं बना सकता था कि गदर वन के नाम को मुझे इनकैश करना, जब तक मेरे पास कहानी नहीं आएगी मैं गदर टू नहीं बनाऊंगा। बस गुजरते गए, अब लोग बोलने लगे अभी तो उत्कर्ष भी बड़ा हो गया, अब तो बना लो, अब तो जीते को आप उत्कर्ष ही ले सकते हो। अरे मैंने कहा भाई उत्कर्ष ले सकता हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कहानी आ जाए ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, समझे ना। अगर 10 साल पहले भी कहानी आ जाती थी किसी और को जीते लेके मैं बना देता, उत्कर्ष बच्चा था, तो वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। वो तो मेरे लिए फिल्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं फिल्मकार पहले हूँ बाप बाद में हूँ, हमेशा मैं सबको समझाता हूँ। लोग उल्टा सोचते हैं, शायद लोगों का मानसिकता ऐसी है, वो खुद ऐसे हैं तो ऐसे लिए सोचते हैं, मैं किसी को बदल तो नहीं सकता। तो बस जब कहानी आ गई मुझे लगा एटम बम आ गया, तो मैंने फोड़ दिया।
3: और क्या फोड़ा, बट गदर 3 का कोई प्लानिंग है यानी?
2: बिल्कुल प्लानिंग है, गदर 3 की कहानी बदस्तूर चल रही है, वही स्ट्रगल जारी है कि जब लगेगा कि गदर 1 और गदर 2 से बेहतर है मैं लेके आऊंगा। मेरे पास तो सनी भी है, अनुषा भी है, जीते भी है, जी भी है, सब है, मेरे लिए तो बड़ा आसान है शुरू कर देना। लेकिन वो लेवल की स्टोरी तो होनी चाहिए, क्योंकि गदर एक मेरी फिल्म नहीं है, गदर ऑडियंस की फिल्म है। गदर में जब भी बनाऊंगा, जब मुझे एज ए ऑडियंस लगेगा कि इससे बेटर नहीं हो सकती गदर 3, तभी बनाऊंगा। और मेरा काम चालू है, ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हो सकता है 2027 में या 26 में सम टाइम हम इसको अनाउंस करें।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
7: Keep it on smooth jazz.
8: This is Roots Reggae
9: exclusively on TuneIn.
10: This is classic hip hop
11: exclusively on TuneIn.
5: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बनी पौड़ी महाराज के कैची धाम में उमड़ा आस्था का जन समंदर। 62वां स्थापना दिवस के मौके पर देश दुनिया से पहुंचे भक्त, बाबा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। तापमान में दर्ज की गई 4-6 डिग्री की गिरावट। आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छुटपुट बारिश। पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। आम के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट। अलग अलग राज्यों की 70 से ज्यादा वैरायटी मौजूद, गुलाब, खास, अंगूरदाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वागत की दीवानगी। अहमदाबाद से बीकानेर के बीच जल्द शुरू होगी नई ट्रेन। गुजरात और राजस्थान के हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत। दोनों राज्यों के बीच 740 किलोमीटर लंबा सफर होगा आसान। गिर जंगल सफारी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए गुड न्यूज़, पर्यटकों को एक हफ्ते और मिलेगा शेरों के दीदार का मौका। सैलानियों के लिए अब 23 जून से बंद होगी गिर सेंचुरी।

0: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं मंगल से शुरू हो रहे मंगल दिनों की। 15 जून को अधिक मास समाप्त हो गया और इस तरह शुभ कार्यों पर जो रोक लगी थी वो भी खत्म हो गई। मंगल से शादी विवाह गृह प्रवेश और नया काम शुरू हो सकता है। आज आपको सबसे पहले जून और जुलाई में शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताएंगे जब आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही बात होगी अधिक मास की, जिसके खत्म होने के साथ कई दुर्लभ संयोग बने हैं, इनका घर परिवार और देश दुनिया पर असर होगा। जानकार मान रहे हैं कि इससे सुख समृद्धि और शांति आएगी और इसी बीच भारत समेत पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब रहा अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने की खबर आ चुकी है। दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते पर सितारों की चाल का क्या असर होगा और इस बार क्या शांति पक्की होगी, इस पर भी आज बात होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे मंगल से शुरू रही मंगल बेला की।
1: मंगल बेला आई, गूंजेगी शादी की शहनाई। अधिक मास खत्म, विवाह के मुहूर्त शुरू। शादी के लिए जून में 8 मुहूर्त, जुलाई में शादी के दिन 4। बैंड बाजा बारात, मंगल से मंगल।
0: अधिक मास की समाप्ति के साथ ही मंगल बेला की शुरुआत हो रही है। दुर्लभ संयोग रहा कि अधिक मास के आखिरी दिन सोमवार के दिन अमावस्या भी रही। देश भर में गंगा और दूसरी पवित्र नदियों में के किनारे लाखों लोगों ने भक्ति भाव से स्नान ध्यान किया, पूजा अर्चना की। असल में यह संयोग 3 दशक के बाद आया है जब अधिक मास सोमवार की अमावस्या के साथ खत्म हुआ हो। जानकार मान रहे हैं कि अधिक मास के बाद घर परिवार समाज और देश में सुख समृद्धि और शांति आएगी। देखिए हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ और प्रयागराज तक कैसे हुई पूजा अर्चना।
1: संगम की पवित्र धरती, गंगा का पवित्र जल, हाथ जोड़कर भगवान भास्कर की आराधना, आस्था की अद्भुत तस्वीरें हैं जो सोमवती अमावस्या पर प्रयागराज में नजर आई। बेहिसाब भीड़, अगाध श्रद्धा, संगम के तमाम घाटों पर स्नान के बाद पूजा पाठ, क्योंकि ऐसा संयोग कम ही होता है कि सोमवार की अमावस्या हो और साथ ही अधिक मास का आखिरी दिन। जानकारों के मुताबिक कई दशकों के बाद ये दुर्लभ संयोग हुआ है, इसीलिए प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
2: आज सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या को संगम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। सुबह से ही भक्त संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहां पर पूजा पाठ कर रही हैं और पूजा पाठ करने के बाद अपने देश और अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रही है। सुबह से ही महिलाएं सूर्य देवता की पूजा कर रही है और गंगा जल चढ़ा करके यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। माँ गंगा यहाँ पर सबको आशीर्वाद देती हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ लगी हुई है, पूजा पाठ किया जा रहा है और जो लोग हैं अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए भी यहाँ पर आते हैं और महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं जिससे अपने उनके पति और बच्चों की लंबी उम्र हो और माँ गंगा से प्रार्थना करती हैं कि देश में और उनके घर में सुख शांति रहे।
1: प्रयागराज नहीं, देश के सभी तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों में सोमवार को ऐसा ही विहंगम दृश्य देखने को मिला। खास तौर पर माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य का लाभ भी मिलता है।
3: यही कामना है घर में सबको, परिवार सभी आशीर्वाद देती गंगा माँ, सब मनोकामना लेकर उनकी मनोकामना गंगा माँ पूर्ण करती है सबके।
4: इस जन्म और उस जन्म के वो यहाँ गंगा माँ के स्नान करने समाप्त हो जाता है और हमारे हृदय भक्ति और सनातन धर्म का उद्गम यहीं से प्रारंभ होता है। जो एक महीने का अधिक मास का स्नान करता है भगवान श्री नारायण के चरणों में इस जन्म में सुख संपदा प्राप्त करता है और अंतिम चरण में भी वह मोक्ष प्राप्त करता है।
1: सोमवती अमावस्या का ज्यादा महत्व 2-3 वजहों से है। पहला तो ये कि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। संगम पर भी महिलाओं ने पीपल के पेड़ के दूध, जल और अक्षत से पूजा की। पेड़ के चारों ओर कलावा लपेट कर परिक्रमा की गई।
5: आज के दिन जो भी कार्य किया जाएगा उसका 1000 गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, और जो दान है या जो पुण्य है वो भी 1000 गुना बढ़ जाता है, है ना। जैसे अगर आप किसी को 100 रुपया दिया तो 1000-1000 रुपये हो जाता है। इसी प्रकार से प्रयाग में जो भी की काम किया जाए, सोच समझ किया जाए, शांति के साथ किया जाए। आज के दिन लोग महिलाएं जा करके पेपर में फेरी देंगी, भगवान विष्णु की पूजा करेंगी, पितरों के नाम से आज तर्पण किया जाता है, इसके करने से हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं, और घर में जाकर माता पिता को प्रणाम करेंगे, उनकी सेवा की जाए तो भी फल प्राप्त होता है। आज जो भी गोदान करे या तर्पण करे, जो भी कार्य करेगा उससे उसके घर के अंदर हर प्रकार की मर्यादा बनी रहेगी, कभी कोई कमी नहीं होगी। और प्रयाग में खास करके जो प्रयाग निवासी हैं बड़े भाग्यवान हैं।
1: सोमवती अमावस्या का दूसरा महत्व पितरों की शांति से जुड़ा है, इसीलिए संगम पर काले तिल मिले जल से पीपल की जड़ में तर्पण किया गया। मान्यता है कि तर्पण और दान से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या का संबंध भगवान शिव और पार्वती से भी है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ से न सिर्फ घरों में बल्कि समाज और देश में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हजारों की तादाद में जो आस्थावान संगम पर मौजूद थे, उन्होंने घर परिवार में शांति के लिए पूजा अर्चना की। देश भर में भक्ति भाव से भरी ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि सोमवार को अधिक मास की अमावस्या का दुर्लभ संयोग बना। पुरुषोत्तम मास जिसका संबंध भगवान विष्णु से है, और सोमवार जो भगवान शिव का दिन माना जाता है, दोनों का संयोग होने से हरिहर की संयुक्त कृपा मानी गई। जानकारों के मुताबिक ऐसा संयोग वर्ष 1999 में बना था, यानी 3 दशक बाद अधिक मास के आखिरी दिन सोमवार की अमावस्या आई है।
6: ऐसा कहा जाता है कि इस सोमवती अमावस्या में जो व्यक्ति हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड अथवा और अधिक कुंभ क्षेत्र अथवा किसी पवित्र नदी में स्नान करे, अन्यथा इन नदियों का पवित्र स्थानों का ध्यान करके घर में ही स्नान करे, तो वो इतना पुण्य फल प्राप्त कर लेता है जैसे स्वयं अश्वमेध यज्ञ कर लिया हो। और एक नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञों का, कई लाख वाजपेयी यज्ञों का जो फल है वो सोमवती अमावस्या में इन कुंभ क्षेत्रों में या पवित्र नदियों में स्नान का कहा गया है। और आज सोमवार के दिन अमावस्या के दिन जो व्यक्ति स्नान करे, पितरों के लिए तर्पण करे और अपने पितरों के निमित्त शैया दान करे, ऐसा व्यक्ति अपने पितरों को तो अनंत काल के लिए स्वर्ग में विस्थापित कर देता है, स्वयं शरीर समाप्त होने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है और जीवन में सारे सुखों की कामना कर लेता है।
1: पवित्र पावन दिन पर हरिहर का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का हुजूम हरिद्वार के घाटों पर भी उमड़ा। कहीं भी तिल रखने तक की जगह नहीं थी। आरती आराधना, पूजा पाठ और दान पुण्य। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाने से यूं भी मोक्ष की मान्यता है, लेकिन ये स्नान खास तौर पर पितरों की शांति और सुख समृद्धि के लिए खास है। हरिद्वार की तरह भव्य तस्वीरें चित्रकूट से भी नजर आई। मान्यता ये है कि इस पवित्र मंदाकिनी नदी में भगवान राम ने वनवास के दौरान डुबकी लगाई थी, और इसी राम घाट में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम ने बालक रूप में दर्शन दिए थे। इसलिए हमेशा अमावस्या पर भक्त यहां आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। सोमवती अमावस्या का अवसर विशेष था, इसीलिए करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चित्रकूट में डुबकी लगाई और कामतनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की पूजा की और श्रद्धालुओं ने नदी के तट पर पार्थिव पूजन किया। आज तक की ऐसी तस्वीरें भगवान राम की नगरी अयोध्या और बद्री विशाल से भी सामने आई हैं। अयोध्या में सरयू के पावन जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की, तो वहीं प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। बद्री विशाल के धाम पर यूं भी अधिक मास में पूजा पाठ का विशेष महत्व है, उस पर सोमवती अमावस्या का संयोग, इसलिए अलकनंदा तट पर मौजूद तप्त कुंड में पवित्र स्नान के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म कपाल पहुंचकर अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण किया। सोमवती अमावस्या के साथ अधिक मास भी समाप्त हो गया और शुभ कार्यों के लिए मंगल बेला की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, अयोध्या से मयंक शुक्ला और बद्रीनाथ से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: अधिक मास के समाप्त होने के साथ शुभ और मांगलिक काम की शुरुआत होने वाली है। पिछले 30 दिनों से शादी विवाह गृह प्रवेश पर रोक थी, लोगों ने नए काम की शुरुआत भी नहीं की, पर अब शादियों के शुभ मुहूर्त है और जून में 8 दिन और जुलाई में 4 दिन विवाह के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आगे 12 महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से होने वाले हैं।

0: जिस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो आ गई। अब जून से लेकर जुलाई तक शहनाई गूंजेगी। न सिर्फ शादी बल्कि तमाम मंगल कार्य जो रुके हुए थे उनका श्री गणेश होगा। कोई घर बसाएगा तो कोई नए घर में जाएगा, किसी की जिंदगी में नए काम की शुरुआत होगी। जो भी होगा शुभ होगा, मंगल होगा, क्योंकि 15 जून को अधिक मास समाप्त हो चुका है।
1: परंतु जैसे ही अधिक मास की अवधि समाप्त होती है वैसे ही शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाते हैं। तो अधिक ज्येष्ठ मास सोमवार को 15 जून 2026 दिन सोमवार को सुबह लगभग 9 बजे के बाद से समाप्त हो जा रहा है और शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आरंभ हो जा रही है। लेकिन उदयकालिक मान्यताओं के अनुसार 16 जून को यह माना जाएगा कि शुद्ध ज्येष्ठ मास आरंभ होगा और यहीं से शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाते हैं और चारों तरफ शहनाई की गूंज सुनाई देगी। विवाह होंगे, गृह प्रवेश के मुहूर्त मिलेंगे, तो यह समय बड़ा ही शुभ कारक हो जाएगा मांगलिक कार्यों के लिए।
0: हालांकि धार्मिक तौर पर अधिक मास या मलमास का महीना शुभ माना जाता है, लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए इसे अनुकूल नहीं समझा जाता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अधिक मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, यानी सूर्य इस अवधि में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करता। सौर चक्र में इस संक्रमण विहीन अवधि के कारण इस मास को मलमास कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, इसलिए इस समय शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय और दूसरे मांगलिक काम रोक दिए जाते हैं। लेकिन अधिक मास का एक दूसरा पक्ष भी है। मान्यता है कि इस माह को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना सर्वोत्तम नाम यानी पुरुषोत्तम प्रदान किया, तब से अधिक मास पुरुषोत्तम मास हो गया और इस दौरान पूजा, जप तप, व्रत और दान का महत्व कहीं ज्यादा हो गया। लेकिन जहां तक बात है शादी विवाह और नए काम की, तो उसके लिए अधिक मास अनुपयुक्त ही रहा। इस साल 17 मई से इसकी शुरुआत हुई थी। 30 दिनों बाद इसकी समाप्ति से यानी 16 जून से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के साथ मांगलिक कार्यों पर अब कोई रोक नहीं होगी। वैसे तो अधिक मास के समाप्त होते ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, पर विवाह के लिए सही मुहूर्त 19 जून से है। इसके बाद ये शादी ब्याह से जुड़े आयोजन देश भर में शुरू हो जाएंगे। पंचांग के अनुसार जून और जुलाई में मिलाकर 12 शुभ लग्न हैं, जिनमें जून में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 जून शादी के मुहूर्त हैं, जबकि जुलाई में 1, 6, 7 और 11 चार प्रमुख शुभ मुहूर्त हैं। यानी आने वाले 2 महीनों में कुल मिलाकर 12 ऐसे मुहूर्त हैं जो शुभ कार्यों खासकर शादी के लिए उत्तम है।
2: अभी जो समय है वह आपके शुभ और मांगलिक कार्यों का है और यह शुभ मांगलिक कार्य आपके जो है हरि शयनी एकादशी से रुक जाएंगे। जिस दिन आपकी जो है लगभग 25 जुलाई को हरि शयनी एकादशी है उस दिन रुक जाएंगे। इस बीच काफ़ी कुछ अच्छे जो है आपके आ रहे हैं। इसी बीच आपकी जो है निर्जला एकादशी आएंगी। इसी बीच 18 तारीख को गुरु का जो है पुष्य नक्षत्र में भ्रमण होना, आगे चल के आपकी जो है जुलाई में आपका जो आषाढ़ मास होगा तो उसमें गुप्त नवरात्रों का आना। तो कहने का तात्पर्य कि इस टाइम के अंतराल में काफ़ी कुछ शुभ मांगलिक कार्य करने वाले मुहूर्त जो है प्राप्त हो रहे हैं।
3: सुंदर मुहूर्त है जिस दिन कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि पड़ेगी और आषाढ़ का समय होगा और इस समय एक बहुत बेहतरीन समय है जिस पर किया जा सकता है। 22 जून ध्यान रखिएगा, 20 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 26 जून और 27 जून, 29 जून, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई। अगर मैं इन 21 दिनों की स्पेशली बात करता हूं तो 7 जुलाई तक ये मैरिज को लेकर के बहुत शानदार दिवस है जिनके अंदर किया जा सकता है।
0: अधिक मास बीता तो विवाह के दिन आए, पर इसके लिए भी मुहूर्त सीमित है, क्योंकि 25 जुलाई से देव शयनी के साथ चतुर्मास शुरू हो जाएगा। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए अगले 4 महीनों तक मांगलिक कार्य फिर से बंद हो जाएंगे। इसके बाद देवउठनी एकादशी से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होगी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं और चतुर्मास का समापन होता है। लेकिन उससे पहले जून और जुलाई में मांगलिक कार्यों के 12 महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त हैं। जिन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी है उनके लिए तैयारी के भी अच्छे खासे दिन हैं। और जिन्हें अगले 4 महीने इंतजार नहीं करना, उनके लिए भी अच्छा और सुविधाजनक मुहूर्त तय करने की देर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अधिक मास की समाप्ति के साथ एक बड़ी गुड न्यूज जंग के मोर्चे से भी आई है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बन गई है और दोनों देशों के रुख से माना जा रहा है कि 19 जून को शांति समझौते पर मुहर लग सकती है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, जो भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। तय है कि अब सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे देशों से सप्लाई दोबारा शुरू होने से हालात बेहतर होंगे।
5: साढ़े 3 महीने बाद मिडिल ईस्ट के क्षितिज पर उम्मीद का नया सवेरा हुआ है। 28 फरवरी 2026 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर पहली बार पूर्ण विराम लग गया है। यूएस ईरान डील फाइनल होने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों समेत पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर शांति समझौते की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, यह शानदार समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का पैगाम लेकर आएगा। इससे पहले कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। इस रीजन के नेताओं को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो असली शांति ला सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि डील पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में 3.5 महीने से जारी तनाव को खत्म होने का इंतजार पूरी दुनिया को था, क्योंकि इस जंग की वजह से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। कच्चे तेल के दाम न सिर्फ बेतहाशा बढ़ चुके थे बल्कि आपूर्ति भी चरमरा गई थी। इससे दुनिया के कई देशों की आर्थिक व्यवस्था जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रही थी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत समेत पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में तेल गैस का जबरदस्त संकट पैदा हो गया था।
6: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर 19 जून को होने हैं, लेकिन इस फैसले से पूरी दुनिया ने खुशी और राहत महसूस की है। तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने अपने संदेश भेजकर इसका स्वागत किया है और सबसे ज्यादा राहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की खबर से महसूस की जा रही है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल और क्रूड का कारोबार होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से अब तमाम जहाजों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सकेगी और तमाम सी फेयरर्स जो इस इलाके में फंसे हैं अपने घरों को सकुशल लौट पाएंगे। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है 19 जून का, जब ईरान और अमेरिका इस हस्ताक्षर के साथ शांति का एक नया पैगाम देंगे और लंबे वक्त से आर्थिक संकट झेल रहे देशों को भी इससे राहत प्राप्त होगी।
5: भारत भी इस संघर्ष विराम और समझौते का न सिर्फ बेसब्री से इंतजार कर रहा था बल्कि इसके लिए कूटनीतिक कोशिशें भी कर रहा था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस डील का तहे दिल से स्वागत किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डील का स्वागत करते हुए लिखा, मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच बनी आपसी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक गतिरोध पैदा हो गया था और कई देशों में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। भारत को आशा है कि इस समझौते के लागू होने के बाद क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और नेविगेशन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश बातचीत जारी रखेंगे, जिससे आने वाले समय में एक स्थायी हल निकल सके। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: जाहिर है ये खबर पूरी दुनिया समेत भारत के लिए बड़ी राहत की है। अब सवाल है कि युद्ध और लंबी तनातनी के बाद क्या मध्य एशिया और दुनिया में शांति का दौर लौटने वाला है? क्या कहते हैं सितारे, आइए समझते हैं।
1: दोनों देशों के लिए ही नहीं, ईरान और अमेरिका के लिए ही नहीं, अभी तो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो एक बड़े परिवर्तन की स्थिति दिखाई देगी। कैसे? क्योंकि एक तो देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में चले गए हैं, मिथुन राशि से उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं। बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है जो कि मीन राशि में है, तो शनि के नकारात्मकता में कमी आ गई है, शुभता में वृद्धि हो जाएगी। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है, तो दोनों ही गुरु कर्क राशि में है, जबकि देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में है, लेकिन दोनों का जो योग होता है कुंडली में उसको बड़ा ही सम्मान की दृष्टि से बड़ा ही सकारात्मक देखा जाता है।

0: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और अब बात आमिर खान की फिल्म लगान की करते हैं। आमिर के लिए तो ये जैसे डबल धमाका है, क्योंकि एक तरफ उनके लगान ने बड़े पर्दे पर 25 साल पूरे कर लिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आमिर खान प्रोडक्शन भी अपनी सिल्वर जुबली बना रहा है। आमिर खान ने इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी। इस पार्टी में आमिर के साथ जश्न मनाने के लिए बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां जुटी। देखिए कौन कौन पहुंचा इस पार्टी में।

0: जब फिल्मों में कामयाबी के 25 साल का जश्न मनाया तो उन्हें बधाई देने के लिए सितारों की महफिल सज गई। ये जश्न सिर्फ आमिर खान प्रोडक्शन का ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने का भी था। बड़े पर्दे पर 25 साल की कामयाबी को आमिर ने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की सिल्वर जुबली पर आमिर ने एक खास इवेंट रखा। इस इवेंट में बड़े पर्दे की तमाम जानी मानी हस्तियां पहुंची। आमिर यहां अपनी होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ दिखे। इस पार्टी में आमिर खान का पूरा परिवार भी पहुंचा। उनकी बेटी आयरा और बेटा जुनैद इस पार्टी में शामिल थे। आमिर की एक्स वाइफ किरण राव अपने बेटे के साथ इस इवेंट में पहुंची थी। इस जश्न के खास मेहमान थे सलमान खान, जो अपने बिल्कुल नए लुक के साथ यहां दिखे। सलमान का ये लुक सामने आते ही चर्चा होने लगी कि ये उनकी नई फिल्म का ही लुक है। आमिर ने सलमान को गले लगाकर उनका स्वागत किया और दोनों ने एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कुछ ही देर में करीना ने भी इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही काजोल, सानिया मल्होत्रा, रेखा, अली फजल, ऋचा चड्ढा भी इस जश्न का हिस्सा बने। जूही चावला यहां अपने पति के साथ पहुंची। जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी इस पार्टी में दिखे। लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, राजकुमार ईरानी समेत तमाम जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस जश्न में शामिल थे। आमिर ने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी कई यादगार फिल्में बनाई हैं। आमिर की फिल्में हमेशा दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं और ऐसी ही फिल्में वो प्रोड्यूस भी करते हैं। 25 साल के सफर में आमिर खान प्रोडक्शन ने कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। आमिर खान प्रोडक्शन की सिल्वर जुबली के मौके पर उन तमाम फिल्मों को याद भी किया गया जो बड़े पर्दे पर आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा खास बन गया है। ब्रासिलावा पहुंचते ही उनका गमजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत की सबसे खास बात रही भारतीय और स्लोवाक संस्कृति का शानदार मेल। यहां मशहूर ग्रुप ने अपने अंदाज में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की प्रस्तुति दी, जिसने सभी का दिल जीत लिया।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या आपको बार बार जीवन में धोखा मिलता है? प्रेम, विवाह, रिश्ते, दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: बनी पौड़ी महाराज के कैची धाम में उमड़ा आस्था का जन समंदर। 62वां स्थापना दिवस के मौके पर देश दुनिया से पहुंचे भक्त, बाबा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। तापमान में दर्ज की गई 4-6 डिग्री की गिरावट। आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छुटपुट बारिश। पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। आम के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट। अलग अलग राज्यों की 70 से ज्यादा वैरायटी मौजूद। गुलाब, खास, अंगूरदाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वागत की दीवानगी। अहमदाबाद से बीकानेर के बीच जल्द शुरू होगी नई ट्रेन। गुजरात और राजस्थान के हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत। दोनों राज्यों के बीच 740 किलोमीटर लंबा सफर होगा आसान। गिर जंगल सफारी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए गुड न्यूज। पर्यटकों को एक हफ्ते और मिलेगा शेरों के दीदार का मौका। सैलानियों के लिए अब 23 जून से बंद होगी गिर सेंचुरी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली गिरफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार या टीवी के पन्नों तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। पुरानी घटना को नहीं बताकर परोसा जाता है, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से बिल्कुल दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे पर खेने शेयर करते हैं और यहीं से अफवाहों का दौर शुरू होता है। तो ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की बात करेंगे जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जहां पर लाखों की भीड़ जुटी। क्या है इसकी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो हाल फिलहाल में पेरिस में भड़की हिंसा का है। इस वीडियो की सच्चाई भी आगे जानी। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोगों का हुजूम देखा जा सकता है और कुछ लोग वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
4: देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के नाम पर अब 6 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मानकर कई यूजर्स शेयर कर रहे हैं। वीडियो में आजादी के नारे भी सुने जा सकते हैं। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो अपलोड करते हुए लिखा, ओ माय गॉड, इतनी भीड़ तो किसी नेता मंत्री की रैली में भी नहीं होती होगी। कुछ भी हो, लेकिन एक नौजवान ने आज देश की राजधानी को हिला डाला। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में सबसे बड़ी भीड़। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में हजारों की भीड़ देखी जा सकती है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का ये वीडियो है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को ध्यान से देखा। इसमें हमें जंतर मंतर वेधशाला के अंदर प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आई। यहां ऐसा संभव है कि वेधशाला के अंदर प्रदर्शनकारियों की एंट्री संभव नहीं थी। जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये प्रदर्शन स्थल के पास स्थित है। यहां टिकट के जरिए ही एंट्री होती है। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए बाकायदा एक जगह तय की गई है, स्थान पर प्रदर्शन होता है और यहां पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत लेनी होती है। इसके लिए बाकायदा पुलिस की गाइडलाइंस भी हैं। जंतर मंतर वेधशाला का एंट्री गेट दूसरी ओर है। जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल और वेधशाला के बीच में टॉलस्टॉय मार्ग है जहां पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम को वीडियो में ऐसी कोई भी गलती नजर नहीं आए जिससे हमें इसके असली होने पर शक हो। मसलन कि यदि फोटो को जूम करके देखने पर वीडियो में कई आकृतियां ऐसी नजर आ रही हैं, साथ ही साथ इसमें अलग से आवाज को भी जोड़ा गया, लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यह कि अगर वीडियो सच्चा है तो उसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। देखिए सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में।
4: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखने पर हमें इसके असली होने पर संदेह हुआ। मसलन फोटो को जूम करके देखने पर वीडियो में कई आकृतियां एक ही जैसी दिख रही हैं। इमेज में अलग से आवाज जोड़कर इस वीडियो को बनाया गया है। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक वेरीफाइड इंस्टाग्राम हैंडल पर ये मिला। इसे 6 जून 2026 को अपलोड किया गया था। वीडियो के कमेंट में बड़ी संख्या में लोगों ने इसे एआई से बना हुआ बताया था। हालांकि इस हैंडल पर इसे एआई लेबल के साथ पोस्ट किया गया है, जिसका मतलब हुआ कि कंटेंट को पूरा या उसके कुछ हिस्से को बनाने या उससे बेहतर करने में एआई का इस्तेमाल हुआ है। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए एआई डिटेक्शन टूल्स की मदद ली। हमने वायरल वीडियो के कई स्क्रीनशॉट्स निकाले। दो स्क्रीनशॉट को हाइव मॉडरेशन टूल पर इसे स्कैन किया गया। इसके एनालिसिस में वायरल वीडियो के 70.2% एआई से बनाए जाने की अधिकतम संभावना की पुष्टि हुई। जांच के दौरान एक दूसरे एआई डिटेक्शन टूल साइट इंजन का भी इस्तेमाल किया गया। इस टूल के नतीजों ने भी वायरल वीडियो के 99% तक एआई से बने होने की संभावना जताई। इसके लिए भी हमने स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो एआई एडिटेड है। हालांकि ये सही है कि 6 जून के सीजेपी के प्रदर्शन में जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वायरल वीडियो फेक है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी के चैंपियन लीग जीतने के बाद पेरिस में हिंसा भड़क गई थी और इसी घटना से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है, जिसमें जलती गाड़ियां बस स्टैंड पर तोड़फोड़ के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
5: तीस मई की रात को पेरिस पीएसजी के चैंपियंस लीग जीतने की खबर सामने आने के बाद पेरिस समेत फ्रांस के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई। जश्न मनाने के दौरान उपद्रवियों ने कुछ जगहों पर दुकानों में भी तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इसके अलावा कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। फ्रेंच पुलिस ने इस मामले में करीब 780 लोगों को हिरासत में लिया था। इसी घटना से जोड़कर सोशल मीडिया पर 37 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शुरुआती 18 सेकंड में एक सड़क पर कई गाड़ियां पलटी और उनमें से कुछ में आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है। आगे के हिस्से में भीड़ एक बस और ट्राम स्टेशन को तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए इसे पेरिस में हुई हालिया हिंसा का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में जलती गाड़ियों और बस स्टैंड पर तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। लोग गुस्से में गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। पीएसजी के चैंपियंस लीग जीतने के बाद पेरिस में हिंसा भड़क गई, इस दावे का साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने का वायदा किया है, इसीलिए हमने इसकी पड़ताल के लिए एक एक फ्रेम को गौर से देखा। हाँ, ये बात सच है कि 30 मई की रात को पेरिस के सेंट जर्मेन चैंपियन लीग जीतने की खबर सामने आने के बाद पेरिस समेत फ्रांस के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी। जश्न मनाने के दौरान उपद्रवियों ने कुछ जगहों पर दुकानों में भी तोड़फोड़ की थी, उसमें आग लगाई थी। इसके अलावा कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया था, लेकिन ये वीडियो उसी हिंसा से जुड़ा हुआ था, ये जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रही वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में तोड़फोड़ मचा रहे लोगों के कपड़ों पर गया। लोग जैकेट पहने हुए हैं, कोट पहने हुए, टोपी लगाए हैं, मफलर लगाए हुए हैं। अगर वीडियो 30 मई का होता तो इस दौरान फ्रांस में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। फ्रांस में मई का महीना साल के सबसे बेहतरीन समय में से एक होता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है, बसंत का मौसम होता है, दिन में खुशमा धूप, शाम में हल्की ठंडी होती है, बारिश कभी कभार हो जाती है। मतलब ये कि वायरल वीडियो हाल फिलहाल का तो नहीं हो सकता, लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो हाल फिलहाल का है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं किसी पुराने वीडियो को जानबूझकर नया एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
6: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो एक पत्रकार के एक्स अकाउंट से 24 दिसंबर 2022 को पोस्ट किया हुआ मिला। इसके अलावा हमें एक फेसबुक अकाउंट से 25 दिसंबर 2022 को अपलोड किया गया दूसरा वीडियो भी मिला, जिसमें वायरल वीडियो से जुड़े दृश्य मौजूद थे और इसे रेनी बोइसरी नाम के एक पत्रकार ने रिपोर्ट किया था। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे पेरिस के कोर्डिश कल्चरल सेंटर के सामने हुए हमले के बाद हिंसा भड़कने का बताया गया था। इसके बाद हमने आग के दृश्यों की पड़ताल की, जिसमें भीड़ एक बस और ट्राम स्टेशन तोड़ती दिखाई दे रही है। रिवर्स सर्च में हमें ये वीडियो एक फेसबुक अकाउंट से 25 दिसंबर 2022 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे पेरिस का बताया गया था। जांच में हमें एक यूरोपियन मीडिया आउटलेट की वेबसाइट पर भी 24 दिसंबर 2022 को प्रकाशित रिपोर्ट में वायरल वीडियो से जुड़े दृश्यों वाली तस्वीर मिली। ये रिपोर्ट 23 दिसंबर 2022 को पेरिस में कुर्दिश कल्चरल सेंटर पर हुए हमले के बाद पेरिस में भड़की हिंसा की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 23 दिसंबर 2022 को पेरिस में मौजूद कुर्दिश कल्चरल सेंटर के पास गोलीबारी हुई थी और इसमें करीब 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर हिंसा भड़क गई थी। यह हमला 69 वर्षीय विलियम एम नाम के एक शख्स ने किया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पेरिस में हिंसा भड़कने के दावे से शेयर हो रहे इस वीडियो में मौजूद दोनों ही दृश्य हालिया नहीं बल्कि करीब 3 साल पुराने हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
7: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio. Now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
3: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इन दिनों सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक रिक्शे वाले भैया खूब छाए हुए हैं। इनका नाम मोहम्मद असलम है, जिन्हें लोग इंटरनेट पर असलम रिक्शा वाला के नाम से जानते हैं। दरअसल इस रिक्शे वाले का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो विदेशी पर्यटकों से कोई टूटी फूटी नहीं बल्कि एकदम फर्राटेदार स्पेनिश और अंग्रेजी में बतियाते दिख रहे हैं। असलम के इस हुनर को देखकर न सिर्फ विदेशी बल्कि देश की जनता भी हैरान है। असलम पिछले 17 सालों से पुरानी दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चला रहे हैं। वो सिर्फ सवारी को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम नहीं करते बल्कि उनके लिए एक टूर गाइड भी बन जाते हैं। वो विदेशी मेहमानों को दिल्ली के इतिहास की कहानियाँ सुनाते हैं, उन्हें घूमने और फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगहों की सलाह देते हैं। साड़ी में सजी एक लड़की ने ऐसा शानदार डांस किया कि पूरा समारोह तालियों और सीटियों से गूंज उठा। उसके दमदार मूव्स, बेहतरीन एक्सप्रेशंस और ग्रेसफुल अंदाज ने सभी का दिल जीत लिया। लड़की का डांस केवल स्टेप्स तक सीमित नहीं था बल्कि उसके एक्सप्रेशंस भी बेहद आकर्षक थे। गाने के हर बोल और हर बीट के साथ उसने जिस तरह तालमेल बिठाया, उसने प्रेजेंटेशन को और भी खास बना दिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में एक ऐसा कछुआ दिखाई दे रहा है जिसके एक नहीं बल्कि दो दो मुंह हैं। जिसने भी ये वीडियो देखा वो दंग रह गया। वायरल वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपने हाथ में एक छोटा सा कछुआ पकड़े नजर आता है। पहली नजर में तो ये बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही कछुए का अगला हिस्सा सामने आता है, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस अनोखे कछुए के दो मुंह और चार आंखें हैं। दिलचस्प बात ये है कि कछुए के दोनों मुंह पूरी तरह एक्टिव हैं। जब वो शख्स अपनी उंगली कछुए के मुंह के पास ले जाता है तो दोनों मुंह उसे पकड़ने के लिए एक साथ खुल जाते हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में देश के कई हिस्सों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस प्रेरणादायक वीडियो को उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जो इन दिनों देश के कई हिस्सों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तेज धूप और तपती गर्मी के बीच एक बंदर बेहद प्यासा नजर आता है। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकता है और आखिरकार उसे एक सार्वजनिक पानी का नल दिखाई देता है। इसके बाद जो सीन कैमरे में कैद होता है वो हर किसी को हैरान कर देता है। बंदर नल के पास पहुंचकर बड़ी सहजता से उसे खोलता है। ऐसा लगता है मानो उसे पूरी तरह पता हो कि पानी कैसे निकाला जाता है। नल खुलते ही वो आराम से पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ तक तो सीन नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो इस वीडियो को खास बनाता है। पानी पीने के बाद बंदर तुरंत वहाँ से नहीं जाता, वो कुछ पल रुकता है, फिर अपने हाथों से नल की टोटी बंद कर देता है। उसकी छोटी सी हरकत लोगों के लिए बड़ी सीख बन गई। जहाँ अक्सर इंसान सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, वहीं इस जानवर ने पानी की एक एक बूंद की अहमियत समझते हुए उसे बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर एक उदास और गहरी सोच में डूबे गोरिल्ले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को अपने घर का क्लेश याद आ रहा है। वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में एक नर गोरिल्ला तेजी से भागता दिखाई देता है, जबकि उसके पीछे एक मादा गोरिल्ला गुस्से में उसका पीछा कर रही होती है। पूरा सीन ऐसा लगता है मानो दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद हो गया हो और मेल गोरिल्ला वहां से जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो इंटरनेट यूजर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। इसमें गोरिल्ला अकेले घास पर बैठा दिखाई देता है। उसका चेहरा बेहद गंभीर है, एक हाथ ठुड्डी के नीचे टिका हुआ है और उसकी नजरें कहीं दूर जीरो में खोई हुई हैं। ऐसा लगता है मानो वो अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब बैठाकर किसी गहरे कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि कुछ सतर्क सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही ये जानकारी शेयर कर दी कि वीडियो के दोनों हिस्से अलग अलग जगहों के हैं और अलग अलग समय के हैं, और उन्हें जोड़कर एक नई कहानी बनाई गई।
9: लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया ने इस गोरिल्ला के लिए अपनी अलग ही कहानी गढ़ ली थी और लोग उसे कियोमासा की वैवाहिक परेशानी का नाम देने लगे। प्यार में दिल टूटने की कहानियां तो आपने इंसानों की बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी बिल्ली का हार्ट ब्रेक देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार और भावुक कर देने वाला वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी बिल्ली से होती है। बिल्ली अपने मुंह में एक छोटे से चूहे को दबाए हुए नजर आती है, जिसे लोग गिफ्ट या तोहफा बता रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी खास को एक तोहफा देने के लिए उत्साहित होकर वहाँ पहुँची हो। बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर जाती दिखाई देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार एक बड़े सरप्राइज से होने वाला है। जैसे ही बिल्ली आगे पहुंचती है, उसकी नज़र दूसरी बिल्लियों पर पड़ती है। दोनों बिल्लियां एक दूसरे के साथ बेहद प्यार भरे अंदाज में समय बिताती दिखाई देती हैं। ये दृश्य देखकर पहली बिल्ली कुछ पल के लिए रुक जाती है। वीडियो में उसका रिएक्शन ऐसा लगता है जैसे उसे अचानक एहसास हो गया हो कि जिस खास के लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी, वो अब किसी और के साथ खुश है। हालांकि जानवरों की भावनाओं को इंसानों की तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन वीडियो का ये पल लोगों को काफी दिलचस्प लग रहा है। वीडियो का सबसे भावुक और मजेदार हिस्सा तब आता है जब बिल्ली बिना कोई शोर किए अपना गिफ्ट जमीन पर रख देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से वापस लौट जाती है। इन दिनों पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच यूके के एक जू ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जा रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हाथी के बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के प्रति उसकी जिज्ञासा और मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही है। यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों का भी खूब ध्यान आकर्षित कर रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़ी वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती रहती है। कभी किसी जानवर की मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत लेती है, तो कभी जंगल के जीवों की ताकत और आक्रामक अंदाज से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर छा जाते हैं। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कई हाथी एक घिरे हुए प्लॉट के अंदर दिखाई देते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन कुछ ही पलों में एक हाथी ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं। हाथी सामने बनी दीवार की ओर बढ़ता है और पूरी ताकत के साथ उसे जोरदार धक्का मार देता है। ये धक्का इतना जोरदार था कि मजबूत दिखाई देने वाली दीवार कुछ ही सेकंड में ढह जाती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दीवार गिरने के बाद हाथियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इसके बाद वो आराम से उस स्थान से बाहर निकल जाते हैं। हाथी की ताकत और उसके आत्मविश्वास को देखकर लोग दंग रह गए। आमतौर पर ऐसी दीवारों को तोड़ने के लिए मशीनों या भारी उपकरणों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस हाथी ने केवल एक जोरदार धक्के से पूरी दीवार को गिरा दिया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
2: और अब बात आमिर खान की फिल्म लगान की करते हैं। आमिर के लिए तो ये जैसे डबल धमाका है, क्योंकि एक तरफ उनके लगान ने बड़े पर्दे पर 25 साल पूरे कर लिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आमिर खान प्रोडक्शन भी अपनी सिल्वर जुबली बना रहा है। आमिर खान ने इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी। इस पार्टी में आमिर के साथ जश्न मनाने के लिए बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां जुटी। देखिए कौन कौन पहुंचा इस पार्टी में।

0: ने जब फिल्मों में कामयाबी के 25 साल का जश्न मनाया तो उन्हें बधाई देने के लिए सितारों की महफिल सज गई। ये जश्न सिर्फ आमिर खान प्रोडक्शन का ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने का भी था। बड़े पर्दे पर 25 साल की कामयाबी को आमिर ने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की सिल्वर जुबली पर आमिर ने एक खास इवेंट रखा। इस इवेंट में बड़े पर्दे की तमाम जानी मानी हस्तियां पहुंची। आमिर यहां अपनी होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ दिखे। इस पार्टी में आमिर खान का पूरा परिवार भी पहुंचा। उनकी बेटी आयरा और बेटा जुनैद इस पार्टी में शामिल थे। आमिर की एक्स वाइफ किरण राव अपने बेटे के साथ इस इवेंट में पहुंची थी। इस जश्न के खास मेहमान थे सलमान खान, जो अपने बिल्कुल नए लुक के साथ यहां दिखे। सलमान का यह लुक सामने आते ही चर्चा होने लगी कि ये उनकी नई फिल्म का ही लुक है। आमिर ने सलमान को गले लगाकर उनका स्वागत किया और दोनों ने एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कुछ ही देर में करीना ने भी इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही काजोल, सानिया मल्होत्रा, रेखा, अली फजल, ऋचा चड्ढा भी इस जश्न का हिस्सा बने। जूही चावला यहां अपने पति के साथ पहुंची। जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी इस पार्टी में दिखे। लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, राजकुमार ईरानी समेत तमाम जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस जश्न में शामिल थे। आमिर ने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी कई यादगार फिल्में बनाई हैं। आमिर की फिल्में हमेशा दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं और ऐसी ही फिल्में वो प्रोड्यूस भी करते हैं। 25 साल के सफर में आमिर खान प्रोडक्शन ने कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। आमिर खान प्रोडक्शन की सिल्वर जुबली के मौके पर उन तमाम फिल्मों को याद भी किया गया जो बड़े पर्दे पर आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सनी देओल की गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ कमाई के रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े बल्कि थिएटर्स में किसी फेस्टिवल जैसा माहौल बना दिया था। गदर एक प्रेम कथा ने आज ही के दिन 25 साल पहले जैसे ही पर्दे पर दस्तक दी एक कोहराम सा मचा दिया था। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे सरहदों की दीवारें नहीं रोक सकी और एक ऐसा एक्शन जिसने दर्शकों को कुर्सियों से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया था। आज 25 साल पूरे होने पर गदर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुकी है।
2: मुझे वो सबसे पहली मेमोरी आती है कि जैसे ही गदर का पोस्टर देखता हूँ तो या कोई भी चीज़, गदर तो इतना है कि गदर वन अपने आप में उसकी मेकिंग ही अपने आप में एक फिल्म है। वो तो बहुत सारी चीज़ें, मगर एक चीज़, हम अहमदाबाद से आए थे, रात को वहाँ पे कुछ शो हुआ था, प्रेस शो था। सुबह सुबह मैं उठा, थर्सडे मॉर्निंग थी, 9:30 बजे, सुबह सुबह 6 बजे मैं आया था, सोफे पर ही सो गया था, अंदर बेडरूम में भी नहीं गया। 9:30 बजे एक फ़ोन की घंटी बजती, उन दिनों बड़े बड़े फ़ोन होते थे, ट्रिंग टैंग टिंग, फ़ोन उठाया, बोले वो एक उड़ीसा से एक थिएटर से फ़ोन है, मैनेजर से फ़ोन है। मैनेजर थर्सडे को पिक्चर रिलीज हो जाती थी उड़ीसा वगैरह में, बहुत सारी जगह। तो उसने बोला आपने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, क्या फिल्म बना दी है, क्या हो गया? मैंने कहा क्या हुआ क्या? अरे बोले बवाल हो गया है, 3,000 आदमी अंदर है, 3,000 आदमी बाहर है। मैंने कहा 3,000 कैसे को घुस गए थिएटर के अंदर, मैं क्या करूं, इतने ही बाहर है, पब्लिक पागल हो गए। पब्लिक को कैसे पता लगा? बोले इंटरवल पे सब मोबाइल पे फोन कर दिया सब लोगों ने और पब्लिक अगले शो के लिए आ गई है, पागल हो गए लोग, पैसे फेंक रहे हैं, मेरा थिएटर टूट जाएगा, फूट जाएगा। मैंने कहा पिक्चर की तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो? बोले मैं कह रहा हूँ ऐसी पिक्चर आज तक कभी बनी नहीं है, इसलिए मैं एक्साइटमेंट में आपका नंबर कहाँ से ढूंढा और आपको फोन किया है। थिएटर ही मेरा टूटे, टूटे परवाह नहीं, लेकिन पिक्चर कमाल है। ये इंटरवल पे मेरे को इस गदर का रिएक्शन था। अभी तो सिर्फ इंटरवल ही हुआ था, हैंडपंप तक पहुंचे ही नहीं थे। सालों से चल रहा था गदर टू बनानी है, जीते की कहानी बनानी है, जीते को आगे, जीते बड़ा हो रहा है, पर कहानी नहीं आ रही थी। गदर वन गदर टू में ऐसे नहीं बना सकता था कि गदर वन के नाम को मुझे इनकैश करना, जब तक मेरे पास कहानी नहीं आएगी मैं गदर टू नहीं बनाऊंगा। बस गुजरते गए, अब लोग बोलने लगे अभी तो उत्कर्ष भी बड़ा हो गया, अब तो बना लो, अब तो जीते को आप उत्कर्ष ही ले सकते हो। अरे मैंने कहा भाई उत्कर्ष ले सकता हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी आ जाए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, समझे ना। अगर 10 साल पहले भी कहानी आ जाती थी किसी और को जीते लेके मैं बना देता, उत्कर्ष बच्चा था, तो वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। वो तो मेरे लिए फिल्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं फिल्मकार पहले हूँ, बाप बाद में हूँ। हमेशा मैं सबको समझाता हूँ, लोग उल्टा सोचते हैं, शायद लोगों का मानसिकता ऐसी है, वो खुद ऐसे हैं तो ऐसे लिए सोचते हैं, मैं किसी को बदल तो नहीं सकता। तो बस जब कहानी आ गई, मुझे लगा एटम बम आ गया, तो मैंने फोड़ दिया।
3: और क्या फोड़ा, बट गदर 3 का कोई प्लानिंग है या?
2: बिल्कुल प्लानिंग है, गदर 3 की कहानी बदस्तूर चल रही है, वही बिल्कुल प्लानिंग है, गदर 3 की कहानी बदस्तूर चल रही है, वही। बाइबल की स्टोरी तो होनी चाहिए, क्योंकि गदर एक मेरी फिल्म नहीं है, गदर ऑडियंस की फिल्म है। गदर में जब भी बनाऊंगा, जब मुझे एज ए ऑडियंस लगेगा कि इससे बेटर नहीं हो सकती गदर 3, तभी बनाऊंगा। और मेरा काम चालू है, ऑडियंस को यही कहना चाहता हूं, बहुत जल्दी हो सकता है 2027 में या 26 में सम टाइम हम इसको अनाउंस करें।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
6: I have no idea how this election is going to play out,
5: or want to catch up on your team's live play-by-plays, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बनी पौड़ी महाराज के कैची धाम में उमड़ा आस्था का जन समंदर, 62वां स्थापना दिवस के मौके पर देश दुनिया से पहुंचे भक्त, बाबा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी, तापमान में दर्ज की गई 4 से 6 डिग्री की गिरावट, आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छुटपुट बारिश, पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। आम के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट, अलग अलग राज्यों की 70 से ज्यादा वैरायटी मौजूद, गुलाब, खास, अंगूरदाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वागत की दीवानगी। अहमदाबाद से बीकानेर के बीच जल्द शुरू होगी नई ट्रेन, गुजरात और राजस्थान के हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत, दोनों राज्यों के बीच 740 किलोमीटर लंबा सफर होगा आसान। गिर जंगल सफारी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए गुड न्यूज़, पर्यटकों को एक हफ्ते और मिलेगा शेरों के दीदार का मौका, सैलानियों के लिए अब 23 जून से बंद होगी गिर सेंचुरी।

0: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं मंगल से शुरू हो रहे मंगल दिनों की। 15 जून को अधिक मास समाप्त हो गया और इस तरह शुभ कार्यों पर जो रोक लगी थी वो भी खत्म हो गई। मंगल से शादी विवाह गृह प्रवेश और नया काम शुरू हो सकता है। आज आपको सबसे पहले जून और जुलाई में शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताएंगे जब आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही बात होगी अधिक मास की, जिसके खत्म होने के साथ कई दुर्लभ संयोग बने हैं। इनका घर परिवार और देश दुनिया पर असर होगा। जानकार मान रहे हैं कि इससे सुख समृद्धि और शांति आएगी। और इसी बीच भारत समेत पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब रहा अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने की खबर आ चुकी है। दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते पर सितारों की चाल का क्या असर होगा और इस बार क्या शांति पक्की होगी, इस पर भी आज बात होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे मंगल से शुरू रही मंगल बेला की।
1: मंगल बेला आई, गूंजेगी शादी की शहनाई। अधिक मास खत्म, विवाह के मुहूर्त शुरू। शादी के लिए जून में 8 मुहूर्त, जुलाई में शादी के दिन 4। बैंड बाजा बारात, मंगल से मंगल।
0: अधिक मास की समाप्ति के साथ ही मंगल बेला की शुरुआत हो रही है। दुर्लभ संयोग रहा कि अधिक मास के आखिरी दिन सोमवार के दिन अमावस्या भी रही। देश भर में गंगा और दूसरी पवित्र नदियों में के किनारे लाखों लोगों ने भक्ति भाव से स्नान ध्यान किया, पूजा अर्चना की। असल में ये संयोग 3 दशक के बाद आया है, जब अधिक मास सोमवार की अमावस्या के साथ खत्म हुआ हो। जानकार मान रहे हैं कि अधिक मास के बाद घर परिवार समाज और देश में सुख समृद्धि और शांति आएगी। देखिए हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ और प्रयागराज तक कैसे हुई पूजा अर्चना।
1: संगम की पवित्र धरती, गंगा का पवित्र जल, हाथ जोड़कर भगवान भास्कर की आराधना, आस्था की अद्भुत तस्वीरें हैं जो सोमवती अमावस्या पर प्रयागराज में नजर आई। बेहिसाब भीड़, अगाध श्रद्धा, संगम के तमाम घाटों पर स्नान के बाद पूजा पाठ, क्योंकि ऐसा संयोग कम ही होता है कि सोमवार की अमावस्या हो और साथ ही अधिक मास का आखिरी दिन। जानकारों के मुताबिक कई दशकों के बाद ये दुर्लभ संयोग हुआ है, इसीलिए प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
2: आज सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या को संगम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। सुबह से ही भक्त संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहां पर पूजा पाठ कर रही हैं और पूजा पाठ करने के बाद अपने देश और अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रही है। सुबह से ही महिलाएं सूर्य देवता की पूजा कर रही है और गंगा जल चढ़ा करके यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। माँ गंगा यहाँ पर सबको आशीर्वाद देती हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ लगी हुई है, पूजा पाठ किया जा रहा है और जो लोग हैं अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए भी यहाँ पर आते हैं और महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं, जिससे अपने उनके पति और बच्चों की लंबी उम्र हो और माँ गंगा से प्रार्थना करती हैं कि देश में और उनके घर में सुख शांति रहे।
1: प्रयागराज नहीं, देश के सभी तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों में सोमवार को ऐसा ही विहंगम दृश्य देखने को मिला। खासतौर पर माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य का लाभ भी मिलता है।
3: यही कामना है घर में सबको, परिवार सभी आशीर्वाद देती है। गंगा माँ सब मनोकामना लेकर उनकी मनोकामना गंगा माँ पूर्ण करती है सबके।
4: इस जन्म और उस जन्म के वो यहाँ गंगा माँ का स्नान करने समाप्त हो जाता है और हमारे हृदय भक्ति और सनातन धर्म का उद्गम यहीं से प्रारंभ होता है। जो एक महीने का अधिक मास का स्नान करता है भगवान श्री नारायण के चरणों में इस जन्म में सुख संपदा प्राप्त करता है और अंतिम चरण में भी वह मोक्ष प्राप्त करता है।
1: सोमवती अमावस्या का ज्यादा महत्व दो तीन वजहों से है। पहला तो ये कि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। संगम पर भी महिलाओं ने पीपल के पेड़ की दूध जल और अक्षत से पूजा की। पेड़ के चारों ओर कलावा लपेट कर परिक्रमा की गई।
5: आज के दिन जो भी कार्य किया जाएगा उसका हजार गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है और जो दान है या जो पुण्य है वो भी हजार गुना बढ़ जाता है ना। जैसे अगर आप किसी को 100 रुपया दिया तो हजारों हजार रुपये हो जाता है। इसी प्रकार से प्रयाग में जो भी की काम किया जाए, सोच समझ किया जाए, शांति के साथ किया जाए। आज के दिन लोग महिलाएं जाकर के पेपर में फेरी देंगी, भगवान विष्णु की पूजा करेंगी, पितरों के नाम से आज साल तर्पण किया जाता है। इसके करने से हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं और घर में जाकर माता पिता को प्रणाम करेंगे, उनकी सेवा की जाए तो भी फल प्राप्त होता है। आज जो भी गोदान करे या तर्पण करे जो भी कार्य करेगा उससे उसके घर के अंदर हर प्रकार की मर्यादा बनी रहेगी, कभी कोई कमी नहीं होगी। और प्रयाग में खास करके जो प्रयाग निवासी हैं बड़े भाग्यवान हैं।
1: सोमवती अमावस्या का दूसरा महत्व पितरों की शांति से जुड़ा है, इसीलिए संगम पर काले तिल मिले जल से पीपल की जड़ में तर्पण किया गया। मान्यता है कि तर्पण और दान से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या का संबंध भगवान शिव और पार्वती से भी है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ से न सिर्फ घरों में बल्कि समाज और देश में सुख शांति और समृद्धि आती है। हजारों की तादाद में जो आस्थावान संगम पर मौजूद थे उन्होंने घर परिवार में शांति के लिए पूजा अर्चना की। देश भर में भक्ति भाव से भरी ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि सोमवार को अधिक मास की अमावस्या का दुर्लभ संयोग बना। पुरुषोत्तम मास जिसका संबंध भगवान विष्णु से है और सोमवार जो भगवान शिव का दिन माना जाता है, दोनों का संयोग होने से हरिहर की संयुक्त कृपा मानी गई। जानकारों के मुताबिक ऐसा संयोग वर्ष 1999 में बना था, यानी 3 दशक बाद अधिक मास के आखिरी दिन सोमवार की अमावस्या आई है।
6: ऐसा कहा जाता है कि इस सोमवती अमावस्या में जो व्यक्ति हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड अथवा और अधिक कुंभ क्षेत्र अथवा किसी पवित्र नदी में स्नान करे, अन्यथा इन नदियों का पवित्र स्थानों का ध्यान करके घर में ही स्नान करे, तो वो इतना पुण्य फल प्राप्त कर लेता है जैसे स्वयं अश्वमेध यज्ञ कर लिया हो। और एक नहीं 1000 अश्वमेध यज्ञों का, कई लाख वाजपेयी यज्ञों का जो फल है वो सोमवती अमावस्या में इन कुंभ क्षेत्रों में या पवित्र नदियों में स्नान का कहा गया है। और आज सोमवार के दिन अमावस्या के दिन जो व्यक्ति स्नान करे, पितरों के लिए तर्पण करे और अपने पितरों के निमित्त शैया दान करे, ऐसा व्यक्ति अपने पितरों को तो अनंत काल के लिए स्वर्ग में विस्थापित कर देता है, स्वयं शरीर समाप्त होने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है और जीवन में सारे सुखों की कामना कर लेता है।
1: पवित्र पावन दिन पर हरिहर का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का हुजूम हरिद्वार के घाटों पर भी उमड़ा। कहीं भी तिल रखने तक की जगह नहीं थी। आरती आराधना, पूजा पाठ और दान पुण्य। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाने से यूं भी मोक्ष की मान्यता है, लेकिन ये स्नान खास तौर पर पितरों की शांति और सुख समृद्धि के लिए खास है। हरिद्वार की तरह भव्य तस्वीरें चित्रकूट से भी नजर आए। मान्यता ये है कि इस पवित्र मंदाकिनी नदी में भगवान राम ने वनवास के दौरान डुबकी लगाई थी और इसी राम घाट में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम ने बालक रूप में दर्शन दिए थे। इसीलिए हमेशा अमावस्या पर भक्त यहां आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। सोमवती अमावस्या का अवसर विशेष था, इसीलिए करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चित्रकूट में डुबकी लगाई और कामतनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की पूजा की और श्रद्धालुओं ने नदी के तट पर पार्थ पूजन किया। आज तक की ऐसी तस्वीरें भगवान राम की नगरी अयोध्या और बद्री विशाल से भी सामने आई हैं। अयोध्या में सरयू के पावन जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की, तो वहीं प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। बद्री विशाल के धाम पर यूं भी अधिक मास में पूजा पाठ का विशेष महत्व है, उस पर सोमवती अमावस्या का संयोग, इसलिए अलकनंदा तट पर मौजूद सप्त कुंड में पवित्र स्नान के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म कपाल पहुंचकर अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण किया। सोमवती अमावस्या के साथ अधिक मास भी समाप्त हो गया और शुभ कार्यों के लिए मंगल बेला की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, अयोध्या से मयंक शुक्ला और बद्रीनाथ से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: अधिक मास के समाप्त होने के साथ शुभ और मांगलिक काम की शुरुआत होने वाली है। पिछले 30 दिनों से शादी विवाह गृह प्रवेश पर रोक थी, लोगों ने नए काम की शुरुआत भी नहीं की, पर अब शादियों के शुभ मुहूर्त है और जून में 8 दिन और जुलाई में 4 दिन विवाह के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आगे 12 महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से होने वाले हैं।

0: जिस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो आ गई। अब जून से लेकर जुलाई तक शहनाई गूंजेगी। न सिर्फ शादी बल्कि तमाम मंगल कार्य जो रुके हुए थे उनका श्री गणेश होगा। कोई घर बसाएगा तो कोई नए घर में जाएगा, किसी की जिंदगी में नए काम की शुरुआत होगी। जो भी होगा शुभ होगा, मंगल होगा, क्योंकि 15 जून को अधिक मास समाप्त हो चुका है।
1: परंतु जैसे ही अधिक मास की अवधि समाप्त होती है वैसे ही शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाते हैं। तो अधिक ज्येष्ठ मास सोमवार को 15 जून 2026 दिन सोमवार को सुबह लगभग 9 बजे के बाद से समाप्त हो जा रहा है और शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आरंभ हो जा रही है। लेकिन उदयकालिक मान्यताओं के अनुसार 16 जून को यह माना जाएगा कि शुद्ध ज्येष्ठ मास आरंभ होगा और यहीं से शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाते हैं और चारों तरफ शहनाई की गूंज सुनाई देगी। विवाह होंगे, गृह प्रवेश के मुहूर्त मिलेंगे, तो यह समय बड़ा ही शुभ कारक हो जाएगा मांगलिक कार्यों के लिए।
0: हालांकि धार्मिक तौर पर अधिक मास या मलमास का महीना शुभ माना जाता है, लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए इसे अनुकूल नहीं समझा जाता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अधिक मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, यानी सूर्य इस अवधि में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करता। सौर चक्र में इस संक्रमण विहीन अवधि के कारण इस मास को मलमास कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, इसलिए इस समय शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय और दूसरे मांगलिक काम रोक दिए जाते हैं। लेकिन अधिक मास का एक दूसरा पक्ष भी है। मान्यता है कि इस माह को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना सर्वोत्तम नाम यानी पुरुषोत्तम प्रदान किया, तब से अधिक मास पुरुषोत्तम मास हो गया और इस दौरान पूजा, जप तप, व्रत और दान का महत्व कहीं ज्यादा हो गया। लेकिन जहाँ तक बात है शादी विवाह और नए काम की, तो उसके लिए अधिक मास अनुपयुक्त ही रहा। इस साल 17 मई से इसकी शुरुआत हुई थी। 30 दिनों बाद इसकी समाप्ति से यानी 16 जून से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के साथ मांगलिक कार्यों पर अब कोई रोक नहीं होगी। वैसे तो अधिक मास के समाप्त होते ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, पर विवाह के लिए सही मुहूर्त 19 जून से है। इसके बाद ये शादी ब्याह से जुड़े आयोजन देश भर में शुरू हो जाएंगे। पंचांग के अनुसार जून और जुलाई में मिलाकर 12 शुभ लग्न है, जिनमें जून में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 जून शादी के मुहूर्त हैं, जबकि जुलाई में 1, 6, 7 और 11 चार प्रमुख शुभ मुहूर्त हैं। यानी आने वाले 2 महीनों में कुल मिलाकर 12 ऐसे मुहूर्त हैं जो शुभ कार्यों खासकर शादी के लिए उत्तम है।
2: अभी जो समय है वह आपके शुभ और मांगलिक कार्यों का है और यह शुभ मांगलिक कार्य आपके जो है हरि शनि एकादशी से रुक जाएंगे। जिस दिन आपकी जो है लगभग 25 जुलाई को हरि शनि एकादशी है उस दिन रुक जाएंगे। इस बीच काफ़ी कुछ अच्छे जो है आपके आ रहे हैं। इसी बीच आपकी जो है निर्जला एकादशी आएंगी। इसी बीच 18 तारीख को गुरु का जो है पुष्य नक्षत्र में भ्रमण होना, आगे चल के आपकी जो है जुलाई में आपका जो आषाढ़ मास होगा तो उसमें गुप्त नवरात्रों का आना। तो कहने का तात्पर्य कि इस टाइम के अंतराल में काफी कुछ शुभ मांगलिक कार्य करने वाले मुहूर्त जो है प्राप्त हो रहे हैं।
3: सुंदर मुहूर्त है जिस दिन कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि पड़ेगी और आषाढ़ का समय होगा और इस समय एक बहुत बेहतरीन समय है जिस पर किया जा सकता है। 22 जून ध्यान रखिएगा, 20 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 26 जून और 27 जून, 29 जून, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई। अगर मैं 21 दिनों की स्पेशली बात करता हूं तो 7 जुलाई तक ये मैरिज को लेकर के बहुत शानदार दिवस है जिनके अंदर किया जा सकता है।
0: अधिक मास बीता तो विवाह के दिन आए, पर इसके लिए भी मुहूर्त सीमित है, क्योंकि 25 जुलाई से देव शयनी के साथ चतुर्मास शुरू हो जाएगा। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए अगले 4 महीनों तक मांगलिक कार्य फिर से बंद हो जाएंगे। इसके बाद देवउठनी एकादशी से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होगी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं और चतुर्मास का समापन होता है। लेकिन उससे पहले जून और जुलाई में मांगलिक कार्यों के 12 महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त हैं। जिन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी है उनके लिए तैयारी के भी अच्छे खासे दिन है, और जिन्हें अगले 4 महीने इंतजार नहीं करना उनके लिए भी अच्छा और सुविधाजनक मुहूर्त तय करने की देर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अधिक मास की समाप्ति के साथ एक बड़ी गुड न्यूज जंग के मोर्चे से भी आई है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बन गई है और दोनों देशों के रुख से माना जा रहा है कि 19 जून को शांति समझौते पर मुहर लग सकती है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, जो भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। तय है कि अब सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे देशों से सप्लाई दोबारा शुरू होने से हालात बेहतर होंगे।
5: साढ़े 3 महीने बाद मिडिल ईस्ट के क्षितिज पर उम्मीद का नया सवेरा हुआ है। 28 फरवरी 2026 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर पहली बार पूर्ण विराम लग गया है। यूएस ईरान डील फाइनल होने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों समेत पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर शांति समझौते की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ये शानदार समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का पैगाम लेकर आएगा। इससे पहले कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। इस रीजन के नेताओं को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो असली शांति ला सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि डील पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में 3.5 महीने से जारी तनाव को खत्म होने का इंतजार पूरी दुनिया को था, क्योंकि इस जंग की वजह से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। कच्चे तेल के दाम न सिर्फ बेतहाशा बढ़ चुके थे बल्कि आपूर्ति भी चरमरा गई थी। इससे दुनिया के कई देशों की आर्थिक व्यवस्था जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रही थी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत समेत पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में तेल गैस का जबरदस्त संकट पैदा हो गया था।
6: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर 19 जून को होने हैं, लेकिन इस फैसले से पूरी दुनिया ने खुशी और राहत महसूस की है। तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने अपने संदेश भेजकर इसका स्वागत किया है और सबसे ज्यादा राहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की खबर से महसूस की जा रही है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल और क्रूड का कारोबार होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से अब तमाम जहाजों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सकेगी और तमाम सी फेयरर्स जो इस इलाके में फंसे हैं अपने घरों को सकुशल लौट पाएंगे। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है 19 जून का, जब ईरान और अमेरिका इस हस्ताक्षर के साथ शांति का एक नया पैगाम देंगे और लंबे वक्त से आर्थिक संकट झेल रहे देशों को भी इससे राहत प्राप्त होगी।
5: भारत भी इस संघर्ष विराम और समझौते का न सिर्फ बेसब्री से इंतजार कर रहा था बल्कि इसके लिए कूटनीतिक कोशिशें भी कर रहा था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस डील का तहे दिल से स्वागत किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डील का स्वागत करते हुए
7: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune in has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
10: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा खास बन गया है। ब्रासिलावा पहुंचते ही उनका गमजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत की सबसे खास बात रही भारतीय और स्लोवाक संस्कृति का शानदार मेल। यहां मशहूर ग्रुप ने अपने अंदाज में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की प्रस्तुति दी, जिसने सभी का दिल जीत लिया।

0: एक्सीलेंट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौत

0: जीवन में धोखा मिलता है, प्रेम विवाह रिश्ते दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: बनी पौड़ी महाराज के कैची धाम में उमड़ा आस्था का जन समंदर, 62वां स्थापना दिवस के मौके पर देश दुनिया से पहुंचे भक्त, बाबा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी, तापमान में दर्ज की गई 4 से 6 डिग्री की गिरावट, आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छुटपुट बारिश, पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। आम के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट, अलग अलग राज्यों की 70 से ज्यादा वैरायटी मौजूद, गुलाब खास, अंगूरदाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वागत की दीवानगी। अहमदाबाद से बीकानेर के बीच जल्द शुरू होगी नई ट्रेन, गुजरात और राजस्थान के हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत, दोनों राज्यों के बीच 740 किलोमीटर लंबा सफर होगा आसान। गिर जंगल सफारी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए गुड न्यूज, पर्यटकों को एक हफ्ते और मिलेगा शेरों के दीदार का मौका, सैलानियों के लिए अब 23 जून से बंद होगी गिर सेंचुरी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे परखे ने सच मान लेते, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार या टीवी के पन्नों तक सीमित नहीं है, यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है, पुरानी घटना को नहीं बताकर परोसा जाता है, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से बिल्कुल दूर होती है, नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे परखे ने शेयर करते हैं और यहीं से अफवाहों का दौर शुरू होता है, तो ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं, वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की बात करेंगे जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जहां पर लाखों की भीड़ जुटी, क्या है इसकी सच्चाई आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो हाल फिलहाल में पेरिस में भड़की हिंसा का है, इस वीडियो की सच्चाई भी आगे जानी। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोगों का हुजूम देखा जा सकता है और कुछ लोग वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है देखिए इस रिपोर्ट में।
4: देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर

0: प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के नाम पर अब 6 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मानकर कई यूजर्स शेयर कर रहे हैं। वीडियो में आजादी के नारे भी सुने जा सकते हैं।
1: हम लेके रहेंगे।
0: एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो अपलोड करते हुए लिखा, ओ माय गॉड, इतनी भीड़ तो किसी नेता मंत्री की रैली में भी नहीं होती होगी। कुछ भी हो, लेकिन एक नौजवान ने आज देश की राजधानी को हिला डाला। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में सबसे बड़ी भीड़। सोशल मीडिया की अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में हजारों की भीड़ देखी जा सकती है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का ये वीडियो है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को ध्यान से देखा। इसमें हमें जंतर मंतर वेधशाला के अंदर प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आई। यहां ऐसा संभव है कि वेधशाला के अंदर प्रदर्शनकारियों की एंट्री संभव नहीं थी। जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये प्रदर्शन स्थल के पास स्थित है। यहां टिकट के जरिए ही एंट्री होती है। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए बाकायदा एक जगह तय की गई है, स्थान पर प्रदर्शन होता है और यहां पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत लेनी होती है। इसके लिए बाकायदा पुलिस की गाइडलाइंस भी हैं। जंतर मंतर वेधशाला का एंट्री गेट दूसरी ओर है। जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल और वेधशाला के बीच में टॉलस्टॉय मार्ग है, जहां पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम को वीडियो में ऐसी कोई भी गलती नजर नहीं आए जिससे हमें इसके असली होने पर शक हो। मसलन कि यदि फोटो को जूम करके देखने पर वीडियो में कई आकृतियां ऐसी नजर आ रही हैं, साथ ही साथ इसमें अलग से आवाज को भी जोड़ा गया है। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो उसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। देखिए सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखने पर हमें इसके असली होने पर संदेह हुआ। मसलन फोटो को जूम करके देखने पर वीडियो में कई आकृतियां एक ही जैसी दिख रही हैं। इमेज में अलग से आवाज जोड़कर इस वीडियो को बनाया गया है। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक वेरिफाइड इंस्टाग्राम हैंडल पर ये मिला। इसे 6 जून 2026 को अपलोड किया गया था। वीडियो के कमेंट में बड़ी संख्या में लोगों ने इसे एआई से बना हुआ बताया था। हालांकि इस हैंडल पर इस एआई लेबल के साथ पोस्ट किया गया है, जिसका मतलब हुआ कि कंटेंट को पूरा या उसके कुछ हिस्से को बनाने या उससे बेहतर करने में एआई का इस्तेमाल हुआ है। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए एआई डिटेक्शन टूल्स की मदद ली। हमने वायरल वीडियो के कई स्क्रीनशॉट्स निकाले। दो स्क्रीनशॉट को हाइव मॉडरेशन टूल पर इसे स्कैन किया गया। इसके एनालिसिस में वायरल वीडियो के 70.2% एआई से बनाए जाने की अधिकतम संभावना की पुष्टि हुई। जांच के दौरान एक दूसरे एआई डिटेक्शन टूल साइट इंजन का भी इस्तेमाल किया गया। इस टूल के नतीजों ने भी वायरल वीडियो के 99% तक एआई से बने होने की संभावना जताई। इसके लिए भी हमने स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो एआई एडिटेड है। हालांकि ये सही है कि 6 जून के सीजेपी के प्रदर्शन में जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वायरल वीडियो फेक है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी के चैंपियन लीग जीतने के बाद पेरिस में हिंसा भड़क गई थी और इसी घटना से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है, जिसमें जलती गाड़ियां बस स्टैंड पर तोड़फोड़ के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
3: 30 मई की रात को पेरिस पीएसजी के चैंपियंस लीग जीतने की खबर सामने आने के बाद पेरिस समेत फ्रांस के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई। जश्न मनाने के दौरान उपद्रवियों ने कुछ जगहों पर दुकानों में भी तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इसके अलावा कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। फ्रेंच पुलिस ने इस मामले में करीब 780 लोगों को हिरासत में लिया था। इसी घटना से जोड़कर सोशल मीडिया पर 37 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शुरुआती 18 सेकंड में एक सड़क पर कई गाड़ियां पलटी और उनमें से कुछ में आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है। आगे के हिस्से में भीड़ एक बस और ट्राम स्टेशन को तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए इसे पेरिस में हुई हालिया हिंसा का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जलती गाड़ियों और बस स्टैंड पर तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। लोग गुस्से में गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। पीएसजी के चैंपियंस लीग जीतने के बाद पेरिस में हिंसा भड़क गई, इस दावे का साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने का वायदा किया है, इसीलिए हमने इसकी पड़ताल के लिए एक एक फ्रेम को गौर से देखा। हाँ, ये बात सच है कि 30 मई की रात को पेरिस के सेंट जर्मेन चैंपियन लीग जीतने की खबर सामने आने के बाद पेरिस समेत फ्रांस के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी। जश्न मनाने के दौरान उपद्रवियों ने कुछ जगहों पर दुकानों में भी तोड़फोड़ की थी, उसमें आग लगाई थी। इसके अलावा कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया था, लेकिन ये वीडियो उसी हिंसा से जुड़ा हुआ था ये जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रही वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में तोड़फोड़ मचा रहे लोगों के कपड़ों पर गया। लोग जैकेट पहने हुए हैं, कोट पहने हुए, टोपी लगाए हैं, मफलर लगाए हुए हैं। अगर वीडियो 30 मई का होता तो इस दौरान फ्रांस में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। फ्रांस में मई का महीना साल के सबसे बेहतरीन समय में से एक होता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है, बसंत का मौसम होता है, दिन में खुशमा धूप, शाम में हल्की ठंडी होती है, बारिश कभी कभार हो जाती है। मतलब ये कि वायरल वीडियो हाल फिलहाल का तो नहीं हो सकता, लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो हाल फिलहाल का है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं किसी पुराने वीडियो को जानबूझकर नया एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में देखिए।
3: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो एक पत्रकार के एक्स अकाउंट से 24 दिसंबर 2022 को पोस्ट किया हुआ मिला। इसके अलावा हमें एक फेसबुक अकाउंट से 25 दिसंबर 2022 को अपलोड किया गया दूसरा वीडियो भी मिला, जिसमें वायरल वीडियो से जुड़े दृश्य मौजूद थे और इसे रेनी बोइसरी नाम के एक पत्रकार ने रिपोर्ट किया था। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे पेरिस के कोर्डिश कल्चरल सेंटर के सामने हुए हमले के बाद हिंसा भड़कने का बताया गया था। इसके बाद हमने आग के दृश्यों की पड़ताल की, जिसमें भीड़ एक बस और ट्राम स्टेशन तोड़ती दिखाई दे रही है। रिवर्स सर्च में हमें ये वीडियो एक फेसबुक अकाउंट से 25 दिसंबर 2022 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे पेरिस का बताया गया था। जांच में हमें एक यूरोपियन मीडिया आउटलेट की वेबसाइट पर भी 24 दिसंबर 2022 को प्रकाशित रिपोर्ट में वायरल वीडियो से जुड़े दृश्यों वाली तस्वीर मिली। ये रिपोर्ट 23 दिसंबर 2022 को पेरिस में कुर्दिश कल्चरल सेंटर पर हुए हमले के बाद पेरिस में भड़की हिंसा की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 23 दिसंबर 2022 को पेरिस में मौजूद कुर्दिश कल्चरल सेंटर के पास गोलीबारी हुई थी और इसमें करीब 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर हिंसा भड़क गई थी। यह हमला 69 वर्षीय विलियम एम नाम के एक शख्स ने किया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पेरिस में हिंसा भड़कने के दावे से शेयर हो रहे इस वीडियो में मौजूद दोनों ही दृश्य हालिया नहीं बल्कि करीब 3 साल पुराने हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
3: इन दिनों सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक रिक्शे वाले भैया खूब छाए हुए हैं। इनका नाम मोहम्मद असलम है, जिन्हें लोग इंटरनेट पर असलम रिक्शा वाला के नाम से जानते हैं। दरअसल इस रिक्शे वाले का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो विदेशी पर्यटकों से कोई टूटी फूटी नहीं बल्कि एकदम फर्राटेदार स्पेनिश और अंग्रेजी में बतियाते दिख रहे हैं। असलम के इस हुनर को देखकर न सिर्फ विदेशी बल्कि देश की जनता भी हैरान है। असलम पिछले 17 सालों से पुरानी दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चला रहे हैं। वो सिर्फ सवारी को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम नहीं करते बल्कि उनके लिए एक टूर गाइड भी बन जाते हैं। वो विदेशी मेहमानों को दिल्ली के इतिहास की कहानियाँ सुनाते हैं, उन्हें घूमने और फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगहों की सलाह देते हैं। साड़ी में सजी एक लड़की ने ऐसा शानदार डांस किया कि पूरा समारोह तालियों और सीटियों से गूंज उठा। उसके दमदार मूव्स, बेहतरीन एक्सप्रेशंस और ग्रेसफुल अंदाज ने सभी का दिल जीत लिया। लड़की का डांस केवल स्टेप्स तक सीमित नहीं था बल्कि उसके एक्सप्रेशंस भी बेहद आकर्षक थे। गाने के हर बोल और हर बीट के साथ उसने जिस तरह तालमेल बिठाया, उसने प्रेजेंटेशन को और भी खास बना दिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में एक ऐसा कछुआ दिखाई दे रहा है जिसके एक नहीं बल्कि दो दो मुंह हैं। जिसने भी ये वीडियो देखा वो दंग रह गया। वायरल वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपने हाथ में एक छोटा सा कछुआ पकड़े नजर आता है। पहली नजर में तो ये बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही कछुए का अगला हिस्सा सामने आता है, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस अनोखे कछुए के दो मुंह और चार आंखें हैं। दिलचस्प बात यह है कि कछुए के दोनों मुंह पूरी तरह एक्टिव हैं। जब वो शख्स अपनी उंगली कछुए के मुंह के पास ले जाता है तो दोनों मुंह उसे पकड़ने के लिए एक साथ खुल जाते हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में देश के कई हिस्सों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस प्रेरणादायक वीडियो को उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जो इन दिनों देश के कई हिस्सों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तेज धूप और तपती गर्मी के बीच एक बंदर बेहद प्यासा नजर आता है। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकता है और आखिरकार उसे एक सार्वजनिक पानी का नल दिखाई देता है। इसके बाद जो सीन कैमरे में कैद होता है वो हर किसी को हैरान कर देता है। बंदर नल के पास पहुंचकर बड़ी सहजता से उसे खोलता है। ऐसा लगता है मानो उसे पूरी तरह पता हो कि पानी कैसे निकाला जाता है। नल खुलते ही वो आराम से पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ तक तो सीन नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो इस वीडियो को खास बनाता है। पानी पीने के बाद बंदर तुरंत वहाँ से नहीं जाता, वो कुछ पल रुकता है, फिर अपने हाथों से नल की टोटी बंद कर देता है। उसके ये छोटी सी हरकत लोगों के लिए बड़ी सीख बन गई। जहाँ अक्सर इंसान सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, वहीं इस जानवर ने पानी की एक एक बूंद की अहमियत समझते हुए उसे बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर एक उदास और गहरी सोच में डूबे गोरिल्ले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को अपने घर का क्लेश याद आ रहा है। वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में एक नर गोरिल्ला तेजी से भागता दिखाई देता है, जबकि उसके पीछे एक मादा गोरिल्ला गुस्से में उसका पीछा कर रही होती है। पूरा सीन ऐसा लगता है मानो दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद हो गया हो और मेल गोरिल्ला वहां से जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो इंटरनेट यूजर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। इसमें गोरिल्ला अकेले घास पर बैठा दिखाई देता है। उसका चेहरा बेहद गंभीर है, एक हाथ ठुड्डी के नीचे टिका हुआ है और उसकी नजरें कहीं दूर जीरो में खोई हुई हैं। ऐसा लगता है मानो वो अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब बैठाकर किसी गहरे कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि कुछ सतर्क सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही ये जानकारी शेयर कर दी कि वीडियो के दोनों हिस्से अलग अलग जगहों के हैं और अलग अलग समय के हैं और उन्हें जोड़कर एक नई कहानी बनाई गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया ने इस गोरिल्ला के लिए अपनी अलग ही कहानी गढ़ ली थी और लोग उसे खियोमासा की वैवाहिक परेशानी का नाम देने लगे। प्यार में दिल टूटने की कहानियां तो आपने इंसानों की बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी बिल्ली का हार्ट ब्रेक देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार और भावुक कर देने वाला वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी बिल्ली से होती है। बिल्ली अपने मुंह में एक छोटे से चूहे को दबाए हुए नजर आती है। जिसे लोग गिफ्ट या तोहफा बता रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी खास को ये तोहफा देने के लिए उत्साहित होकर वहाँ पहुँची हो। बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर जाती दिखाई देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार एक बड़े सरप्राइज से होने वाला है। जैसे ही बिल्ली आगे पहुंचती है, उसकी नजर दूसरी बिल्लियों पर पड़ती है। दोनों बिल्लियां एक दूसरे के साथ बेहद प्यार भरे अंदाज में समय बिताती दिखाई देती हैं। ये दृश्य देखकर पहली बिल्ली कुछ पल के लिए रुक जाती है। वीडियो में उसका रिएक्शन ऐसा लगता है जैसे उसे अचानक एहसास हो गया हो कि जिस खास के लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी वो अब किसी और के साथ खुश है। हालांकि जानवरों की भावनाओं को इंसानों की तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन वीडियो का ये पल लोगों को काफी दिलचस्प लग रहा है। वीडियो का सबसे भावुक और मजेदार हिस्सा तब आता है जब बिल्ली बिना कोई शोर किए अपना गिफ्ट जमीन पर रख देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से वापस लौट जाती है। इन दिनों पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच यूके के एक जू ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जा रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हाथी के बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के प्रति उसकी जिज्ञासा और मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही है। यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों का भी खूब ध्यान आकर्षित कर रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़ी वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती रहती है। कभी किसी जानवर की मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत लेती हैं, तो कभी जंगल के जीवों की ताकत और आक्रामक अंदाज से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर छा जाते हैं। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हाथी अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कई हाथी एक घिरे हुए प्लॉट के अंदर दिखाई देते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन कुछ ही पलों में एक हाथी ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं। हाथी सामने बनी दीवार की ओर बढ़ता है और पूरी ताकत के साथ उसे जोरदार धक्का मार देता है। ये धक्का इतना जोरदार था कि मजबूत दिखाई देने वाली दीवार कुछ ही सेकंड में ढह जाती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दीवार गिरने के बाद हाथियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इसके बाद वो आराम से उस स्थान से बाहर निकल जाते हैं। हाथी की ताकत और उसके आत्मविश्वास को देखकर लोग दंग रह गए। आमतौर पर ऐसी दीवारों को तोड़ने के लिए मशीनों या भारी उपकरणों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस हाथी ने केवल एक जोरदार धक्के से पूरी दीवार को गिरा दिया।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
5: गुड न्यूज टुडे
4: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और अब बात आमिर खान की फिल्म लगान की करते हैं। आमिर के लिए तो ये जैसे डबल धमाका है, क्योंकि एक तरफ उनके लगान ने बड़े पर्दे पर 25 साल पूरे कर लिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आमिर खान प्रोडक्शन भी अपनी सिल्वर जुबली बना रहा है। आमिर खान ने इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी। इस पार्टी में आमिर के साथ जश्न मनाने के लिए बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां जुटी। देखिए कौन कौन पहुंचा इस पार्टी में।

0: जब फिल्मों में कामयाबी के 25 साल का जश्न मनाया तो उन्हें बधाई देने के लिए सितारों की महफिल सज गई। ये जश्न सिर्फ आमिर खान प्रोडक्शन का ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने का भी था। बड़े पर्दे पर 25 साल की कामयाबी को आमिर ने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की सिल्वर जुबली पर आमिर ने एक खास इवेंट रखा। इस इवेंट में बड़े पर्दे की तमाम जानी मानी हस्तियां पहुंची। आमिर यहां अपनी होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ दिखे। इस पार्टी में आमिर खान का पूरा परिवार भी पहुंचा। उनकी बेटी आयरा और बेटा जुनैद इस पार्टी में शामिल थे। आमिर की एक्स वाइफ किरण राव अपने बेटे के साथ इस इवेंट में पहुंची थी। इस जश्न के खास मेहमान थे सलमान खान, जो अपने बिल्कुल नए लुक के साथ यहां दिखे। सलमान का ये लुक सामने आते ही चर्चा होने लगी कि ये उनकी नई फिल्म का ही लुक है। आमिर ने सलमान को गले लगाकर उनका स्वागत किया और दोनों ने एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कुछ ही देर में करीना ने भी इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही काजोल, सानिया मल्होत्रा, रेखा, अली फजल, ऋचा चड्ढा भी इस जश्न का हिस्सा बने। जूही चावला यहां अपने पति के साथ पहुंची। जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी इस पार्टी में दिखे। लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, राजकुमार ईरानी समेत तमाम जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस जश्न में शामिल थे। आमिर ने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी कई यादगार फिल्में बनाई हैं। आमिर की फिल्में हमेशा दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं और ऐसी ही फिल्में वो प्रोड्यूस भी करते हैं। 25 साल के सफर में आमिर खान प्रोडक्शन ने कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। आमिर खान प्रोडक्शन की सिल्वर जुबली के मौके पर उन तमाम फिल्मों को याद भी किया गया जो बड़े पर्दे पर आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सनी देओल की गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ कमाई के रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि थिएटर्स में किसी फेस्टिवल जैसा माहौल बना दिया था। गदर एक प्रेम कथा ने आज ही के दिन 25 साल पहले जैसे ही पर्दे पर दस्तक दी एक कोहराम समाचा दिया था। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे सरहदों की दीवारें नहीं रोक सकी और एक ऐसा एक्शन जिसने दर्शकों को कुर्सियों से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया था। आज 25 साल पूरे होने पर गदर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुकी है।
2: मुझे वो सबसे पहली मेमोरी आती है कि जैसे ही गदर का पोस्टर देखता हूँ तो या कोई भी चीज, गदर तो इतना है कि गदर वन अपने आप में, उसकी मेकिंग ही अपने आप में एक फिल्म है। वो तो बहुत सारी चीज़ें, मगर एक चीज़, हम अहमदाबाद से आए थे, रात को वहाँ पे कुछ शो हुआ था, प्रेस शो था। सुबह सुबह मैं उठा, थर्सडे मॉर्निंग थी, 9:30 बजे, सुबह सुबह 6 बजे मैं आया था, सोफे पर ही सो गया था, अंदर बेडरूम में भी नहीं गया। 9:30 बजे एक फ़ोन की घंटी बजती, उन दोनों बड़े बड़े फ़ोन होते थे, ट्रिंग टैंग टिंग, फ़ोन उठाया, बोले वो एक उड़ीसा से एक थिएटर से फ़ोन है, मैनेजर से फ़ोन है। मैनेजर थर्सडे को पिक्चर रिलीज हो जाती थी उड़ीसा वगैरह में, बहुत सारी जगह। तो उसने बोला आपने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, क्या फिल्म बना दी है, क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्या? अरे बोले बवाल हो गया है, 3,000 आदमी अंदर है, 3,000 आदमी बाहर है। मैंने कहा 3,000 कैसे को घुस गए थिएटर के अंदर, मैं क्या करूं, इतने ही बाहर है, पब्लिक पागल हो गए। पब्लिक को कैसे पता लगा? पूरे इंटरवल पे सब मोबाइल पे फोन कर दिया सब लोगों ने और पब्लिक अगले शो के लिए आ गई है, पागल हो गए हैं लोग, पैसे फेंक रहे हैं, मेरा थिएटर टूट जाएगा, फूट जाएगा। मैंने कहा पिक्चर की तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। बोले मैं कह रहा हूँ ऐसी पिक्चर आज तक कभी बनी नहीं है, इसलिए मैं एक्साइटमेंट में आपका नंबर कहाँ से ढूंढा और आपको फोन किया है। थिएटर ही मेरा टूटे टूटे परवाह नहीं, लेकिन पिक्चर कमाल है। ये इंटरवल पे मेरे को इस गदर का रिएक्शन था। अभी तो सिर्फ इंटरवल ही हुआ था, हैंडपंप तक पहुंचे ही नहीं थे। सालों से चल रहा था गदर 2 बनानी है, गदर 2 बनानी है, जीते की कहानी बनानी है, जीते को आगे, जीते बड़ा हो रहा है, पर कहानी नहीं आ रही थी। गदर 1 गदर 2 में ऐसे नहीं बना सकता था कि गदर 1 के नाम को मुझे इनकैश करना। जब तक मेरे पास कहानी नहीं आएगी मैं गदर 2 नहीं बनाऊंगा। बस गुजरते गए गुजरते गए। अब लोग बोलने लगे अभी तो उत्कर्ष भी बड़ा हो गया, अब तो बना लो, अब तो जीते को आप उत्कर्ष ही ले सकते हो। अरे मैंने कहा भाई उत्कर्ष ले सकता हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कहानी आ जाए ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, समझे ना। अगर 10 साल पहले भी कहानी आ जाती थी किसी और को जीते लेके मैं बना देता, उत्कर्ष बच्चा था, तो वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। वो तो मेरे लिए फिल्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं फिल्मकार पहले हूँ बाप बाद में हूँ। हमेशा मैं सबको समझाता हूँ, लोग उल्टा सोचते हैं, शायद लोगों का मानसिकता ऐसी है, वो खुद ऐसे हैं तो ऐसे लिए सोचते हैं, मैं किसी को बदल तो नहीं सकता। तो बस जब कहानी आ गई मुझे लगा एटम बम आ गया, तो मैंने फोड़ दिया।
3: और क्या फोड़ा, बट गदर 3 का कोई प्लानिंग है या नहीं?
2: बिल्कुल प्लानिंग है, गदर 3 की कहानी बदस्तूर चल रही है, वही स्ट्रगल जारी है कि जब लगेगा कि गदर 1 और गदर 2 से बेहतर है मैं लेके आऊंगा। मेरे पास तो सनी भी है, अनुषा भी है, जीते भी है, जी भी है, सब है, मेरे लिए तो बड़ा आसान है शुरू कर देना। लेकिन वो लेवल की स्टोरी तो होनी चाहिए, क्योंकि गदर एक मेरी फिल्म नहीं है, गदर ऑडियंस की फिल्म है। गदर में जब भी बनाऊंगा, जब मुझे एज ए ऑडियंस लगेगा कि इससे बेटर नहीं हो सकती गदर 3, तभी बनाऊंगा। और मेरा काम चालू है, ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हो सकता है 2027 में या 26 में सम टाइम हम इसको अनाउंस करें।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: क्या आपको बार बार जीवन में धोखा मिलता है? प्रेम, विवाह, रिश्ते, दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बनी पौड़ी महाराज के कैची धाम में उमड़ा आस्था का जन समंदर, 62वां स्थापना दिवस के मौके पर देश दुनिया से पहुंचे भक्त, बाबा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी, तापमान में दर्ज की गई 4 से 6 डिग्री की गिरावट, आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छुटपुट बारिश, पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। आम के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट, अलग अलग राज्यों की 70 से ज्यादा वैरायटी मौजूद, गुलाब, खास, अंगूरदाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वागत की दीवानगी। अहमदाबाद से बीकानेर के बीच जल्द शुरू होगी नई ट्रेन, गुजरात और राजस्थान के हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत, दोनों राज्यों के बीच 740 किलोमीटर लंबा सफर होगा आसान। गिर जंगल सफारी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए गुड न्यूज, पर्यटकों को एक हफ्ते और मिलेगा शेरों के दीदार का मौका, सैलानियों के लिए अब 23 जून से बंद होगी गिर सेंचुरी।

0: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं मंगल से शुरू हो रहे मंगल दिनों की। 15 जून को अधिक मास समाप्त हो गया और इस तरह शुभ कार्यों पर जो रोक लगी थी वो भी खत्म हो गई। मंगल से शादी विवाह गृह प्रवेश और नया काम शुरू हो सकता है। आज आपको सबसे पहले जून और जुलाई में शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताएंगे, जब आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही बात होगी अधिक मास की, जिसके खत्म होने के साथ कई दुर्लभ संयोग बने हैं, इनका घर परिवार और देश दुनिया पर असर होगा। जानकार मान रहे हैं कि इससे सुख समृद्धि और शांति आएगी। और इसी बीच भारत समेत पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब रहा अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने की खबर आ चुकी है। दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते पर सितारों की चाल का क्या असर होगा और इस बार क्या शांति पक्की होगी, इस पर भी आज बात होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे मंगल से शुरू रही मंगल बेला की।
1: मंगल बेला आई, गूंजेगी शादी की शहनाई। अधिक मास खत्म, विवाह के मुहूर्त शुरू। शादी के लिए जून में 8 मुहूर्त, जुलाई में शादी के दिन 4। बैंड बाजा बारात, मंगल से मंगल।
0: अधिक मास की समाप्ति के साथ ही मंगल बेला की शुरुआत हो रही है। दुर्लभ संयोग रहा कि अधिक मास के आखिरी दिन सोमवार के दिन अमावस्या भी रही। देश भर में गंगा और दूसरी पवित्र नदियों में के किनारे लाखों लोगों ने भक्तिभाव से स्नान ध्यान किया, पूजा अर्चना की। असल में ये संयोग 3 दशक के बाद आया है, जब अधिक मास सोमवार की अमावस्या के साथ खत्म हुआ हो। जानकार मान रहे हैं कि अधिक मास के बाद घर परिवार समाज और देश में सुख समृद्धि और शांति आएगी। देखिए हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ और प्रयागराज तक कैसे हुई पूजा अर्चना।
1: संगम की पवित्र धरती, गंगा का पवित्र जल, हाथ जोड़कर भगवान भास्कर की आराधना, आस्था की अद्भुत तस्वीरें हैं जो सोमवती अमावस्या पर प्रयागराज में नजर आई। बेहिसाब भीड़, अगाध श्रद्धा, संगम के तमाम घाटों पर स्नान के बाद पूजा पाठ, क्योंकि ऐसा संयोग कम ही होता है कि सोमवार की अमावस्या हो और साथ ही अधिक मास का आखिरी दिन। जानकारों के मुताबिक कई दशकों के बाद ये दुर्लभ संयोग हुआ है, इसीलिए प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
2: आज सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या को संगम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। सुबह से ही भक्त संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहां पर पूजा पाठ कर रही हैं और पूजा पाठ करने के बाद अपने देश और अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रही है। सुबह से ही महिलाएं सूर्य देवता की पूजा कर रही है और गंगा जल चढ़ा करके यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। माँ गंगा यहाँ पर सबको आशीर्वाद देती हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ लगी हुई है, पूजा पाठ किया जा रहा है और जो लोग हैं अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए भी यहाँ पर आते हैं और महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं, जिससे अपने उनके पति और बच्चों की लंबी उम्र हो और माँ गंगा से प्रार्थना करती हैं कि देश में और उनके घर में सुख शांति रहे।
1: प्रयागराज नहीं, देश के सभी तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों में सोमवार को ऐसा ही विहंगम दृश्य देखने को मिला। खासतौर पर माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य का लाभ भी मिलता है।
3: यही कामना है घर में सबको, परिवार सभी आशीर्वाद देती है। गंगा माँ सब मनोकामना लेकर उनकी मनोकामना गंगा माँ पूर्ण करती है सबकी।
4: इस जन्म और उस जन्म के वो यहाँ गंगा माँ के स्नान करने समाप्त हो जाता है और हमारे हृदय भक्ति और सनातन धर्म का उद्गम यहीं से प्रारंभ होता है। जो एक महीने का अधिक मास का स्नान करता है भगवान श्री नारायण के चरणों में इस जन्म में सुख संपदा प्राप्त करता है और अंतिम चरण में भी वह मोक्ष प्राप्त करता है।
1: सोमवती अमावस्या का ज्यादा महत्व दो तीन वजहों से है। पहला तो ये कि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। संगम पर भी महिलाओं ने पीपल के पेड़ की दूध जल और अक्षत से पूजा की। पेड़ के चारों ओर कलावा लपेट कर परिक्रमा की गई।
5: आज के दिन जो भी कार्य किया जाएगा उसका हजार गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है और जो दान है या जो पुण्य है वो भी हजार गुना बढ़ जाता है ना। जैसे अगर आप किसी को 100 रुपया दिया तो हजारों हजार रुपये हो जाता है। इसी प्रकार से प्रयाग में जो भी की काम किया जाए, सोच समझ किया जाए, शांति के साथ किया जाए। आज के दिन लोग महिलाएं जाकर के पेपर में फेरी देंगी, भगवान विष्णु की पूजा करेंगी, पितरों के नाम से आज साल तर्पण किया जाता है। इसके करने से हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं और घर में जाकर माता पिता को प्रणाम करेंगे, उनकी सेवा की जाए तो भी फल प्राप्त होता है। आज जो भी गोदान करे या तर्पण करे या जो भी कार्य करेगा उससे उसके घर के अंदर हर प्रकार की मर्यादा बनी रहेगी, कभी कोई कमी नहीं होगी। और प्रयाग में खास करके जो प्रयाग निवासी है बड़े भाग्यवान है।
1: सोमवती अमावस्या का दूसरा महत्व पितरों की शांति से जुड़ा है, इसीलिए संगम पर काले तिल मिले जल से पीपल की जड़ में तर्पण किया गया। मान्यता है कि तर्पण और दान से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या का संबंध भगवान शिव और पार्वती से भी है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ से न सिर्फ घरों में बल्कि समाज और देश में सुख शांति और समृद्धि आती है। हजारों की तादाद में जो आस्थावान संगम पर मौजूद थे उन्होंने घर परिवार में शांति के लिए पूजा अर्चना की। देश भर में भक्ति भाव से भरी ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि सोमवार को अधिक मास की अमावस्या का दुर्लभ संयोग बना। पुरुषोत्तम मास जिसका संबंध भगवान विष्णु से है और सोमवार जो भगवान शिव का दिन माना जाता है, दोनों का संयोग होने से हरिहर की संयुक्त कृपा मानी गयी। जानकारों के मुताबिक ऐसा संयोग वर्ष 1999 में बना था, यानी 3 दशक बाद अधिक मास के आखिरी दिन सोमवार की अमावस्या आई है।
6: ऐसा कहा जाता है कि इस सोमवती अमावस्या में जो व्यक्ति हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड अथवा और अधिक कुंभ क्षेत्र अथवा किसी पवित्र नदी में स्नान करे, अन्यथा इन नदियों का पवित्र स्थानों का ध्यान करके घर में ही स्नान करे, तो वो इतना पुण्य फल प्राप्त कर लेता है जैसे स्वयं अश्वमेध यज्ञ कर लिया हो। और एक नहीं 1000 अश्वमेध यज्ञों का, कई लाख वाजपेयी यज्ञों का जो फल है वो सोमवती अमावस्या में इन कुंभ क्षेत्रों में या पवित्र नदियों में स्नान का कहा गया है। और आज सोमवार के दिन अमावस्या के दिन जो व्यक्ति स्नान करे, पितरों के लिए तर्पण करे और अपने पितरों के निमित्त शैया दान करे, ऐसा व्यक्ति अपने पितरों को तो अनंत काल के लिए स्वर्ग में विस्थापित कर देता है, स्वयं शरीर समाप्त होने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है और जीवन में सारे सुखों की कामना कर लेता है।
1: पवित्र पावन दिन पर हरिहर का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का हुजूम हरिद्वार के घाटों पर भी उमड़ा। कहीं भी तिल रखने तक की जगह नहीं थी। आरती आराधना, पूजा पाठ और दान पुण्य। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाने से यूं भी मोक्ष की मान्यता है, लेकिन ये स्नान खास तौर पर पितरों की शांति और सुख समृद्धि के लिए खास है। हरिद्वार की तरह भव्य तस्वीरें चित्रकूट से भी नजर आई। मान्यता ये है कि इस पवित्र मंदाकिनी नदी में भगवान राम ने वनवास के दौरान डुबकी लगाई थी और इसी राम घाट में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम ने बालक रूप में दर्शन दिए थे। इसीलिए हमेशा अमावस्या पर भक्त यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। सोमवती अमावस्या का अवसर विशेष था, इसीलिए करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चित्रकूट में डुबकी लगाई और कामतनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की पूजा की और श्रद्धालुओं ने नदी के तट पर पार्थिव पूजन किया। आज तक की ऐसी तस्वीरें भगवान राम की नगरी अयोध्या और बद्री विशाल से भी सामने आई है। अयोध्या में सरयू के पावन जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की, तो वहीं प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। बद्री विशाल के धाम पर यूं भी अधिक मास में पूजा पाठ का विशेष महत्व है, उस पर सोमवती अमावस्या का संयोग, इसलिए अलकनंदा तट पर मौजूद सप्त कुंड में पवित्र स्नान के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म कपाल पहुंचकर अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण किया। सोमवती अमावस्या के साथ अधिक मास भी समाप्त हो गया और शुभ कार्यों के लिए मंगल बेला की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, अयोध्या से मयंक शुक्ला और बद्रीनाथ से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: अधिक मास के समाप्त होने के साथ शुभ और मांगलिक काम की शुरुआत होने वाली है। पिछले 30 दिनों से शादी विवाह गृह प्रवेश पर रोक थी, लोगों ने नए काम की शुरुआत भी नहीं की, पर अब शादियों के शुभ मुहूर्त है और जून में 8 दिन और जुलाई में 4 दिन विवाह के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आगे 12 महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से होने वाले हैं।

0: जिस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो आ गई। अब जून से लेकर जुलाई तक शहनाई गूंजेगी। न सिर्फ शादी बल्कि तमाम मंगल कार्य जो रुके हुए थे उनका श्री गणेश होगा। कोई घर बसाएगा तो कोई नए घर में जाएगा। किसी की जिंदगी में नए काम की शुरुआत होगी। जो भी होगा शुभ होगा, मंगल होगा, क्योंकि 15 जून को अधिक मास समाप्त हो चुका है।
1: परंतु जैसे ही अधिक मास की अवधि समाप्त होती है वैसे ही शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाते हैं। तो अधिक ज्येष्ठ मास सोमवार को 15 जून 2026 दिन सोमवार को सुबह लगभग 9 बजे के बाद से समाप्त हो जा रहा है और शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आरंभ हो जा रही है। लेकिन उदयकालिक मान्यताओं के अनुसार 16 जून को यह माना जाएगा कि शुद्ध ज्येष्ठ मास आरंभ होगा और यहीं से शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाते हैं और चारों तरफ शहनाई की गूंज सुनाई देगी। विवाह होंगे, गृह प्रवेश के मुहूर्त मिलेंगे, तो यह समय बड़ा ही शुभ कारक हो जाएगा मांगलिक कार्यों के लिए।
0: हालांकि धार्मिक तौर पर अधिक मास या मल मास का महीना शुभ माना जाता है, लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए इसे अनुकूल नहीं समझा जाता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अधिक मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। यानी सूर्य इस अवधि में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करता। सौर चक्र में इस संक्रमण विहीन अवधि के कारण इस मास को मल मास कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, इसलिए इस समय शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय और दूसरे मांगलिक काम रोक दिए जाते हैं। लेकिन अधिक मास का एक दूसरा पक्ष भी है। मान्यता है कि इस माह को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना सर्वोत्तम नाम यानी पुरुषोत्तम प्रदान किया। तब से अधिक मास पुरुषोत्तम मास हो गया और इस दौरान पूजा, जप तप, व्रत और दान का महत्व कहीं ज्यादा हो गया। लेकिन जहां तक बात है शादी विवाह और नए काम की, तो उसके लिए अधिक मास अनुपयुक्त ही रहा। इस साल 17 मई से इसकी शुरुआत हुई थी। 30 दिनों बाद इसकी समाप्ति से यानी 16 जून से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के साथ मांगलिक कार्यों पर अब कोई रोक नहीं होगी। वैसे तो अधिक मास के समाप्त होते ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, पर विवाह के लिए सही मुहूर्त 19 जून से है। इसके बाद ये शादी ब्याह से जुड़े आयोजन देश भर में शुरू हो जाएंगे। पंचांग के अनुसार जून और जुलाई में मिलाकर 12 शुभ लग्न हैं, जिनमें जून में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 जून शादी के मुहूर्त हैं, जबकि जुलाई में 1, 6, 7 और 11 चार प्रमुख शुभ मुहूर्त हैं। यानी आने वाले 2 महीनों में कुल मिलाकर 12 ऐसे मुहूर्त हैं जो शुभ कार्यों खासकर शादी के लिए उत्तम है।
2: अभी जो समय है वह आपके शुभ और मांगलिक कार्यों का है और यह शुभ मांगलिक कार्य आपके जो है हरि शयनी एकादशी से रुक जाएंगे। जिस दिन आपकी जो है लगभग 25 जुलाई को हरि शयनी एकादशी है उस दिन रुक जाएंगे। इस बीच काफ़ी कुछ अच्छे जो है आपके आ रहे हैं। इसी बीच आपकी जो है निर्जला एकादशी आएंगी। इसी बीच 18 तारीख को गुरु का जो है पुष्य नक्षत्र में भ्रमण होना, आगे चल के आपकी जो है जुलाई में आपका जो आषाढ़ मास होगा तो उसमें गुप्त नवरात्रों का आना। तो कहने का तात्पर्य कि इस टाइम के अंतराल में काफी कुछ शुभ मांगलिक कार्य करने वाले मुहूर्त जो है प्राप्त हो रहे हैं।
3: सुंदर मुहूर्त है जिस दिन कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि पड़ेगी और आषाढ़ का समय होगा और इस समय एक बहुत बेहतरीन समय है जिस पर किया जा सकता है। 22 जून ध्यान रखिएगा, 20 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 26 जून और 27 जून, 29 जून, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई। अगर मैं इन 21 दिनों की स्पेशली बात करता हूं तो 7 जुलाई तक ये मैरिज को लेकर के बहुत शानदार दिवस है जिनके अंदर किया जा सकता है।
0: अधिक मास बीता तो विवाह के दिन आए, पर इसके लिए भी मुहूर्त सीमित है, क्योंकि 25 जुलाई से देव शयनी के साथ चतुर्मास शुरू हो जाएगा। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए अगले 4 महीनों तक मांगलिक कार्य फिर से बंद हो जाएंगे। इसके बाद देव उठनी एकादशी से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होगी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं और चतुर्मास का समापन होता है। लेकिन उससे पहले जून और जुलाई में मांगलिक कार्यों के 12 महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त हैं। जिन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी है उनके लिए तैयारी के भी अच्छे खासे दिन हैं। और जिन्हें अगले 4 महीने इंतजार नहीं करना, उनके लिए भी अच्छा और सुविधाजनक मुहूर्त तय करने की देर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अधिक मास की समाप्ति के साथ एक बड़ी गुड न्यूज जंग के मोर्चे से भी आई है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बन गई है और दोनों देशों के रुख से माना जा रहा है कि 19 जून को शांति समझौते पर मुहर लग सकती है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, जो भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। तय है कि अब सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे देशों से सप्लाई दोबारा शुरू होने से हालात बेहतर होंगे।
5: साढ़े 3 महीने बाद मिडिल ईस्ट के क्षितिज पर उम्मीद का नया सवेरा हुआ है। 28 फरवरी 2026 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर पहली बार पूर्ण विराम लग गया है। यूएस ईरान डील फाइनल होने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों समेत पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर शांति समझौते की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, यह शानदार समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का पैगाम लेकर आएगा। इससे पहले कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। इस रीजन के नेताओं को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो असली शांति ला सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि डील पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में 3.5 महीने से जारी तनाव को खत्म होने का इंतजार पूरी दुनिया को था, क्योंकि इस जंग की वजह से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। कच्चे तेल के दाम न सिर्फ बेतहाशा बढ़ चुके थे बल्कि आपूर्ति भी चरमरा गई थी। इससे दुनिया के कई देशों की आर्थिक व्यवस्था जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रही थी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत समेत पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में तेल गैस का जबरदस्त संकट पैदा हो गया था।
6: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर 19 जून को होने हैं, लेकिन इस फैसले से पूरी दुनिया ने खुशी और राहत महसूस की है। तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने अपने संदेश भेजकर इसका स्वागत किया है और सबसे ज्यादा राहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की खबर से महसूस की जा रही है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल और क्रूड का कारोबार होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से अब तमाम जहाजों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सकेगी और तमाम सी फेयरर्स जो इस इलाके में फंसे हैं अपने घरों को सकुशल लौट पाएंगे। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है 19 जून का, जब ईरान और अमेरिका इस हस्ताक्षर के साथ शांति का एक नया पैगाम देंगे और लंबे वक्त से आर्थिक संकट झेल रहे देशों को भी इससे राहत प्राप्त होगी।
5: भारत भी इस संघर्ष विराम और समझौते का न सिर्फ बेसब्री से इंतजार कर रहा था बल्कि इसके लिए कूटनीतिक कोशिशें भी कर रहा था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस डील का तहे दिल से स्वागत किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डील का स्वागत करते हुए लिखा, मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच बनी आपसी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक गतिरोध पैदा हो गया था और कई देशों में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। भारत को आशा है कि इस समझौते के लागू होने के बाद क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और नेविगेशन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश बातचीत जारी रखेंगे, जिससे आने वाले समय में एक स्थायी हल निकल सके। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: जाहिर है यह खबर पूरी दुनिया समेत भारत के लिए बड़ी राहत की है। अब सवाल है कि युद्ध और लंबी तनातनी के बाद क्या मध्य एशिया और दुनिया में शांति का दौर लौटने वाला है? क्या कहते हैं सितारे, आइए समझते हैं।
1: दोनों देशों के लिए ही नहीं, ईरान और अमेरिका के लिए ही नहीं, अभी तो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो एक बड़े परिवर्तन की स्थिति दिखाई देगी। कैसे? क्योंकि एक तो देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में चले गए हैं, मिथुन राशि से उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं। बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है जो कि मीन राशि में है, तो शनि के नकारात्मकता में कमी आ गई है, शुभता में वृद्धि हो जाएगी। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है, तो दोनों ही गुरु कर्क राशि में है, जबकि देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है, लेकिन दोनों का जो योग होता है कुंडली में उसको बड़ा ही सम्मान की दृष्टि से बड़ा ही सकारात्मक देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसका शुभ परिणाम आम जनमानस को प्राप्त होगा। तो वैश्विक स्तर पर यह परिवर्तन, यह हस्ताक्षर, यह योग, यह संयोग जो घटित होने जा रहा है वह सकारात्मक होगा।
7: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
4: और अब बात आमिर खान की फिल्म लगान की करते हैं। आमिर के लिए तो ये जैसे डबल धमाका है, क्योंकि एक तरफ उनके लगान ने बड़े पर्दे पर 25 साल पूरे कर लिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आमिर खान प्रोडक्शन भी अपनी सिल्वर जुबली बना रहा है। आमिर खान ने इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी। इस पार्टी में आमिर के साथ जश्न मनाने के लिए बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां जुटी। देखिए कौन कौन पहुंचा इस पार्टी में।

0: जब फिल्मों में कामयाबी के 25 साल का जश्न मनाया तो उन्हें बधाई देने के लिए सितारों की महफिल सज गई। ये जश्न सिर्फ आमिर खान प्रोडक्शन का ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने का भी था। बड़े पर्दे पर 25 साल की कामयाबी को आमिर ने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की सिल्वर जुबली पर आमिर ने एक खास इवेंट रखा। इस इवेंट में बड़े पर्दे की तमाम जानी मानी हस्तियां पहुंची। आमिर यहां अपनी होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ दिखे। इस पार्टी में आमिर खान का पूरा परिवार भी पहुँचा। उनकी बेटी आयरा और बेटा जुनैद इस पार्टी में शामिल थे। आमिर की एक्स वाइफ किरण राव अपने बेटे के साथ इस इवेंट में पहुंची थी। इस जश्न के खास मेहमान थे सलमान खान, जो अपने बिल्कुल नए लुक के साथ यहां दिखे। सलमान का ये लुक सामने आते ही चर्चा होने लगी कि ये उनकी नई फिल्म का ही लुक है। आमिर ने सलमान को गले लगाकर उनका स्वागत किया और दोनों ने एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कुछ ही देर में करीना ने भी इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही काजोल, सानिया मल्होत्रा, रेखा, अली फजल, ऋचा चड्ढा भी इस जश्न का हिस्सा बने। जूही चावला यहां अपने पति के साथ पहुंची। जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी इस पार्टी में दिखे। लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, राजकुमार ईरानी समेत तमाम जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस जश्न में शामिल थे। आमिर ने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी कई यादगार फिल्में बनाई हैं। आमिर की फिल्में हमेशा दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं और ऐसी ही फिल्में वो प्रोड्यूस भी करते हैं। 25 साल के सफर में आमिर खान प्रोडक्शन ने कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। आमिर खान प्रोडक्शन की सिल्वर जुबली के मौके पर उन तमाम फिल्मों को याद भी किया गया जो बड़े पर्दे पर आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा खास बन गया है। ब्रासिलावा पहुंचते ही उनका गमजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत की सबसे खास बात रही भारतीय और स्लोवाक संस्कृति का शानदार मेल। यहां मशहूर ग्रुप ने अपने अंदाज में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की प्रस्तुति दी, जिसने सभी का दिल जीत लिया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
2: I have no idea how this election is going to play out,
1: or want to catch up on your team's live play-by-plays, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: क्या आपको बार बार जीवन में धोखा मिलता है? प्रेम, विवाह, रिश्ते, दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: बनी प्योरी महाराज के कैची धाम में उमड़ा आस्था का जन समंदर, 62वां स्थापना दिवस के मौके पर देश दुनिया से पहुंचे भक्त, बाबा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी, तापमान में दर्ज की गई 4-6 डिग्री की गिरावट, आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छुटपुट बारिश, पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। आम के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट, अलग अलग राज्यों की 70 से ज्यादा वैरायटी मौजूद, गुलाब खास, अंगूरदाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वागत की दीवानगी। अहमदाबाद से बीकानेर के बीच जल्द शुरू होगी नई ट्रेन, गुजरात और राजस्थान के हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत, दोनों राज्यों के बीच 740 किलोमीटर लंबा सफर होगा आसान। गिर जंगल सफारी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए गुड न्यूज, पर्यटकों को एक हफ्ते और मिलेगा शेरों के दीदार का मौका, सैलानियों के लिए अब 23 जून से बंद होगी गिर सेंचुरी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली गिरफ्तार की तरह फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे परखे ने सच मान लेते, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार या टीवी के पन्नों तक सीमित नहीं है, यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है, पुरानी घटना को नहीं बताकर परोसा जाता है, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से बिल्कुल दूर होती है, नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे परखे ने शेयर करते हैं और यहीं से अफवाहों का दौर शुरू होता है, तो ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं, वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की बात करेंगे जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जहां पर लाखों की भीड़ जुटी, क्या है इसकी सच्चाई आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो हाल फिलहाल में पेरिस में भड़की हिंसा का है, इस वीडियो की सच्चाई भी आगे जानी। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोगों का हुजूम देखा जा सकता है और कुछ लोग वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है देखिए इस रिपोर्ट में।
4: देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के नाम पर अब 6 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मानकर कई यूजर्स शेयर कर रहे हैं। वीडियो में आजादी के नारे भी सुने जा सकते हैं। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो अपलोड करते हुए लिखा, ओ माय गॉड, इतनी भीड़ तो किसी नेता मंत्री की रैली में भी नहीं होती होगी। कुछ भी हो, लेकिन एक नौजवान ने आज देश की राजधानी को हिला डाला। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में सबसे बड़ी भीड़। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में हजारों की भीड़ देखी जा सकती है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का ये वीडियो है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने सबसे

0: पहले वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को ध्यान से देखा। इसमें हमें जंतर मंतर वेधशाला के अंदर प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आई। यहां ऐसा संभव है कि वेधशाला के अंदर प्रदर्शनकारियों की एंट्री संभव नहीं थी। जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये प्रदर्शन स्थल के पास स्थित है। यहां टिकट के जरिए ही एंट्री होती है। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए बाकायदा एक जगह तय की गई है, स्थान पर प्रदर्शन होता है और यहां पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत लेनी होती है। इसके लिए बाकायदा पुलिस की गाइडलाइंस भी हैं। जंतर मंतर वेधशाला का एंट्री गेट दूसरी ओर है। जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल और वेधशाला के बीच में टॉलस्टॉय मार्ग है जहां पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम को वीडियो में ऐसी कोई भी गलती नजर नहीं आए जिससे हमें इसके असली होने पर शक हो। मसलन कि यदि फोटो को जूम करके देखने पर वीडियो में कई आकृतियां ऐसी नजर आ रही हैं, साथ ही साथ इसमें अलग से आवाज को भी जोड़ा गया, लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यह कि अगर वीडियो सच्चा है तो उसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। देखिए सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखने पर हमें इसके असली होने पर संदेह हुआ। मसलन फोटो को जूम करके देखने पर वीडियो में कई आकृतियां एक ही जैसी दिख रही हैं। इमेज में अलग से आवाज जोड़कर इस वीडियो को बनाया गया है। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक वेरीफाइड इंस्टाग्राम हैंडल पर ये मिला। इसे 6 जून 2026 को अपलोड किया गया था। वीडियो के कमेंट में बड़ी संख्या में लोगों ने इसे एआई से बना हुआ बताया था। हालांकि इस हैंडल पर इसे एआई लेबल के साथ पोस्ट किया गया है, जिसका मतलब हुआ कि कंटेंट को पूरा या उसके कुछ हिस्से को बनाने या उससे बेहतर करने में एआई का इस्तेमाल हुआ है। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए एआई डिटेक्शन टूल्स की मदद ली। हमने वायरल वीडियो के कई स्क्रीनशॉट्स निकाले। दो स्क्रीनशॉट को हाइव मॉडरेशन टूल पर इसे स्कैन किया गया। इसके एनालिसिस में वायरल वीडियो के 70.2% एआई से बनाए जाने की अधिकतम संभावना की पुष्टि हुई। जांच के दौरान एक दूसरे एआई डिटेक्शन टूल साइट इंजन का भी इस्तेमाल किया गया। इस टूल के नतीजों ने भी वायरल वीडियो के 99% तक एआई से बने होने की संभावना जताई। इसके लिए भी हमने स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो एआई एडिटेड है। हालांकि ये सही है कि 6 जून के सीजेपी के प्रदर्शन में जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वायरल वीडियो फेक है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी के चैंपियन लीग जीतने के बाद पेरिस में हिंसा भड़क गई थी और इसी घटना से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है, जिसमें जलती गाड़ियां बस स्टैंड पर तोड़फोड़ के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
2: तीस मई की रात को पेरिस पीएसजी के चैंपियंस लीग जीतने की खबर सामने आने के बाद पेरिस समेत फ्रांस के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई। जश्न मनाने के दौरान उपद्रवियों ने कुछ जगहों पर दुकानों में भी तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इसके अलावा कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। फ्रेंच पुलिस ने इस मामले में करीब 780 लोगों को हिरासत में लिया था। इसी घटना से जोड़कर सोशल मीडिया पर 37 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शुरुआती 18 सेकंड में एक सड़क पर कई गाड़ियां पलटी और उनमें से कुछ में आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है। आगे के हिस्से में भीड़ एक बस और ट्राम स्टेशन को तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए इसे पेरिस में हुई हालिया हिंसा का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जलती गाड़ियों और बस स्टैंड पर तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। लोग गुस्से में गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। पीएसजी के चैंपियंस लीग जीतने के बाद पेरिस में हिंसा भड़क गई, इस दावे का साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने का वायदा किया है, इसीलिए हमने इसकी पड़ताल के लिए एक एक फ्रेम को गौर से देखा। हाँ, ये बात सच है कि 30 मई की रात को पेरिस के सेंट जर्मेन चैंपियन लीग जीतने की खबर सामने आने के बाद पेरिस समेत फ्रांस के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी। जश्न मनाने के दौरान उपद्रवियों ने कुछ जगहों पर दुकानों में भी तोड़फोड़ की थी, उसमें आग लगाई थी। इसके अलावा कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया था, लेकिन ये वीडियो उसी हिंसा से जुड़ा हुआ था, ये जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रही वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में तोड़फोड़ मचा रहे लोगों के कपड़ों पर गया। लोग जैकेट पहने हुए हैं, कोट पहने हुए, टोपी लगाए हैं, मफलर लगाए हुए हैं। अगर वीडियो 30 मई का होता तो इस दौरान फ्रांस में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। फ्रांस में मई का महीना साल के सबसे बेहतरीन समय में से एक होता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है, बसंत का मौसम होता है, दिन में खुशमा धूप, शाम में हल्की ठंडी होती है, बारिश कभी कभार हो जाती है। मतलब ये कि वायरल वीडियो हाल फिलहाल का तो नहीं हो सकता, लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो हाल फिलहाल का है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं किसी पुराने वीडियो को जानबूझकर नया एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
2: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो एक पत्रकार के एक्स अकाउंट से 24 दिसंबर 2022 को पोस्ट किया हुआ मिला। इसके अलावा हमें एक फेसबुक अकाउंट से 25 दिसंबर 2022 को अपलोड किया गया दूसरा वीडियो भी मिला, जिसमें वायरल वीडियो से जुड़े दृश्य मौजूद थे और इसे रेनी बोइसरी नाम के एक पत्रकार ने रिपोर्ट किया था। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे पेरिस के कोर्डिश कल्चरल सेंटर के सामने हुए हमले के बाद हिंसा भड़कने का बताया गया था। इसके बाद हमने आग के दृश्यों की पड़ताल की, जिसमें भीड़ एक बस और ट्राम स्टेशन तोड़ती दिखाई दे रही है। रिवर्स सर्च में हमें ये वीडियो फेसबुक अकाउंट से 25 दिसंबर 2022 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे पेरिस का बताया गया था। जांच में हमें एक यूरोपियन मीडिया आउटलेट की वेबसाइट पर भी 24 दिसंबर 2022 को प्रकाशित रिपोर्ट में वायरल वीडियो से जुड़े दृश्यों वाली तस्वीर मिली। ये रिपोर्ट 23 दिसंबर 2022 को पेरिस में कुर्दिश कल्चरल सेंटर पर हुए हमले के बाद पेरिस में भड़की हिंसा की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 23 दिसंबर 2022 को पेरिस में मौजूद कुर्दिश कल्चरल सेंटर के पास गोलीबारी हुई थी और इसमें करीब 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर हिंसा भड़क गई थी। ये हमला 69 वर्षीय विलियम एम नाम के एक शख्स ने किया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट है कि पेरिस में हिंसा भड़कने के दावे से शेयर हो रहे इस वीडियो में मौजूद दोनों ही दृश्य हालिया नहीं बल्कि करीब 3 साल पुराने हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: Schwarber to right field, and it will lead.
4: From the first pitch of the season to the stretch run,
5: and that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
2: इन दिनों सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक रिक्शे वाले भैया खूब छाए हुए हैं। इनका नाम मोहम्मद असलम है, जिन्हें लोग इंटरनेट पर असलम रिक्शा वाला के नाम से जानते हैं। दरअसल इस रिक्शे वाले का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो विदेशी पर्यटकों से कोई टूटी फूटी नहीं बल्कि एकदम फर्राटेदार स्पेनिश और अंग्रेजी में बतियाते दिख रहे हैं। असलम के इस हुनर को देखकर न सिर्फ विदेशी बल्कि देश की जनता भी हैरान है।
6: असलम पिछले 17 सालों से पुरानी दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चला रहे हैं। वो सिर्फ सवारी को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम नहीं करते, बल्कि उनके लिए एक टूर गाइड भी बन जाते हैं। वो विदेशी मेहमानों को दिल्ली के इतिहास की कहानियाँ सुनाते हैं, उन्हें घूमने और फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगहों की सलाह देते हैं। साड़ी में सजी एक लड़की ने ऐसा शानदार डांस किया कि पूरा समारोह तालियों और सीटियों से गूंज उठा। उसके दमदार मूव्स, बेहतरीन एक्सप्रेशंस और ग्रेसफुल अंदाज ने सभी का दिल जीत लिया। लड़की का डांस केवल स्टेप्स तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके एक्सप्रेशंस भी बेहद आकर्षक थे। गाने के हर बोल और हर बीट के साथ उसने जिस तरह तालमेल बिठाया, उसने प्रेजेंटेशन को और भी खास बना दिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में एक ऐसा कछुआ दिखाई दे रहा है जिसके एक नहीं बल्कि दो दो मुंह हैं। जिसने भी ये वीडियो देखा वो दंग रह गया। वायरल वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपने हाथ में एक छोटा सा कछुआ पकड़े नजर आता है। पहली नजर में तो ये बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही कछुए का अगला हिस्सा सामने आता है, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस अनोखे कछुए के दो मुंह और चार आंखें हैं। दिलचस्प बात यह है कि कछुए के दोनों मुंह पूरी तरह एक्टिव हैं। जब वो शख्स अपनी उंगली कछुए के मुंह के पास ले जाता है तो दोनों मुंह उसे पकड़ने के लिए एक साथ खुल जाते हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में देश के कई हिस्सों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस प्रेरणादायक वीडियो को उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जो इन दिनों देश के कई हिस्सों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तेज धूप और तपती गर्मी के बीच एक बंदर बेहद प्यासा नजर आता है। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकता है और आखिरकार उसे एक सार्वजनिक पानी का नल दिखाई देता है। इसके बाद जो सीन कैमरे में कैद होता है वो हर किसी को हैरान कर देता है। बंदर नल के पास पहुंचकर बड़ी सहजता से उसे खोलता है। ऐसा लगता है मानो उसे पूरी तरह पता हो कि पानी कैसे निकाला जाता है। नल खुलते ही वो आराम से पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ तक तो सीन नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो इस वीडियो को खास बनाता है। पानी पीने के बाद बंदर तुरंत वहाँ से नहीं जाता, वो कुछ पल रुकता है, फिर अपने हाथों से नल की टोटी बंद कर देता है। उसकी छोटी सी हरकत लोगों के लिए बड़ी सीख बन गई। जहाँ अक्सर इंसान सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, वहीं इस जानवर ने पानी की एक एक बूंद की अहमियत समझते हुए उसे बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर एक उदास और गहरी सोच में डूबे गोरिल्ले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को अपने घर का क्लेश याद आ रहा है। वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में एक नर गोरिल्ला तेजी से भागता दिखाई देता है, जबकि उसके पीछे एक मादा गोरिल्ला गुस्से में उसका पीछा कर रही होती है। पूरा सीन ऐसा लगता है मानो दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद हो गया हो और मेल गोरिल्ला वहाँ से जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो इंटरनेट यूजर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। इसमें गोरिल्ला अकेले घास पर बैठा दिखाई देता है। उसका चेहरा बेहद गंभीर है, एक हाथ ठुड्डी के नीचे टिका हुआ है और उसकी नजरें कहीं दूर जीरो में खोई हुई हैं। ऐसा लगता है मानो वो अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब बैठाकर किसी गहरे कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि कुछ सतर्क सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही ये जानकारी शेयर कर दी कि वीडियो के दोनों हिस्से अलग अलग जगहों के हैं और अलग अलग समय के हैं, और उन्हें जोड़कर एक नई कहानी बनाई गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया ने इस गोरिल्ला के लिए अपनी अलग ही कहानी गढ़ ली थी और लोग उसे खियोमासा की वैवाहिक परेशानी का नाम देने लगे। प्यार में दिल टूटने की कहानियां तो आपने इंसानों की बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी बिल्ली का हार्ट ब्रेक देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार और भावुक कर देने वाला वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी बिल्ली से होती है। बिल्ली अपने मुंह में एक छोटे से चूहे को दबाए हुए नजर आती है, जिसे लोग गिफ्ट या तोहफा बता रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी खास को एक तोहफा देने के लिए उत्साहित होकर वहाँ पहुँची हो। बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर जाती दिखाई देती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार एक बड़े सरप्राइज से होने वाला है। जैसे ही बिल्ली आगे पहुंचती है, उसकी नज़र दूसरी बिल्लियों पर पड़ती है। दोनों बिल्लियां एक दूसरे के साथ बेहद प्यार भरे अंदाज में समय बिताती दिखाई देती हैं। ये दृश्य देखकर पहली बिल्ली कुछ पल के लिए रुक जाती है। वीडियो में उसका रिएक्शन ऐसा लगता है जैसे उसे अचानक एहसास हो गया हो कि जिस खास के लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी वो अब किसी और के साथ खुश है। हालांकि जानवरों की भावनाओं को इंसानों की तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन वीडियो का ये पल लोगों को काफी दिलचस्प लग रहा है। वीडियो का सबसे भावुक और मजेदार हिस्सा तब आता है जब बिल्ली बिना कोई शोर किए अपना गिफ्ट जमीन पर रख देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से वापस लौट जाती है। इन दिनों पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच यूके के एक जू ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जा रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हाथी के बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के प्रति उसकी जिज्ञासा और मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही है। यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों का भी खूब ध्यान आकर्षित कर रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़ी वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती रहती है। कभी किसी जानवर की मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत लेती है तो कभी जंगल के जीवों की ताकत और आक्रामक अंदाज से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर छा जाते हैं। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हाथी अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कई हाथी एक घिरे हुए प्लॉट के अंदर दिखाई देते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन कुछ ही पलों में एक हाथी ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं। हाथी सामने बनी दीवार की ओर बढ़ता है और पूरी ताकत के साथ उसे जोरदार धक्का मार देता है। ये धक्का इतना जोरदार था कि मजबूत दिखाई देने वाली दीवार कुछ ही सेकंड में ढह जाती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दीवार गिरने के बाद हाथियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इसके बाद वो आराम से उस स्थान से बाहर निकल जाते हैं। हाथी की ताकत और उसके आत्मविश्वास को देखकर लोग दंग रह गए। आमतौर पर ऐसी दीवारों को तोड़ने के लिए मशीनों या भारी उपकरणों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस हाथी ने केवल एक जोरदार धक्के से पूरी दीवार को गिरा दिया।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
7: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: Good news today is really अच्छा लगता है। इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
8: और अब बात आमिर खान की फिल्म लगान की करते हैं। आमिर के लिए तो ये जैसे डबल धमाका है, क्योंकि एक तरफ उनके लगान ने बड़े पर्दे पर 25 साल पूरे कर लिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आमिर खान प्रोडक्शन भी अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। आमिर खान ने इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी। इस पार्टी में आमिर के साथ जश्न मनाने के लिए बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां जुटी। देखिए कौन कौन पहुंचा इस पार्टी में।

0: जब फिल्मों में कामयाबी के 25 साल का जश्न मनाया तो उन्हें बधाई देने के लिए सितारों की महफिल सज गई। ये जश्न सिर्फ आमिर खान प्रोडक्शन का ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने का भी था। बड़े पर्दे पर 25 साल की कामयाबी को आमिर ने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की सिल्वर जुबली पर आमिर ने एक खास इवेंट रखा। इस इवेंट में बड़े पर्दे की तमाम जानी मानी हस्तियां पहुंची। आमिर यहां अपनी होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ दिखे। इस पार्टी में आमिर खान का पूरा परिवार भी पहुंचा। उनकी बेटी आयरा और बेटा जुनैद इस पार्टी में शामिल थे। आमिर की एक्स वाइफ किरण राव अपने बेटे के साथ इस इवेंट में पहुंची थी। इस जश्न के खास मेहमान थे सलमान खान, जो अपने बिल्कुल नए लुक के साथ यहां दिखे। सलमान का ये लुक सामने आते ही चर्चा होने लगी कि ये उनकी नई फिल्म का ही लुक है। आमिर ने सलमान को गले लगाकर उनका स्वागत किया और दोनों ने एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कुछ ही देर में करीना ने भी इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही काजोल, सानिया मल्होत्रा, रेखा, अली फजल, ऋचा चड्ढा भी इस जश्न का हिस्सा बने। जूही चावला यहां अपने पति के साथ पहुंची। जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी इस पार्टी में दिखे। लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, राजकुमार ईरानी समेत तमाम जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस जश्न में शामिल थे। आमिर ने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी कई यादगार फिल्में बनाई हैं। आमिर की फिल्में हमेशा दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं और ऐसी ही फिल्में वो प्रोड्यूस भी करते हैं। 25 साल के सफर में आमिर खान प्रोडक्शन ने कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। आमिर खान प्रोडक्शन की सिल्वर जुबली के मौके पर उन तमाम फिल्मों को याद भी किया गया जो बड़े पर्दे पर आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सनी देओल की गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ कमाई के रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े बल्कि थिएटर्स में किसी फेस्टिवल जैसा माहौल बना दिया था। गदर एक प्रेम कथा ने आज ही के दिन 25 साल पहले जैसे ही पर्दे पर दस्तक दी एक कोहराम समचा दिया था। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे सरहदों की दीवारें नहीं रोक सकी और एक ऐसा एक्शन जिसने दर्शकों को कुर्सियों से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया था। आज 25 साल पूरे होने पर गदर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुकी है।
2: मुझे वो सबसे पहली मेमोरी आती है कि जैसे ही गदर का पोस्टर देखता हूँ तो या कोई भी चीज़, गदर तो इतना है कि गदर वन अपने आप में, उसकी मेकिंग ही अपने आप में एक फिल्म है। वो तो बहुत सारी चीज़ें, मगर एक चीज़, हम अहमदाबाद से आए थे, रात को वहाँ पे कुछ शो हुआ था, प्रेस शो था। सुबह सुबह मैं उठा, थर्सडे मॉर्निंग थी, 9:30 बजे, सुबह सुबह 6 बजे मैं आया था, सोफे पर ही सो गया था, अंदर बेडरूम में भी नहीं गया। 9:30 बजे एक फ़ोन की घंटी बजती, उन दिनों बड़े बड़े फ़ोन होते थे, ट्रिंग टैंग टिंग, फ़ोन उठाया, बोले वो एक उड़ीसा से एक थिएटर से फ़ोन है, मैनेजर से फ़ोन है। मैनेजर थर्सडे को पिक्चर रिलीज हो जाती थी उड़ीसा वगैरह में, बहुत सारी जगह। तो उसने बोला आपने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, क्या फिल्म बना दी है, क्या हो गया? मैंने कहा क्या हुआ क्या? अरे बोले बवाल हो गया है, 3,000 आदमी अंदर है, 3,000 आदमी बाहर है। मैंने कहा 3,000 कैसे को घुस गए थिएटर के अंदर, मैं क्या करूं, इतने ही बाहर है, पब्लिक पागल हो गए। पब्लिक को कैसे पता लगा? बोले इंटरवल पे सब मोबाइल पे फोन कर दिया सब लोगों ने और पब्लिक अगले शो के लिए आ गई है, पागल हो गए हैं लोग, पैसे फेंक रहे हैं, मेरा थिएटर टूट जाएगा, फूट जाएगा। मैंने कहा पिक्चर की तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो? बोले मैं कह रहा हूँ ऐसी पिक्चर आज तक कभी बनी नहीं है, इसलिए मैं एक्साइटमेंट में आपका नंबर कहाँ से ढूंढा और आपको फोन किया है। थिएटर ही मेरा टूटे, टूटे परवाह नहीं, लेकिन पिक्चर कमाल है। ये इंटरवल पे मेरे को इस गदर का रिएक्शन था। अभी तो सिर्फ इंटरवल ही हुआ था, हैंडपंप तक पहुंचे ही नहीं थे। सालों से चल रहा था गदर टू बनानी है, जीते की कहानी बनानी है, जीते को आगे, जीते बड़ा हो रहा है, पर कहानी नहीं आ रही थी। गदर वन गदर टू में ऐसे नहीं बना सकता था कि गदर वन के नाम को मुझे इनकैश करना, जब तक मेरे पास कहानी नहीं आएगी मैं गदर टू नहीं बनाऊंगा। बस गुजरते गए, अब लोग बोलने लगे अभी तो उत्कर्ष भी बड़ा हो गया, अब तो बना लो, अब तो जीते को आप उत्कर्ष ही ले सकते हो। अरे मैंने कहा भाई उत्कर्ष ले सकता हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी आ जाए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, समझे ना। अगर 10 साल पहले भी कहानी आ जाती थी किसी और को जीते लेके मैं बना देता, उत्कर्ष बच्चा था, तो वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। वो तो मेरे लिए फिल्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं फिल्मकार पहले हूँ, बाप बाद में हूँ। हमेशा मैं सबको समझाता हूँ, लोग उल्टा सोचते हैं, शायद लोगों का मानसिकता ऐसी है, वो खुद ऐसे हैं तो ऐसे लिए सोचते हैं, मैं किसी को बदल तो नहीं सकता। तो बस जब कहानी आ गई मुझे लगा एटम बम आ गया, तो मैंने फोड़ दिया।
3: और क्या फोड़ा, बट गदर 3 का कोई प्लानिंग है या
2: नहीं? बिल्कुल प्लानिंग है, गदर 3 की कहानी बदस्तूर चल रही है, वही स्ट्रगल जारी है कि जब लगेगा कि गदर 1 और गदर 2 से बेहतर है मैं लेके आऊंगा। मेरे पास तो सनी भी है, अनुषा भी है, जीते भी है, जी भी है, सब है, मेरे लिए तो बड़ा आसान है शुरू कर देना। लेकिन वो लेवल की स्टोरी तो होनी चाहिए, क्योंकि गदर एक मेरी फिल्म नहीं है, गदर ऑडियंस की फिल्म है। गदर में जब भी बनाऊंगा, जब मुझे एज ए ऑडियंस लगेगा कि इससे बेटर नहीं हो सकती गदर 3, तभी बनाऊंगा। और मेरा काम चालू है, ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हो सकता है 2027 में या 26 में सम टाइम हम इसको अनाउंस करें।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: क्या आपको बार बार जीवन में धोखा मिलता है? प्रेम, विवाह, रिश्ते, दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: पौड़ी महाराज के काशी धाम में उमड़ा आस्था का जन समंदर, 62वां स्थापना दिवस के मौके पर देश दुनिया से पहुंचे भक्त, बाबा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी, तापमान में दर्ज की गई 4 से 6 डिग्री की गिरावट, आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम मेहरबान, राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छुटपुट बारिश, पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। आम के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट, अलग अलग राज्यों की 70 से ज्यादा वैरायटी मौजूद, गुलाब, खास, अंगूरदाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वागत की दीवानगी। अहमदाबाद से बीकानेर के बीच जल्द शुरू होगी नई ट्रेन, गुजरात और राजस्थान के हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत, दोनों राज्यों के बीच 740 किलोमीटर लंबा सफर होगा आसान। गिर जंगल सफारी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए गुड न्यूज, पर्यटकों को एक हफ्ते और मिलेगा शेरों के दीदार का मौका, सैलानियों के लिए अब 23 जून से बंद होगी गिर सेंचुरी।

0: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं मंगल से शुरू हो रहे मंगल दिनों की। 15 जून को अधिक मास समाप्त हो गया और इस तरह शुभ कार्यों पर जो रोक लगी थी वो भी खत्म हो गई। मंगल से शादी विवाह गृह प्रवेश और नया काम शुरू हो सकता है। आज आपको सबसे पहले जून और जुलाई में शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताएंगे जब आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही बात होगी अधिक मास की, जिसके खत्म होने के साथ कई दुर्लभ संयोग बने हैं, इनका घर परिवार और देश दुनिया पर असर होगा। जानकार मान रहे हैं कि इससे सुख समृद्धि और शांति आएगी। और इसी बीच भारत समेत पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब रहा अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने की खबर आ चुकी है। दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते पर सितारों की चाल का क्या असर होगा और इस बार क्या शांति पक्की होगी, इस पर भी आज बात होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे मंगल से शुरू रही मंगल बेला की।
1: मंगल बेला आई, गूंजेगी शादी की शहनाई। अधिक मास खत्म, विवाह के मुहूर्त शुरू। शादी के लिए जून में 8 मुहूर्त, जुलाई में शादी के दिन 4। बैंड बाजा बारात, मंगल से मंगल।
0: अधिक मास की समाप्ति के साथ ही मंगल बेला की शुरुआत हो रही है। दुर्लभ संयोग रहा कि अधिक मास के आखिरी दिन सोमवार के दिन अमावस्या भी रही। देश भर में गंगा और दूसरी पवित्र नदियों में के किनारे लाखों लोगों ने भक्तिभाव से स्नान ध्यान किया, पूजा अर्चना की। असल में यह संयोग 3 दशक के बाद आया है जब अधिक मास सोमवार की अमावस्या के साथ खत्म हुआ हो। जानकार मान रहे हैं कि अधिक मास के बाद घर परिवार समाज और देश में सुख समृद्धि और शांति आएगी। देखिए हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ और प्रयागराज तक कैसे हुई पूजा अर्चना।
1: संगम की पवित्र धरती, गंगा का पवित्र जल, हाथ जोड़कर भगवान भास्कर की आराधना, आस्था की अद्भुत तस्वीरें हैं जो सोमवती अमावस्या पर प्रयागराज में नजर आई। बेहिसाब भीड़, अगाध श्रद्धा, संगम के तमाम घाटों पर स्नान के बाद पूजा पाठ, क्योंकि ऐसा संयोग कम ही होता है कि सोमवार की अमावस्या हो और साथ ही अधिक मास का आखिरी दिन। जानकारों के मुताबिक कई दशकों के बाद ये दुर्लभ संयोग हुआ है, इसीलिए प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
2: आज सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या को संगम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई। सुबह से ही भक्त संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहां पर पूजा पाठ कर रही हैं और पूजा पाठ करने के बाद अपने देश और अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रही है। सुबह से ही महिलाएं सूर्य देवता की पूजा कर रही है और गंगा जल चढ़ा करके यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। माँ गंगा यहाँ पर सबको आशीर्वाद देती हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ लगी हुई है, पूजा पाठ किया जा रहा है और जो लोग हैं अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए भी यहाँ पर आते हैं और महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं जिससे अपने उनके पति और बच्चों की लंबी उम्र हो और माँ गंगा से प्रार्थना करती हैं कि देश में और उनके घर में सुख शांति रहे।
1: प्रयागराज नहीं, देश के सभी तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों में सोमवार को ऐसा ही विहंगम दृश्य देखने को मिला। खासतौर पर माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य का लाभ भी मिलता है।
3: यही कामना है घर में सबको, परिवार सभी आशीर्वाद देती, गंगा माँ सब मनोकामना लेकर उनकी मनोकामना गंगा माँ पूर्ण करती है सबकी।
4: इस जन्म और उस जन्म के वो यहाँ गंगा माँ का स्नान करने समाप्त हो जाता है और हमारे हृदय भक्ति और सनातन धर्म का उद्गम यहीं से प्रारंभ होता है। जो एक महीने का अधिक मास का स्नान करता है भगवान श्री नारायण के चरणों में इस जन्म में सुख संपदा प्राप्त करता है और अंतिम चरण में भी वह मोक्ष प्राप्त करता है।
1: सोमवती अमावस्या का ज्यादा महत्व दो तीन वजहों से है। पहला तो ये कि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। संगम पर भी महिलाओं ने पीपल के पेड़ के दूध, जल और अक्षत से पूजा की। पेड़ के चारों ओर कलावा लपेट कर परिक्रमा की गई।
5: आज के दिन जो भी कार्य किया जाएगा उसका हजार गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है और जो दान है या जो पुण्य है वो भी हजार गुना बढ़ जाता है ना। जैसे अगर आप किसी को 100 रुपया दिया तो हजारों हजार रुपये हो जाता है। इसी प्रकार से प्रयाग में जो भी की काम किया जाए, सोच समझ किया जाए, शांति के साथ किया जाए। आज के दिन लोग महिलाएं जाकर के पेपर में फेरी देंगी, भगवान विष्णु की पूजा करेंगी, पितरों के नाम से आज साल तर्पण किया जाता है। इसके करने से हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं और घर में जाकर माता पिता को प्रणाम करेंगे, उनकी सेवा की जाए तो भी फल प्राप्त होता है। आज जो भी गोदान करे या तर्पण करे या जो भी कार्य करेगा उससे उसके घर के अंदर हर प्रकार की मर्यादा बनी रहेगी, कभी कोई कमी नहीं होगी। और प्रयाग में खास करके जो प्रयाग निवासी हैं बड़े भाग्यवान हैं।
1: सोमवती अमावस्या का दूसरा महत्व पितरों की शांति से जुड़ा है, इसीलिए संगम पर काले तिल मिले जल से पीपल की जड़ में तर्पण किया गया। मान्यता है कि तर्पण और दान से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या का संबंध भगवान शिव और पार्वती से भी है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ से न सिर्फ घरों में बल्कि समाज और देश में सुख शांति और समृद्धि आती है। हजारों की तादाद में जो आस्थावान संगम पर मौजूद थे उन्होंने घर परिवार में शांति के लिए पूजा अर्चना की। देश भर में भक्ति भाव से भरी ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि सोमवार को अधिक मास की अमावस्या का दुर्लभ संयोग बना। पुरुषोत्तम मास जिसका संबंध भगवान विष्णु से है और सोमवार जो भगवान शिव का दिन माना जाता है, दोनों का संयोग होने से हरिहर की संयुक्त कृपा मानी गई। जानकारों के मुताबिक ऐसा संयोग वर्ष 1999 में बना था, यानी 3 दशक बाद अधिक मास के आखिरी दिन सोमवार की अमावस्या आई है।
6: ऐसा कहा जाता है कि इस सोमवती अमावस्या में जो व्यक्ति हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड अथवा और अधिक कुंभ क्षेत्र अथवा किसी पवित्र नदी में स्नान करे, अन्यथा इन नदियों का पवित्र स्थानों का ध्यान करके घर में ही स्नान करे, तो वो इतना पुण्य फल प्राप्त कर लेता है जैसे स्वयं अश्वमेध यज्ञ कर लिया हो। और एक नहीं 1000 अश्वमेध यज्ञों का, कई लाख वाजपेयी यज्ञों का जो फल है वो सोमवती अमावस्या में इन कुंभ क्षेत्रों में या पवित्र नदियों में स्नान का कहा गया है। और आज सोमवार के दिन अमावस्या के दिन जो व्यक्ति स्नान करे, पितरों के लिए तर्पण करे और अपने पितरों के निमित्त शैया दान करे, ऐसा व्यक्ति अपने पितरों को तो अनंत काल के लिए स्वर्ग में विस्थापित कर देता है, स्वयं शरीर समाप्त होने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है और जीवन में सारे सुखों की कामना कर लेता है।
1: पवित्र पावन दिन पर हरिहर का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का हुजूम हरिद्वार के घाटों पर भी उमड़ा। कहीं भी तिल रखने तक की जगह नहीं थी। आरती आराधना, पूजा पाठ और दान पुण्य। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाने से यूं भी मोक्ष की मान्यता है, लेकिन ये स्नान खास तौर पर पितरों की शांति और सुख समृद्धि के लिए खास है। हरिद्वार की तरह भव्य तस्वीरें चित्रकूट से भी नजर आई। मान्यता ये है कि इस पवित्र मंदाकिनी नदी में भगवान राम ने वनवास के दौरान डुबकी लगाई थी और इसी राम घाट में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम ने बालक रूप में दर्शन दिए थे। इसलिए हमेशा अमावस्या पर भक्त यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। सोमवती अमावस्या का अवसर विशेष था, इसीलिए करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चित्रकूट में डुबकी लगाई और कामतनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की पूजा की और श्रद्धालुओं ने नदी के तट पर पार्थ पूजन किया। आज तक की ऐसी तस्वीरें भगवान राम की नगरी अयोध्या और बद्री विशाल से भी सामने आई है। अयोध्या में सरयू के पावन जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की, तो वहीं प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। बद्री विशाल के धाम पर यूं भी अधिक मास में पूजा पाठ का विशेष महत्व है, उस पर सोमवती अमावस्या का संयोग, इसलिए अलकनंदा तट पर मौजूद तप्त कुंड में पवित्र स्नान के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म कपाल पहुंचकर अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण किया। सोमवती अमावस्या के साथ अधिक मास भी समाप्त हो गया और शुभ कार्यों के लिए मंगल बेला की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, अयोध्या से मयंक शुक्ला और बद्रीनाथ से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: अधिक मास के समाप्त होने के साथ शुभ और मांगलिक काम की शुरुआत होने वाली है। पिछले 30 दिनों से शादी विवाह गृह प्रवेश पर रोक थी, लोगों ने नए काम की शुरुआत भी नहीं की, पर अब शादियों के शुभ मुहूर्त है और जून में 8 दिन और जुलाई में 4 दिन विवाह के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आगे 12 महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से होने वाले हैं।

0: जिस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो आ गई। अब जून से लेकर जुलाई तक शहनाई गूंजेगी। न सिर्फ शादी बल्कि तमाम मंगल कार्य जो रुके हुए थे उनका श्री गणेश होगा। कोई घर बसाएगा तो कोई नए घर में जाएगा। किसी की जिंदगी में नए काम की शुरुआत होगी। जो भी होगा शुभ होगा, मंगल होगा, क्योंकि 15 जून को अधिक मास समाप्त हो चुका है।
1: परंतु जैसे ही अधिक मास की अवधि समाप्त होती है वैसे ही शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाते हैं। तो अधिक ज्येष्ठ मास सोमवार को 15 जून 2026 दिन सोमवार को सुबह लगभग 9 बजे के बाद से समाप्त हो जा रहा है और शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आरंभ हो जा रही है। लेकिन उदयकालिक मान्यताओं के अनुसार 16 जून को यह माना जाएगा कि शुद्ध ज्येष्ठ मास आरंभ होगा और यहीं से शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाते हैं और चारों तरफ शहनाई की गूंज सुनाई देगी। विवाह होंगे, गृह प्रवेश के मुहूर्त मिलेंगे, तो यह समय बड़ा ही शुभ कारक हो जाएगा मांगलिक कार्यों के लिए।
0: हालांकि धार्मिक तौर पर अधिक मास या मल मास का महीना शुभ माना जाता है, लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए इसे अनुकूल नहीं समझा जाता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अधिक मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, यानी सूर्य इस अवधि में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करता। सौर चक्र में इस संक्रमण विहीन अवधि के कारण इस मास को मलमास कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, इसलिए इस समय शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय और दूसरे मांगलिक काम रोक दिए जाते हैं। लेकिन अधिक मास का एक दूसरा पक्ष भी है। मान्यता है कि इस माह को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना सर्वोत्तम नाम यानी पुरुषोत्तम प्रदान किया। तब से अधिक मास पुरुषोत्तम मास हो गया और इस दौरान पूजा, जप तप, व्रत और दान का महत्व कहीं ज्यादा हो गया। लेकिन जहां तक बात है शादी विवाह और नए काम की, तो उसके लिए अधिक मास अनुपयुक्त ही रहा। इस साल 17 मई से इसकी शुरुआत हुई थी। 30 दिनों बाद इसकी समाप्ति से यानी 16 जून से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के साथ मांगलिक कार्यों पर अब कोई रोक नहीं होगी। वैसे तो अधिक मास के समाप्त होते ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, पर विवाह के लिए सही मुहूर्त 19 जून से है। इसके बाद ये शादी ब्याह से जुड़े आयोजन देश भर में शुरू हो जाएंगे। पंचांग के अनुसार जून और जुलाई में मिलाकर 12 शुभ लग्न है, जिनमें जून में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 जून शादी के मुहूर्त हैं, जबकि जुलाई में 1, 6, 7 और 11 चार प्रमुख शुभ मुहूर्त हैं। यानी आने वाले 2 महीनों में कुल मिलाकर 12 ऐसे मुहूर्त हैं जो शुभ कार्यों खासकर शादी के लिए उत्तम हैं।
2: अभी जो समय है वह आपके शुभ और मांगलिक कार्यों का है और यह शुभ मांगलिक कार्य आपके जो है हरि शयनी एकादशी से रुक जाएंगे। जिस दिन आपकी जो है लगभग 25 जुलाई को हरि शयनी एकादशी है उस दिन रुक जाएंगे। इस बीच काफ़ी कुछ अच्छे जो है आपके आ रहे हैं। इसी बीच आपकी जो है निर्जला एकादशी आएंगी। इसी बीच 18 तारीख को गुरु का जो है पुष्य नक्षत्र में भ्रमण होना, आगे चल के आपकी जो है जुलाई में आपका जो आषाढ़ मास होगा तो उसमें गुप्त नवरात्रों का आना। तो कहने का तात्पर्य कि इस टाइम के अंतराल में काफी कुछ शुभ मांगलिक कार्य करने वाले मुहूर्त जो है प्राप्त हो रहे हैं।
3: सुंदर मुहूर्त है जिस दिन कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि पड़ेगी और आषाढ़ का समय होगा और इस समय एक बहुत बेहतरीन समय है जिस पर किया जा सकता है। 22 जून ध्यान रखिएगा, 20 जून 22 जून 23 जून 24 जून 26 जून और 27 जून 29 जून 1 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई 6 जुलाई और 7 जुलाई। अगर मैं इन 21 दिनों की स्पेशली बात करता हूं तो 7 जुलाई तक ये मैरिज को लेकर के बहुत शानदार दिवस है जिनके अंदर किया जा सकता है।
0: अधिक मास बीता तो विवाह के दिन आए, पर इसके लिए भी मुहूर्त सीमित है, क्योंकि 25 जुलाई से देव शयनी के साथ चतुर्मास शुरू हो जाएगा। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए अगले 4 महीनों तक मांगलिक कार्य फिर से बंद हो जाएंगे। इसके बाद देवउठनी एकादशी से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होगी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं और चतुर्मास का समापन होता है। लेकिन उससे पहले जून और जुलाई में मांगलिक कार्यों के 12 महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त हैं। जिन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी है उनके लिए तैयारी के भी अच्छे खासे दिन है, और जिन्हें अगले 4 महीने इंतजार नहीं करना उनके लिए भी अच्छा और सुविधाजनक मुहूर्त तय करने की देर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अधिक मास की समाप्ति के साथ एक बड़ी गुड न्यूज जंग के मोर्चे से भी आई है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बन गई है और दोनों देशों के रुख से माना जा रहा है कि 19 जून को शांति समझौते पर मुहर लग सकती है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, जो भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। तय है कि अब सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे देशों से सप्लाई दोबारा शुरू होने से हालात बेहतर होंगे।
5: साढ़े 3 महीने बाद मिडिल ईस्ट के क्षितिज पर उम्मीद का नया सवेरा हुआ है। 28 फरवरी 2026 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर पहली बार पूर्ण विराम लग गया है। यूएस ईरान डील फाइनल होने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों समेत पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर शांति समझौते की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, यह शानदार समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का पैगाम लेकर आएगा। इससे पहले कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। इस रीजन के नेताओं को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो असली शांति ला सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि डील पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में 3.5 महीने से जारी तनाव को खत्म होने का इंतजार पूरी दुनिया को था, क्योंकि इस जंग की वजह से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। कच्चे तेल के दाम न सिर्फ बेतहाशा बढ़ चुके थे बल्कि आपूर्ति भी चरमरा गई थी। इससे दुनिया के कई देशों की आर्थिक व्यवस्था जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रही थी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत समेत पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में तेल गैस का जबरदस्त संकट पैदा हो गया था।
6: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर 19 जून को होने हैं, लेकिन इस फैसले से पूरी दुनिया ने खुशी और राहत महसूस की है। तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने अपने संदेश भेजकर इसका स्वागत किया है और सबसे ज्यादा राहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की खबर से महसूस की जा रही है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल और क्रूड का कारोबार होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से अब तमाम जहाजों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सकेगी और तमाम सी फेयरर्स जो इस इलाके में फंसे हैं अपने घरों को सकुशल लौट पाएंगे। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है 19 जून का, जब ईरान और अमेरिका इस हस्ताक्षर के साथ शांति का एक नया पैगाम देंगे और लंबे वक्त से आर्थिक संकट झेल रहे देशों को भी इससे राहत प्राप्त होगी।
5: भारत भी इस संघर्ष विराम और समझौते का न सिर्फ बेसब्री से इंतजार कर रहा था बल्कि इसके लिए कूटनीतिक कोशिशें भी कर रहा था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस डील का तहे दिल से स्वागत किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डील का स्वागत करते हुए लिखा, मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच बनी आपसी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक गतिरोध पैदा हो गया था और कई देशों में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। भारत को आशा है कि इस समझौते के लागू होने के बाद क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और नेविगेशन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश बातचीत जारी रखेंगे जिससे आने वाले समय में एक स्थायी हल निकल सके। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: जाहिर है यह खबर पूरी दुनिया समेत भारत के लिए बड़ी राहत की है। अब सवाल है कि युद्ध और लंबी तनातनी के बाद क्या मध्य एशिया और दुनिया में शांति का दौर लौटने वाला है? क्या कहते हैं सितारे, आइए समझते हैं।
1: दोनों देशों के लिए ही नहीं, ईरान और अमेरिका के लिए ही नहीं, अभी तो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो एक बड़े परिवर्तन की स्थिति दिखाई देगी। कैसे? क्योंकि एक तो देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में चले गए हैं, मिथुन राशि से उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं। बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है जो कि मीन राशि में है, तो शनि के नकारात्मकता में कमी आ गई है, शुभता में वृद्धि हो जाएगी। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही गुरु हैं, एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है, तो दोनों ही गुरु कर्क राशि में है, जबकि देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है, लेकिन दोनों का जो योग होता है कुंडली में उसको बड़ा ही सम्मान की दृष्टि से बड़ा ही सकारात्मक देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसका शुभ परिणाम आम जनमानस को प्राप्त होगा। तो वैश्विक स्तर पर यह परिवर्तन, यह हस्ताक्षर, यह योग, यह संयोग जो घटित होने जा रहा है वह सकारात्मक होगा।
7: Music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: और अब बात आमिर खान की फिल्म लगान की करते हैं। आमिर के लिए तो ये जैसे डबल धमाका है, क्योंकि एक तरफ उनके लगान ने बड़े पर्दे पर 25 साल पूरे कर लिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आमिर खान प्रोडक्शन भी अपनी सिल्वर जुबली बना रहा है। आमिर खान ने इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी। इस पार्टी में आमिर के साथ जश्न मनाने के लिए बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां जुटी। देखिए कौन कौन पहुंचा इस पार्टी में।

0: जब फिल्मों में कामयाबी के 25 साल का जश्न मनाया तो उन्हें बधाई देने के लिए सितारों की महफिल सज गई। ये जश्न सिर्फ आमिर खान प्रोडक्शन का ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने का भी था। बड़े पर्दे पर 25 साल की कामयाबी को आमिर ने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की सिल्वर जुबली पर आमिर ने एक खास इवेंट रखा। इस इवेंट में बड़े पर्दे की तमाम जानी मानी हस्तियां पहुंची। आमिर यहां अपनी होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ दिखे। इस पार्टी में आमिर खान का पूरा परिवार भी पहुंचा। उनकी बेटी आयरा और बेटा जुनैद इस पार्टी में शामिल थे। आमिर की एक्स वाइफ किरण राव अपने बेटे के साथ इस इवेंट में पहुंची थी। इस जश्न के खास मेहमान थे सलमान खान, जो अपने बिल्कुल नए लुक के साथ यहां दिखे। सलमान का ये लुक सामने आते ही चर्चा होने लगी कि ये उनकी नई फिल्म का ही लुक है। आमिर ने सलमान को गले लगाकर उनका स्वागत किया और दोनों ने एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कुछ ही देर में करीना ने भी इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही काजोल, सानिया मल्होत्रा, रेखा, अली फजल, ऋचा चड्ढा भी इस जश्न का हिस्सा बने। जूही चावला यहां अपने पति के साथ पहुंची। जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी इस पार्टी में दिखे। लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, राजकुमार ईरानी समेत तमाम जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस जश्न में शामिल थे। आमिर ने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी कई यादगार फिल्में बनाई हैं। आमिर की फिल्में हमेशा दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं और ऐसी ही फिल्में वो प्रोड्यूस भी करते हैं। 25 साल के सफर में आमिर खान प्रोडक्शन ने कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। आमिर खान प्रोडक्शन की सिल्वर जुबली के मौके पर उन तमाम फिल्मों को याद भी किया गया जो बड़े पर्दे पर आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा खास बन गया है। ब्रासिलावा पहुंचते ही उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत की सबसे खास बात रही भारतीय और स्लोवाक संस्कृति का शानदार मेल। यहां मशहूर ग्रुप ने अपने अंदाज में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की प्रस्तुति दी, जिसने सभी का दिल जीत लिया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
2: Swing and a foul out of play off to the left.
1: Big 12 Radio.
3: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
1: Talk Sport.
4: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
1: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
5: क्या आपको बार बार जीवन में धोखा मिलता है? प्रेम, विवाह, रिश्ते, दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: बनी पौड़ी महाराज के

0: हिमाचल के शिमला में झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। तापमान में दर्ज की गई 4 से 6 डिग्री की गिरावट। आगामी 18 और 19 जून को प्रदेश में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर पर भी मौसम मेहरबान। राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हुई छुटपुट बारिश। पश्चिमी यूपी के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। आम के शौकीनों के लिए गुरुग्राम में लगा मैंगो फेस्ट। अलग अलग राज्यों की 70 से ज्यादा वैरायटी मौजूद। गुलाब, खास, अंगूरदाना, रसगुल्ला और मोतीचूर के स्वागत की दीवानगी। अहमदाबाद से बीकानेर के बीच जल्द शुरू होगी नई ट्रेन। गुजरात और राजस्थान के हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत। दोनों राज्यों के बीच 740 किलोमीटर लंबा सफर होगा आसान। गिर जंगल सफारी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए गुड न्यूज। पर्यटकों को एक हफ्ते और मिलेगा शेरों के दीदार का मौका। सैलानियों के लिए अब 23 जून से बंद होगी गिर सेंचुरी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार या टीवी के पन्नों तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। पुरानी घटना को नहीं बताकर परोसा जाता है, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से बिल्कुल दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने शेयर करते हैं और यहीं से अफवाहों का दौर शुरू होता है। तो ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं। वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज इन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की बात करेंगे जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जहां पर लाखों की भीड़ जुटी। क्या है इसकी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो हाल फिलहाल में पेरिस में भड़की हिंसा का है। इस वीडियो की सच्चाई भी आगे जानी। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोगों का हुजूम देखा जा सकता है और कुछ लोग वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
3: देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के नाम पर अब 6 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मानकर कई यूजर्स शेयर कर रहे हैं। वीडियो में आजादी के नारे भी सुने जा सकते हैं। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो अपलोड करते हुए लिखा, ओ माय गॉड, इतनी भीड़ तो किसी नेता मंत्री की रैली में भी नहीं होती होगी। कुछ भी हो, लेकिन एक नौजवान ने आज देश की राजधानी को हिला डाला। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में सबसे बड़ी भीड़। सोशल मीडिया की अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में हजारों की भीड़ देखी जा सकती है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का ये वीडियो है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को ध्यान से देखा। इसमें हमें जंतर मंतर वेधशाला के अंदर प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आई। यहां ऐसा संभव है कि वेधशाला के अंदर प्रदर्शनकारियों की एंट्री संभव नहीं थी। जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये प्रदर्शन स्थल के पास स्थित है। यहां टिकट के जरिए ही एंट्री होती है। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए बाकायदा एक जगह तय की गई है, स्थान पर प्रदर्शन होता है और यहां पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत